हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। या आएगी बात, फिर भी हमें खिला हुआ गुलाब का पुष्प यानी खुश नसीब खुशनुमा बनना है। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो। बातें आएगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती है, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, टेंशन में आ जाते हैं तो गुस्सा आता है, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। टेंशन में आते हैं, गुस्सा आता है लेकिन उससे मुक्त होने की विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ। बाबा चाहते हैं कि इस वर्ष ऐसी लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना, तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, शिव जयंती पर बाबा के क्रोध का तो कर लिया, दे दिया दान, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है, बेभान का मैं। एक है मैं आत्मा हूं, यह मैं है, लेकिन देहभान का मैं शब्द अभिमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तीन रूप से मैं आता है, वे अभिमान का मैं होता, किसी ने अपमान किया तो उस समय भी मैं, मुझे ऐसा कहा, तो अपमान का भी मैं होता और दिल शिकस्त उदास हो जाते, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो उस समय भी मैं शब्द आता है। तो बाबा कहे ये मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में, आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, इसका योग अग्नि में जलाओ। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, इसको क्या करो, योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। तो पिछले सप्ताह में बाबा ने शिव जयंती पर कहा ईर्ष्या, और दूसरा बताया क्यों, कि क्यों। आज बाबा कहते हैं मैं, ये मैं देह अभिमान का भी है, फिर दिल शिकस्त का भी है और साथ में अपमान का भी है, तीनों रूप से गिराता है। इसलिए बाबा कहे इसको जीतने के लिए इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है और तनाव का कारण है मैं, क्रोध का कारण है टेंशन और टेंशन का कारण है मैं। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर
संकल्प लो। जलाना है क्योंकि यह भी तो बोझ है ना, तो ट्रेन में जाओ प्लेन में जाओ तो ये बोझ यहां जला के जाओ। इससे जो सारा इकट्ठा हुआ बोझ है, मैं को जलाएंगे तो सारा बोझ भी जल जाएगा। जला सकते हो? पूछा बाबा ने। जो समझते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप साथ है ही तो विजय भी साथ है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वो हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं होली के आसपास, वहां पर रिट्रीट चलती है, कॉल ऑफ टाइम की रिट्रीट होती है, तो विशेष कर वीआईपी सारे वर्ल्ड से जो आते हैं ज्ञान सरोवर में, तो उसमें से कुछ वीआईपी भी जो कुछ समय के लिए रह गए तो वो भी बैठे हैं सभा में, तो इसलिए बाबा उनको देख करके जो आज वीआईपी आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ। देखो अथॉरिटी भगवान कैसे बच्चों के साथ बात करते हैं, वीआईपी बच्चे भी होते हैं तो उनको भी बाबा कहते उठो खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। वो भी हिम्मत कर रहे हैं वीआईपी होते हुए, तो बाबा के उनके लिए ताली तो बजाओ। विजयी बनेंगे? फिर बाबा उनसे पूछते हैं विजयी बनेंगे? देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं बाबा, उनको सूक्ष्म में ब्लेसिंग्स की माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे, अधिकारी बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे अगर हिम्मत किया और क्रोध को जलाया एक जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं, गारंटी देते हैं बाबा, वरदान भी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। देवताएं तो है ही वीआईपी, यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है? पूछते बाबा, कनेक्शन रखना मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने सामने भोग रखा होता है, उस पर फूलों की माला रखी होती है, तो बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई, ये माला आप सभी पहनना। कितनी भगवान की निर्माणता, ऐसे बच्चे जिसने बस एक हाथ उठाया कि हम भी क्रोध पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, संकल्प करेंगे, उनको भगवान सम्मान देता है और कहता है कि ये माला हर एक समझना कि भगवान आपको गले में पहना रहा है। इतनी बड़ी बात है, आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे, टाइटल भी बाबा क्या देते, रियल बच्चे है, रियल गोल्ड बच्चे, सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना। अब देखो वीआईपी को भगवान इतना सम्मान देते हैं तो अपने बच्चों को तो बाबा कितना सम्मान देते हैं, और कहते हैं आप नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मैं को जला के ही जाना। और कितनी बड़ी बात है उनके लिए, वीआईपी है उसको दे अभिमान का मैं तो जरूर रहता है,
लेकिन बाबा उन वीआईपी को भी कहते हैं इस मैं को जला के ही जाना, जो पहले बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना है। पहला नंबर में तो फिक्स है बाबा मम्मा, पहले नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ये हिम्मत है? हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो, सोच के उठाओ, सावधान भी करते हैं बाबा और हिम्मत भी भर रहे हैं। तो देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। बहुत काल का अभ्यास थोड़े समय में ही उसको पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। देखो, आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद पाती। ऐसे हिम्मत वालों को बाबा मुबारक भी देते हैं और कहते हिम्मत आपकी मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं हो जाना, इसलिए बाबा का हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। इस जन्म में जो पुरुषार्थ करेंगे अनेक जन्म ऐसा भाग्य चमकेगा। बातें आएंगी, फिर भी बाबा सावधान कर रहे हैं, बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है, बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है, तो जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही, बात आई और चली जाएगी, तो जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो, तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं, इस बात की हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई है, और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां आनी है, तो उसकी सिग्नल उसका इशारा भी बाबा दे रहे हैं कि चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहां कोई परिस्थिति है कहां कोई परिस्थिति है, ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो, इसलिए ड्रिल कराना चाहते हैं बाबा। परिस्थितियां जरूर है, बातें जरूर है, लेकिन उन सब परिस्थितियों के बीच एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो सकता है। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। मानो कोई बात आई और उस समय अंदर में इतना व्यर्थ संकल्पों का तूफान शुरू हो गया, तो ऐसे समय पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है? अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं लाते
तो आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बार बार आएगी, इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप, अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज्यादा जानते हो। बाबा कहते चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज्यादा जानते हो, तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी ये प्रैक्टिस करो, मन को बुद्धि को परमधाम में टिका सकते हो, अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ, कभी परमधाम में निराकार अवस्था में टिकाओ, कभी फरिश्ते रूप में टिकाओ, अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो तीनों स्वरूप में बाबा एक एक सेकंड में टिकाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। सबसे पहले परमधाम में निराकारी स्वरूप में, फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में टिक जाओ, और फिर स्थूल वतन में मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हूं। बाप दादा ने ऐसी ड्रिल कराई, ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो, जो चाहो जहां चाहो वहां मन एकाग्र हो, निराकारी आकारी या साकारी स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान हो। पुरुषार्थ एक मिनट लगे, एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का भी तैयारी कर रहा है। समय का इशारा दे दिया बाबा ने कि ऐसा समय हलचल का भी तैयारी कर रहा है, इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों क्यों प्यारा है? कैसा भी है लेकिन बाप दादा हर बच्चे को फोटो में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है लेकिन बाप का प्यारा बना है, बाप का प्यारा बना है, दिल से कहते मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। ये बाबा की आश है ना, हर बच्चा खुला हुआ गुलाब का पुष्प, खुशनुमा खुशनसीब, तो खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है, तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए, परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी, सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। दिल खुश मिठाई में कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्वपुरुषार्थ, स्वपुरुषार्थ से स्वउन्नति
और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेले सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इसी विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया, बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुनायात प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान वरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। बाबा के हर संकल्प में फरमान जिन्होंने पालन किया है, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे, कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए फरमान की लकीर के अंदर रहो। आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। एक रस अचल अडोल जिसकी अवस्था होगी वो वन वन वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आए, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखो, इसलिए नंबर वन बना। कितनी भी बातें आए लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर वन बना, तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति।

0: ओम शांति। ये विश्व का विशाल नाटक कितना सुंदर और वंडरफुल बना हुआ है। हम इसमें हीरो एक्टर्स हैं। सृष्टि के आदि से और अंत तक मुख्य पार्ट बजाते हुए आए हैं। ड्रामा का विशाल ज्ञान जो संसार में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया, स्वयं परम शिक्षक ने आकर हम सबको प्रदान किया। हम इस ड्रामा के ज्ञान को यूज करके अपने चित्त को शांत किया करें और इस संसार के लिए, हर एक आत्मा के लिए साक्षी भाव बढ़ाते चलें। यहां सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। मैं भी एक्टर हूं, हीरो एक्टर हूं। आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं हीरो एक्टर हूं तो मुझे स्टेज पर बहुत सुंदर पार्ट बजाना है। सारा संसार मेरे पार्ट को देखता है। जरा सी भी मिस्टेक अनेकों में मिस्टेक पैदा कर सकती है। मेरा जरा सा अलबेलापन अनेकों को अलबेलापन सिखा सकता है। मेरी सुस्ती अनेकों में सुस्ती भर सकती है। दूसरी बात, इस ड्रामा में सभी का अपना अपना भाग्य है। किसी की चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। इस विश्व ड्रामा में सभी बहुत बुद्धिमान नहीं होते, सभी कमजोर भी नहीं होते। किसी का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है तो किसी का कम है। भाग्य को यदि कोई बदलना चाहे तो वो स्वयं तो बदल सकता है, दूसरे उसे मदद कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तीसरी बात, दूसरों को देखते हुए उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें और बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें। ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। साक्षी हो जाएं, सबका पार्ट, सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट मिला हुआ है। किसी के पार्ट को देखकर न ईर्ष्या होनी चाहिए, न क्वेश्चंस उठने चाहिए, न पर चिंतन होना चाहिए। बहुत एंजॉय करें, कैसा विशाल नाटक है। एक का पार्ट दूसरे से कदापि नहीं मिलता, एक समय का पार्ट दूसरे समय से नहीं मिलता। जितनी आत्माएं अरबों उनका अलग अलग पार्ट, हर समय का अलग पार्ट। कितना विशाल नाटक है। लोग सोचते हैं किसने इसको बनाया है, किसने डिजाइन किया है। ये आत्मा और प्रकृति के मिलन से चलने वाला विश्व का खेल है। अगली बात याद रखेंगे, सभी इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का भी कोई दोष नहीं है। अगली बात याद रखेंगे, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जो यहाँ हो रहा है वही सत्य है। इसमें कहीं भी कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। भले किसी को अपना ड्रामा देखकर लगता हो मेरा तो ये ड्रामा अच्छा नहीं है, लेकिन हमने अपना और ड्रामा स्वयं ही निर्माण किया था, इसलिए हमें उसको स्वीकार करके उसी को एंजॉय करना चाहिए। और अगर कोई गलत बात है उसे निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह ड्रामा के ज्ञान से हम साक्षी भाव धारण करेंगे और याद रखेंगे, जो आत्माएं साक्षी भाव में स्थित हो जाती हैं, वो एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकती हैं। इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। तो आज सारा दिन, ये संसार एक सुंदर नाटक है, मैं इसमें हीरो एक्टर हूँ और सभी आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास हम करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पार्ट बजाने के लिए इस देह में अवतरित हुई हूँ। मैं अवतार हूँ, ये देह बिल्कुल अलग है और मैं इससे एकदम न्यारी। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, अवतार लिया, मैंने भी इस तन में प्रवेश किया है। परमात्मा के साथ मैं भी इस मुख्य कार्य में रत हो गई हूँ, लग गई हूँ, तो मैं अवतरित आत्मा हूँ। मुझे सबको देना है, मैंने देने के लिए ही अवतार धारण किया है, ऐसी गुड फीलिंग आज सारा दिन रखेंगे और ड्रामा के खेल को पूरी तरह साक्षी होकर देखते रहेंगे। ओम शांति।
1: अभी बजे हैं सुबह के 6।

रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, मंगल प्रभात आप सबका. अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. शुक्रिया इसलिए कि आप हमें जो जो रिस्पॉन्सेस भेजते हैं उसके द्वारा हमें भी नया उमंग, नई खुशी होती है. इसीलिए कहा जाता है, जब आप अपने आप से खुश होते हो, जब आप अपने आप से खुश होते हो, तब आप ईश्वर के नज़दीक जाते हो, तब आप ईश्वर के नज़दीक जाते हो. लेकिन जब आप दूसरों को खुशी देते हो, जब आप दूसरों को खुशी देते हो, तब ईश्वर खुद आपके नज़दीक आ जाते हैं, ईश्वर खुद आपके नज़दीक आ जाते हैं. दोस्तों, ये खुशियाँ जो सबसे बड़ा धन है, जो हमारे लिए एक टॉनिक है, जो हमारे लिए एक टॉनिक है, उस टॉनिक को भी आजकल लोग भूल गए हैं. और इसीलिए रामायण की जो रामचरितमानस की या रामायण की जो कथाएं हैं, वो कथाएं जब हम सुनते हैं, तब हमें यही संदेश मिलता है कि हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का परिवर्तन करने के लिए वाल्मीकि ऋषि जी ने हमारे सामने कुछ पात्र रखे हैं. तो उनमें से जो एक पात्र है, महत्वपूर्ण जो एक पात्र है, वो है श्री राम की पत्नी सीता जी का, सीता मैया का. हमने देखा कि सीता मैया जो है, वो जब उनका स्वयंवर हो गया, जिनको वो चाहती थी, वो श्री राम जी, उन्हें पति के रूप में मिल गए. और जब

0: इतनी वैराग्य वृत्ति होते हुए भी जब सीता जी वनवाह में गए, वहां फिर उन्हें मोह क्यों हुआ? वहां जब उन्होंने कंचन मृग जब देखा, तब उनको मोह क्यों हुआ? क्योंकि वैराग्य वृत्ति जो है उसमें तो मोह का आना जरा अजीब लगता है। तो इन सब क्वेश्चंस को हमारे मन में पैदा होने के बाद उसका अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो फिर हम मूंझ जाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, और आज सबसे पहले हम उनका दिल से स्वागत करते हैं आप सभी के तरफ से। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुप्रभात।
0: ज्ञानेश्वर जी, हमने जैसे कि रामायण पढ़ते गए, कुछ क्वेश्चंस मन में होते हुए भी हम उसको श्रद्धा भाव से आस्था से पढ़ते गए, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे कई बार मन को सताता है। वह क्वेश्चन है कि सीता मैया जो है वो अपने पति को परमेश्वर रूप में मानते हुए, जहाँ पति रहेंगे, जहाँ वह होंगे, वही मेरा भी निवास होगा, इस एक प्रिंसिपल को पकड़ते हुए या एक उनकी वो जो पति के प्रति श्रद्धा है उसको पकड़ते हुए वनवाह में तो चली गई। वनवाह में जाना अर्थात एक सम्राज्ञी के लिए, एक सम्राट के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन श्री राम और श्री सीता ने उसको करके दिखाया। अब वो वनवाह में जाने के बाद उन्हें मोह क्यों हो गया? उनके मन में वैराग्य वृत्ति है तो फिर भी उनको एक मृग, एक हिरण देखने के बाद उनके मन में वो इच्छा क्यों पैदा हो गई? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर की ये जो इच्छाएं हैं वो कहीं छिपी रहती है?
1: देखिए भक्ति जी, आपने जो बात कही उसमें उत्तर भी है और प्रश्न भी है। जैसे आपने पहले कहा था कि ये बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं जब भी हम रामायण पढ़ते हैं, और ये सवालों का जवाब जो है वो जवाब उसके हर अलग अलग हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं अलग अलग हो सकती है, और कई संभावनाएं आस्था के ऊपर आधारित है, और कई संभावनाएं लॉजिक के ऊपर आधारित है, कई संभावनाएं इतिहास या पुराण में जो कथाएं लिखी है उनके ऊपर आधारित है
0: जी।
1: सो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा लॉजिक, थोड़ी कथाएं, उसका कॉम्बिनेशन है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका अलग अलग उत्तर, अलग अलग जवाब हर प्रश्न के हो सकते हैं। उसमें हमारे श्रोतागण जो है वो काफ़ी बुद्धिमान है, समझदार है, और वो समझ सकते हैं कि उसमें क्या ठीक है क्या सही नहीं है। हमारा काम है उनको परोसना, जो अच्छा लगता है वो खाए, अच्छा नहीं लगता है वो क्यों नहीं लगा वो बताए,
0: या तो ये भी कह सकते हैं जो डाइजेस्ट होता है बुद्धि को,
1: बिल्कुल
0: वो करे, और नहीं होता है तो समय की भी राह देखे, थोड़ी सी इंतजार करे कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो शायद बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल, और ये देखिए, जैसे हमने कहा, हम कोई कुछ भी दावा नहीं करते कि हमारा जो कहना है यही फाइनल है। हम एक विचार देते हैं, हम एक संभावना देते हैं, और बुद्धि को चालना देने के लिए ये हमारी चर्चा है। तो जैसे आपने कहा कि सीता मैया को इतनी बड़ी वैराग्य वृत्ति थी, इतना बड़ा स्नेह था, इतना बड़ा प्रेम था कि राज्य भाग्य छोड़ के वो प्रभु रामचंद्र जी के साथ चली गई वनवाह में,
0: क्योंकि त्याग और तपस्या के बिना, त्याग के बिना ये संभव ही नहीं है।
1: तो ये जो अभी आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि उनको मोह कैसे पड़ गया, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार हम जब उसका अभ्यास करते हैं, अलग अलग व्यक्ति रेखाओं ने उसके बारे में क्या लिखा है वो जब पढ़ते हैं, तो

0: ने ऐसा भी एक पढ़ा है कि अगर ये हम महाकाव्य सोचते हैं तो कहीं ना कहीं महर्षि वाल्मीकि जो है वो इस काव्य में अलग अलग पात्र जो है उनका संबंध हमारे निज जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पढ़ा है, सीता मैया जो है, सीता मैया की भेंट में अगर हम हमारे आत्मा को देखें और प्रभु रामचंद्र जी है उनकी भेंट में अगर हम परमात्मा को देखें तो क्या होता है, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बार हम बहुत वस्तुओं का, बहुत श्रद्धाओं का या बहुत मोह माया का त्याग कर लेते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, महीने में 2-3 दिन या श्रावण मास में उपवास करते, उपवास किया तो क्या किया, हमने बहुत सारे पदार्थों का त्याग किया। फिर हम मंदिर में जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, हमारे समय का त्याग किया, इधर उधर भटकने के बजाय कुछ ना कुछ देव पूजा की समझो, या कुछ प्रार्थना की या कुछ भक्ति की, ये भी किया, आरती उतारी, तो ये कुछ क्षणों का त्याग करते हैं लेकिन संपूर्ण त्याग नहीं होता है। और ये संपूर्ण त्याग जब नहीं होता है, और त्याग तो जरूर करते हैं, वैराग्य आता है, त्याग करते हैं, और इसलिए बहुत बार ये भक्ति मार्ग में हम करते हैं, कहते हैं ये भक्ति मार्ग में, रिपीट, भक्ति मार्ग में हम ये कहते हैं कि श्मशान वैराग्य। ये श्मशान वैराग्य जो है ये ऐसा है कि वो टेम्पररी रहता है।
1: जब तक श्मशान के पास हम है या हम वहाँ रहे हुए हैं तब तक ही हमारी वृत्तियाँ जो है वो वैराग्य धारण करती है, और जब वहाँ से वापस चले आते हैं तब फिर से इसी रूटीन में लग जाते हैं। परंतु ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है और होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर हमें तो ज़िंदगी जीनी है। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही वो लॉजिकली या बुद्धि को जचने वाली है। इन सब बातों का हमें बहुत गहराई से विचार भी करना चाहिए, लेकिन अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से यही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आप सबका ब्रेक के बाद फिर से अमृत धारा प्रोग्राम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीता मैया की, और उस चर्चा में ज्ञानेश्वर जी ने जो बात कही, अगर आप गहराई से सोचते हैं तो वह दिल को जचती है कि हमारे अंदर की ऐसी वृत्तियाँ जो संपूर्णतः समाप्त नहीं होती, हम चाहते हैं परंतु कभी कभी वो फिर से कहीं ना कहीं सिर ऊपर उठाती है। और बात चल रही है शमशान वैराग्य की, वो वैराग्य वृत्ति की जो टेम्पररी रहती है। और मेरा सवाल ज्ञानेश्वर जी आपको सबकी तरफ से ये है, तो क्या हमेशा के लिए वैराग्य वृत्ति रह सकती है, संभव है, और क्यों रहना चाहिए? हम तो संसार में रहने वाले हैं, संसार में रहते हुए अगर हम इस प्रकार से रहने की आश करते हैं तो वो क्या सही है?
2: सर्वप्रथम हम शमशान वैराग्य जो है, शमशान वैराग्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शमशान वैराग्य के जब बात करते हैं तब जब भी मैं सोचता हूँ ये रिचुअल्स जो है, वो रिचुअल्स जो है कुछ ना कुछ वो हमें इंडिकेट करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि हमारे श्रोतागण जो है उनमें से कितने लोगों को ये रिचुअल्स मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कम से कम 70% लोगों को ये मरने के बाद के ये रिचुअल्स हैं वो मालूम होंगे। उसमें भी वैराग्य की बात आती है, इसलिए मैं भी रिचुअल्स के बारे में सुबह सुबह, नहीं तो कोई सोचेगा कि ये मरने की बात क्यों करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। हम जब वैराग्य वृत्ति की बात करते हैं तब ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए वर्ज नहीं है, वैराग्य इससे हम नहीं ले सकते। तो ये देखिए, जैसे आदमी मर जाता है, आदमी का देहांत हो जाता है, तब ऐसे रिचुअल्स है कि पहले उसको क्या करते हैं, पुराने जमाने में, आजकल के जमाने में नहीं चलते, जब हमारे जमाने में उसके कपड़े उतार देते थे, कपड़े उतार देते थे, तो उसका ये अर्थ ये है कि हमारा जो वस्त्र है, शरीर का वस्त्र है, वो हमने उतार दिया और आत्मा निर्वस्त्र होके चली गई। वो उसकी भावना है, उसके पीछे की भावना ये है, लेकिन उसके जगह क्या किया कि कपड़े उतार देते हैं। और अगर कोई बहन या माँ या बहन सौभाग्यवती है तब उसको छूट दी जाती है, उसके वस्त्र नहीं उतारे जाते मरने के बाद भी। ये पुराने जमाने में की बात है, आजकल तो सब चलता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि फिर भी कुछ रिचुअल्स अभी भी है। जैसे वो डेड बॉडी घर से निकाल देते हैं बाहर, तब उसका सर जो है वो घर के तरफ करते हैं और पैर जो है वो शमशान के तरफ करते हैं और फिर लेके जाते हैं। आजकल तो शव वाहिनी है या एम्बुलेंस है, उसमें से डेड बॉडी को लेके जाते हैं। पहले जमाने में वो कंधे पे उठा के लेके जाते थे। अभी शास्त्र के अनुसार कुछ पैर, कुछ कदम हम चलते हैं डेड बॉडी को लेके और फिर बोलते हैं राम बोलो भाई, राम बोलो। अभी हम जब वैराग्य की बात करते हैं तब राम बोलो भाई, राम बोलो ये कहना है जब आदमी जिंदा है तब, लेकिन आदमी मर जाता है, आदमी मर जाता है और फिर उसको बोलते हैं राम बोलो भाई, राम बोलो, मींस किसको बोलते हैं?
1: क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकता, उसकी तो आत्मा निकल जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगर सुन सकता भी है तो वो पश्चाताप करता होगा, अरे अगर उस दिन राम नहीं बोला तो वो पश्चाताप करता होगा, अरे मैंने तो जिंदगी में राम बोला ही नहीं। फिर ये राम बोलो भाई, राम बोलो जो है वो मुझे लगता है वो आपस में एक दूसरे को याद दिलाने के लिए बोल सकते हैं कि भैया इसकी अवस्था क्या हो गई, देखो वो तो चला गया, अभी आप कम से कम राम बोलो भाई, राम बोलो। फिर क्या होता है, जैसे उसका सर जो है वो घर की तरफ हो जाता है और शमशान जब आ जाता है तब उसका पैर उसके पैर जो है वो घर के तरफ होते हैं और सर जो है वो शमशान के तरफ हो जाता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं। मीन जिंदगी भर हमने क्या किया, हमारा सर कहाँ था, घर की तरफ था,
1: अर्थात प्रवृत्ति की तरफ था।
2: बिल्कुल, प्रवृत्ति के तरफ था। हमारी बुद्धि में सब घर गृहस्थी के विषय चलते थे, राम जी के विषय नहीं चलते थे। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद उसका सर, मरने के बाद सर घुमा के कुछ फायदा नहीं है।
1: यहाँ मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, सर घुमाना मतलब बुद्धि और मन भगवान की ओर लगाना।
2: बिल्कुल, वही संकेत है। फिजिकली जो जो एक्शन करते हैं उसके पीछे का भाव जो है, जैसे उसका सर यहाँ घुमाते, बुद्धि में हमारा घर गृहस्थी के बजाय राम होना चाहिए।
1: और पैर जो है, आपने कहा कि वो फिर बाद में जो घुमाते हैं वो घर की तरफ घुमाते हैं, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लात मारो, अभी आप इन सब बातों को छोड़ दो या उन पर लात मारो, क्योंकि अभी आपको जहाँ जाना है वो दुनिया अलग है।
2: बिल्कुल, और ये लात मारो उसका मतलब मुझे ये लगता है कि लात फिजिकली नहीं, लात मारना मीन्स उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना। हम क्या करते हैं जिंदगी में, इतना महत्व दे देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा हम उसको महत्व देते हैं,
1: अटक जाते हैं
2: उसमें, अटक जाते हैं, फिर लटक जाते हैं और फिर चिल्लाते रहते हैं हम लटके हुए हैं। तो यहाँ साधु संतों ने, बड़े बड़े महंतों ने, बड़े बड़े शास्त्रार्थ ने, ऋषि मुनियों ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि संसार में रहते हुए भी आपका सर जो है वो शमशान की तरफ होना चाहिए। मीन्स घर गृहस्थी हमें याद रहना चाहिए कि एक दिन हमें यह छोड़ के जाना है। अगर कोई पैसा कमाने की लालच में बैठा है तो अगर वो उसके मन में ये पक्का निश्चय है कि ये पैसा जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो भी संपत्ति कमा रहा हूँ, वो सब मुझे यहाँ छोड़ के जाना है, मेरे हाथ खाली है, ये मन में बार बार अगर आता है तो फिर वो मोह नहीं होगा, मन भ्रष्ट नहीं होगा। देखो, भ्रष्ट विचार पहले मन में आता है फिर वो कृति में आ जाता है, तो भ्रष्टाचार जो है, हम भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बात करते हैं, कोई बहुत लोगों की नफरत भी करते हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से विचार करें कि ये भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि मन में भ्रष्ट विचार आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब ही दो शब्द उसमें है, भ्रष्ट आचार। यहाँ आचरण जो है मनुष्य का, वो आचरण भ्रष्ट हो गया है, क्षुद्र हो गया है, उसके मन में मोह लालच की बला जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हावी हो गया है। और इसीलिए ये शब्द तो वैसे ही हम भ्रष्टाचार कह देते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ये है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
2: बिल्कुल, तो ये देखिए, भ्रष्ट आचार के पहले भ्रष्ट विचार आ जाता है। अगर आपका विचार भ्रष्ट है तो आपका भ्रष्टाचार हो जाता है, और अगर आपका विचार श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठाचार हो जाता है। और अगर भारत के हर नागरिक, भारत का हर नागरिक श्रेष्ठाचारी हो तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं शमशान वैराग्य की, और इसलिए बात हो गई कि अगर ऐसे कोई अच्छे विचार मेरे मन में आ जाते हैं तो मेरी जिंदगी में खूबसूरती आ जाएगी। तो ये शमशान वैराग्य कहने का भाव ये है कि ये शमशान वैराग्य जो है टेम्पररी इसलिए है कि डेड बॉडी जलाई, बाहर आ गए तो बोलते चलो अभी चाय की दुकान कहाँ है भैया, देखो चाय वाय पियो, ये करो, हम रूटीन में लग जाते हैं। उस समय हमारे मन में बहुत सद्विचार आते हैं, बहुत अच्छे विचार आते हैं, और वो नकली नहीं रहते,
1: दिल से आते हैं। कभी कभी उदासी भी आती है,
2: उदासी भी आती है, और हमें लगता है अरे जिंदगी में क्या है। तो इसका मतलब वैराग्य से जीना, इसका मतलब दुखी होके जीना ये नहीं है, सुखी होके जीना है लेकिन उसमें अटकना नहीं है। जैसे हम कमल की उपमा देते हैं, कमल का भेंट देते हैं कि कमल जैसे खिलता है, वो खिला हुआ है लेकिन है कीचड़ में, ऐसी अगर हमारी जिंदगी है तो हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।
1: बहुत सुंदर बात आपने कही। या तो हम कह सकते हैं कि राजा जनक, जिसकी हमने चर्चा की, जनक राजा जो है वो राज गद्दी पर बैठे हुए सारी जो उनकी सुख सुविधाएं है उनका उपभोग करते हुए भी उनके मन में उनके बुद्धि में जो एक बात बिल्कुल लगी हुई थी कि परमात्मा के प्रति चिंतन, वह बात जो है वो यहाँ लागू होती है ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलते रहे और बातें करते रहेंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, संसार में होते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी, हमारी वृत्तियाँ अगर ऋषि के समान हो, वो संतुष्टता हो, वो एक मन की स्थिरता हो, तो सचमुच ही हमारे अंदर वो मोह जो है, जो बहुत ज़्यादा रूप में है, वो नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम संसार में रहते हुए चेहरे को बिल्कुल ही ऐसे उदास रखते चले या कुछ गेरुए रंग की कफनी पहने हुए चले या फिर यही सोचते रहे अरे क्या फ़ायदा, एक दिन तो मुझे भी इस जग को, संसार को छोड़ के जाना ही है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि दुनिया में आज चैलेंजेस जो है उनको स्वीकार करने के लिए, हमें उन आह्वानों को स्वीकार करने के लिए उसके साथ लड़ना भी होगा, झगड़ना भी होगा, तो हमारे अंदर वो उमंग उत्साह जरूर चाहिए, लेकिन उसके होते हुए भी उसमें फंस जाना, उसका सिर पर बोझ लेना, ये बातें नहीं चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही, कमल पुष्प जो होता है वो भले कीचड़ में रहता है लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का एक भी दाग नहीं। वैसे हम सारे लोगों में रहे, हम दुनिया में रहे लेकिन दुनिया हमारे में न हो।
2: बिल्कुल, ये कमल जैसे खिला हुआ रहता है वैसे ही हमारा चेहरा खिला हुआ है तो कितनी खुशी होगी। इसलिए कहते हैं मुख कमल, नेत्र कमल, उसकी उपमा जो देते हैं, तो मुख कमल जैसे खिलता है वैसे मेरा अगर मुख खिला हुआ रहता है तो सुप्रभात सचमुच हो जाती है और मेरी जिंदगी भी बहुत खुशहाल हो जाएगी।
1: तो ये जो सीता मैया है जिनको हम अभी देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, उनका पात्र देखते हैं, तो फिर उन्होंने उस मृग को पहचाना नहीं, वो तो राम के साथ थी, वो तो सदा, तो उसकी बुद्धि तो इतनी सात्विक कहो, शुद्ध कहो, पवित्र कहो, उच्च कहो, श्रेष्ठ कहो, ऐसे बनी हुई थी, फिर भी उसने उसे पहचाना नहीं और सारा रामायण जो है वो घटा।
2: बिल्कुल, देखिए एक गलती जो है आदमी की, इंसान की, वो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। मुझे लगता है महर्षि वाल्मीकि ने ये दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने कोशिश रामायण कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, लेकिन अगर मुझे उससे कुछ सीख लेनी है तो मुझे ये देखना है कि एक इंसान की गलती कितनी भारी हो जाती है। देखो, बहुत आपने जैसे कहा कि वैराग्य वृत्ति थी, उसको ये भी शायद मालूम होगा कि ये मृग जो है वो मायावी हो सकता है, लेकिन परख शक्ति जब आदमी की कम पड़ जाती है, आदमी भूल क्यों करता है। आजकल हम देखते हैं इतने श्रेष्ठाचार्य, बहुत बड़े बड़े साधु संत है, ऋषि मुनि है, वैरागी इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मोह में अटक जाते हैं। ऐसी बहुत सारी व्यक्तियां हैं जिनके प्रति बहुत सारे लोगों के मन में आदर है, श्रद्धा है, एक कुछ ऐसा प्रसंग घट जाता है वो कहीं ना कहीं मोह में फंस जाते हैं। है बहुत अच्छे, उनके विचार अच्छे हैं, उनके आचार अच्छे हैं, उनके उच्चार अच्छे हैं, उनके सत्संग के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन एक गलती कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मोह में फंस जाते हैं और देखो कहां से कहां चले जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उस समय सद सद विवेक बुद्धि बोलते हैं, पहले सत, दूसरा असत, असत का सत, विवेक बुद्धि, सत क्या है असत क्या है वो परखना, जानना और समझना, ये जब तक नहीं होता तब तक ये फिर बुद्धि काम नहीं करती। और मुझे ऐसे लगता है कि है सीता मैया जो है बहुत देवता जैसी है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक मन में मोह पैदा हो गया कांचन मृग का। भले राजपद छोड़ दिया, राजवस्त्र छोड़ दिए, और कांचन मृग की जो, ऐसे कहते हैं कि कांचन मृग की जो स्किन है उससे,
1: चमड़ी से,
2: चमड़ी जो है उससे वो अपना ब्लाउज बनाएगी। तो ये कथा जब सुनते हैं, ब्लाउज ऐसे थोड़ी बनते हैं, लेकिन क्या है वो दिखाना ऐसा है कि ये मोह जो है, माया मोह, माया और मोह साथ साथ में आ जाते हैं। तो कांचन मृग जो था वो असुर था, उसने कांचन मृग का भेष धारण किया और फिर माया मोह मन में पैदा हो गया। और सिर्फ पैदा नहीं हुआ, दूसरों को मजबूर किया। अगर उसके मन में सिर्फ एक मोह आ जाता था कि अरे इसका मैं अगर ब्लाउज बनाऊं, ये कांचन मृग को मैं ले लूं तो कितना अच्छा होगा, ठीक है, इतना मोह आ गया, कुछ हद तक ये भी सही है। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं, कभी गंदे विचार आते हैं, कभी बुरे संकल्प आते हैं, कभी अच्छे संकल्प नहीं, निगेटिव नकारात्मक आ जाते हैं, लेकिन वो अगर विचार तक ही रहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्रिया नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी की ये चमड़ी उसकी चाहिए, मतलब हमारा आकर्षण जो है वो शरीर की तरफ जाता है, या हम बाह्य रूप से देखते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर जाके तो सचमुच इन बातों से हम विजयी बन सकते हैं।
2: बिल्कुल है। देखो चमड़ी का आकर्षण जो है वो भी एक आकर्षण है, और वो आकर्षण जिसको हम काम विकार कहते हैं, वो आकर्षण चमड़ी का ही आकर्षण है। चमड़ी निकल जाए, शंकराचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकुरुं करणे। उसमें उन्हें ये लिखा है कि गतवती वायो देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन गाये। चमड़ी की हम जब बात करते हैं तब देखिए पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, और जब शुरुआत में जब प्यार होता है वो तो चमड़ी का ही आकर्षण है, पति के ऊपर आकर्षण है, पति के साथ एकांत में रहने की लालसा है, इच्छा है। और अगर दुर्भाग्यवश वो पति मर जाता है और पत्नी को अगर उसके साथ रहना पड़ता है, तब वो पत्नी दूसरे को बुलाती है, बोलती है मुझे अकेले में डर लगता है। भार्या बिभ्यति तस्मिन गाये, तो डर किससे लगा? अगर देह से डर लगा, चमड़ी से डर लगा, तो वही चमड़ी है जिसके साथ में एकांत में रहने की इच्छा है। तो एक गतवती वायो देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन, एक आत्मा निकल गई तो चमड़ी की चमड़ी रह गई। तो हमारा आकर्षण जो है ऊपर के चमड़ी के साथ है,
1: बिल्कुल,
2: और इसलिए गड़बड़ है। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये जो महर्षि वाल्मीकि ने जो उदाहरण दिया, ये कथा रची है कांचन मृग की, वो सीता जो है जैसे हमने कहा आत्मा की भेंट है, और आत्मा में जो मन है वो मन में ऐसे संकल्प आना शुरू हो जाता है और इतने भारी हो जाते हैं, तो वो सिर्फ राम जी को बोलती भी थी कि ऐसा मुझे लगता है कि अरे ये मिलता था तो कितना अच्छा होता था। तो राम जी ने उसको समझाने की कोशिश करते थे और समझ जाती थी, रामायण होता ही नहीं था। लेकिन राम जी ने समझाने की कोशिश करने के बावजूद उन्होंने राम जी को मजबूर किया। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में परमात्मा जो जो हमें सीख देता है, वो अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी बुरे संकल्प आ भी गए तो अच्छे विचार आते हैं, बोलते ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन अगर बुराई उसमें हावी हो जाती है, मोह उसमें हावी हो जाता है, तो वो आचार में आ जाता है और वही भ्रष्टाचार है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ज्ञानेश्वर जी, जब हम जीत को पकड़ते हैं तब हमारा ज्यादा नुकसान होता है। कोई भी बुरी बात को न समझते हुए, न परखते हुए अगर हम उस पर ही अड़े रहते हैं, जीत करते हैं, तो फिर हमारी क्या दशा होती है यह हमारे सामने चित्रित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर रचना की, ऐसे मुझे लगता है। दोस्तों, आप भी इस पर सोचिए, जरूरी नहीं है कि इसी विचार को लेकर आपको सोचना है, लेकिन अलग अलग पहलुओं से जब आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा ये हमारे लिए एक सीख है। महर्षि वाल्मीकि ने हमारे आचरण को अच्छा बनाने के लिए, हमारे अंदर की जिद की वृत्ति को, जो बुराई के प्रति हम कभी कभी जिद करते हैं, उसको छोड़ने के लिए कुछ न कुछ सीख हमें बहुत सुंदर कथाओं के द्वारा दी है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्म मंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आप सबका ब्रेक के बाद फिर से अमृत धारा प्रोग्राम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीता मैया की, और उस चर्चा में ज्ञानेश्वर जी ने जो बात कही, अगर आप गहराई से सोचते हैं तो वो दिल को जचती है कि हमारे अंदर की ऐसी वृत्तियाँ जो संपूर्णतः समाप्त नहीं होती, हम चाहते हैं परंतु कभी कभी वो फिर से कहीं ना कहीं सिर ऊपर उठाती है। और बात चल रही है शमशान वैराग्य की, वो वैराग्य वृत्ति की जो टेम्पररी रहती है। और मेरा सवाल ज्ञानेश्वर जी आपको सबकी तरफ से ये है, तो क्या हमेशा के लिए वैराग्य वृत्ति रह सकती है, संभव है, और क्यों रहना चाहिए? हम तो संसार में रहने वाले हैं, संसार में रहते हुए अगर हम इस प्रकार से रहने की आश करते हैं तो वो क्या सही है?
2: सर्वप्रथम हम शमशान वैराग्य जो है, शमशान वैराग्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शमशान वैराग्य के जब बात करते हैं तब जब भी मैं सोचता हूँ, ये रिचुअल्स जो है, वो रिचुअल्स जो है कुछ ना कुछ वो हमें इंडिकेट करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि हमारे श्रोतागण जो है उनमें से कितने लोगों को ये रिचुअल्स मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कम से कम 70% लोगों को ये मरने के बाद के ये रिचुअल्स हैं वो मालूम होंगे। उसमें भी वैराग्य की बात आती है, इसलिए मैं भी रिचुअल्स के बारे में सुबह सुबह, नहीं तो कोई सोचेगा कि ये मरने की बात क्यों करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। हम जब वैराग्य वृत्ति की बात करते हैं तब ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए वर्ज नहीं है, वैराग्य इससे हम नहीं ले सकते। तो ये देखिए, जैसे आदमी मर जाता है, आदमी का देहांत हो जाता है, तब ऐसे रिचुअल्स है कि पहले उसको क्या करते हैं, पुराने जमाने में, आजकल के जमाने में नहीं चलते, जब हमारे जमाने में उसके कपड़े उतार देते थे, कपड़े उतार देते थे, तो उसका ये अर्थ ये है कि हमारा जो वस्त्र है, शरीर का वस्त्र है, वो हमने उतार दिया और आत्मा निर्वस्त्र होके चली गई। वो उसकी भावना है, उसके पीछे की भावना ये है, लेकिन उसके जगह क्या किया कि कपड़े उतार देते हैं। और अगर कोई बहन या माँ या बहन सौभाग्यवती है तब उसको छूट दी जाती है, उसके वस्त्र नहीं उतारे जाते मरने के बाद भी। ये पुराने जमाने में की बात है, आजकल तो सब चलता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि फिर भी कुछ रिचुअल्स अभी भी है। जैसे वो डेड बॉडी घर से निकाल देते हैं बाहर, तब उसका सर जो है वो घर के तरफ करते हैं और पैर जो है वो शमशान के तरफ करते हैं और फिर लेके जाते हैं। आजकल तो शववाहिनी है या एम्बुलेंस है, उसमें से डेड बॉडी को लेके जाते हैं। पहले जमाने में वो कंधे पे उठा के लेके जाते थे। अभी शास्त्र के अनुसार कुछ पैर, कुछ कदम हम चलते हैं डेड बॉडी को लेके, और फिर बोलते हैं राम बोलो भाई, राम बोलो। अभी हम जब वैराग्य की बात करते हैं तब राम बोलो भाई, राम बोलो ये कहना है जब आदमी जिंदा है तब, लेकिन आदमी मर जाता है, आदमी मर जाता है और फिर उसको बोलते हैं राम बोलो भाई, राम बोलो मीन्स किसको बोलते हैं?
1: क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकता, उसकी तो आत्मा निकल जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगर सुन सकता भी है तो वो पश्चाताप करता होगा, अरे अगर उस दिन राम नहीं बोला तो वो पश्चाताप करता होगा, अरे मैंने तो जिंदगी में राम बोला ही नहीं। फिर ये राम बोलो भाई, राम बोलो जो है वो मुझे लगता है वो आपस में एक दूसरे को याद दिलाने के लिए बोल सकते हैं कि भैया इसकी अवस्था क्या हो गई, देखो वो तो चला गया, अभी आप कम से कम राम बोलो भाई, राम बोलो। फिर क्या होता है, जैसे उसका सर जो है वो घर की तरफ हो जाता है और शमशान जब आ जाता है तब उसका पैर उसके पैर जो है वो घर के तरफ होते हैं और सर जो है वो शमशान के तरफ हो जाता है, डायरेक्शन चेंज करते मीन जिंदगी भर हमने क्या किया, हमारा सर कहां था, घर की तरफ था,
1: अर्थात प्रवृत्ति की तरफ था,
2: बिल्कुल प्रवृत्ति के तरफ था। हमारे बुद्धि में सब घर गृहस्थी के विषय चलते थे, राम जी के विषय नहीं चलते थे। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद उसका सर, मरने के बाद सर घुमा के कुछ फायदा नहीं है।
1: यहाँ मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, सर घुमाना मतलब बुद्धि और मन भगवान की ओर लगाना।
2: बिल्कुल वही संकेत है, फिजिकली जो जो एक्शन करते हैं उसके पीछे का भाव जो है, जैसे उसका सर यहाँ घुमाते, बुद्धि में हमारा घर गृहस्थी के बजाय राम होना चाहिए।
1: और पैर जो है आपने कहा कि वो फिर बाद में जो घुमाते हैं वो घर की तरफ घुमाते हैं, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लात मारो, अभी आप इन सब बातों को छोड़ दो या उन पर लात मारो, क्योंकि अभी आपको जहाँ जाना है वो दुनिया अलग है।
2: बिल्कुल, और ये लात मारो उसका मतलब मुझे ये लगता है कि लात फिजिकली नहीं है, लात मारना मीन्स उसको ज्यादा महत्व नहीं देना। हम क्या करते हैं जिंदगी में, इतना महत्व दे देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा हम उसको महत्व देते हैं,
1: अटक जाते हैं
2: उसमें, अटक जाते हैं, फिर लटक जाते हैं और फिर चिल्लाते रहते हैं हम लटके हुए हैं। तो यहाँ साधु संतों ने, बड़े बड़े महंतों ने, बड़े बड़े शास्त्रार्थ ने, ऋषि मुनियों ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि संसार में रहते हुए भी आपका सर जो है वो शमशान की तरफ होना चाहिए, मीन्स घर गृहस्थी हमें याद रहना चाहिए कि एक दिन हमें यह छोड़ के जाना है। अगर कोई पैसा कमाने की लालच में बैठा है तो अगर वो उसके मन में ये पक्का निश्चय है कि ये पैसा जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो भी संपत्ति कमा रहा हूँ, वो सब मुझे यहाँ छोड़ के जाना है, मेरे हाथ खाली है, ये मन में बार बार अगर आता है तो हिर्व मोह नहीं होगा, मन भ्रष्ट नहीं होगा। देखो भ्रष्ट विचार पहले मन में आता है फिर वो कृति में आ जाता है, तो भ्रष्टाचार जो है, हम भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बात करते हैं, कोई बहुत लोगों की नफरत भी करते हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से विचार करें कि ये भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि मन में भ्रष्ट विचार आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब ही दो शब्द उसमें है, भ्रष्ट आचार। यहाँ आचरण जो है मनुष्य का, वो आचरण भ्रष्ट हो गया है, क्षुद्र हो गया है, उसके मन में मोह लालच की बला जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हावी हो गया है, और इसीलिए ये शब्द तो वैसे ही हम भ्रष्टाचार कह देते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो ये है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
2: बिल्कुल, तो ये देखिए भ्रष्ट आचार के पहले भ्रष्ट विचार आ जाता है। अगर आपका विचार भ्रष्ट है तो आपका भ्रष्टाचार हो जाता है, और अगर आपका विचार श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठाचार हो जाता है। और अगर भारत के हर नागरिक, भारत का हर नागरिक श्रेष्ठाचारी हो तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं शमशान वैराग्य की, और इसलिए बात हो गई कि अगर ऐसे कोई अच्छे विचार मेरे मन में आ जाते हैं तो मेरी जिंदगी में खूबसूरती आ जाएगी। तो ये शमशान वैराग्य कहने का भाव ये है कि ये शमशान वैराग्य जो है टेम्पररी इसलिए है कि डेड बॉडी जलाई, बाहर आ गए तो बोलते चलो अभी चाय की दुकान कहाँ है भैया, देखो चाय वाय पियो, ये करो, हम रूटीन में लग जाते हैं। उस समय हमारे मन में बहुत सद्विचार आते हैं, बहुत अच्छे विचार आते हैं, और वो नकली नहीं रहते, दिल
1: कभी
2: से
1: कभी
2: आते
1: उदासी भी आती है,
2: उदासी भी आती है, और हमें लगता है अरे जिंदगी में क्या है। तो इसका मतलब वैराग्य से जीना, इसका मतलब दुखी होने होके जीना ये नहीं है, खुश होके जीना है, सुखी होके जीना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। जैसे हम कमल की उपमा देते हैं, कमल का भेंट देते हैं कि कमल जैसे खिलता है, वो खिला हुआ है लेकिन है कीचड़ में, ऐसी अगर हमारी जिंदगी है तो हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।
1: बहुत सुंदर बात आपने कही। या तो हम कह सकते हैं कि राजा जनक जिसकी हमने चर्चा की, जनक राजा जो है वो राज गद्दी पर बैठे हुए सारी जो उनकी सुख सुविधाएं है उनका उपभोग करते हुए भी उनके मन में उनके बुद्धि में जो एक बात बिल्कुल लगी हुई थी कि परमात्मा के प्रति चिंतन, वह बात जो है वो यहाँ लागू होती है ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों फिर से आपसे मिलते रहे और बातें करते रहेंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
4: अभी बजे हैं सुबह के 7। स्वयं को 1 मिनट दें, मन से कहें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ये चर्चा वास्तव में सदियों से चली आ रही है कि कर्म वास्तव में श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है, कर्म को ज्यादा तवज्जो दिया जाए या भाग्य को महत्व दिया जाए। इसकी चर्चा हम भ्राता जी के साथ कर रहे थे। वास्तव में बहुत गूढ़ और बहुत गहन चर्चा है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि भाग्य भरोसे भी ना बैठा रहा जाए और कर्म को महत्ता प्रदान किया जाए। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। भ्राता जी, ये जो बात है, जैसे मैंने कहा कि सदियों से इस पे बहुत डिबेट चलती आ रही है कि भाग्य श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने जो लिख करके भेज दिया वही वास्तव में यहाँ प्ले होना है, उसके अलावा आप चाहे कुछ भी कर लें नहीं होगा, तो इस बात में कितनी सार्थकता है, कितना इसमें दम है कि भगवान ने भाग्य जो लिख करके दे दिया है वही हमें खाना है, उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते चाहे हम लाख माथा मार लें।
1: एक्चुअली भाग्य भगवान ने लिखा ही नहीं, ना कोई उसके पास सुपर कंप्यूटर है ऊपर जिसमें सबके भाग्य फीड किए हुए हों। भाग्य तो हम अपने कर्मों से बनाते हैं, इसलिए जहाँ ये तर्क होता है, ये डिबेट होती है कि भाग्य को पहला स्थान दिया जाए या कर्म को, कौन सा श्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से क्योंकि कर्म भाग्य का आधार है, जैसे कर्म मनुष्य कर रहा है वैसा ही उसका भाग्य बन रहा है, इसलिए महत्व कर्म का ही है। कर्म जितना महान भाग्य उतना ही महान। लेकिन जब मनुष्य कर्म करता है तब उसे ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं रहती कि इस कर्म से हमारा भाग्य बन रहा है और कहीं ना कहीं इसका अगर अच्छा कर्म है तो बहुत अच्छा भाग्य और गलत कर्म है तो उसका कड़वा भाग्य हमें चखना पड़ेगा अवश्य। देखिए, मनुष्य कर्म कर लिया, अब मान लो हम अब की बात करें, एक व्यक्ति है उसको भाग्य मिल रहा है उसके पास के कर्मों का, चाहे वो कल का कर्म हो या परसों का हो, एक साल का हो, दस साल का हो, सौ साल या हजार साल पहले का हो। कर्म जो मनुष्य करता रहता है वो हम अगर साइकोलॉजी की भाषा में बोलें तो हमारे मन में प्रिंट होता रहता है, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और धीरे धीरे, क्योंकि जब बहुत साल बीत जाते हैं, मान लो 100 साल पहले का कर्म, 200 साल और इससे पूर्व का, तो उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। तो उसका फल कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। अब पास्ट हो गया, मान लो अब हमारा कड़वा भाग्य हमारे सामने है, हमें हर जगह असफलता मिल रही है, हम सुखी नहीं हैं, हमारे संबंधों में मधुरता नहीं है, हमारे काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, धन हमें बहुत मेहनत से मिल रहा है, तो ये परिणाम है हमारे पूर्व के कर्मों का। यानी कहें ये भाग्य हमें मिला है हमारे पूर्व के कर्मों से। अब उन कर्मों को तो हम बदल नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया 100 साल पहले या कल। अब हम वर्तमान पे ध्यान दें और जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है इसमें अब सुधार लाने के लिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने मन को पॉजिटिव करें, तो कहीं ना कहीं जो पास्ट का भाग्य है उसमें हम वर्तमान में भी चेंज ला सकेंगे। कि मान लो एक बहुत फोर्स से कोई विकर्म का फल हमारे सामने आ रहा है, उस फोर्स को हम थोड़ा ढीला कर सकते हैं। मान लो फोर्स हमें बहुत बीमार कर रहा है, तो हम अपने पुण्य कर्मों से, अपने राजयोग मेडिटेशन से, अपनी प्योरिटी की पावर से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले जानते हैं, उनसे इस फोर्स को कमजोर कर सकते हैं।
0: लेकिन भ्राता जी, जब ये फोर्स रहता है, जब पास्ट का फोर्स, जो हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं, जब उसका फोर्स हमारे प्रेजेंट में रहता है, तो हम इतने ज्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि हम कुछ अच्छा करना भी चाहें तो हम अच्छा नहीं कर पाते, अच्छा सोचना भी चाहें तो अच्छा नहीं सोच पाते। तो ऐसे में जब हमारे पास बिल्कुल हम असहाय स्थिति में हैं, तब अच्छाई की ओर बढ़ना एक बड़ी चुनौती।

0: हमारे पास लाखों लोगों के ये अनुभव हैं कि वो भारी आए थे, वो बुरी चीजें लेकर आए थे, वो ऐसे उल्टा भाग्य लेकर आए थे, वो चिंताएं लेकर आए थे, उनके मन पर बोझ था, वो विघ्नों के बोझ से दबे हुए आए थे ब्रह्मा कुमारीज में, और उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान समझ में आ गया, रिलैक्स हो गए, भाग्य बनाने की एक विधि प्राप्त हो गई, ईश्वरीय सुख मिलने लगा, अपने चिंतन को पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव चिंतन का सुख मिलने लगा। इम्पोर्टेंट बात यह हुई कि एटीट्यूड्स को ठीक कर लिया, दूसरों के प्रति जो दृष्टि थी और एटीट्यूड्स थे उनको जरा अच्छा कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, मन के जो विकार थे जो उन्हें सता रहे थे वो डाउन होने लगे, उनका फोर्स ढीला होने लगा, तो स्थिति सुधरने लगी, भाग्य सुधरने लगा। मैंने कितने लोग देखे होंगे अपने यहाँ, गरीब आए थे, पुण्य कर्म करने लगे, इसी जन्म में धन संपन्न हो गए। कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जिनको कठिनाई भी हुई, उस कठिनाई का कारण वही कि उनके पास्ट के विकर्म फोर्स कर रहे थे। अगर वो ठीक से राजयोग का अभ्यास करें तो राजयोग के अभ्यास से सबसे बड़ी चीज जो फायदे की है वो ये है कि पास्ट के विकर्म नष्ट होते रहते हैं, नष्ट होने से उनका फोर्स ढीला पड़ जाता है और वर्तमान चमकने लगता है, हमारा प्रकाश बढ़ने लगता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, हमारा भाग्य बहुत उज्जवल होने लगता है।
1: बिल्कुल, तो मतलब कहा जाए रहता जी कि भाग्य के भरोसे ना बैठे हैं, और यदि पास्ट के किसी विकर्म के कारण, पाप कर्मों के कारण वर्तमान हमारा बहुत ज्यादा कष्टप्रद है या हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं कुछ श्रेष्ठ करने में, तो भी हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे, राज्यों के आधार पे या अच्छे चिंतन के आधार पे उसे थोड़ा हल्का कर सकते हैं और श्रेष्ठ भविष्य की बढ़ सकते।
0: बिल्कुल, ये बात सबके जानने योग्य है कि जो विकर्म हो गए हैं हजारों साल से भी, अब उनका संपूर्ण स्टोर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, उससे एक निगेटिव एनर्जी ब्रेन को निरंतर आती रहती है जो ब्रेन की कई शक्तियों को डैमेज करती रहती है, कई सेंटर्स को ब्लॉक कर देती है, उसकी जो एफिशियंसी है उसको नष्ट करती रहती है। इसलिए ब्रेन बहुतों का आजकल पास्ट की चीजों से अफेक्टेड होता जा रहा है। मेरे पास जो फोन कॉल आते हैं, लोग मिलने आते हैं, उनमें अधिकतर केसेज आजकल कमजोर ब्रेन के, जिनको साइकेट्रिक पेशेंट कहते हैं, मानसिक रूप से जो त्रस्त होते नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। तो इसमें जो मैं सभी के ध्यान में एक बात दिलाना चाहता हूँ कि राजयोग मेडिटेशन, जिसमें हमारा नाता हम परमात्मा से जोड़ते हैं जो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां जब हमें मिलती हैं तो ये शक्तियां अग्नि का काम करती हैं और ये उन विकर्मों को, उन पाप कर्मों को नष्ट कर देती हैं। तो केवल एक राजयोग और कोई योग नहीं, बिल्कुल इसमें कोई हमें गलत न समझे, जिसमें परमात्म शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसी राजयोग से पास्ट के पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और जो उनके कारण बुरा भाग्य हमारे जीवन में आ रहा था, आने वाला था, वो समाप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हम श्रेष्ठ भाग्य की ओर, श्रेष्ठ भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अन्यथा व्यक्ति अंधकार में ही जीता रहता है, ठोकरे खाता रहता है और इसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही मेरी नियति है, यही मेरा भाग्य है, और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसी में कहें कि संतुष्ट भी हो जाता है या फिर गलत रास्ते की ओर भी चल पड़ता है।
0: और बात भी इसमें कि वो संपूर्ण स्टोर्ड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, उसे बैड एनर्जी ब्रेन को आ रही है। अब हमने योग लगाया, परमात्म शक्तियां प्राप्त की
1: जी।
0: अभी ये परमात्म शक्ति आत्मा में आई, मन में आई, अभी इनके प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस बैक होंगे अनकॉन्शियस माइंड की ओर, तो जो बैड एनर्जी आ रही थी उसको नष्ट करने लगे। तो ब्रेन बहुत निर्मल, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही एक्टिव और उसके सभी सेंटर्स ओपन होते चले जाएंगे, हमारा ब्रेन डिवाइन होता जाएगा, उसकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ती जाएगी। तो मनुष्य के अंदर अच्छा सोचने की शक्ति, अच्छे कर्म करने की शक्ति, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने की शक्ति, अपनी मन इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी उसे प्राप्त होने लगेगी। ये राजयोग का दूसरा बहुत बड़ा फायदा होगा।
1: बहुत सुंदर प्रथा जी, लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि राजयोग ही एक मूल मंत्र है, कह लें एक आधार है, एक की के समान है, एक चाबी के समान है, जो हमारे श्रेष्ठ

0: भाग्य की ओर हमें ले चलता है, हमारी पास्ट के जो विकर्म हैं उन्हें भी नष्ट करता है और साथ ही हमें श्रेष्ठ विचार करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने मेल भी किए हैं और फोन कॉल्स के द्वारा भी जो संपर्क करते हैं, कईयों के ये विचार हैं कि हम राजयोग को थोड़ा सा गहराई से जानना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब वो टेलीविजन के सामने बैठते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल में हमारे कार्यक्रम देखते हैं, तो चाहते हैं कि राजयोग के थोड़े थोड़े अभ्यास हमें अवश्य कराए जाएं या इसका आधार या इसे कैसे किया जाए वो थोड़ा स्पष्ट किया जाए। तो व्रता जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा राजयोग की जो बेसिक विधि है जिसे घर बैठे व्यक्ति कर सकता है, जरूर उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
1: हाँ, मैं बहुत ब्रीफली इस पर कुछ अपने दर्शकों को कहूंगा। बहुत सिंपल चीज है, न किसी हट क्रिया की जरूरत है, न किसी विशेष आसन की जरूरत है। आप कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठिए, अपनी बेड पे बैठिए। दो चीज हैं हमारे पास, मन और बुद्धि। यहाँ मन का काम संकल्प करना और बुद्धि एक्ट्स लाइक थर्ड आई ऑफ विजडम। हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम है, जिसके द्वारा हम उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं जो इन आंखों से नहीं देखी जाती। तो राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना। योग माना दो चीजों को मिलाना। हम आत्मा को यानी स्वयं को अपने परम पिता से मिलाते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा अर्थ है कि परमात्मा जो हमारा परम पिता है उससे नाता जोड़ना। इन फैक्ट ही इज आवर सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। उससे हम अपना रिलेशनशिप जोड़ लें, ये योग कहलाता है। मेनली दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें अभ्यास करना चाहिए, मैं ये देह नहीं हूं। देखिए, हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा मुख है, ये मेरी आंखें हैं, तो मैं कौन? जैसे मैं कहूंगा ये मेरा चश्मा है, तो मैं अलग, चश्मा अलग। वैसे ही मैं कहता हूं ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा फेस है, तो मैं कौन? ये मेरा देह है, तो निश्चित रूप से मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली हूँ, इसकी मालिक हूँ। यहाँ हूँ मैं, ये देह मेरे वस्त्र की तरह है, या इसकी तुलना हम अपनी कार से कर लें, मैं इसका मालिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, और ये मेरी कार। तो पहले हमें राजयोग में ये अभ्यास करना है, ये चिंतन करना, मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, वेरी सटल पॉइंट ऑफ लाइट है। इसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये एटम से भी सूक्ष्म है, लेकिन पॉइंट ऑफ एनर्जी है। और जैसा फिजिक्स में हम पढ़ते आए थे कि जो ऑब्जेक्ट जितना सूक्ष्म है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म है, वो उतनी पावरफुल है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सोल इज वेरी पावरफुल, ये हमें जानना चाहिए। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और भी बहुत सूक्ष्म है, देयरफॉर ही इज ऑलमाइटी। वो ऑल पावरफुल है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ ऑल माइट्स। तो पहले हमें आत्मा के बारे में चिंतन करना है, मैं आत्मा पीसफुल हूं। जब हम ये सोचते हैं आई एम ए पीसफुल सोल, तो मुझसे पीस के वाइब्रेशंस, उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं।
0: दादा जी, इस चर्चा को जैसे आगे बढ़ाएं, कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है या परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब तक इस चीज को हम मानते नहीं हैं, तब तक तो फिर मेडिटेशन की बात आती ही नहीं। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ब्रेन ही सारा कुछ कर रहा है और इस प्रकार की जो आत्मा नाम की जो चीज है या परमात्मा नाम की जो शक्ति है वो नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? या आत्मा का वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे?
1: देखिए, जो बिल्कुल नहीं मानते या जिन्होंने ये मान के रखा है कि हमें नहीं मानना है, उनके लिए तो कोई हल नहीं है। लेकिन सोचने की बात है कि हमारा देह और हमारा ब्रेन ये बने हैं, गर्भ से ही इनका निर्माण हुआ है
0: जी।
1: ब्रेन एक बहुत सूक्ष्म मशीनरी है जो कार्यरत है, और निश्चित रूप से मेडिकली लोग यही मानेंगे कि ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ब्रेन को चलाने वाली भी कोई शक्ति है। वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात प्रूव कर ली है पीछे। मुझे उसके नाम भी बताए थे और देश भी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं चाहे तो दर्शकों को बता सकता हूँ। तो वैज्ञानिकों ने और मेडिकल साइंटिस्ट ने विशेष रूप से ये पाया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से कुछ अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं पूरे ब्रेन को, जिससे ब्रेन को ऑर्डर मिल रहा है, कुछ कमांड दे रहे हैं वो, लेकिन है वो बहुत सूक्ष्म एनर्जी। और फिर फाइनली, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में भी चर्चा करने वाले वैज्ञानिकों में थे और होते ही हैं, उन्होंने बताया दिस इज दैट पॉइंट टू होम वी कॉल सोल, पॉइंट ऑफ एनर्जी, यही वो आत्मा है, क्योंकि उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखा नहीं जा सकता। उन्होंने केवल ये फील किया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से कुछ कमांड देने वाले वाइब्रेशंस जा रहे हैं चारों ओर ब्रेन में, यही आत्मा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसे पकड़ नहीं सकते, तो वो वाइब्रेशंस भी कहीं से तो जा रहे होंगे ना। वाइब्रेशंस अपने में तो कुछ नहीं, वो कहीं से पैदा होते हैं ना, कहीं से चलते हैं, किसी पॉइंट से निकलते हैं, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी आत्मा है। तो ब्रेन हमारा कार्यरत है, ये एक मशीन है, लेकिन किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर को, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, कोई बड़ी से बड़ी चीज है, उसको ऑपरेट करने वाला, उसको चलाने वाला तो कोई अलग ही होता है ना। तो चाहे ब्रेन एक बहुत सुंदर रचना है, नो डाउट, सारे संसार के मेडिकल साइंटिस्ट ब्रेन को केवल 10% ही जानते हैं, उसके बाद अगर वो 100% जान ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पीछे एक शक्ति और काम कर रही है, जो स्पिरिचुअल पावर है, जो स्पिरिट है, जो इमोर्टल है, इम्पेरिसेबल है, जो इसके डेड होने के बाद भी, ब्रेन भी जब डेड हो जाता है तो भी जीवित रहती है और दूसरी ओर जाती है। तो आत्मा है हम सब, जो ऑपरेट कर रही है ब्रेन के माध्यम से पूरे बॉडी को। तो पहले हम आत्मा पर फोकस करते हैं राजयोग में, मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप को हम विजुअलाइज करते हैं, आई एम ए पीसफुल सोल, तो पीस वाइब्रेट हो रही है, आई एम ए प्योर सोल, तो प्योर एनर्जी हमसे चारों ओर जा रही है, आई एम पावरफुल सोल, तो माइट के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। हम अपने को ये संकल्प देते हुए अपने माइंड को शांत कर देते हैं, जस्ट आई एम ए पीसफुल सोल, थोड़ी देर के लिए मन शांत हुआ, क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मन इच्छित संकल्प हम अपने को नहीं देंगे। मन की ये गति है कि आनंदकारी संकल्प उसे शांत कर देते हैं, जैसे वो उसका भोजन है। फिर हम अपनी बुद्धि को ले चलते हैं ब्रह्मलोक में ऊपर, जहाँ परमात्मा है, जो महाज्योति है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको विजुअलाइज करते हैं। इसके लिए ज्ञान दे दिया जाता है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, नाम कैसा है, उसके गुण कर्तव्य क्या हैं, उसके बारे में हमें एक संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। फिर उस पर हम फोकस करेंगे, बुद्धि के नेत्र से उसको विजुअलाइज करते हैं और उसका चिंतन करते हैं, जैसे वो हमारे परम पिता हैं, वो प्यार के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, उनसे अनंत शांति चारों ओर फैल रही है, वो ऑलमाइटी हैं, शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो पतित पावन हैं, वो सुखदाता हैं, वो मुक्तिदाता हैं, वो हमारे हैं, ये फील करते हैं। तो जैसे हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हम उसे कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी हमको आने लगती है। अब हम ऐसे अभ्यास करेंगे, आई एम ए पीसफुल सोल एंड आवर सुप्रीम फादर इज द ओशन ऑफ पीस, उसके पीसफुल वाइब्रेशंस अब नीचे आ रहे हैं, मुझ पर पड़ रहे हैं, जैसे एक पीस का फाउंटेन ऊपर से नीचे आ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। हम इस पीस के वाइब्रेशंस को रिसीव करते रहेंगे कुछ देर, फिर इन संकल्पों में हम चेंज लाएंगे, आई एम पावरफुल सोल एंड माई सुप्रीम फादर इज ऑल माइटी, उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। जिस चीज को भी हम विजुअलाइज करते हैं उसे हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं। इस तरह हम मिन थॉट्स से राजयोग का एक्सपीरियंस करेंगे, उसको एंजॉय।
0: एक सुंदर बात आपने ब्राता जी कही है कि ये जो आपने अभ्यास कराया, मैं तो इस चीज को यहाँ स्टूडियो में बैठ के महसूस कर रहा हूँ, निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं भ्राता जी कि जब हम ये कहते हैं तो क्या हम केवल कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे हमने कुछ सोच लिया कि यहाँ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये चीज़ हम में आ रही है तो ये तो हमारी कल्पना है, तो कल्पना और यथार्थ इन दोनों में क्या भिन्नता है और हम जो कर रहे हैं वो कल्पना है या यथार्थ है, हम इस चीज़ को कैसे समझें?
1: देखिए आसमान में सूरज चमक रहा है, हम यहाँ इस कमरे के अंदर बैठे हैं
0: जी,
1: हम देख नहीं सकते बट वी कैन विजुअलाइज द सन। जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारी ओर फ्लो होने लगेगी, ये रियलिटी है, ये मनोवैज्ञानिकों का भी कथन है, उनकी मान्यता है कि हमारे और उसके बीच में एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। और कल्पना ये है कि हम कल्पना करें ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा सूरज है, वो आसमान में है, वो इधर उधर हो रहा है, तो वो है नहीं। तो जो चीज है इन फैक्ट इट डज एग्जिस्ट, उससे उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ये इमेजिनेशन नहीं रह जाता है, रियलिटी बन जाती है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान लेना होता है, क्योंकि दोनों ही चीज आत्मा और परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, इनको देखा नहीं जाता, इसलिए पहले इनके लिए हमें संपूर्ण ज्ञान लेना होता है। ज्ञान लेने के बाद कनेक्शन जोड़ना होता है उससे, और कनेक्शन जोड़ने के बाद ये सत्य है या नहीं, जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रैक्टिस किया करते, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी, फिर उस ए या बी की वैल्यू निकाल लिया करते थे तो वो सत्य हो जाता था। ऐसे ही हमने भगवान के बारे में सुना है कि ही इज ऑल माइटी, या एक छोटी सी चीज जिसकी आजकल संसार को जरूरत रहती है कि गॉड इज द ओशन ऑफ पीस, वो शांति का सागर है
0: जी।
1: अब हमने उसको विजुअलाइज किया और ये अभ्यास किया कि उसकी शांति की तरंगे किरणें मुझे आ रही हैं, तो अगर मैं बहुत डीप एक्सपीरियंस शांति का कर लेता हूं जो मेरे मन को शांत कर देता है, शांति नहीं एक स्वीट साइलेंस फील होती है, एक आनंदकारी साइलेंस अनुभव होती है, तो जिसको हम विजुअलाइज कर रहे थे ये सिद्ध हो गया कि रियली ही इज ओशन ऑफ पीस।
0: तो अपने अनुभव से इस चीज को समझा जा सकता है। प्रताप जी, कई ऐसे धर्मावलंबी हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं या परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनके अपने स्वरूप हैं, तो वो इस चीज को कैसे अभ्यास करें?
1: हाँ देखिए, परमात्मा के बारे में तो भिन्न भिन्न मान्यताएं संसार में हैं, स्टिल ऑल बिलीव दैट गॉड इज वन। उनके चाहे वो अपने धर्म पिताओं को मान्यता देते हों या उनकी मान्यताओं में कोई विशेष व्यक्ति हो जिससे उनको बहुत कुछ मिलता हो, आजकल तो गुरुओं को भी लोग मान्यता देने लगे हैं, तो गॉड इज वन उस वन को भी भूले, फिर देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी भूले, और फिर और देवी देवियां हमारी दुर्गा माता और सरस्वती माता और बहुत सारी मान्य देवियां हैं उनको भी भूले, अब आगे गुरुओं पर। तो गुरुओं के पास जो कुछ है वो मिलता रहता है लेकिन वो बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन गुरुओं से क्या हो रहा है, अल्पकालीन इच्छाएं
0: पूरी हो रही हैं,
1: तो लोग समझते हैं दे आर एवरीथिंग, लेकिन इच्छाएं पूरी होना, समस्याओं का समाधान हो जाना अल्पकालीन, फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाना, फिर दूसरी इच्छा जागृत हो जाना, इसका तो कहीं एंड नहीं है। तो परमात्म शक्तियों से हमें क्या होता है कि हम ऐसे बन जाते हैं कि ये समस्या और इच्छाएं रहने, तो उन सब को भी परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान की जरूरत है, वो एक है, और जिसको हम मान रहे हैं चाहे वो देहधारी हैं, तो ये एक कॉमन बिलीफ सबको ख्याल में रखना होगा, कोई भी देहधारी एनी बॉडीली बीइंग इज नेवर कॉल्ड गॉड, गॉड इज वन हु इज इनकॉर्पोरियल निराकार, ये सब की मान्यता है, सबको इसमें बिलीव करना ही पड़ेगा।
0: और वैसे भी हम देखें भ्राता जी, तो जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ, सभी ने भगवान के लिए ऊपर की ओर ही इशारा किया है कि वो एक है, हम सबका पिता है, लेकिन संभवतः हमने बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव से अपने धर्म स्थापकों को या उनके बाद के जो धार्मिक लीडर्स हुए हैं या आज के जो गुरु हैं, जैसे आपने कहा कि क्षणिक प्राप्ति हमें हो जाती है, हमें जॉब नहीं मिल रहा था, मिल गया, या हमें संतान हो गई तो हमने उन्हें ही भगवान मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन सत्य यह है कि भगवान एक है और वो सबका पिता है। प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की तमाम चर्चाओं के लिए, मुझे लगता है कि प्रकाश हमारे दर्शकों को अवश्य बहुत गहरा और सुंदर प्राप्त हुआ है राजयोग का, वो इसका अभ्यास भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बहुत सुंदर बात ये है कि आज तक हम जिस भी प्रकार की मान्यता को लेकर के चलते रहे हैं, चाहे हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम आत्मा को नहीं मानते हैं, या फिर हम अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है और हर चीज को एक बार परख कर अवश्य देखना चाहिए। राजयोग का अभ्यास भी एक ऐसी औषधि है जो हमें बहुत सारी चीजों से मुक्त करती है, चाहे वो तनाव है, चाहे वो अवसाद है, चाहे शारीरिक व्याधियां हैं, मन को चित्त को शांत कर देती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि जो संपूर्ण सत्य शाश्वत हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, परम शक्ति है, उनसे हमारा नाता जोड़ देती है। तो इस सुखद अनुभव को भी एक बार हमें अवश्य करके देखना चाहिए। अपनी तमाम मान्यताओं को एक साइड में रखते हुए थोड़े समय के लिए हम अवश्य राजयोग का अभ्यास अवश्य करके देखें, ताकि जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं वो परेशानियां दूर हों। जब आप इसका सुंदर अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे तर्क, सारे प्रश्न एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए इसका अभ्यास आप अवश्य करके देखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में इसका संपूर्ण आनंद और सुख प्राप्त करेंगे। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज़ फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। सुबह हो चुकी है, तारीख है आज 24 मई, और बहुत ही सुंदर सी ये सुबह है आज, क्योंकि सुबह का मतलब यही होता है कि नई शुरुआत का नया मौका है। रात बीत चुकी है, कल जा चुका है, आज आ चुका है, और आज एक तोहफा यानी प्रेजेंट है। तो आज क्या करना है? कल का वही पुराना अगर कोई बात है, कोई ऐसी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी आपको किसी के प्रति नाराजगी है, तो उसे छोड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये आज है। आज नई सुबह को लाता है, नई होप को लाता है, आपके लिए एक नए मौके को भी लाता है। और सुबह सुबह उठ के जब देखते हैं कि सूरज उग रहा है, पेड़ किस प्रकार से हवाओं से लहरा रहे हैं, पहाड़ हैं आसपास, या आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास जो भी प्रकृति आपको नज़र आती है, जब एक बार निहारते हैं ना सुबह सुबह, तो अपने आप मन में होप आ जाती है, अपने आप एक नई उम्मीद जाग जाती है। और सुबह यही तो दर्शाती है कि नई उम्मीद आपके पास हर बार आएगी, कभी भी हार नहीं होगी आपकी। नई उम्मीद का बस हो सकता है थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा हो, क्योंकि मन में वो बातें और चल रही हो, लेकिन सुबह ज़रूर आएगी, होप ज़रूर आएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू पे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू और वक्त हो गया है मौसम की जानकारी का। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां आज का अधिकतम तापमान रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस। धूप वाला दिन रहेगा आज जयपुर में। उदयपुर में आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही गर्म दिन बीतने वाला है आज उदयपुर में। बात करें आबू रोड की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और धुंधला सूरज नजर आएगा आज आकाश में। माउंट आबू में आज अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, चमकदार धूप खिलेगी। पाली में आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, तेज हवा चलने की आशंका है। पाली में आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और तेज हवा चलने की यहां संभावना है। महसाणा में आज अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही गर्म दिन रहने की आज आशंका है। गांधीनगर में आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, धूप खिली रहेगी पूरे दिन। और दोस्तों, ये थी मौसम की जानकारी। मौसम में गर्मी बढ़ रही है, कभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कम भी हो रही है, लेकिन दिन तो बहुत ही गर्म है। तो ख्याल सभी को रखना है अपना। आप अगर बाहर जाते हैं तो आप कैप पहन के जा सकते हैं, चश्मा लगा के जा सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। और भाई, जितना हो सके लिक्विड्स बहुत फ़ायदा करते हैं आपको। पानी पूरा अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में इन दिनों में। तो अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए दोस्तों, फिर हम शायद गर्मियों का मौसम इंजॉय कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक और बहुत सुंदर से गीत का, लौट कर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड, देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली A-L-I, तो रमजान में है राम R-A-M. दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल D-I-L, तो रमजान में है जान Z-A-N. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

जी हाँ, आज जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। सबसे पहला नाम उसमें शामिल है प्रताप चंद्र मजूमदार जी की, जो कि ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता थे। वे उदार और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। वे एक रचनाकार भी थे जिन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं भी की। इन पर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के विचारों का गहरा प्रभाव था। बंकिम चंद्र चैटर्जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इनके निकट के सहयोगी थे। उन्होंने इंग्लैंड में भी बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिए। 1893-1894 के शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भी इन्होंने भारतीय दर्शन पर भाषण दिए। अमेरिका में इनके भाषणों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इनकी सहायता के लिए लोगों ने वहां मजूमदार मिशन फंड के नाम से धन संग्रह करना शुरू कर दिया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में किसी भी जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। इन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की, जो बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गई। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं गुरु हनुमान जी को भी, जो कि भारत के एक महान कुश्ती प्रशिक्षक यानी कोच थे। वे स्वयं भी महान पहलवान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय कुश्ती को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। उनकी कुश्ती के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हैं और इन्हीं उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए 1988 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया और 1983 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म हुआ था राजस्थान की झुंझुनू जिले में। वे गुरु ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों के लिए पिता तुल्य थे। कुश्ती का जितना सूक्ष्म ज्ञान था उन्हें शायद ही किसी को हो। गुरु हनुमान, जब ये उन्होंने देखा कि उनके पहलवानों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी होती है, तो उन्होंने सरकार से पहलवानों के लिए रोजगार के लिए सिफारिश की। परिणाम स्वरूप आज बहुत से राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले पहलवानों को भारतीय रेलवे में हाथों हाथ लिया जाता है। उस तरह उन्हें हमेशा अपने शिष्यों की सहायता की, अपने बच्चों की तरह ही। वे एकदम साधारण जीवन में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना जीवन के तमाम वर्ष एक धोती कुर्ते में ही गुजार दिए। भारतीय स्टाइल की कुश्ती के वे माहिर थे। उन्होंने भारतीय स्टाइल और अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल का मेल कराकर अनेक एशियाई चैंपियनशिप भी जितवाई। पहलवानों को कुश्ती के गुण सिखाने के लिए उनकी लाठी कुश्ती जगत में मशहूर थी, जिसके प्रहार से उन्होंने महाबली सतपाल, करतार सिंह, 1972 के ओलंपियन प्रेमनाथ, सैफ विजेता वीरेंद्र ठाकरान, सुभाष पहलवान इत्यादि कई पहलवानों को तैयार किया। उनके अखाड़े में रहकर खिलाड़ी केवल पहलवानी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और शाकाहार की ताकत भी सीखते थे।

यहाँ आने वालों को भी वो चाय के स्थान पर बादाम की लस्सी ही पिलाते थे। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व को भी हम आज प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को भी, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। इनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था। इनके लिए कई गीतों ने अनछुए पहलुओं में जिंदगी के जैसे शब्द भर दिए हों। में वे सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आए थे। मुशायरे के कार्यक्रम में उनकी शायरी सुनकर मशहूर निर्माता ए.आर. कारदार उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने की पेशकश कर दी। मजरूह सुल्तानपुरी साहब की उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि फिल्मों के लिए गीत लिखना वे अच्छी बात नहीं समझते थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिगर मुरादाबादी ने मजरूह सुल्तानपुरी को तब सलाह दी कि फिल्मों के लिए गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं होती, गीत लिखने से मिलने वाले धनराशि के लिए वो अपने परिवार को खर्चा भी दे सकते हैं। इस सलाह को मानते हुए उन्होंने गीत लिखने के लिए फिर फाइनली स्वीकृति दे दी।

एसटी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9-2-11, 16 साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, 3 देवियां इत्यादि कई सुपरहिट फिल्मों के लिए शामिल है, गाई जाती है, पहचानी जाती है, जिसमें फिल्म अभिमान भी शामिल है। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने लगभग 300 फिल्मों के लिए 4000 गीतों की रचना की। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले ब्रेक की ओर, लौट कर आएंगे, जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आपू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

तो दोस्तों आज आज एक भारत की ऐसी बेटी का जन्मदिन भी है जिन्होंने भारत के नाम को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की, यानी पहाड़ों की रानी पछेंद्री पाल की। पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही। उन्होंने ये कारनामा 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर किया। उनका आज जन्म दिवस है। बछेंद्री पाल ने उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी की पहाड़ों की गोद में 1954 में जन्म लिया। भारत के उत्तराखंड राज्य की एक खेतीहर परिवार में जन्मी बछेंद्री ने बीएड की पढ़ाई की। स्कूल में शिक्षा लेने के बाद शिक्षिका बनने के बजाय पेशेवर पर्वतारोही का पेशा अपनाने पर बछेंद्री को परिवार और रिश्तेदारों का विरोध झेलना पड़ा। भारतीय अभियान दल के सदस्य के रूप में माउंट एवरेस्ट पर आरोहण के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस शिखर पर महिलाओं की एक टीम के अभियान का सफल नेतृत्व भी किया। 1994 में बछेंद्री ने महिलाओं के गंगा नदी में हरिद्वार से कलकत्ता तक 2500 किलोमीटर लंबे नौका अभियान का नेतृत्व किया। हिमालय के गलियारे में भूटान, नेपाल, लेह और सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर समाप्त होने वाला 4000 किलोमीटर लंबा अभियान उनके द्वारा इस दुर्गम क्षेत्र में प्रथम महिला अभियान का प्रयास था। उनके लिए पर्वतारोहण का पहला मौका 12 साल की कम उम्र में आया जब उन्होंने अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की। वो चढ़ाई उन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं की थी, दरअसल वो स्कूल पिकनिक पर गई हुई थी। चढ़ाई चढ़ती गई लेकिन तब तक शाम हो गई। जब लौटने का ख्याल आया तो पता चला कि उतरना संभव नहीं है। जाहिर है रात भर ठहरने के लिए उनके पास पूरा इंतजाम नहीं था। बगैर भोजन और टेंट उन्होंने खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारी। वो मेधावी थी, प्रतिभाशाली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मिला वो अस्थाई था, जूनियर स्तर का था और वेतन भी बहुत कम था। इससे बछेंद्री को काफी निराशा हुई और उन्होंने नौकरी करने के बजाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स के लिए आवेदन कर दिया और यहां से ही उनके जीवन को नई राह मिल गई। '94 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ। दुनिया में अब तक सिर्फ कुछ ही महिलाएं हैं जो इस चढ़ाई में कामयाब हुई हैं। 1984 के इस अभियान में जो टीम बनी थी उसमें बछेंद्री समेत 7 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल थे। एक बजे उन्होंने 29,028 फुट की ऊंचाई पर सागरमाथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ऐसे अनेकों पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। अर्जुन पुरस्कार हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। ऐसी जज्बे से भरी, हिम्मत से भरी व्यक्तित्व को, भारत की बेटी को हम सलाम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर, और वक्त हो जाएगा आपसे इजाजत लेने का भी, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आप सुन पाएंगे आज के समाचार भी।
जुड़े रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM से, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तारो भरे ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: expanded commercial ties.
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
2: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मिलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान डाइटिशियन सीमा मनी कोत जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले बार भी हमने काफ़ी अच्छा एपिसोड इनके साथ किया था जिसमें हमने नेचुरोपैथी या नेचुरल हीलिंग के बारे में बात की थी। आज हम लोग ऐसे ही कुछ एक एपिसोड जो हमारे वर्तमान समय को देखते हुए नीड क्या है उसको देखते हुए और फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे लिए काम करता है और हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं एयर एज ए फूड इसके बारे में भी और स्किन कैसे हम जो है तत्वों के साथ जुड़ा रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। और फूड हमारा जो है कैसा होना चाहिए इस पर काफ़ी बातें होती हैं। फूड हैज़ पर नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल के रूप में हम लोग देखेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा खाना जो पक जाता है और जो खाना हम बनाते हैं उन्हीं चीज़ों को खाना है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाँचों तत्व भी आपके, क्योंकि शरीर आपका पाँच तत्वों से बना हुआ है तो पांच तत्व भी हमारे लिए फूड का काम कैसे करता है समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से डाइटिशियन सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी।
1: ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच।
0: और बताइए आज फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे फूड प्रिंसिपल बनते हैं इस विषय पे क्यों बात करना चाहते हैं, इसका मेन मकसद क्या है आपका वो बताइए जी।
1: हाँ,
0: धर्म नारायण दुबे जी भी जुड़ गए हैं। ओम शांति रमेश भाई जी, डॉक्टर सीमा जी करके मैसेज किया जी, स्वागत है आपका जी।
1: हाँ, थैंक यू भाई जी। ये हमें बहुत सबको पता है, कॉमन नॉलेज है कि हमारा ये शरीर पांच तत्व से बना है। तो आप बता सकेंगे पांच तत्व क्या क्या है जिससे ये शरीर बना है?
0: जी जी जी, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, ये हमारे पांचों एलिमेंट्स है।
1: करेक्ट, ये पांचों एलिमेंट्स हैं। एंड हम स्पेशली हम जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े हैं हमको पता है कि जितना ज्यादा सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, बाबा सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा पावरफुल बाबा, ये पांच तत्व। एंड हमारा, हम एज आत्मा, ये शरीर में आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, आत्मा अगर जो सोचेगा वो शरीर कर लेगा। आत्मा नेगेटिव सोचेगा तो शरीर नेगेटिव करेगा, आत्मा पॉजिटिव सोचेगा शरीर पॉजिटिव करेगा। करेक्ट, तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का ऑर्डर जानना हमें बहुत जरूरी है। हम सबको, पूरा वर्ल्ड को सबको पता है व्हाट आर द फाइव एलिमेंट्स। आकाश, आकाश जैसा आपने बोला, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये फाइव। इंग्लिश में बोलेंगे तो ईथर, एयर, सन, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो ये जो मैंने पांच चीजें बोला, ये एक्चुअली दोनों बार आपने नोटिस किया होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बोला। सबसे पहले मैंने बोला ईथर, आकाश, फिर वायु, फिर आया अग्नि, फिर आया जल, फिर आया पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। सो क्या है, अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा ग्रॉस, सबसे ज्यादा स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल अर्थ एलिमेंट, सबसे ज्यादा सूक्ष्म आकाश
0: जी।
1: आकाश, आकाश से जल बनता है, आकाश एंड जल मिलके अग्नि बनता है, ये तीनों मिलके जल बनता है, ये चारों मिलके पृथ्वी बनता है। पृथ्वी को अगर तोड़ेंगे, ये डायरेक्टली तोड़ना समटाइम्स थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, बट अगर हम पानी को ब्रेक करेंगे, पानी से ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनती है। एंड ऑक्सीजन भी पानी, H2O। करेक्ट, पानी का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, H2O है, दो टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। एंड इसको ब्रेक करेंगे, दोनों गैस है, दोनों वायु है। पानी को तोड़ेंगे तो वायु बनती है, पानी से वायु बनती है, एयर बनता है। एंड हाइड्रोजन बाय इटसेल्फ, ऑक्सीजन की वजह से फायर होती है। तो व्हेन, यही एक प्रमाण है दैट दैट फ्रॉम आकाश एयर बनता है, आकाश एंड एयर टुगेदर फायर बनता है, फायर ये तीनों मिला के वॉटर, ये चारों मिला के पृथ्वी, एंड पृथ्वी इज द स्थूल ग्रॉस एंड आकाश इज द मोस्ट सूक्ष्म. तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का हम सब ने ये भी सुना है, जैसा ये पिंड वैसा ब्रह्मांड, हम सबको ये पता है जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड. तो पिंड को हमने सीखा नहीं कैसा झांकना है अंदर, पिंड में क्या चल रहा है, हम हमें किसी ने एडुकेट नहीं किया. बट ब्रह्मांड तो दिखता, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत सीखा भी है. साइंस में हमने स्पेस वैक्यूम, स्पेस में जो एयरलेस स्टेज होता है, एंड देन अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर, ये तो हमने सीखा है ना. तो ये परसेंटेज जब हम देखते हैं तब हमें पता चल जाता है पूरा सृष्टि में वायु कितना ज्यादा है, एयर हर एक प्लैनेट के अराउंड एयर होता ही होता है, लिक्विड एलिमेंट भी होता है, एंड हर किसी किसी प्लैनेट

0: करते हैं, हम सिर्फ
1: जी
0: स्थूल खाने की बात करते हैं, केला खाओ, आपल खाओ, काकड़ी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सिर्फ हम ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, हवा, हम क्या कभी बोलते हैं चलो अभी हवा खाने जाना है, चलो टाइम हो गया अभी धूप खाने जाना है, चलो अभी टाइम हो गया हमें अभी आकाश खाना है, कभी आकाश खाने को खाना बोलते हैं? अरे यार आज सुबह से मैं भूखा हूं, जब भी फास्टिंग की बात आती है हम बोलते हैं सुबह से हम भूखे हैं, करेक्ट? तो हमारा इस तरह का बिलीफ सिस्टम बैठ बैठ गया है कि सिर्फ स्थूल जो खाते हैं उसको, एंड ये पांचों तत्व में से लिक्विड एंड दैट इज वाटर एंड अर्थ एलिमेंट को मोर और लेस हम खाने खाने पीने की कैटेगरी में मानते हैं, बाकी तीन जो सूक्ष्म है, एंड जैसा मैंने शुरुआत में बोला था जो जितना ज्यादा सूक्ष्म हो उतना ज्यादा पावरफुल, बाबा इससे ज्यादा, इसीलिए बाबा सबसे ज्यादा पावरफुल, इसीलिए एटम बॉम्ब सबसे ज्यादा पावरफुल, बिकॉज वो एटम से बना है, करेक्ट? तो हम ये सबसे जो कम लीस्ट पावरफुल है इसी के बीच में हम फंसे फंसे रह गए हैं, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, लाइक वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बीच में, ना एयर एलिमेंट की बात करते हैं, ना सन एलिमेंट की बात करते हैं, ना ईथर या आकाश या फास्टिंग की ज्यादा बात हो बातें आजकल फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा में आ रहा है, बट उसका पोटेंशियल, उसका पावर कितना है ये अभी तक हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, एंड कितना क्वांटिटी
1: जी
0: में
1: जी
0: लेना चाहिए उसमें भी कंफ्यूजन है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, द क्रिएशन हैपेंड दिस वे, फर्स्ट इट वॉज स्पेस, इट वॉज आकाश, आकाश से एयर बना, आकाश एंड एयर मिलके अग्नि बना, आकाश एयर एंड अग्नि मिलके पानी बना, एंड ये चारों मिलके पृथ्वी बना। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये अगर बैलेंस करना हमने सीख लिया तो नो क्वेश्चन, बीमारी का तो सवाल ही नहीं है इस सृष्टि में। कोई यूनिवर्स, कैन द यूनिवर्स एवर फॉल सिक? यूनिवर्स में कभी कुछ बीमारी हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूनिवर्स यूनिवर्स में कोई टैम्परिंग, कोई कुछ टैम्परिंग नहीं करता है, टैम्परिंग इन द सेंस उसमें कोई हम मनुष्य कोई जाके छेड़खानी नहीं करते, जैसा अनादि काल से आता अनादि काल से या आदि काल से जैसा सृष्टि का लॉ है, सृष्टि का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है,
1: जी जी जी
0: सिर्फ हम या ये एग्जिस्टेंस में ह्यूमन बींग्स, सिर्फ हम ही ने दुनिया भर की गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, इन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट स्पीशीज, है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: इवन जंगलों
1: सीमा
0: में
1: जी,
0: घना
1: एक और
0: जंगल।
1: बात। जी, यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं और थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। आई डिफर विथ यू ऑन दिस, इट्स द ब्रेन विच कंट्रोल्स अवर माइंड एंड फिजिकल मूवमेंट्स, एक ये विचार आया है, सुविता जी ने लिख के भेजा है। सुविता जी स्वागत है आपका। और मानसी जी ने याद किया है पूना से, ओम शांति मानसी जी, स्वागत है आपका। इट्स द ह्यूमन हु क्रिएट्स द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द यूनिवर्स अफेक्ट अस, दिस इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। और यू आर ए गुड स्टोरी सेलर के भी लिखा है। जी, बताइए।
0: ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, इवन इफ वी डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेट अस टेक एनीथिंग दैट इज देयर नेचुरली इन नेचर, वॉट एवर वी आर, यू नो, एनी फूड, एनी वेजिटेबल यू टेक, एनी एनी फ्रूट यू टेक, इफ यू जस्ट टेक इट इन योर हैंड यू विल बी एबल टू सी दैट द परसेंटेज ऑफ वॉटर इन दिस इन दैट फ्रूट और इन दैट वेजिटेबल, ओके, एनी फ्रूट यू टेक, एनी वेजिटेबल यू टेक विदाउट अस टैम्परिंग इट, विदाउट अस मेडलिंग विद इट, इट विल हैव वॉटर कंटेंट एनीथिंग बिटवीन 70 to 95%। डू यू एग्री विद दिस? एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल, हूएवर वॉज डिस्प्यूटिंग विथ वॉट आई सेड, कहना ही। और रमेश भाई आप आंसर करिए, कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल अगर

0: लेंगे तो कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल नेचर में जो मिलता है उसमें 70% से लेके 95%, 98% तक पानी होता है। वाटरमेलन अगर देख लें उसमें 95-98% तक पानी है, बाकी पेस्ट बना देंगे तो इतना सा, इतना बड़ा वाटरमेलन का इतना सा कुछ निकलेगा, तो मैक्सिमम पानी ही था।
1: जी जी
0: करेक्ट। इफ वी लुक एट मदर अर्थ, अगर
1: आमने मैसेज किया, सीड्स आर टेम्पर्ड एंड हाइब्रिड फ्रूट्स आर क्रिएटेड।
0: या आई टोल्ड यू, अनलेस एंड अंटिल वी आर टैम्परिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल। हम लोग जब टैम्पर करने लगते हैं ना, तब दुनिया भर का गड़बड़ी करते हैं। जब मदर नेचर के थ्रू आता है, इट्स ऑल एब्सोल्युटली इन दिस परसेंटेज। अगर हम मदर नेचर, अगर हम अर्थ को भी देख लें, अर्थ में भी कितना परसेंटेज पानी है, कितना परसेंटेज मिट्टी है, आप बताइए। अर्थ में भी 2/3 इज वाटर, 1/3 इज लैंड। करेक्ट। दिस इटसेल्फ शोज इन द स्थूल, इन द स्थूल एस्पेक्ट हाउ मच वाज यू नो द लास्ट टू एलिमेंट्स, वाटर एंड अर्थ। सो एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस, इफ यू सी इट, पिक अप एनी एनिमल, एनी एवरी स्पीशीज, इवन आवर बॉडी इज 70% अप्रोक्सीमेटली वाटर लिक्विड एंड 30% रियल सॉलिड मटीरियल। वी आर ऑल मेड दिस वे। सो आर वी कंज्यूमिंग इन दैट मैनर, हाउ मच वी आर ब्रीदिंग। आवर ब्रेथ डज नॉट स्टॉप इवन अ सेकेंड। इफ आई ट्राई टू स्टॉप माई ब्रेथ, आई कैन स्टॉप ईटिंग फॉर अ फ्यू डेज, आई विल स्टिल लिव। आई कैन स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ फ्यू डेज, आई कैन स्टिल लिव। If I stop breathing, I will not even live for more than 3 minutes or 5 minutes. So not even 3 minutes. If we are extremely pranayama करते करते इतना expert बन गए तो शायद नाक बंद करके 5 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं बचेंगे अगर नाक बंद कर दिया तो हमारा। तो this shows the importance of air in our existence. तो हम कैसा, हम क्या वो percentage में हम accept कर पा रहे हैं? Whoever asked this question, I wanted to answer that.
1: जी
0: तो
1: जी
0: we need to understand, are we, and these are the two स्थूल elements which we are in, two स्थूल and one air element because we are breathing. ये तीनों से हमें पता चल जाता है। But sun, sun के बिना हम कैसा जी, it's impossible to live. Within 15 minutes, the full world will die if sun is completely blocked from our existence. So, and all these things I am telling this from the book Practical Nature Cure, written by Acharya Lakshmana Sharma. Acharya Lakshmana Sharma is considered to be the father of nature cure in India. And all that he's talking about is, it's all there taken. He is Acharya Lakshmana Sharma. Dikhai de raha hai? He is Acharya
1: Yes,
0: Lakshmana
1: yes.
0: Sharma.
1: Haan ji, haan.
0: And all whatever he's taken, it's all picked up from our Shastras and Vedas. Everything completely from our Shastras and Vedas, he picked up all this and he's written this book. So it's not randomly, I'm not just telling stories. I'm telling facts. It's good to be a storyteller, though I keep repeating to myself, it's time we stop telling stories to ourselves. Because when we
1: जी
0: tell good stories, when we tell good stories, we will also have negative stories. So let us not have any stories. There is
1: जी
0: life, जो जहां जिंदगी है जीना है, जो eternal laws के अनुसार चल रहा है वो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नो, कोई कहानी नहीं यहाँ पे, नो स्टोरीज।
1: जी चलिए,
0: सो
1: सुधा जी आ गए हैं। सुधा जी, एक सुंदर गीत आप सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। जी
0: नमस्ते सुधा जी, इट्स सो अमेजिंग टू सी
2: नमस्ते,
0: यू।
2: थैंक यू विश, सेम फ्रॉम माय साइड टू। थैंक
0: यू,
2: थैंक यू। ओम शांति। ईश्वर से हमने

0: ओम शांति सुधर जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। अनु सहनी जी याद कर रहे हैं यहाँ पर, अनुराधा गर्ग जी भी याद कर रहे हैं, वाह करके मैसेज किया है। अनुराधा जी स्वागत है आप।
1: थैंक यू अनुराधा जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और सुविता जी जो है वैज्ञानिक तरीके से अपने सवालों को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक जो सवाल यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग पांचों एलिमेंट को किस परिमाण में लेते लाइफ में अडॉप्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी।
1: हाँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि हम एग्जिस्टेंस को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि एग्जिस्टेंस में कौन सा एलिमेंट कितना कितना परसेंटेज में है। एंड वी आर एग्जिस्टेंस, हम ही सृष्टि हैं, हम ही नेचर हैं। तो बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई है चूज करने का कि हमें क्या खाना चाहिए। एक एक टाइगर को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन होगा कि मांस खाएगा कि फल खाएगा। एक गाय को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन फूड खाएगा, घास घास फल डायरेक्टली खाएगा। कि हमें भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि हम चूज कर सकते हैं। क्योंकि हम चूज कर सकते हैं, हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। अगर हम सृष्टि के लॉ अनुसार चले, हमारे आते हमारी दांत बहुत कुछ हमारे हमारे इस शरीर के बारे में बोलता है। एंड नेचर बाय इटसेल्फ, हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, प्लांट्स है, वो भी हमें एक कहानी सुनाता है कि हमारे लिए क्या एक्चुअली बना है। वी आर थिन लिटिल टाइनी क्रिएचर्स। तो हमारे हमारे लिए जो खाना है वो 10 फीट टॉल ट्री टॉप में नहीं, 10 फीट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एक जिराफ जितना हाइट का पहुंच सकता है, वहां पे हमारे लिए फूड नहीं होगा। हमारे लिए फूड तभी होगा जो, अच्छा, हमारे लिए फूड फूड वही होगा जो पकने के बाद नीचे आए ऑटोमेटिकली। आम पकने से पहले ग्रीन ग्रीन ग्रीन आम किधर है, पत्ते किधर है, दिखाई नहीं देता है। बट वो जब पक जाता है, लाल होके बिल्कुल झुकने लगता है, जैसे कि हमें बोल रहा हो मुझे प्लक करो, मुझे तोड़ो, ब्रांच से तोड़ के खाओ, है ना। तो हमारे लिए सृष्टि ने सर्टेन फूड बना के रखा हुआ है। तो वो फूड हमें चूज करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इवन दी अदर एलिमेंट्स, वो बाकी आपका क्वेश्चन है, हम इसका चॉइस कैसा करें, कैसे इनकॉर्पोरेट करें खाना, वही पूछा ना आपने भाई जी। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड।
0: हाँ जी, सीमा जी मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, और यहाँ हाँ, पर उदयपुर से माया सालवी जी ने याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। सीमा बहन याद कर रही हैं आपके लिए अनुराधा जी, एक गीत आप भी गाइए करके शायद। अच्छा, टू मी ऑन हाउ बीन इन्फ्लुएंस, व्हाई डिड नॉट यू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कम बैक एंड टेल अस व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, शरीरी का अनुभव। Have you seen more people's our belief? Yes, in different organization we have priest or religious leaders.
1: Different topic, some other day please, आज नहीं। ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। फाइव फोल्ड फूड के बारे में नहीं है, फाइव एलिमेंट्स के बारे में नहीं है। So obviously I cannot answer this. So it's about how we incorporate this food. So first of all, we have to observe the हमारी नेचर। हम तो इन ये सृष्टि में एयर कितना दिखता है, अच्छा आउटर स्पेस हमें नहीं दिखाई देता है, वो छोड़े, एयर कितना दिखता है, वो एयर, पानी कितना दिख रहा है, स्थूल लैंड कितना दिख रहा है, वो परसेंटेज में हमें हमारा शरीर में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है खाना। तो सबसे ज्यादा स्पेस है, तो अभी हम लोग जरूरत से बहुत ज्यादा, दिन में 3-3 बार यू नो फुल मील ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट भी फुल मील होता है, लंच भी फुल मील होता है, डिनर भी फुल मील होता है विद 2, 3, 4, 5 वैरायटीज ऑफ फूड. इसके अलावा बीच में स्नैक्स का टाइम होता है, बीच में चाय का टाइम होता है, मतलब 4-5 बार दिन में तो सिर्फ ठूसते रहते हैं. करेक्ट. सो दिस यू नो बहुत ज्यादा हम खाते पीते हैं. इवन एग्जिस्टेंस को देख लें, हम धूप की तरफ आजकल एसी लगा के बैठ जाते हैं. धूप धूप धूप सेकते ही नहीं, धूप शरीर में जा रहा है, मैं काली हो जाऊंगी, अले ये हो जाऊंगा. क्या हम धूप को खाने के मतलब धूप एक्सपोजर करना जरूरी है. हमारा ब्रेथ को यू नो कॉन्शियसली बीच बीच में कभी कभी करेक्ट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, इसीलिए प्राणायामा बोला गया है, प्राणायामा करना जरूरी है. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आज फास्टिंग के लिए तो व्हाट इज द जापानीज साइंटिस्ट, आई थिंक सो इट वाज इमोटो, the scientist Dr. Emoto, who won Nobel Prize just because he spoke about fasting. Jitna fasting ke through cancer ke type of diseases hum dur kar sakte hain. Fasting is what? Fasting is eating ether. Akash tatva kha rahe hain jab hum fasting kar rahe hain. Na kuch kha rahe hain, na kuch pee rahe hain, sirf pani. ऑफ कोर्स हम लोग नेचुरल हेल्थ साइंस मतलब जो जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने सिखाया है उनके उनके नॉलेज अनुसार वो एयर फास्टिंग मतलब बिना पानी का फास्टिंग वो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा उसका एनकरेजमेंट नहीं करते हैं, कम से कम पानी पीना है वो बोलते हैं. तो उस अनुसार हम यू नो तो इमोटो ने भी ये प्रूफ.
0: यहाँ पर एक और विचार सवाल है कि इन 5 तत्वों को खाए कैसे, इन अदर वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कैसे करें.
1: हाँ तो वी नो दैट हम हमारी बॉडी ऑटोमेटेड मोड में है, तो श्वास तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बट कॉन्शियसली तो मतलब एयर तत्व, पानी तत्व और पृथ्वी तत्व, ये तीनों हमारे शरीर में चल रहा है. सन, बहुत बार हम खुद को सन में एक्सपोज नहीं करते हैं, एंड ईथर का तो बात ही नहीं है. ईथर आकाश का तो हम इनकॉर्पोरेट करते ही नहीं है. ओके तो हमें अभी लकीली अवेयरनेस इंटरमिटेंट फास्टिंग होने लगा है, तो कम से कम नॉर्मल लाइफ में कम से कम 12 घंटा कुछ ना खाएं, कम से कम 12 घंटा. 7 बजे शाम को 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और अगले दिन चाहे 7 बजे आप कुछ खाए, माइल्ड समथिंग से, लिक्विड से आप स्टार्ट कर सकते हो. 7 बजे से लेके रात के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक सिर्फ पानी पिए, ये कम से कम ये कर सकते हैं. एंड डिजीज कंडीशन के अनुसार हम इसको हम हमारी क्या फास्टिंग का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, बट ओनली अंडर प्रॉपर गाइडेंस. खुद से ना करें, बिकॉज शरीर रिवोल्ट करता है, डिटॉक्स सिम्टम्स दिखाता है उसके लिए, उसको हम डिटॉक्स क्राइसिस लाइक सिचुएशंस दिखाता है, तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, एंड देन यू विल बी इन अ वेरी बैड स्टेट. तो अकेला खुद से ना करें, बट अकेला जो कर सकते हैं 12 घंटा कम से कम, एवरी पर्सन कैन डू इट. फिर प्राणायामा अपनी जिंदगी में जरूर करें, वो भी कभी करना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग वातावरण अच्छा होता है, ओपन स्पेस में प्राणायामा करें, आसपास में गार्डन है तो गार्डन में जाके आप प्राणायामा करें, एंड ओनली माइल्ड प्राणायामा. मैं प्राणायामा मीन्स मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक्स. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपाल भाती एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर मोर फॉर वेरियस अदर कंडीशंस. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक प्राणायामा. वो प्राणायामा करना शुरू करें, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. आचार्य जी तो ये भी बोलते हैं, ब्रीदिंग इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये करना जरूरी है. सिंगल एक नॉस्ट्रल में, देयर इज अ प्रोसीजर टू दैट आल्सो, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज बेयर बेसिक्स जो है, ब्रीद इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये हमें करना है 15-20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग में. सो दैट विल एटलीस्ट हेल्प अस यू नो टेक इन टेक इन एयर एज फूड, जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, जब हम जॉगिंग करें, कॉन्शियसली नाक से ब्रीथ करना है. इट इज सो कॉमन. मैं रोज, हमारे घर के नजदीक ही है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो मैं रोज जाती हूँ. मुझे हैरानी होती है कितने लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस बोल के वो जाते हैं, अदरवाइज वो ये वहां पे नहीं जाते. कॉन्शियस लोग हैं, वहां जाते हैं, बट दिखता है क्लियरली सब लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से नहीं ले रहे हैं. बट हमें कॉन्शियसली, हमारा नाक है श्वास लेने का अपैरेटस, मुंह नहीं है. नाक के थ्रू जब जाता है, इंटरनली बहुत कुछ अलग अलग अलग अलग चीजें भगवान के भगवान ने बना के भेजा है कि वो एयर को फिल्टर करे एंड वेरियस अदर काम जो होना चाहिए नाक से. एंड मुंह से जब श्वास लेते हैं तब यहाँ गला सूखता है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. नाक से श्वास लेने से हम जल्दी टायर्ड नहीं होंगे एंड सूखता भी नहीं है, बार बार प्यास लगने लगता है. एंड एक्सरसाइज करते वक्त बीच बीच में पानी पीना इज नॉट अ गुड आइडिया. बॉडी एक तरफ हीट, आप चाहे दौड़ने से पहले पानी पी लो, पानी पी के दौड़ना खत्म करने के बाद 5 मिनट बाद पानी पी लो, ये इनमें ये कॉन्ट्रास्ट इज नॉट गुड फॉर अवर इंटरनल सिस्टम. तो मुंह से श्वास नहीं लेंगे तो प्यास भी नहीं लगेगा. इवन हम जब अर्ली मॉर्निंग जब योगा करते हैं वो भी कॉन्शियसली, हमारी हर एक योगा पोस्चर्स इतना ब्रिलियंटली बनाया है हमारे पूर्वजों ने कि हर पोस्चर में ऑटोमेटिकली फर्स्ट ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट देन ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट, ये ऑटोमेटिकली उसमें इनकॉर्पोरेटेड है. हाथ ऐसा एक्सटेंड करते वक्त ऑटोमेटिकली हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ऐसा ऑटोमेटिकली ब्रीथ इन कर रहे हैं. जब हम अंदर जा रहे हैं तब ब्रीथ आउट कर, जब हम फोल्ड हो रहे हैं तब ब्रीथ आउट. हर एक हमारा योगा पोस्चर इतना ब्रिलियंटली हमारे पूर्वजों ने बनाया है. तो दीज थिंग्स कॉन्शियसली करना है इन द ओपन एयर ताकि हम प्योर एयर ब्रीथ कर पाए. एंड कॉन्शियसली सनबेदिंग भी करना चाहिए, धूप में अपने आप को धूप सिखाना चाहिए इफ पॉसिबल, विदाउट, अगर आपको प्राइवेसी है, विदाउट एनीथिंग ऑन योर बॉडी एट ऑल, कम से कम 10-15 मिनट धूप का लाइट जरूरी है. गर्मी अच्छा नहीं है, अगर गर्म फील हो रहा है आप पोस्चर चेंज कर दीजिए. या अगर जलन जलन हो रही है, गर्मी तो होगा मतलब पसीना तो निकलेगा, जलन नहीं होना चाहिए. जलन अगर हो रहा है तो वो हम एक्सट्रीम करें, कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है. तो इफ नॉट पॉसिबल, इफ प्राइवेसी नहीं है, वेयर थिन व्हाइट क्लोथ, व्हाइट कॉटन मटेरियल इज द बेस्ट. एंड हमारा स्किन के थ्रू भी हम ब्रीद करते हैं, इसीलिए टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना पहने, लूज क्लोथ्स पहने, नेचुरल फाइबर पहने, कॉटन, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स, पॉलिस्टर, पॉलीफाइबर, ये सब अच्छा नहीं है.
0: पेट्रोलियम वाला,
1: हाँ वो सब चीज, पेट्रोलियम वाला मटेरियल अच्छा नहीं है. नेचुरल फाइबर यूज करें, जूट है, कॉटन ऑफकोर्स, देर इज हेम्प का भी मटेरियल का अच्छा बनता है कपड़े. तो दीज आर वेरी गुड मटेरियल फॉर आवर इन कोल्ड कंट्री.
0: यहाँ पर कुछ और विचार आए हैं, हमारे सभी ने याद किया है. मानसी जी लिखती है, यस मैम, माय ट्रीटमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन फास्टिंग करके, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हैं, पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट करा रही हैं. और नीलम ठाकुर जी लिख रहे हैं, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का. शांताराम जी लिखते हैं, व्हाट्स गुड एडवांटेज ऑफ फास्टिंग इन वन मंथ, हाउ मेनी डेज फास्टिंग नेसेसरी, एक महीने में कितना फास्टिंग करना चाहिए और उससे क्या एडवांटेज मिलता है. और फिर यहाँ पर नाम नहीं आया है, यूट्यूब चैनल का नाम है, नाइस करके मैं लिखा है, और सुंदर आयोजन और चर्चा का विषय अच्छा है करके लिखा है. और नीलम जी लिखती हैं, वेरी नाइस मैम, बट जिनकी योगा क्लासेस इवनिंग में चलते हैं वो कैसे करें इसको, ऐसा उन्होंने लिखा है. और विच आजार यानी विच डिजीज फास्टिंग करने से जल्दी कवर क्योर होता है, ये उनका सह कहना है. और फिर उन्होंने ये भी लिखा, इट डिपेंड्स ऑन इफ यू आर क्लॉस्ट्रोबिक देन फिटिंग क्लोथ्स नॉट गुड, ऐसा उन्होंने लिखा है. जी सुविता जी, नाइस टॉक, अनुराधा जी याद कर रहे हैं. और यहाँ पर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिविंग आर्ट इंस्टीट्यूट योगा एंड यू सेइंग दैट योगा, तो योग में भी काफी चीजें हैं, तो वो चीजों को उन्होंने बीज बताया है और सच सो मच लेक्चरिंग वी डू नॉट नीड टू विजिट एनी क्लिनिक वी शुड कॉन्टेक्ट यू हैव सम जी चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा एक्सरसाइज का फास्टिंग फास्टिंग वाली पहली बात बता दीजिए कि एक महीने में कितना फास्टिंग करने से और फास्टिंग से कौन सी बीमारियां जल्दी क्योर होती है उसके बारे में जी।
1: हाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने अपने शास्त्रों में से लेकर बताया है नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल्स के अनुसार डिजीज ऑल डिजीजेस आर वन बिकॉज ऑल डिजीजेस आर वन क्योर फॉर ऑल डिजीजेस आर वन ओके व्हाई ऑल डिजीजेस आर वन चाहे हम उसको अस्थमा बुलाएं चाहे ग्लाकोमा बुलाएं चाहे लिवर सिरोसिस बुलाएं ओके गंदगी शरीर में गंदगी गया है जहां जहां गंदगी जमा हुआ है डॉक्टर्स ने उस अनुसार एक नाम दे दिया है ग्लाकोमा बोल दिया जब गंदगी आंखों के पीछे जमा हो गया लिवर सिरोसिस बोल दिया जब गंदगी लिवर में जमा हो गया अस्थमा बोल दिया जब गंदगी लंग्स में जमा हो गया। अच्छा गंदगी साफ अगर घर में गंदगी जमा हुआ है हम क्या करेंगे साफ सफाई करेंगे हाँ कबड़ के नीचे गंदगी जमा है तो उसको कबड़ साइसिस टाइसिस बोल देंगे खाट के नीचे जमा है खाटाइसिस बोल देंगे एसी डक्ट के ऊपर गंदगी जमा है उसको एसीआइटिस बोल देंगे एंड हर एक का अलग अलग इलाज थोड़ी हो सकते गंदगी जमा हुआ है ना साफ करना है तो साफ कैसे करते हैं वहां से चीजों को हटा के मतलब अगर अगर खाट के नीचे सामान पड़ा है एंड सामान के साथ गंदगी जमा है मुझे क्या करना है खाट के नीचे का सामान हटाना है खाट के नीचे का सामान हटाना है तब अंदर का गंदगी साफ होगा ना खाट के नीचे हम सूटकेस वगैरह कभी कभी रखते हैं कबड़ के नीचे कबड़ के ऊपर सब रखते हैं ना सामान तो वो क्या हटाना है तो हमें क्या करना है फास्टिंग करना है नया चीज मत डालो तो फास्टिंग से क्या क्या बीमारी ठीक होती है फास्टिंग से हर बीमारी ठीक होती है हर बीमारी ठीक होती है नाउ फास्टिंग किस तरह का फास्टिंग आपको करना है ये आपके बीमारी का बीमारी कितना ग्रेव है कितना ज्यादा मतलब देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ डिजीजेस एक है विच इज कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस कुछ दिनों के लिए आते हैं 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए आता है दैट इज समथिंग लाइक फीवर लूज मोशन वॉमिटिंग छोटे टाइम के लिए आता है उसके बाद होता है अक्यूट डिजीजेस जैसा डायबिटीज हो गया थायराइड हो गया बीपी हो गया ये सब अक्यूट डिजीज जब हम लोग ये अक्यूट डिजीज को हम दवाई खा के दबाते हैं तब अक्यूट डिजीजेस क्यों होता है जो छोटी मोटी गंदगी हुआ है उसको शरीर से निकालने के लिए अक्यूट डिजीजेस होता है वो अगर हमने दवाई से बंद कर दिया फिर वो जमा होते होते क्रॉनिक डिजीजेस बन जाता है तो वो क्रॉनिक डिजीजेस को भी हमने दवाई खा खा के अगर बंद किया तब बन जाता है डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस लाइक कैंसर लाइक किडनी फेलियर ऑल दीज थिंग्स इट गोज टू द क्रॉनिक स्टेज तो हमें ये दोनों स्टेज में नहीं आना है तो जब अक्यूट डिजीजेस होता है उस टाइम पे हमें विदाउट एनी मेडिसिन देर आर नेचुरल वेज one of the easiest and the best ways go for fasting again various type of fasting you can do fruit fasting you can do though we don't call fruit fasting as fasting they are called fruit diet they are called raw vegetables diet they are called coconut water diet they are called citrus fruit juice diet so there are these various kinds of diet with this 12 hours of fasting means only water nothing else so एंड ये स्टेज में अगर ठीक हो गया तो ये दोनों स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं बट अगर आपने ये स्टेज में आपने दवाई खा के उसको सप्रेस कर दिया तो सेकंड स्टेज तक आएगा सेकंड स्टेज में भी हम यही सब प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके या ये करके हम जड़ से गंदगी को निकाल सकते हैं तो आवर शरीर आवर बॉडी इज डिजाइंड टू लिव इन अ हेल्दी मैनर हमारा डिजाइन में हेल्थ ही गुड हेल्थ ही लिखा है हमने इंटरवेंशन करके गड़बड़ कर दिया हम अगर नेचुरल लॉस के हिसाब से चलते तो हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है तो ये हो गया उधर भी फास्टिंग, एंड वहां से ये स्टेज में अगर क्रॉनिक से हमने अगर डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ गया तो फास्टिंग का ड्यूरेशन और लंबा होता जाएगा वो, तो इट डिपेंड्स अपॉन डिजीज टू डिजीज, बट ऑन एन एवरेज व्हाट वी रेकमेंड इज वीकली वंस डू एवरी डे डू 12 आवर्स फास्टिंग मिनिमम एवरी डे, बट अदरवाइज वीकली वंस डू अलोंग विद दैट वाटर फास्टिंग, वो धीरे धीरे धीरे धीरे 4 o'clock तक ले जाना है। शुरुआत में यू कैन स्टार्ट विथ 10 बजे तक वाटर फास्टिंग किया, तो जो भी ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे खा लेते थे उस टाइम पे नहीं खाना है, 10 बजे खाना है। 2-3 हफ्ता वो किया, वो करके करके अगर फीलिंग बेटर हो रहा है तो फिर 10 बजे तक रुकने को हो गया, फिर 11 बजे तक, फिर धीरे धीरे 12 बजे तक, ऐसा करके करके करके करके 4 o'clock तक वीकली वंस वी शुड डू फास्टिंग। एंड देयर आर या सो इफ यू हैव सम असिस्टेंस इट विल बी बेटर अलोंग विद दैट लिटिल बिट ऑफ सम अदर प्रोटोकॉल्स वी आल्सो हैव, इट विल हेल्प अस। सो वीकली वंस फास्टिंग, इफ नॉट दैट हमारा तो एकादशी है ही, एकादशी के दिन जब बहुत लोग साथ में एज यू नो करते हैं, हमको संगठन का एक बल होता है। बहुत लोग एकादशी का फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी का फास्टिंग आप भी करिए। आप अगर हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग तिथियां आती हैं, जब 10 दिन फास्टिंग करते हैं, 5 दिन फास्टिंग करते हैं, गणपति के टाइम, दुर्गोत्सव, नवरात्रि के टाइम तब करिए। इफ यू आर अ मुस्लिम, रमजान है उस टाइम पे फास्टिंग करिए, बट यूजिंग नेचुरल लॉज प्रिंसिपल। दिन फास्टिंग किया, शाम को बैठ के बहुत सारे तला हुआ ये वो खा लिया, वैसा नहीं। फास्टिंग मींस नो दिस काइंड ऑफ फूड। इवन एकादशी में भी एकादशी के नाम पे साबुदाना वडे ये वो खा रहे, नो, वी शुड हैव दिस नेचुरल फूड डाइट, इट इज इम्पोर्टेंट। वो किस तरह का फास्टिंग कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारा भाषा में फास्टिंग मीन्स सिर्फ पानी पीना, तो एकादशी का फास्टिंग मीन्स सिर्फ पानी पिया, शाम को एक टाइम में कुछ फ्रूट्स या कुछ जूसेस या नारियल पानी या व्हाटएवर दिस ऐसा पी लिया, तो उस तरह का तो फास्टिंग कर।
0: आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ याद कर रहे हैं यहाँ पर। वी शुड क्लियर ऑल थ्रस्ट फ्रॉम आवर माइंड जी। और यहाँ पर सुशील जी लिखते हैं, ओम शांति, स्वागत है सुशील जी आपका। निवेदिता जी ओडिशा से लिखती है, ओम शांति, स्वागत है निवेदिता जी आपका। Now is any study that because of fasting cancer recover? क्या कोई ऐसा स्टडी आपने देखा है या पता करा है आपने, तो ये उन्होंने पूछा है। और मानसी देवकर जी, I am on 14th hour fasting daily। अच्छा, चलिए बढ़िया है, आप कैंसर क्योर करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वीकली वंस, बहुत सुंदर प्राकृतिक उपचार। हफ्ते में एक बार फास्टिंग, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। टू मच फास्टिंग हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, इट विल मेक अस एनोक्सिया जी। टू मच माना आप कंसल्टिंग के साथ करेंगे तो शायद वो चीज़ें सेट हो जाएगी, आप बिना कंसल्ट के या डॉक्टर के परामर्श या किसी नेचुरोपैथी के परामर्श के अनुसार ही करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता नहीं है। और हमें जो है किसी एक गाइड, ट्रेनर या कोच के साथ, ठीक से डॉक्टर के साथ मिलके इन चीज़ों को प्लान करना है। आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहते हैं, आप फास्टिंग आपके लिए कितना और कैसे कर सकते हैं। एनी रिकॉर्ड्स ऑफ हाउ मैनी कैंसर पेशेंट रिकवर्ड? अच्छा, कुछ है आपके पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्टर सीमा जी?
1: नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है ये, डॉक्टर इमोटो, I think it was Dr. Emoto who did this thing, and he twice, दो बार उनको नोबेल प्राइज विना yes, yeah, Dr. Yoshinori उनको 2016 में उनको नोबेल प्राइज विना एक मिला था लेटेस्ट। इसके पहले भी आई थिंक अराउंड 1990s में एक और बार किसी को मिलाया, शायद इन्हीं को मिलाया, आई एम नॉट श्योर। तो ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि कैंसर फास्टिंग से ठीक हुआ है। सो इट्स ऑल देयर ऑन द इंटरनेट. आप प्लीज इंटरनेट में ढूंढ लीजिए, आपको सबूत चाहिए तो फास्टिंग से इंसान ठीक हो सकता है नहीं, तो बिना सबूत के तो नोबेल प्राइज तो नहीं मिल सकता है ना. आप इतना तो आई थिंक सो भरोसा होता है हम जो हमको नोबेल प्राइज के ऊपर. तो या सो एंड एनी अदर, व्हाट वाज अदर क्वेश्चन? आपने एक और क्वेश्चन कुछ बोला था ना, सबूत है क्या पूछा ना किसी ने, किस कोई ठीक हुआ है कि नहीं है.
0: हाँ, शांताराम जी का सवाल था कि कोई रिकॉर्ड है क्या कैंसर पेशेंट रिकॉर्ड हुआ है वो आपने. हाँ हाँ बताया.
1: अच्छा, मेरे हमारे हमारे ही साथ एक मैं इमाना IMANAH इमाना वेबसाइट में आप जाइए, डॉक्टर सुनीता करके है एक जन, उन्होंने अपना कैंसर उन्होंने ठीक किया है यूजिंग दिस प्रिंसिपल. उन्होंने अपना टॉक बताया है वो रिसेंटली मैंने देखा, तो ही शी इज पार्ट ऑफ आवर आई मीन आवर टीम मींस वो अपने हमारे टीम में अभी आ गई है अपना कैंसर ठीक होने के बाद. शी इज ऑल्सो अ हेल्थ कोच नाउ, सो ही हेल्प करती है. तो आप इमाना वेबसाइट में जाइए, IMANAH इमाना वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको डॉक्टर सुनीता का टॉक मिल जाएगा. मैं शेयर करूं क्या, मैं शेयर करूं क्या उनका?
0: यहाँ किसी और ने भी भेजा है मेरे को, एक का नाम है डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, डायरेक्टर ऑफ लॉन्गेविटी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया USC. डॉक्टर लॉन्गो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिसर्चर्स ऑन फास्टिंग एंड कैंसर स्पेशली पॉइंटर. ठीक है, बहुत बढ़िया जी जी जी. चलिए, व्हाट रिकॉर्ड यू विथ यू, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है.
1: यस यस, आई हैव हैड पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड. यस
0: जी जी जी. चलिए, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे.
1: हाँ, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू, लाइक मेनी पीपल टेल दैट आई मीन वी जो भी हम, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि व्हाट आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो सिटीज में वगैरह रह रहे हैं, यहाँ पे हम ये हवा ब्रीद इन कर रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू ये जो ब्रीद इन कर रहे हैं ये हम अर्ली मॉर्निंग्स ओपन स्पेस में इफ पॉसिबल वहां जाके हमें करना है. एंड हमारी तरफ से हमें स्किन में मतलब लूज क्लोथ्स पहनना है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मेकअप वगैरह, ईच एंड एवरी मेकअप. आवर स्किन ब्रीथ, हमारे स्किन के थ्रू श्वास लेता है हमारा. ये एक जेम्स बॉन्ड मोडी मूवी भी था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ जेम, वहां पे मर्डर होता है गोल्ड पेंट करके. ये जो मतलब वो जेम्स बॉन्ड मूवी में ऐसा दिखाया, एंड दिस इज ट्रू. एक बच्चे को, बच्चा जीसस क्राइस्ट ऐसा मतलब उनका इसके रिक्रिएशन के हिसाब से पेंट करके उन्होंने रखा था. आफ्टर अ फ्यू आवर्स द बच्चा डिड नॉट लिव, लाइक हैड लेफ्ट द बॉडी. तो इन द मूवी ऑल्सो दे शोड द सेम थिंग, दैट जस्ट गोल्ड पेंट कर देता था जिसको मर्डर करना है. एंड 1964 में ये मूवी रिलीज हुआ था. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ मूवी था, जेम्स बॉन्ड मूवी.
0: जी जी जी.
1: इनके थ्रू ब्रेथ होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम आवर आवर एस्पेक्ट से. हम जितना हम ट्रीज प्लांटेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि ट्रीज वातावरण को क्लीन करे. हमारे तरफ से फैक्ट्रीज वगैरह जितना ज्यादा नेचुरल लिव कर सकते हैं, नेचुरल लाइफ लीड कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा है. कॉन्शियसली वी हैव टू रिमेम्बर दैट हम सिर्फ मैं करके हमने इतना ज्यादा खराब कर दिया वातावरण को. हम इतना भी कॉन्शियस नहीं है कि वातावरण अगर गंदा है उसमें मैं डूबूंगी. वातावरण अगर डूब रहा है मैं नहीं बच सकती हूँ, है ना. तो मैं कर रहे तो मेरे लिए तो कम से कम वातावरण को ठीक रखो, सोसाइटी को ठीक रखो, दुनिया को ठीक रखो, है ना.
0: चलिए सीमा जी, काफी अच्छी बात है आपने बता दिया, और वक्त और इजाजत नहीं देता हमें, हमारा शो का टाइम पूरा हुआ. और यहाँ पर रजनी धवन जी लिखते हैं, सो मेनी डिजीज हैव बीन क्योर्ड ऑन, आई एम 76 इयर्स, आई हैव रिजर्व स्मॉल प्रॉब्लम्स विद डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी देवन, थैंक यू टू सीमा जी करके मैसेज किया है। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। फास्टिंग को लेकर अभी भी रिसर्च और कई लोग प्रयोग करके अपने आप को ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
1: नो नो नो, आई विल टेल यू समथिंग, फास्टिंग जी, फास्टिंग हम कर रहे हैं, यहाँ से फास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली खाना खाना खाना खाना, उसको खा रहे वो खा रहे, ये सोचेंगे तो ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग नहीं है। आई शुड डू इट हैप्पीली। यहाँ पे डिप्रेवेशन फील किया, यहाँ पे डिप्राइव्ड फील किया कि वो खा रहा, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो दुनिया भर का कचरा खा रहा है, उसको तो मुझे क्यों, ऐसा खुशी खुशी करना है तो वो हम डिप्राइव्ड फील होकर करेंगे तो नहीं फास्टिंग आपको काम करेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैड टू पुट द सेंटेंस।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमें फास्टिंग को भी ठीक से समझने की जरूरत है, और जब भी आप करें तो छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं वैसे हफ्ते में एक बार, लेकिन आप किसी बीमारी को लिए करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है किसी अच्छे डाइटिशियन या नेचुरोपैथ या फिर डॉक्टर के कंसल्टिंग में आप इन चीज़ों को करें और फिर उसका रिजल्ट देखें, निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर्स हमने देखे हैं जहाँ पर लोग फास्टिंग ही कराते हैं, ज़्यादातर एक बार उनको खाना देते हैं, कई जगह पे वाटर पे भी फास्टिंग किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको करते हैं और कितना आपका मन और शरीर से आप तैयार हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो प्रयोग करके अनुभव करिए, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बावजूद भी हो सकता है कि कभी कभी आपके मन को वो स्वीकार ना हो। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें। एक बार सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सुधा जी को भी थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं बातें मुलाकातें, सुनते रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से।

0: का बहुत लंबा होता है और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता।
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माताजी भी कुछ करते थे?
1: माताजी नहीं, घर काम, माताजी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माताजी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया। हाँ। और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवे कालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, मना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था म्यूनसिपल स्कूल में, तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी मैं, मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में मना ठीक था, 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती।

0: थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी है, खेल भी, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको, तो आप भी रहते थे? हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम। अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविताओं वगैरह, डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे? चलिए,
1: हाँ, मैं भी सुनाती
0: बहुत अच्छी बात है।
1: थी।
0: आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे? घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थी ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता
1: था। हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 76 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम, आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था, तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
2: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी। पूरी पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत मना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपका बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपए है
0: तोला।
1: तोला
0: जी जी बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुनः छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बॉम्बे में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बॉम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोंकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोंकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोंकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोंकण में कभी?
1: हाँ, इस बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आए और उसका एजुकेशन, बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से। ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब 3 बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह

0: आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
1: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
0: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
1: हम घर में सब थैलिया पर्दा ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी, माना हमने कोर्स किया था
0: सिलाई का।
1: हाँ,
0: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
1: पुणे में ही किया था।
0: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
1: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
0: अच्छा, कभी आपने मॉल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
1: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
0: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
1: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
0: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
1: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
0: तो पूरे आपका ग्रुप था?
1: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
0: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
1: सत्संग नहीं इतना किया हम।
0: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
1: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
0: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
1: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
0: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
1: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
0: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
1: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
0: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
1: 1-2 बरस तक गई।
0: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
1: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
0: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
1: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
0: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
1: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
0: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
1: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
0: अच्छा, पर सारे मराठी में।
1: हाँ,
0: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
1: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
0: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
1: नहीं,
0: कभी कोशिश नहीं की?
1: नहीं, याद भी नहीं आए।
0: अच्छा, आप कह रहे थे आपके 3 बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
1: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटकी थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
0: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
1: हाँ।
0: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
1: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई, और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
1: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
1: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
1: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
1: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
1: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
0: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
1: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
1: नहीं, उसने नहीं किया।
0: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
1: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
0: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
1: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
0: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
1: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते जी।
1: आपका शुभ नाम?
2: तेजश्री।
1: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
2: जी हम बड़े हैं।
1: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
2: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
1: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
2: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा एक हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
1: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
2: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
1: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
2: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
2: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
2: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
3: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
3: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
3: 2 साल हुए।
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
3: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
3: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
1: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
3: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
3: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में खड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं, तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, और रविवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? आपकी प्रभा पंडिताइन आप सभी श्रोताओं का आपके अपने प्रोग्राम पंडिताइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरू करते हैं आज की कहानी, परिवार का असली सुख।
1: गांव की चौपाल पर शाम का समय रहा, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कुछ बुजुर्ग आपस में बैठकर जीवन की बातें कर रहे थे। उन्हीं में से दो पुराने मित्र रामदयाल जी और हरि प्रसाद जी काफी दिनों बाद मिले थे। बातचीत करते करते बात बच्चों और परिवार तक पहुंच गई। रामदयाल जी ने गर्व से कहा, मेरी एक पोती है, अब शादी के लायक हो गई है, पढ़ी लिखी है, बीए किया है और शहर में नौकरी भी करती, सुंदर है, समझदार है, अगर आपकी नज़र में कौन अच्छा लड़का हो तो बताइएगा। हरि प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो बताइए आपको कैसा परिवार चाहिए। रामदयाल जी तुरंत बोले, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी हो। भाई हर कोई अपनी बच्ची के लिए तो यही ना चाहता है कि अच्छा घर हो, अच्छा कमाने वाला बच्चा हो। हाँ, तो वो भी यही बता रहे थे कि परिवार अच्छा हो, लड़का कमाने वाला हो। तो हरि प्रसाद जी मुस्कराए और तो कैसा परिवार चाहेगा, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी तनख्वाह हो, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, लड़का अकेला होना चाहिए, उसके माता पिता भाई बहन कोई ना हो, ताकि आगे चलकर घर में झगड़े ना हो। ये सुनकर हरि प्रसाद जी कुछ देर चुप हुई गए, उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मेरे एक मित्र का पोता है, बहुत अच्छा लड़का है, माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए, कोई भाई बहन भी नहीं है, अच्छी नौकरी करता है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब है। रामदयाल जी खुशी से बोले, अरे वाह, फिर तो बात पक्की समझो। हरि प्रसाद जी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन उस लड़के की भी एक शर्त है। का? रामदयाल जी ने उत्सुकता से पूछा, उसे भी ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई अपना ना हो, न माता पिता, न भाई बहन, न रिश्तेदार, ताकि उनकी जिंदगी में किसी का दखल ना हो। रामदयाल जी गुस्से में बोले, ये कैसी बेकार बात है, भला कोई अपने परिवार के बिना कैसे जी सकता है, सुख दुख में अपने ही तो काम आते हैं, अगर हमारे परिवार को कुछ हो जाए तो हमारी बिटिया के साथ कौन खड़ा होगा। हरि प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बस दोस्त यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था, जब अपनी बेटे के लिए परिवार जरूरी लगता है तो दूसरे के परिवार से परेशानी का है, माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार जीवन की असली ताकत होते हैं, परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं बल्कि सुख दुख बांटने वाला सहारा होता है। रामदयाल जी अब बिल्कुल शांत थे, उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, धन दौलत से घर बड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन परिवार से ही जिंदगी बड़ी बनती है। उस दिन चौपाल में बैठे सभी लोगों ने ये बात दिल से महसूस की कि इंसान चाहे कितना भी अमीर काहे ना हो जाए, अगर उनके पास अपना परिवार नहीं तो जीवन अधूरा ही रहता है। कहानी तो सुन ली, लेकिन ये बताइए कि कहानी से शिक्षा का ली, परिवार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, रिश्तों की गर्माहट ही खुशियों को सच्चा अर्थ देती है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का सम्मान करें और बच्चों को भी रिश्तों का महत्व समझाएं। आज की पढ़ी लिखी जो हमारी सो कॉल यूथ है, वो कोई बात समझ में नहीं आता, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं जैसे कि राम प्रसाद जी ने कहा, बड़े बूढ़े ही ऐसे चाहते हैं कि बच्ची को कोई टोकने रोकने वाला ना हो, लेकिन जब उनके परिवार की बात आती है तो कहते हैं कि परिवार के बिना घर कैसा। तो हमारे नवयुवकों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं, हमारी सच्ची धन दौलत है हमारा परिवार, हमारे अपने जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए भाइयों बहनों, जीवन बहुत ही छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो, दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। हर चीज ताजी अच्छी होती है, लेकिन सेवक, मित्र और चावल पुराने ही अच्छे होते हैं। संबंधों की ही सुंदरता है, नए सुख देते हैं और पुराने जीवन को स्थिरता और मिठास देते हैं। इरादे, जीवन है, गलतियां होती रहती है, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए। समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, ज्ञान और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक श्री हरि के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। जब तक हमारा मैं नहीं समर्पित होता, नहीं समाप्त होता, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। काहे कि वहाँ घमंड है, अभिमान है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे की वो जो गांठ पड़ी है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा जी से करीब नहीं पहुंचने देते। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानिएगा। का पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। इस सोच के जीवन में परेशानियों से घबराइए नहीं, सोचिए अच्छे अवसर मिल रहे हैं। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो अपने आसपास हो रही उन चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप नियंत्रण करना चाहेंगे, अपना आधिपत्य जताना चाहेंगे, तो रिवॉल्यूशन होगा और वो कभी भी ना आपको सुख से रहने देगा ना अपनों को सुख से रहने देगा। जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। थोड़े समय अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है कि नहीं? सही बात। अरे भाई, हम तो कभी गलत कहबे नहीं करते हैं। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा। इस बात को गांठ में बांध लीजिए, फिर कोनो बातों

भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। कई बार जब हमें बोलना चाहिए हम मौन रह जाते हैं, जब मौन रहना चाहिए तब हम बहुत बोल जाते हैं, और वहीं से महाभारत शुरू होती है। समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए। का पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी बड़ी ही मिलेगी। ये बात गांड बांध के रख लीजिए। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते। हमेशा हम कहते हैं पेड़ काटिए नहीं, पेड़ लगाइए, वरना कुछ समय के बाद ये ऑक्सीजन सही में पीठ पर लाद कर और नाक में लगा के चलना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई देने बंद हो जाते हैं। ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी बातों को नज़रअंदाज करते जाएं। रिश्ते कुछ कह गए कुछ सह गए, रिश्ते कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत साबित करने के पीछे न जाने कितने रिश्ते बह गए, न जाने कितने रिश्ते बह गए। सही समय पर गलत जगह से निकल जाना भी एक आशीर्वाद ही है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। हम आपकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। रिश्तों के कारण कोई हमसे प्रेम करे तो ये अलग बात है, लेकिन अगर कोई हमसे व्यवहार के कारण प्रेम करे तो ये महत्वपूर्ण बात है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, देखिएगा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। चलिए भाई यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे, सुनते रहें मुस्कराते रहें परवा पंडिताइन के साथ 12 बजे तक यूं मौज मस्ती करते रहें। सुनिएगा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रेम की पराकाष्ठा। गांव का सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे, तभी शायद कोनो शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहाँ बड़ा सारा फर्नीचर भी सुहा हुई गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों में हैंडपंपों से जौन बर्तन हाथ में आया, उही में पानी भर कर आग बुझाए लगे। आग शांत होने के काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी छज्जे पर जलकर कोयला बने पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट रहा कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाए का प्रयास तक नहीं किया था और वो स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जलकर कोयला बने पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए, जो सकुशल थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाए के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर अपने चूजों को बचा लिया था। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, ये पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी। गुरुजी ने तनिक विचार कर कहा, नहीं, ये मोह नहीं है, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता और भाग जाता। भगवान ने माँ को बच्चों के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा दी है और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सही में दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न बन जाए, कितना भी सोचे कि अरे माँ बाप तो पुराने हैं, पुराने ख्यालों के हैं, उनको कहा है, लेकिन नहीं, पुत्र को पुत्र बन जाए लेकिन माता को माता नहीं बनती, उही तरह माँ कोनो भी सिचुएशन में अपने बच्चों से प्रेम करती है। एक और सच्ची घटना, कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा देखने मदुराई में। आज भी एक दुकान मिलेगा पेन का। कहानी का नाम है आखिरी पेन। स्थान का नाम है मदुरै मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार। ये कहानी एक ऐसे साउथ इंडियन ब्राह्मण की, जो व्यक्ति विशेष तो नहीं थे मगर सोच बहुत विशाल रही। वो व्यक्ति पेरियासामी, उम्र 60 वर्ष, हर रोज सुबह 6 बजे वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठते रहे। उनके सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता जिस पर पेन, पेंसिल, रबर और कंपास बाग जैसी चीजें सजी होती। एक फुटपाथ की दुकान, लेकिन खास कोनो धंधा नहीं। पेरियासामी का एक नियम था, जब भी कोई बच्चा पेन मांगने आता तो वो पहले पूछते, बेटा का परीक्षा देने जा रहे हो? हाँ दादा, आज गणित का पेपर है, मैं पेन भूल गया हूँ। तुरंत पेरियासामी एक अच्छी पेन चुनकर उसको देते, ये लो, ये लकी पेन है, जाओ 100 में से 100 नंबर लाना। कितने पैसे हुए दादा? पैसे बाद में, पहले परीक्षा दे कर आओ, फिर वापस आकर अपने नंबर बताना, तब पैसे देना। बच्चे हंसते हुए दौड़ जाते। वो कभी वापस नहीं आते और पेरियासामी ने कभी किसी से पूछा भी नहीं। उनकी पत्नी थंगम उन्हें डांटती, का पगला गए हैं, एक पेन 10 रुपये की आती है, अगर आप ऐसे मुफ्त में देते रहोगे तो हम का खाएंगे, घर का किराया कौन देगा? पेरियासामी एक पुरानी डायरी निकालते, उसमें उन्होंने तारीख के अनुसार नोट किया था, 12/3/2010, रमेश गणित की परीक्षा, पेन बाकी, 5/6/2011, सुमति हिंदी की परीक्षा, पेन बाकी, 18/9/2013, मुरुगन 10वीं बोर्ड परीक्षा, पेन बाकी। पूरी डायरी ऐसे बाकी हिसाबों से भरी थी। गिनती की तो लगभग 3,000 पेन, 30,000 रुपये। देखो थंगम, वो कहते, ये कर्ज नहीं है, ये मेरा निवेश है, एक दिन ये जरूर वापस आएगा। थंगम आह भरती, तुम्हारा ये निवेश मिट्टी में मिल जाएगा, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब कौन वापस आए वाला है। 20 साल बीत गए। पेरिया सामिया 80 वर्ष के हो चुके थे। आँखों से धुंधला दिखता था और सुनाई भी कम देता था। फिर भी आज भी वही मंदिर का दरवाज़ा, वही कपड़ा बिछाकर बैठते थे, लेकिन अब बच्चे जेल पेन और ऑनलाइन चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनका धंधा बिल्कुल बंद था। एक सुबह मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लगभग 35 साल का एक आदमी बाहर निकला, सूट बूट पहने, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। वो सीधे पेरिया सामी के पास गया और उनके चरण छुए। दादा, मुझे पहचाना? पेरिया सामी ने आंखें सिकोड़ कर देखने की कोशिश की। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। दादा, 18 साल पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी, गणित का पेपर। उस समय मैं रोता हुआ आया था, मेरी पेन टूट गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने मुझे एक पेन दी थी और कहा था ये लकी पेन है, जाओ 100 नंबर लाना। आपने पैसे नहीं लिए थे। पेरिया सामी को धुंधली याद आई। बेटा तू? मैं मुर्गन हूँ दादा, मैंने उसी पेन से परीक्षा लिखी और 98 नंबर लाया। मैं पास हुआ, कॉलेज गया और आज मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, पन्ना टेक्नोलॉजीज। मेरी जिंदगी आपके उस पेन से शुरू हुई थी। थंगम दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुर्गन ने एक लिफाफा निकाला। दादा, उस दिन मुझे आपको 10 रुपये देने थे, आज मैं ब्याज सहित वापस देता हूँ। अंदर 10 लाख रुपये का चेक था। पेरिया सामी के हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तू सफल हुआ वही बहुत है। नहीं दादा, ये पैसे नहीं है, ये आपका निवेश है जो मुनाफे के साथ वापस आया है। अब आपको इस फुटपाथ पर बैठे की जरूरत नहीं, मैं आप दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगले दिन अखबार में हेडलाइन रही, सॉफ्टवेयर उद्योगपति ने फुटपाथ पर बैठे वाले दादा को 10 लाख की गुरु दक्षिणा दी। ये खबर पढ़कर दूसरे दिन दूसरी गाड़ी आई। दादा, मैं सुमति हूँ, मैंने आपकी दुकान से हिंदी परीक्षा के लिए पेन ली थी, आज मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। फिर रमेश आया। दादा, मैं आज ऑडिटर हूँ, मेरी जिंदगी की पहली बैलेंस शीट आपकी पेन से लिखी गई थी। 1 हफ्ते में तो मंदिर के दरवाजे पर जैसे शादी का माहौल बन गया। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस अफसर सब लाइन में आए। पेरिया सामी के पैर छुए और फूल फल और लिफाफे भेंट में दिए। थंगम ने पुरानी डायरी निकाली, 3000 एंट्री थी, 30,000 रुपये बाकी थे, लेकिन आज जो वापस आया था उसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज़्यादा थी। पेरिया सामी रो पड़े और बोले, थंगम, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कर्ज नहीं था, ये तो बीज थे, मैंने उन्हें बोया था और आज ये एक बड़ा जंगल बन गए हैं। आज मीनाक्षी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी दुकान है, पेरिया सामी पेन स्टोर, जिसका कोई किराया नहीं है क्योंकि मुर्गन ने वो दुकान खरीद ली है। दुकान में एक बोर्ड लगा है, यहाँ परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पेन मुफ्त है, बस वापस आकर अपने नंबर बता देना, पैसे बाद में दे देना। उसके एक नीचे एक छोटी लाइन लिखी है, 10 रुपये की एक पेन जिंदगी बदल सकती है, विश्वास रखिए। और आपको पता है आज वो दुकान कौन चलाता है? मुर्गन, वही सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक। हफ्ते में 2 बार वो अपना सूट उतार कर दुकान में बैठता है और बच्चों को पेन देता है। बेटा, ये लकी पेन है, जाओ 100 रुपये में से 100 में से 100 नंबर लाना। आप जो देते हैं वो सिर्फ पेन नहीं होती, वो एक आशा होती है। एक दिन वही आशा लौट कर आपके चरणों में झुकेंगी, उस दिन आपको समझ आएगा कि आप कभी गरीब नहीं थे, आप सच में बहुत अमीर थे। आशा करते हैं आप भी इससे कुछ शिक्षा लेंगी। कोई गरीब है, किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा लौट कर आएगा कि नहीं, ऊपर वाले का हिसाब कभी भी गलत नहीं होता। कोनो कंप्यूटर फेल हो जाए लेकिन ऊपर वाले का कंप्यूटर फेल नहीं होता। आशा करते हैं आप कुछ शिक्षा लेंगे। चलिए इसी बात पर गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। गाना

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देखिए भाई, एक बार की बात है, एक अति उत्सुक साधु बाबा विचरण करते हुए एक ऐसे शहर में पहुंचे जहाँ की प्रजा खुशहाल रही और महाराज का नाम सुनकर साधु को उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। और जिस राजा के राज में इतना आनंद है उसके चरित्र में कुछ तो खास बात होगी, इस सोचकर उन्होंने राजमहल का रुख किया। राजमहल के पहले सुरक्षा घेरे पर दो सैनिकों ने साधु को रोका। ये सैनिक ऐसे लग रहे थे मानो उनका कवच उनकी छाती से ज्यादा उनके अहंकार को बचा रहा हो। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटे हुए ढोल को पीटा जा रहा हो। पहला सैनिक आंखें तरीर का बोला, ओए बुड्ढे, कौन है तू? राजमहल का तेरे मामा का घर है जो चला आया? कहीं दुश्मन का जासूस तो नहीं? अपनी गठरी में का छिपा रखा है, मिठाई या बम? चल भाग यहाँ से, वरना तुझे इतनी धूल फांकनी पड़ेगी कि तुझे अपनी दाढ़ी का रंग याद नहीं रहेगा। साधु बाबा ने उनकी अभद्रता, उनकी तुच्छ भाषा और उनकी निम्न सोच को देखा। वो मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, तभी तो। सैनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरा सैनिक माथा खुजाते हुए बोला, का तभी तो? का मतलब है इसका? तू हमारी बात का जवाब काहे नहीं देता, गंवार कहीं का? साधु ने फिर सिल हिलाया और वही अटपटा जवाब दिया, तभी तो। सैनिकों को लगा कि साधु पक्का पागल है या हो सकता कोनो गुप्त कोड बोल रहा हो। डर के मारे उन्होंने साधु को धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। अब राजमहल के मुख्य द्वार पर एक चतुर और संकीर्ण सोच वाला द्वारपाल मिला। ये महाशय सैनिकों से ज्यादा सभ्य थे पर उनकी आंखों में दक्षिणा का गणित चल रहा था। द्वारपाल एकदम बनावटी मीठी आवाज में, क्षमा करें साधु जी, आप अगर दान पुण्य के लिए आए हैं तो आज राजा का दक्षिणा देने का दिन नहीं है। अगली पूर्णिमा को राजा दक्षिणा देंगे, उस दिन आइएगा, आपको ढेर सारा दान मिलेगा। आज आप जाइए, राजा जी व्यस्त हैं, यहाँ समय बर्बाद न करें। साधु ने देखा कि द्वारपाल का व्यवहार शिष्ट है पर वो एक अतिथि को केवल फालतू का खर्चा मान रहा है। साधु बाबा हाथ उठाकर बोले, तभी तो। द्वारपाल तिलमिला गया। उसने गुस्से में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तभी तो का आप कहना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ? साधु ने फिर दोहराया, तभी तो। द्वारपाल को लगा कि साधु जरूर कोई जादूगर है जिसने उसके गणित को बिगाड़ दिया है। घबरा कर वो भागा भागा मंत्री जी के पास पहुंचा। मंत्री जी जो हमेशा नियम कानून की मोटी किताब को बगल में दबाए रखते थे, तुरंत साधु से मिलने आए। मंत्री जी औपचारिक स्वर में बोले, साधु बाबा सादर प्रणाम, मैं आपकी बात सुनूंगा पर कृपया संक्षेप में बताएं, महाराज अभी अपने शाही दोपहर भोजन करने जा रहे हैं, मैं उनका ये जरूरी समय बर्बाद नहीं कर सकता, अपना परिचय और उद्देश्य मुझे बताएं, मैं सब चीजें व्यवस्थित कर दूंगा। साधु ने मंत्री की कुशलता को सराहा लेकिन ये भी देखा कि उनके लिए एक जीवित अतिथि से ज्यादा जरूरी समय सारिणी और व्यवस्था थी। साधु बाबा धीरे से बोले, तभी तो। मंत्री जी का माथा ठनका, उनका सारा व्यवस्था ज्ञान इन दो शब्दों के जवाब के आगे ढह गया। व्याकुल होकर उस सीधे राजा की कक्ष की ओर भागे और उन्हें तभी तो के रहस्य के बारे में बताया। महाराज ने जैसे ही सुना कि एक साधु द्वार पर है और उन्हें भोजन से पहले सम्मान नहीं मिला, वो तुरंत खड़े हो गए। महाराज आवाज में सच्चा प्रेम और क्षमा भर कर बोले, भोजन को ठंडा होने दो। जिस व्यक्ति ने मेरे द्वार पर कदम रखा है उसका सम्मान मेरे हर नियम से ऊपर है। महाराज स्वयं दौड़े दौड़े गए। उन्होंने साधु के पैर धुलाए, उन्हें अपने से भी ऊंचे आसन पर बिठाया और उनसे पहले भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। साधु ने भोजन किया। संतुष्ट होने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरे सैनिक, द्वारपाल और मंत्री सब आपके तभी तो के रहस्य से परेशान है, कृपया मुझे ज्ञान दे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो। साधु ने समझाना शुरू किया, सैनिकों के प्रति तभी तो उनकी भाषा कठोर, घमंडी और अभद्र थी, उनका व्यवहार ऐसा था, तभी तो वे सबके निचले पद पर है जहाँ उन्हें केवल लठ चलाना आता है, विवेक नहीं। द्वारपाल के प्रति तभी तो उसकी सोच केवल पैसे और व्यवहार तक सीमित थी, अतिथि सत्कार की भावना शून्य थी, उसका व्यवहार संकीर्ण था, तभी तो द्वार पर ही अटका रहा, महल के अंदर नहीं आ पाया। मंत्री के प्रति तभी तो वो शिष्ट था, पर उसके लिए नियम एक जीवित अतिथि से ज़्यादा जरूरी थे। उसमें व्यवस्था थी पर हृदय नहीं, उसका व्यवहार कुशल सेवक का था, तभी तो वो मंत्री के पद पर है। महाराज के प्रति तभी तो, राजन आपने भोजन त्यागा, आपने मुझे स्वयं से उच्च आसन दिया और मेरी सेवा की, आपका व्यवहार विनम्रता, त्याग और प्रेम से भरा है, आपका आचरण सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो आप राजा के सर्वोच्च आसन पर हैं। याद रखें राजन, साधु ने निष्कर्ष निकाला, पद व्यक्ति के आचरण से परिभाषित होता है, न कि आचरण पद से। हर कोई अपने व्यवहार के दम पर ही अपनी जगह बनाता है। का समझे, बहुत गहरी बात है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो चारों के लिए था, लेकिन हर एक के लिए वो तभी तो का अर्थ बहुत गुही रहा। कहे का मतलब, हम अपने आप से पूछें, हम कौन से तभी तो में फिट बैठते हैं। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार दीदी जी, मजा, मैं तो बिल्कुल सो ही गया था आपके, बहुत अच्छा ज्ञान सुना है
2: जी,
3: मजा आ गया।
2: थैंक यू।
3: किसी को भी भोजन खिलाना है तो उसको पहले भाव दो
2: जी, सम्मान दो,
3: मान दो जी, हाँ, जी। जब वो भोजन डबल मिठास बन के खाएगा
2: जी,
3: हाँ, मगर तो कुछ खाएगा मगर वो मजा नहीं आएगा
2: जी,
3: इसलिए भाव की जरूरत है। बहुत अच्छा सुनाया आपने
2: जी,
3: और अभी आपको पूरा राजस्थान सलाम कर रहा है।
2: अरे,
3: हम राजस्थान से बोल रहे हैं, हवा चल रही है,
2: अच्छा,
3: और धूल उड़ रही है और पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, और मैं अभी अभी सुबह 11 बजे नहीं 10:30 बजे उतरा था बस से, राजपुर बस में चल रहा था अब रोड से, और पूरे गुजरात से लगा के अभी तक बिहार आ चुका हूँ
2: जी,
3: और
2: जी।
3: अभी हमारा एक उत्सव है यहाँ, हमारे मामे के लड़के जो बहुत समाज देगी करते हैं, मतलब गांव-गांव और सब भोजन बनाएंगे और खिलाएंगे ऐसा कुछ है, तो इसलिए हम भी आए हैं और हमारे को भी मान करके बुलाए हैं। अभी धूप पड़ रही है इसलिए मैंने बोला फिर बाद में जाते हैं, और अच्छा कार्य रह रहा है। आपको बहुत बहुत नमस्कार दीदी जी, अच्छा आपने सुनाया
2: जी,
3: और मजा आ गया।
2: थैंक यू।
3: और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे
2: जी,
3: और ऐसी शुभकामना दे रहे हैं हम आपको और हमारे सभी दोस्तों को, और जिनका भी जन्मदिन है उनको।
2: थैंक यू
3: दीदी जी, नमस्कार,
2: नमस्कार, ओम शांति। देखिए भाई, आप सुन लिए हैं कि फोन वहाँ चालू है, कुछ लोग कह रहे थे फोन नहीं लग रहा, लेकिन आप सुन लिए ना, फोन चालू है, आप घनघनाना चाहे तो घनघना दीजिएगा, बतियाना चाहे तो बतिया लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता। चलिए अब यही बात पर एक गीत सुनते हैं, और फोन आया है। हेलो, चलिए गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे आपसे।

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अनमोल रिश्ता। सर्दियों की एक ठिठुरती शाम रही। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और ठंडी हवाएं वातावरण को और अधिक शीतल बना रही थी। घर के भीतर भी माहौल कुछ वैसा ही ठंडा हो चुका था। छोटी सी बात पर रमेश की पत्नी सुनीता ने सुनीता से कहा सुनी हो गई थी। हेलो,
2: हाँ दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: कैसे दीदी?
1: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: बस हम भी बहुत अच्छे हैं दीदी। कई दिनों से आपका स्टूडियो का फोन बंद था, लेकिन आज ही शुरू हुआ है और
1: जी,
2: पहले ही शुरू हुआ है।
1: जी जी, तो और हम भी
2: सुबह में हमने कॉल किया था, लेकिन बंद था स्टूडियो का मोबाइल, कई दिनों से बंद था।
1: जी जी, अभी चालू है।
2: हाँ, अभी चालू हो गया है। तो हमने मदर लाल की बात सुनी, तो मैंने सोचा चलो आप लगाएंगे, शायद फोन शुरू हो गया होगा।
1: जी जी,
2: तो चलो दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, अच्छा लगा क्योंकि हम तो हर रोज आपसे बात सुनते हैं, कल भी सुनते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी बात सुना दीदी। जो पेन वाली बात थी दीदी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि कोई भी हम किसी की मदद करते हैं तो मदद दीदी कई गुना वापस आती है, आज नहीं तो बाद में, लेकिन जरूर वो परमात्मा।
1: और वो ना सही घटना है जी, वो सही घटना है,
2: सही घटना है। मैंने इसीलिए तो आपको बोला, शायद दीदी शायद मौका मिले तो दोबारा कभी भी सुना देना, क्योंकि
1: जी, जी, जी।
2: थोड़ा सुनने में दिक्कत आई थी मुझे, प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा था नेटवर्क के कारण। हमारे नेटवर्क चला गया था, इसलिए अच्छा अच्छा बीच में नहीं सुना दे रहा था, लेकिन
1: जी, जी।
2: बहुत अच्छा लगा वो दीदी, सच्ची घटना आपने जो बताई। और ऐसे दीदी हम तो दीदी कहते थे कि कोई भी मदद कीजिए, किसी की मदद कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, आपको ऐसा बदला परमात्मा आपको जरूर दे देता है वापस।
1: हम स्वार्थ ना रखें, परमार्थ करें, जितना कर सकते हैं उतना करें,
2: मदद करने के लिए।
1: जी जी।
2: और वो 10 रुपए की पेन दे दे, देखो भाई कितने साल के बाद आया, 35 साल के बाद आया, और कितना एक मिलन हुआ उसका कि भाई मैं वही हूँ जो आपसे पहले 35 साल पहले मैं आपसे पेन ले गया था।
1: जी।
2: और वो दिन वो वक्त दीदी कैसा होगा तो हम अनुमान कर सकते हैं कि दीदी खरे खरे वो परमात्मा की ही कृपा है सर
1: जी,
2: वही तो परमात्मा सब कुछ मिलाता है
1: जी। तो निस्वार्थ भाव रहे तो वो हर चीज का हिसाब उसके पास रहता, हम भूल भी जाए लेकिन उसके पास ऊपर वाले के पास रहता है। जी
2: जी दीदी, बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, हमको बहुत पसंद आया
1: जी।
2: आपको नमस्ते दीदी, ओम शांति।
1: ओम शांति, थैंक यू। तो हम कहानी सुना रहे थे आपको, सर्दियों की एक ठिठुरती शाम रही, सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और ठंडी हवाएं वातावरण को और अधिक शीतल बना रही थी। घर के भीतर भी माहौल कुछ वैसा ही ठंडा हो चुका था। छोटी सी बात पर रमेश की अपनी पत्नी सुनीता से कहा सुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में वो घर का दरवाजा पटक कर बाहर निकल आया। चलते चलते वो मनी मन बड़बड़ाए लगा, पता नहीं खुद को क्या समझती है, हर समय तकरार तकरार, हर बात में शिकायत, अब उससे बात ही नहीं करूँगा। क्रोध और निराशा से भरा रमेश पास ही सड़क के किनारे बने एक छोटे से चाय के स्टॉल पर जा पहुँचा। उसने एक गर्म चाय का आदेश दिया और सामने पड़े स्टूल पर बैठ गया। ठंडी हवा के बीच चाय की भाप उसे कुछ राहत दे रही थी। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी ठंड में बाहर बैठकर चाय पी रहे हो बेटा? रमेश ने उनकी देखा, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रमेश ने हल्के स्वर में कहा, आप भी तो इस उम्र में इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं। बुजुर्ग धीमे से हंसे और बोले, मैं अकेला हूँ बेटा, न कोई घर की चिंता न कोई साथी, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। रमेश के मन का गुबार फूट पड़ा। उसने कहा, पत्नी जीने नहीं देती, हर समय झगड़ा, हर समय शिकायत, घर में शांति ही नहीं रहती, इसलिए बाहर निकल आया। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बरखुरदार, पत्नी जीने नहीं देती, पत्नी से ही जीवन होता है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रमेश अनायास ही उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वो धीमे स्वर में बोले, 8 वर्ष हो गए मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए। जब वो जीवित थी तब उसकी अहमियत कभी समझ नहीं पाया। उसकी छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था, लेकिन जब वो चली गई तब समझ आया कि घर की असली रौनक वही थी। उन्होंने कांपते हाथों से चाय का प्याला उठाया और आगे बोले, आज बड़ा घर है, धन दौलत है, बच्चे भी हैं, पर सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। घर अब घर नहीं लगता, बस दीवारें रह गई हैं। उनकी हंसी, उनकी डांट, उसकी चिंता, सब कुछ याद आता है। अब तो यूं ही समय काटने के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता हूँ। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश का हृदय भीतर तक कांप उठा। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी। समय पर खाना देना, उसकी चिंता करना, ठंड में गर्म कपड़े निकाल कर रखना। उसे एहसास हुआ कि जिन बातों को वो झगड़ा समझता था वो वास्तव में प्रेम और अपनापन थे। उसने तुरंत चाय के पैसे दिए और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते उसने देखा कि सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराए स्वर में बोली, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी, इतनी ठंड में बाहर घूम रहे हो, बीमार पड़ जाते तो? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों को क्षण एक दूसरे को देखते रहे। उस मौन में शिकायत नहीं थी, केवल प्रेम था। उनकी आंखों ने वो कह दिया जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। उस दिन रमेश समझ गया कि जीवन में सबसे अनमोल वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है। आशा करते हैं आप हमारी इन कहानियों के द्वारा समझ रहे होंगे, और जीवन में अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो कम से कम उस बदलाव को जरूर लाएंगे जो दोनों ने किए। कॉलेज का सभागार लोगों से भरा हुआ था। मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी मैरिड लाइफ। कार्यक्रम में कई शादीशुदा जोड़े शामिल हुए थे। माहौल बड़ा खुशनुमा था। पति पत्नी एक दूसरे पर मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी और पूरा हाल ठहाकों से गूंज रहा था। कुछ ही देर में मनोविज्ञान के प्रोफेसर मंच पर आए। उन्होंने देखा कि सभी लोग शादी को केवल मजाक और हल्के रिश्ते की तरह ले रहे हैं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, आज मैं आपको भाषण देने से पहले एक छोटा सा खेल खिलाना चाहता हूँ। सब लोग उत्साहित हो गए। सभी ने एक साथ पूछा, कौन सा खेल सर? प्रोफेसर ने सामने बैठी एक विवाहित महिला नीलिमा को मंच पर बुलाया। फिर उन्होंने उसे ब्लैक बोर्ड पर उन 25-30 लोगों के नाम लिखने को कहा जो उसके जीवन में सबसे अधिक प्रिय थे। नीलिमा ने सबसे पहले अपने माता पिता के नाम लिखे, फिर पति, बेटे, भाई, बहन, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा बोर्ड नामों से भर गया। अब प्रोफेसर बोले, इनमें से 5 ऐसे लोगों के नाम मिटा दो जिन्हें तुम सबसे कम पसंद करती हो। नीलिमा ने थोड़ा सोचा और अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने फिर कहा, और 5 नाम मिटाओ। इस बार उसने पड़ोसियों के नाम हटा दिए। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता गया। प्रोफेसर हर बार कुछ नाम मिटाने को कहते और नीलिमा भारी मन से वैसा करती जाती। अब उसने दोस्तों और दूर के रिश्तेदारों के नाम भी मिटा दिए। कुछ देर बाद ब्लैक बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे थे, मम्मी, पापा, पति और बेटा। पूरा हॉल अब शांत हो चुका था। सबकी निगाहें नीलिमा पर थी। अब ये खेल केवल उसका नहीं बल्कि वहाँ बैठे हर व्यक्ति की भावनाओं का हिस्सा बन चुका था। प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में कहा, अब इनमें से 2 नाम और मिटा दो। नीलिमा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई। उसने कई बार बोर्ड की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए उसने अपने माता पिता का नाम मिटा दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपने माता पिता का नाम हटा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ 2 नाम थे, पति और बेटा। प्रोफेसर ने एक बार फिर कहा, अब इनमें से 1 नाम और मिटा दो। ये सुनते ही नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक चुप खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल टूट चुका हो। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कांपते हाथों से अपने बेटे का नाम भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल एक नाम था, पति। पूरा सभागार बिल्कुल शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। प्रोफेसर ने नीलिमा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनका नाम मिटा दिया? और जिस बेटे को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया, उसका भी नाम हटा दिया? आखिर क्यों? नीलिमा ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी दुनिया बसा लेगा। शादी के बाद वो मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मेरे पति वो हर सुख दुख में मेरा साथ निभाएंगे। वो मेरे जीवन साथी है, मेरे आधे अंग की तरह है। जब तक मेरी सांस चलेगी, उनका साथ मेरे साथ रहेगा। इसलिए मेरे लिए सबसे अनमोल मेरे पति है। उसकी बात सुनते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम थी। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग होता है। ये केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का रिश्ता है। मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन साथी वो इंसान होता है जो अंत तक हमारे साथ चलता है। उस दिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने रिश्तों की गहराई को एक नज़रिए से, एक अलग ही नए नज़रिए से समझा। जो मजाक कर रहे थे कुछ देर पहले, वही रिश्तों की उन्हें समझ में आया कि सही में अगर हमें भी ऐसे खड़ा किया जाता तो हम क्या करते। शायद जो नीलिमा ने किया वही हम भी कर रहे होते। यानी हर रिश्ते में कहीं ना कहीं हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन जब गहराई से सोचे तो पता चलता है कि जिसके लिए मजाक कर रहे थे वही तो हमारा जीवन है। फिक्र चाहे किसी की करो या मत करो, मगर उनकी फिक्र सदा करो जिन्होंने तुम्हें बड़ा होने तक सदा हर बात से बेफिक्र रखा है। कलयुग बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आज का राम दशरथ को वनवास भेज रहा है। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। इसलिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। दिल का साफ इंसान गलती तो कर सकता है, पर किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़ने, हेलो हेलो, आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, और दुख पहुंचाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। ये बात को भी अपने जहन में बिठा लीजिए। प्यार कोई क्या ही आजमाएगा मेरा सब्र, मैंने तो मुस्कुराकर वो भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारा था। कहने का मतलब, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि लगता है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन मौका ऐसा आता है कि उसे भी छोड़ना पड़ता है। एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है, बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। काहे कि वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा दर्द दे जाते हैं कि जिंदगी में लगता कि इनसे नहीं मिले होते तो कितना अच्छा होता। आप सब भी जिंदगी के बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, और शायद आपको भी पता होगा कि बात बहुत सही है। हेलो, अरे भाई, फुनवा तो नहीं बजा, लेकिन हमारी दिमाग की खुपड़िया में ये समझ में आ गया कि 12 बज गया है, और हमारे को यहीं पर वाणी को विराम देना है। अगले शनिवार 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। एक संगीतकार के ऊपर सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। जैसे हरेक ऋतु अपने अपने रूप रंग से प्रकृति को सजाती है, वैसे ही एक संगीतकार भी संगीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन में चढ़ाई उतराई, गम हो या दुख, उसको भुलाने में सहायक होता है। तो ये भी तो दायित्व हो गया ना। इसलिए कोई संगीतकार राग परिवेशन करने के समय इस आलाप या विस्तार को यथावत प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं, तब वो राग संगीत निरर्थक हो जाता है। तो सोच लीजिए कि संगीत में इस आलाप और विस्तार का कितना महत्व है। तो आइए ऐसे ही संगीत के आलाप और विस्तार के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी और जितने सारे लिसनर है सबको नमस्कार करती हूँ
0: जी। आज यमन राग की श्रृंखला में ही आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: पहले एपिसोड में हमने विलंबित ख्याल जो है कराया है
0: जी।
1: उसका स्वरलिपि दे दिया, बंदिश भी दे दिया, थोड़ा बिस्तर भी दिखा दिया, लेकिन अभी उसके साथ सरगम भी थोड़ा करना है। कैसे करना है वो आज दिखाऊंगी। थोड़ा बिस्तर के साथ कैसे करना है, वो तो बिस्तर जेन्युइन जैसे होता है मैथमेटिकली दिखाया है, वो भी करना है तो वो भी दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले यमन राग के ऊपर मैं बहुत बहुत सुंदर एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: जरूर जरूर, आपके मुख से गीत सुनने के लिए हम हमेशा लालायित होते हैं।
1: ये जो गीत है 1942 लास्ट स्टोरी फिल्म है, उसी का गीत है।
0: अच्छा,
1: तो बहुत सुंदर है। लता जी ने भी निभाया है और कुमार शानू जी ने निभाया है, तो मैं दोनों को मिक्स करके करती हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि लता जी जो निभाया है उसमें थोड़ा ज्यादा सैडनेस है।
0: अच्छा।
1: मैं दोनों को मिलाकर करती हूँ, तो मेरे को इतना गम की अच्छा नहीं लगता है, दुख के लिए अच्छा नहीं लगता है। आनंद जो
0: मगर ये तो संगीत की विशेषता है ना श्यामली जी।
1: वो तो है ही
0: कि हमारे गम के पलों को भी वो प्रदर्शित करता है तो खुशी के पलों को भी।
1: मैं शुरू करती तो देखना कि वो भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ।

0: कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
1: बहुत सुंदर, सचमुच ऐसा लगता है कुछ कहो ही नहीं, बस सुनते रहो सुनते रहो। सचमुच।
0: तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा जो हमने विलंबित ख्याल किया था तो उसके साथ थोड़ा दिखाती हूँ बिस्तर कैसे होता है, इसके साथ ऐड करके कैसे द्रुत ख्याल भी होता है। विलंबित ख्याल तो खाली नहीं होता है, विलंबित ख्याल के साथ मध्य लय भी होता है, द्रुत भी होता है, कैसे उसके साथ जोड़ना है उसमें हम दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
1: जी जी
0: ठीक है
1: जी।

0: जैसे पिछले एपिसोड में हमने दिखाया ग्रामेटिकली मैथमेटिकली थोड़ा एक एक मात्रा करके दिखाया जो कंटेस्ट हो सकता है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये गुरु से शिक्षा लेना है
1: जी।
0: जब ये पहले जो हमने जो बिस्तर सिखाया था वो अगर कंटेस्ट कर लेंगे कुछ दिन के बाद ये भी सीख जाएंगे। सुनते सुनते पहले शायद आपको सबको बताया कि 80% सुनना है,
1: लिसनिंग पावर जी,
0: हाँ 20% गाना है, संगीत परिवेशन करना है, लेकिन 80% सुनना है। सुनते सुनते सुनते सुनते उसको अंदर भर जाएंगे, जब तक अंदर नहीं भरेंगे वो बाहर कैसे आएंगे
1: जी जी।
0: हर किसी में पढ़ाई भी जब तक वो अंदर नहीं भर सकते हैं,
1: माना समझना है और फिर
0: हाँ समझ कर ज्ञान क्या है, ज्ञान एक्चुअली समझ है। जब तक संगीत ज्ञान, पढ़ाई के ज्ञान, कुछ भी विज्ञान कुछ भी है, वो ज्ञान अगर समझ में नहीं बदल जाते हैं, जब तक समझ में नहीं आते हैं तब तक वो नहीं कर पाएंगे,
1: नहीं कर पाएंगे।
0: इसलिए हमने थोड़ा ये एग्जाम्पल दिया है
1: जी।
0: इसके बाद हम थोड़ा दिखाएंगे कि तान कैसे दुगुन चारगुन करना है।
1: तो श्यामली जी इसी विस्तार के साथ आज लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में सुनेंगे यमन राग से संबंधित एक प्यारा सा गीत। सभी श्रोता मित्रों आप इस गीत का आनंद लीजिए, फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने यमन राग से संबंधित एक प्यारे से गीत का आनंद भी लिया होगा और ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से अ लव स्टोरी 1942 का गीत भी सुना और विस्तार के बारे में भी जाना।
1: हाँ,
0: श्यामली जी आगे आप हमें क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसे हमने बिस्तर किया है, बिस्तर के बाद हमको सरगम करना है। जैसे द्रुतम मध्यलय में भी सरगम तान होता है, इसमें भी करना है। जैसे तान एक दो तीन चार एक एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा में एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे चलेंगे। वो 48 मात्रा जो हमने पहले बताया था वैसे चलेंगे। फिर हमको मुखड़ा पकड़ना है, उसके बाद एक मात्रा में चार मात्रा एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसे चलेंगे।
0: अच्छा,
1: सरगम भी ऐसे बोलना
0: माना पहले एक दो फिर एक दो तीन चार
1: ऐसे। अच्छा। बीच में अगर कोई कर सकते एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ये भी कर सकते हैं, लेकिन
0: माना ग्रेजुअली बढ़ना है।
1: ग्रेजुअली बढ़ना है
0: जी।
1: तो कैसे करना है, पहले एक बार एक मात्रा में दो सरगम करेंगे और एक मात्रा में चार सरगम कैसे होता है
0: जी जी।

0: अगर लिसनर थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो देखो नी रे गा रे एक दो छंद है
1: जी जी।
0: उसमें अभी क्या करने, चार छंद कैसे होता है,

0: にでさ、さにだぱまだぱまがりにでがりにでさ、ががりさにでさにだぱまだぱまがりにでがりにでさ、ががりさにでさにだぱまだにさ、ががりさにでがまぱだぱまがりにでがりさ、みらあまねば。जैसे हमने किया है नीरे गाड़ी नीरे सा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, छंद ऐसे चलेंगे। अभी तो ताल नहीं है, ताल के साथ इसको करना है, जब मुकड़ा आएंगे तब करना है। मैं थोड़ा बताया कि कैसे करना है।
1: जी जी,
0: जैसे चार जो है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, नीरे गाड़ी नीरे सा, गा गा रे सा, नीरे गा मा पा धा पा मा गा रे, नीरे गाड़ी नीरे सा, सा नी धा पा मा गा रे, नीरे गाड़ी नीरे सा, नी धा पा मा धा नी सा, गा गा रे सा, ये जो है चार चार करके है।
1: जी जी,
0: तो इतना तो जल्दी नहीं होगा, ये करना है करके,
1: मैंने जितना अभ्यास करेंगे और इस प्रकार से ताल इसको मिला के
0: जब सामने होता है, इतना रेडियो के थ्रू में नहीं होता है, तब भी जितना होता है मैं सिखा रही हूँ। अभी देखो, जब ये खत्म हो जाएगी, इसके साथ मध्य लय जो है, द्रुत ख्याल जो है, कैसे जुड़ना है थोड़ा सुनाती हूँ। ठीक है
1: जी।

0: आज आपने जो अभी हमको सिखाया उसमें तो बहुत मेरे को लगता है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी,
1: बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है,
0: क्योंकि आप तो कंटिन्यू ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
1: ये तो आपको थोड़ा सा नमूना कुछ बोलती हूँ उसके साथ करना है, तब भी हैंड्स नहीं है, सुर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन थोड़ा तो रिवर्स करना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होगा। रिवर्स करना जरूरी है
0: क्योंकि ये कंटिन्यूएशन जो आपने
1: पहले विलंबित जो ख्याल करना है उसके साथ पहले तो थोड़ा सा अलग करना है, विलंबित ख्याल की जो मुक्रा से लेकर पूरा बंदिश करना है उसके साथ सरगम भी करना है, बिस्तर भी करना है, उसके साथ अंतरा जो है अंतरा भी करना है, उसको भी बिस्तर है सरगम है, करने के बाद आकर सहयोग से वो भी करना है, उसके बाद ये जो द्रुत लय के जो बंदिश है वो करने के बाद सरगम करने के बाद एक ख्याल समाप्त होता है।
0: अच्छा,
1: कोई राग की ख्याल परिवेशन करना है तो ऐसे करना है। ओके
0: जी जी, तो अब श्यामली जी जैसे शुरुआत में आपने हमारे मन को आनंदित किया ऐसे जाते जाते भी आज कुछ सुनाएंगे?
1: हाँ जी, वो तो सुनाना ही पड़ेगा। आप इतना रुचि से सुनते हो तो अच्छा लगता है। तो अभी एक फिल्म है कभी कभी,
0: अरे वाह सुंदर, बहुत ही फेमस
1: यमन राग के ऊपर है, मैं करके सुनाती हूँ, ठीक है
0: जी।

0: मेरे भी दिल में ख्याल आता है कभी कभी
1: कि सच में
0: सारे जितने भी पुराने गाने
1: के ऊपर इतना अच्छा अच्छा गीत है।
0: श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या कोई जानकारी हासिल करना चाहते हो तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 94-1415-1415। इसी के साथ दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत थलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दें और तारों को दिन में दिखा दें। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। आज जब सब न्यूक्लियर परिवार के ढांचे में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य साथ साथ, यानी 16 अलग अलग स्वभाव, 16 अलग अलग अनूठे कैरेक्टर और 16 अलग अलग कहानियां। आइए मिलते हैं राठौड़ परिवार के पहले सदस्य, घर के सबसे बड़े भाई यानी बच्चों के ताऊजी श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ से। ये आदर्शवादी, आशावादी, बात सभ्यता से करते हैं, स्कूल टीचर हैं, संस्कारों से इनके दिन रात चलते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, और भाई इनके बिना गजेंद्र सिंह जी कहां पूरे होते हैं। साथ में मिलिए गजेंद्र सिंह जी की धर्म पत्नी श्रीमती चंद्रावती राठौड़ से, जो बात बात पे नाक चढ़ाती हैं, खबर ये सब की रखती हैं, पल में तोला, पल में माशा, पल पल में रंग बदलती हैं।
1: ठीक है, लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार, क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है।
2: अंकल हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
2: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौड़ परिवार के, एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है लेकिन इनका ब्रेक।
4: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा आ गई।
3: अरे आ रहा हूँ, क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
4: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेठ की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती हैं। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
5: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
6: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, मुझे आज पार्टी में भी जाना है।
7: शांति शांति शांति शांति।
6: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
7: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं, क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु, माफ करना। मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान, माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
0: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं, छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े, थोड़े से हैं जिम्मेदार। जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
8: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
9: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन...
8: लेकिन क्या?
9: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
8: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
9: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलू प्लीज?
8: बोल बेटा बोल।
9: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
8: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
9: अरे चाचू मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
0: बचपन किसी पौधे की तरह होता है, अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो वहाँ तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बा मुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त। किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल, पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
10: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं। चल राजकुमारी फिर से सारा काम कर।
11: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
10: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
11: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
10: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
0: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से। मिल्का से जूझ करता हूँ मैं भी सलाम।
12: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री, अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
13: डैड व्हाट हैपेंड?
12: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
13: ये श्री कौन है डैड?
12: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
13: अरे डैड वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है, आपके वाले बजट फोन में नहीं।
12: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
14: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी, मैं दिलाऊंगा ना इसको मेरी प्यारी पोती को।
12: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
14: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
12: जी पिताजी बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ

0: आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
1: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर? आइए चलिए देखते हैं।
2: मैडम, 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
0: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
3: राजकुमारी।
0: राजकुमारी,
4: राजकुमारी,
3: राजकुमारी।
5: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
6: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
5: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
7: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग। दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा?
8: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाया भाई साहब।
9: कौन बोलते रहे?
10: अरे फिर मंगवाया किसने?
11: मुझे
9: रहते हो
10: नहीं, वापस कर दो उसको।
11: नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
7: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
1: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोक झोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
12: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादीजी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊजी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताईजी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह हम आपके पास लेकर आए हैं यह कार्यक्रम, जहां पर हम बात करते हैं हमारे ही समाज के वरिष्ठ जनों से। और आज ऐसे ही एक वरिष्ठ जनों का जोड़ा हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारा है, जो आकरा भट्टा आबू रोड में रहते हैं और जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जब हम इन्हें बुलाते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर, तो कुछ प्रेरणाएं इनके जीवन से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की इनकी जीवन यात्रा रही है, कौन सा संघर्ष इन्होंने किया है और कौन सी उपलब्धियाँ पाई हैं, कौन सी खुशियों को साथ में जिया है और कौन से प्रयासों को साथ में किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इनके बचपन की ओर। दिलीप जी, कैसे महसूस कर रहे हैं रेडियो मधुबन पे आकर आज?
2: रेडियो मधुबन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत पुराने समय से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी।
2: और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर।
0: बहुत खुशी हुई जानकर। रेखा जी, आप कैसे हैं?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और एक अलग तरह से मतलब शांति महसूस होती है।
0: जी।
1: और जब एक बार आते तो फिर इच्छा होती है कि अपन इसमें बार बार आते रहे।
0: बहुत अच्छा लगा जानकर। वैसे रेडियो मधुबन का लक्ष्य भी है कि मूल्यों को बढ़ावा देना, तो जैसे आपने शांति की अनुभूति की है, ऐसे आपके जीवन में से कुछ ऐसे मूल्य हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आपकी ओर। आपका जन्म कहाँ पर हुआ?
1: मेरा जन्म राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट जावलगांव
0: पे हुआ। और बचपन जो है हमारे पूरे जीवन का फाउंडेशन होता है, नींव होती है। जब बच्चा पहली बार आँख खोलता है तो वो अपनी माँ को देखता है और पिताजी को देखता है, फिर धीरे धीरे परिवारजनों से परिचित होता है, फिर दोस्त, फिर आगे की यात्रा पे चलता है। तो अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए।
1: माता पिता के बारे में तो बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होते
0: जी।
1: तो अपने आप में एक सबसे बड़ा, मेरी मम्मी का नाम अमरती देवी है, वो हाउस वाइफ है, और पिताजी है वो केमिस्टर है, मेडिकल शॉप है, और हम तीन बहने हैं और एक भाई है
0: जी,
1: जो 2021 में कोरोना के अंदर ऑफ हो गए
0: जी। तो आप, जैसे आपका जन्म हुआ तो फिर सबसे पहले हम माता पिता की ओर देखते हैं और कुछ ना कुछ उनके जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कौन सी एक बात आप बताने चाहेंगे अपनी मम्मी के बारे में जो आपको बहुत पसंद आती है?
1: हमारे मम्मी ने हमको संघर्ष करना सिखाया है, और खुशियाँ दो और खुशियाँ लो।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि परिस्थितियां तो आती रहती हैं,
1: परिस्थितियों के साथ में हिम्मत रख के उसका सामना करो
0: जी। और पिताजी से क्या सीखा आपने?
1: पिताजी से तो वही है कि बस वही है, बेटा अपने रिश्ते निभाते रहो
0: जी,
1: और सबको अपना बनाने की कोशिश करो।
0: देखिए, कितनी दो खूबसूरत बातें आपने बताई कि ये जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके जीवन के लिए एक महामंत्र का काम कर सकते हैं कि संघर्ष भी करो, सबको अपना बनाओ और साथ में खुशियाँ दो और खुशियाँ लेते रहो। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में?
2: मेरे पेरेंट्स ने हमारे को बहुत ही अच्छी तरह रखा है।
0: जन्म कहाँ पर हुआ आपका?
2: जन्म मेरा माउंट आबू में हुआ है
0: जी।
2: और बाबा से भी हमारा, मतलब मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था।
0: अरे वाह।
2: और हम लोग एक तरह से उस समय संपन्न परिवार से थे, तो हमारे पिताजी ने और हमारे दादाजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है और हमारे को हर खुशियाँ दी है।
0: गुणों की बातें बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे माताजी या पिताजी की ओर देखते हैं तो कौन सी बातें वो आप उनसे सीखते हैं?
2: हमारे पिताजी, सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल और बढ़िया व्यवहार था,
0: सम्मानजनक था।
2: हाँ, सम्मानजनक व्यवहार था और वो किसी को भी कम नहीं समझते थे, सभी समान भाव से थे
0: जी।
2: वो हर किसी को के साथ घुल मिल जाते थे और यही हमारे को शिक्षा दी है कि आप किसी का भी बुरा मत सोचो और बुरा मत करो।
0: अरे वाह।
2: सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप अपना मन साफ रखो और अपने मन से सबका अच्छा करो।
0: बहुत अच्छी बात है कि ये जो आजकल जब कहते हैं, मैं कुछ बीच में कुछ एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर एक माता पिता जिनकी चार बच्चियाँ हैं और चारों बच्चियाँ बहुत नाम कमा रही हैं पूरे देश में, भारत में, तो उनके माँ बाप से एंकर पूछता है कि ये जो चार बच्चियाँ हैं आपने इनको क्या ऐसा सिखाया कि ये दुनिया में इतना नाम कर रही हैं, सिर्फ बच्चियाँ ही हैं उनके घरों में, तो उनके पिताजी कहते हैं कि बच्चों को अगर हम पैसा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा उनका, या कुछ और संपत्ति दे देंगे तो वो भी आ सकती है जा सकती है, लेकिन आप अगर बच्चों के अंदर मूल्यों की शिक्षा देते हैं, उनको वैल्यूज सिखाते हैं, तो अगर संस्कार देते हैं तो फिर संस्कार जो है उनको अपने आप अपने जीवन में खड़े रहने का आधार बन जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बात उन्होंने इतने एक दो लाइन पर कह दी कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए। तो आपकी जब यात्रा आगे बढ़ी, आपने अपने संस्कार सीखते गए आप माता पिता से, फिर पहली बार स्कूल कब गए और वहाँ पर कौन से दोस्त आपके बने, आपको याद है कोई?
2: ऐसा तो ध्यान नहीं है, लेकिन स्कूल समय में भी बहुत ही अच्छी तरह, मेरे को एक चीज़ ध्यान है अभी भी
0: जी,
2: मैं बाल मंदिर में जब जाता था तो मेरे को मेरे दादाजी छोड़ने जाते थे,
0: ओके,
2: ग्रैंडफादर वो छोड़ने जाते थे, और उस समय माउंट आबू में नीरा की बोतल आती थी, नीरा उस समय खजूर का जो होता है ना,
0: okay,
2: नीरा बोलते थे हम, हाँ, उसकी बोतल वहाँ बिकती थी, और वो हमेशा मेरे को वो दिला के और फिर छोड़ने जाते थे, और लेने भी वो खुद आते थे मेरे दादाजी, मतलब इतना उनका वो था।
0: दादाजी का क्या नाम था आपके?
2: दादाजी मेरे राम प्रताप जी।
0: राम प्रताप जी, तो हमारे जो श्रोता माउंट आबू से सुन रहे होंगे जरूर उनको उनका चेहरा याद आ रहा होगा, हाँ। जो उनको जानते होंगे। दादाजी को भी हम सलाम करते हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी से। और मैं ही पूछना चाहूँगा, जैसे स्कूल आज भैया आपके भी नाती पोते होंगे, वो भी स्कूल जाते होंगे, और आप कभी एक समय पर स्कूल जाते थे, तो क्या बदलाव देखते हैं आप शिक्षा व्यवस्था में, उस समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था में?
2: उस समय किसी पे कोई दबाव नहीं था, ना तो कोई कैरियर का ना कोई पढ़ाई का, मस्त रह के पढ़ाई भी करते थे, खेलते कूदते भी थे, और बहुत एंजॉय के साथ में जिंदगी गुजारते थे, शिक्षा लेते थे।
0: अभी आप दबाव देखते हैं बच्चों में?
2: अभी बच्चों पे बहुत दबाव है।
0: तो ये दबाव कौन डालता है, स्कूल डालता है या माता पिता डालते हैं या बच्चा खुद ही लेता है?
2: सामाजिक रूप से ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि बच्चा और माता पिता दोनों ही अपने आप पे दबाव लेते हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें, कि अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं
2: जी,
0: तो शिक्षा व्यवस्था कैसे दिलवाएं उनको?
2: बच्चों को बिल्कुल फ्री माइंड से आप ना तो उनके ऊपर ट्यूशन का दबाव डालिए, ना उनके ऊपर पढ़ाई का, नेचुरल रूप से जो खेलकूद के साथ में जो पढ़ाई करते हैं उनका नेचुरल रूप से विकास होने दीजिए,
0: नहीं तो फिर बचपन से ही उनको स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कैसे थे पढ़ाई में, जब शैतानी करते थे, घूमने जाते थे, या फिर बहुत पढ़ाकू थे?
2: मैं शैतानी के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था।
0: अरे वाह,
2: शैतानी भी करता था, खेलकूद में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था।
0: कोई ऐसी घटना जो आपको याद आती है, बहुत अच्छी लगती है आपको बचपन से स्कूल से?
2: बहुत सारी घटनाएं हैं वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं निर्मला स्कूल में पढ़ता था, उस समय मतलब खेलकूद और इतना हम लोग करते थे, वहाँ की कोई सीढ़िया थी, 10-12 सीढ़िया, तो सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे, जब भी वो 10-12 सीढ़ियों से छलांग एक साथ लगा लेते थे मतलब
0: जी।
2: वो आज जब हम सोचते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा एथलीट भी उस
0: कल्पना से बाहर हो जाता,
2: हाँ, उस छलांग को नहीं लगा सकता।
0: बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ बचपन में जो हमने ऐसा किया है उछल कूद,
2: हाँ,
0: उस कारण से हमारी शरीर भी और मन भी दोनों अभी भी स्ट्रांग रहते हैं,
2: बहुत स्ट्रांग है,
0: स्ट्रांग रहते हैं।
2: अभी भी मैं माउंट आबू में था, जब मैं ट्रैकिंग सुबह 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था
0: जी जी,
2: और जो अपने प्रताप भाई जो पांडव भवन में गार्डन
0: अच्छा,
2: देख रेख करते
0: जी,
2: हैं जी, वो भी मिलते थे और हमारा मतलब 15-20 मिनट उनके साथ
0: वार्तालाप
2: होता था, बाकी 1.5 घंटे हम ट्रैकिंग करते थे।
0: बहुत बढ़िया, तो ये एक भी एक आपके जीवन से एक पिक करने की बात है जो हमारे श्रोता नोट कर सकते हैं, कि जो ट्रैकिंग करना सुबह सुबह 2 घंटे

0: अच्छी रही जवानी में। थोड़ा सा जब बिजनेस वाली जो उम्र होती है
1: जी, जी
0: उसमें कोई दबाव नहीं था, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो गया था हमारा, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा।
1: कौन से साल में आपने आरंभ किया था बिजनेस?
0: बिजनेस वैसे तो हमारा मतलब फादर बिजनेस था,
1: पुश्तैनी था
0: तो 84 से ही लगभग मैं
1: अरे वाह
0: इसमें जुड़ा हुआ हूँ
1: जी,
0: 83-84 से ही
1: जी,
0: लेकिन 91 में मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद मैं पूरी तरह से इसमें जुड़ा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे
1: उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं,
0: मतलब 4-5 साल तो बेस्ट रहा, उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो पिताजी के और दादाजी के थे कि अपना किसी का बुरा नहीं करना, चाहे कोई अपना कितना भी बुरा करे
1: जी जी,
0: अपना अपने किसी का बुरा नहीं करना, तो उसी थीम पे चल रहे थे और हमारी नियत साफ थी, तो हम उस संघर्ष में से निकल के और वापस आज उससे ज्यादा ऊंचाई पे हम पहुंच गए
1: जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करते हुए। ऐसे कहा भी जाता है कि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, है ना? तो ऐसे ही इस गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खूबसूरत युगल कहेंगे आबू रोड आकरा भट्टा से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। उनसे फिर बातचीत करेंगे, तब तक सुनिए यह प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं कुछ ही पल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दोस्तों, फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी। हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में उनसे उनके जीवन के बारे में। तो रेखा जी, आपकी ओर चलते हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, भारत में तो नारियों को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है, तो आपको माता पिता ने कैसे बड़ा किया, किस प्रकार के संस्कार दिए और क्या सिखाते थे वो?
2: मारे को मम्मी और पापा ने दोनों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत मतलब कभी लड़की और लड़कों के अंदर कभी भेद नहीं रखा।
1: अरे वाह।
2: और उस टाइम जब कोई लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, उस टाइम मेरे को ग्रेजुएशन करवाई।
1: ग्रेजुएशन पढ़ाई की आपने? कहाँ पर पढ़ाई हुई आपकी?
2: मेरी पढ़ाई सिरोही कॉलेज में हुई है।
1: अरे वाह। तो घर से सिरोही तो मेरे ख्याल से दूर रहता
2: होगा, 15 किलोमीटर है।
1: तो कौन कैसे जाते थे आप?
2: बाय ट्रैवलिंग और बाय कार अपनी।
1: अच्छा, ड्रॉप करते थे या तो फिर?
2: उस टाइम लड़कियों को स्कूल भेजना भी मतलब इतना नहीं समझते थे, लेकिन उस टाइम भी मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कॉलेज की पढ़ाई करवाई, जो जिसका आज मेरे को उसको लगता है कि
1: खुशी मतलब होती है,
2: खुशी होती है
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: क्योंकि टाइम निकल जाता है लेकिन आप फिर वो चीजें हासिल नहीं कर सकते।
1: हाँ, उस समय अगर छूट गया होता, जो बहुत सारे लोग आज भी पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको देख करके लगता है कि ये क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से जो प्राप्ति होती है वो एक व्यक्ति जो जिसने शिक्षा प्राप्त की वही बता सकता है,
2: वही बता सकता है वो सब चीजें। तो कभी लड़की और लड़के वाला तो मैटर था ही नहीं, हमेशा अच्छे से अच्छा पढ़ाई और अच्छे से अच्छे संस्कार दिए।
1: भी जैसे जो आपने सीखा है, मैं समझता हूँ अपने बच्चों के अंदर भी उन चीजों को बीज बोने का प्रयास आपने जरूर किया होगा।
2: बच्चे को भी हमेशा उसको पढ़ाई में आगे रखा है। बच्चे ने भी IIT को करा, फिर MBA करा कैट के थ्रू। तो वो आज मैं खुद पढ़ी लिखी थी इसलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकी,
1: इतनी प्रेरणा दे सके उनको,
2: क्योंकि पढ़ाई की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत है
1: जी। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, फिर आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो कब आरम्भ हुआ, कौन सा सन था वो?
2: 94
1: में आपका विवाह हुआ। तो माँ के पिताजी के छांव में रहना और फिर एक नए परिवार के अंदर जाना, ये जैसे भारतीय जो जीवन पद्धति है इसमें बहनों माताओं के जीवन में ये एक बदलाव देखा जाता
2: है, होता है
1: बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो एक नए परिवार में, नए माहौल में जाना, वहाँ की चुनौतियों को समझना और लोगों से मेल जोल करना, उसमें कितना समय लगा आपको और क्या क्या आपको लगा कि एक बच्ची को इसमें परिवर्तन लाना पड़ता है अपने अंदर?
2: उसमें उसको बहुत सी परेशानियाँ भी आती है और बहुत कुछ मतलब सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है,
1: सहन शक्ति
2: सबसे बड़ी चीज
1: जी,
2: और कुछ अपनी खुशियाँ भी खोनी पड़ती है।
1: हाँ, आपने एक तो परिवार को आप छोड़ के आने पड़ते हैं, फिर जिस माहौल में आप बड़े हो रहे हैं वो भी होता है,
2: बहुत सी बातें होती है इसके लिए। तो लेकिन खैर अभी तो जैसे आजकल तो क्या सब चीजें फ्रेंडली हो गई है तो बहुत फर्क पड़ता है अभी तो फिर, लेकिन पहले के टाइम में तो बहुत लड़कियों को बहुत त्याग करना पड़ता है,
1: त्याग करना पड़ता था। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता में बहनें सुन रही हैं, बच्चियाँ सुन रही हैं, कई ऐसी बच्चियाँ भी होंगी जो जिनकी शादी होने वाली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई होगी और उनको वहाँ पर मैच करने में, वहाँ पर जुड़ जाने में चुनौती आ रही होगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: देखिए, चुनौतियाँ तो मेरे हिसाब से कहूँगी तो पहले ज़्यादा होती थी, आजकल चुनौतियाँ कम होती है क्योंकि आजकल मतलब मोबाइल जैसी एक सुविधा हो गई तो उससे क्या हर चीज़ पहले ही अपन समझ सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है,
1: फिर समझ जाते हैं पहले से,
2: पहले से अपन बहुत सी बातें सीख जाते हैं, समझ सकते हैं वहाँ के माहौल को। और फिर एजुकेशन के मामले होता है तो फिर लड़कियाँ पहले वाली बातें अब नहीं रहती, पहले तो क्या एक फोन करना भी मतलब गलत समझा जाता था।
1: अच्छा, अपने मायके में बात करना भी मुश्किल होता था।
2: तो आजकल तो अभी इतनी चुनौतियां नहीं रहती लाइफ के अंदर।
1: अच्छा, पर कहना क्या चाहेंगे हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे?
2: सबसे बड़ी होती है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग, जो जैसा है उसको मतलब उसको समझने की कोशिश कीजिए आप।
1: इससे क्या फायदा होता?
2: इससे ये होता है कि आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार नहीं टूटता। एक दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, सबकी भावनाओं की इज्जत कीजिए, बस
1: उनकी भावनाओं की हम सम्मान करना उनको बहुत जरूरी है। तो आप जब यहाँ पर आए तो पहली बार आप माउंट आबू पहुँचे या आबू रोड?
2: नहीं, पहले इधर ही आई थी शादी करके, फिर उसके बाद हम लोग माउंट आबू गए थे,
1: आबू रोड में पहले आए। तो जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, फिर एक संतान का फिर जन्म होता है, परिवार में आता है, फिर एक और नया बदलाव जीवन में महसूस होता है, एक जिम्मेदारी तो है ही है, और ऐसी जिम्मेदारी होती है जैसे पहला बच्चा होता है तो अनुभव ही नहीं होता है अपने पास। तो बच्चों को बड़े करने के बारे में क्या अनुभव?
2: देखिए, बच्चों को बड़े करने में तो क्या, जॉइंट फैमिली होती है तो इतना अपने ऊपर नहीं रहता। जैसे मम्मी होते हैं तो वो संभाल लेते, दीदी
1: सासू माँ जी
2: वो संभाल लेते, तो जॉइंट फैमिली में तो ये सब चीजें कोई अपने को इतनी महसूस नहीं होती है। अकेले होते तब फिर ज्यादा रहता है अपने।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, किस प्रकार से एक नारी जीवन की प्रेरणाएं आपने रखी कि इसमें भी मूल्यों का कैसे समावेश हो सकता है, और मूल्यों के आधार पर एक दूसरे को समझने के आधार पर हमारे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि एक वैवाहिक जीवन के सफल होने के पीछे किस प्रकार की धारणाओं का रोल रहता है?
3: वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को, दोनों को आपस में एक दूसरे को तो समझना ही होता है, और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र तो करनी ही पड़ती है, उसके अलावा भी पूरा परिवार साथ में होता है,
1: परिवार भी होता है, सही बात है,
3: तो परिवार को भी देखना पड़ता है।
1: एक पति की क्या चुनौतियां होती हैं, क्योंकि उसको अपने जीवन साथी जिसके साथ पूरे जीवन आगे बढ़ना है वो भी साथ में होते हैं, साथ साथ में वो परिवार होता है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया है, तो इस दोनों में बैलेंस करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े आपको?
3: पति के लिए, पत्नी अपना घर बार अपने माता पिता को छोड़ के आती है
1: जी,
3: और नए माहौल में ढलने के लिए
1: प्रयास कर रही होती है,
3: तो उसको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है
1: जी। और परिवार?
3: परिवार तो है ही साथ में, परिवार को भी उसको एडजस्टमेंट करके और
1: आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको? उन्हें
3: मेन रूप से यही है कि आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, उनको समझो और
1: आगे
3: फिर आगे बढ़ो।
1: बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी, और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी, जो आकरा भट्टा आबू रोड से रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं सर, और जैसे बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत हो रही थी, तो ये एक दूसरे का परिपूरक है कि एक जीवन हम घर के अंदर जी रहे होते हैं और एक और जीवन होता है जो हमें समाज के साथ जुड़ाव में आगे बढ़ना पड़ता है, और इसी बीच बच्चे का आगमन होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो बच्चे को बड़ा करने के कोई ऐसे बात आप बताना चाहेंगे जो आपको अच्छी लगती है कि हम आपके बच्चे को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इसकी परवरिश ये वाला पक्ष बहुत अच्छा रहा?
3: बच्चे को खुले वातावरण में ही उसकी परवरिश करनी चाहिए
1: जी,
3: उस पर किसी तरह का दबाव, आज के माहौल में किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए आपको।
1: आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, आपने बताया IIT किया, फिर मैनेजमेंट भी किया उन्होंने, और एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा?
3: उसमें तो सबसे ज़्यादा उसकी माताजी का योगदान रहा।
1: अरे वाह जी,
3: और उसके बाद फिर परिवार का।
1: आप खुद एक बिजनेस फैमिली से हैं, और बच्चे को आपने, ज़्यादातर बिजनेस फैमिली के माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे साथ हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए, पुश्तैनी कारोबार को अपना ले, हमारे साथ ही रहे, तो आपने बड़ी हिम्मत करके उनको और भी आगे जाने का प्रेरणा दी है
3: जी। इसमें दो कारण है, एक तो हम लोग शुरू से बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में अपने स्वयं के लिए समय थोड़ा सा कम होता है।
1: ओके।
3: और प्रशासनिक परेशानियां पर्टिकुलर राजस्थान में बहुत ज्यादा
1: आती रहती हैं जी,
3: हर तरह की प्रशासनिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं
1: जी,
3: तो ये दो कारणों की वजह से
1: हमको लगा कि
3: अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में जाता है या और कुछ काम करता है तो उसको उसके लिए भी समय मिलेगा, हमारे लिए भी समय मिलेगा।
1: बधाई हो आपको कि आपने जो आपका संकल्प था उसको पूरा किया और उसी मार्ग पे वो आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के अंदर जब हम एक युगल के रूप में भी चल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए, और कुछ समय पहले जैसे जिक्र किया था रंजी ने कि संयुक्त परिवार के फायदे होते हैं, तो ये संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें सफल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे परिवार अभी एकल परिवार एक शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि छोटे छोटे परिवार है, दो लोग रह रहे हैं, तीन लोग रह रहे हैं, एक फैमिली उधर रह रही है, तो वो फैमिली भी अलग अलग, शायद सहन शक्ति की बात पड़ी थी, तो सहन शक्ति की कभी कमी हो जाती है, कभी एक दूसरे को भावनाओं को समझना या सम्मान देने में कमी हो जाती होगी, तो संयुक्त परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
3: संयुक्त परिवार तो जब भी चल सकता है और बहुत ही अच्छा है, अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं
1: जी।
3: तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयुक्त परिवार जब ही चल सकता है जब आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, थोड़ा सा त्याग भी करना होता है आपको, और भावनाओं की कद्र भी करनी पड़ेगी और त्याग दोनों चीज है।
1: त्याग एक नई वैल्यूज अभी आपसे बातचीत में निकल के आए कि त्याग करना भी आवश्यक है, कि त्याग नहीं करेंगे फिर सिर्फ प्राप्ति की आस रखेंगे तो फिर संयुक्त परिवार
3: में
1: परेशानी आ सकती है
3: जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और हम बातचीत कर रहे थे कि पारिवारिक जीवन के बारे में, जो दिलीप जी और रेखा जी ने हम सबको कुछ ना कुछ अपने जीवन के अनुभवों को संदेश के रूप में सुनाया, और जरूर आप भी इसको नोट कर रहे होंगे। तो अभी एक जो नई वैल्यू आई वो हो गई त्याग। तो और भी बातें करेंगे, फिर लौट कर आएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी जिंदगी। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी जिंदगी का कार्यक्रम, और हमारे साथ मौजूद हैं एक युगल जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी। आइए उनसे आगे की बातचीत करते हैं। तो सर, हमने आपके बचपन के बारे में बात किया, युवा काल, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संयुक्त परिवार, काफ़ी सारे विषय आपने रेखांकित किए हैं। अभी चलना चाहेंगे, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जीवन की सत्यता है कि धीरे धीरे वार्धक्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनकी उम्र किसी के 80-90 साल भी हो गई है और एकदम युवा प्रतीत होते हैं। शरीर से ही नहीं बल्कि विचारों से और उनके कर्मों से भी वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया है। कई बार कुछ साथी हमारे यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि ये चीज़ अगर मैंने उस समय ये ठीक की होती तो अभी ये तकलीफ नहीं होती है। जो वरिष्ठ जन हैं उनकी भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी एक दिन अगर अभी युवा हैं तो वो भी वरिष्ठ जन में बदलाव का सामना करेंगे, तो बुजुर्ग होने से पहले किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए?
3: भारतीय परिवेश में जो खान पान है वो बहुत अच्छा है।
2: अरे भाई,
3: लेकिन अपन लोग ज़्यादातर वो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान खाने लग गए हैं अभी।
2: कुछ लोग खाने लग गए,
3: कुछ लोग ज्यादातर लोग कह सकते होगा। तो वो एक तो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान छोड़ के जो अपना नेचुरल खान पान है वही अपने को अपनाना चाहिए। पूर्ण रूप से वो खान पान अगर अपन खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आधा स्वास्थ्य तो उससे अपना बेटर हो जाता है,
2: बेहतर रहता है।
3: और उसके अलावा अपनी भारतीय संस्कृति में योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है।
2: जी जी,
3: तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ साथ होती हैं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
2: आप अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करते हैं, जो सुबह उठने से सोने तक का समय कैसा रहता है?
3: मैं सुबह उठ के 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है।
2: कितने बजे उठते हैं?
3: अभी तो मैं लेट उठ रहा हूँ, 7 बजे।
2: ओके।
3: पहले मैं 5:30 बजे उठता था,
2: उठ करके ट्रैकिंग पे।
3: हाँ, और 2 घंटे ट्रैकिंग जाते थे।
2: उससे फर्क पड़ता है कुछ?
3: उससे तो बहुत फर्क पड़ता है, पूरा दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर के अंदर आती है।
2: अच्छा, और फिर आगे का दिन?
3: आगे का दिन तो फिर वही जो रूटीन दिनचर्या है, मतलब नाश्ता करना, फिर दुकान।
2: नाश्ते में क्या लेते हैं ज्यादा?
3: नाश्ते में सब अपना भारतीय फूड, जो भी रोटी, चपाती, परांठा, सब्जी
2: जी,
3: ग्रीन सब्जी, यही ज्यादातर होता है।
2: फिर दुकान पे जाते
3: हैं? फिर दुकान पे जाते हैं, दुकान पे भी नॉर्मल रूप से अपना जो काम होता है वो सब करते हैं। फिर वही है, शाम को दुकान।
2: रेस्ट करते हैं दोपहर को?
3: नहीं, दोपहर में रेस्ट नहीं होता है।
2: नहीं करते हैं, वेरी गुड। बहुत मतलब कार्य को पसंद करने वाले व्यक्तित्व लग रहा है आपका।
3: हाँ, क्योंकि जो नाइट की नींद है 10 से 7 बजे तक या 5:30 बजे तक 7 घंटे की नींद हो जाती
2: अच्छी
3: है,
2: लेते हैं नींद,
3: अच्छी नींद हो जाती है।
2: बहुत बढ़िया,
3: तो इसलिए दिन में जरूरत नहीं रहती और दिन में पूरा एनर्जिक।
2: सामाजिक ताने बाने में अभी कई सारे लोगों के अंदर व्यसनों का प्रभाव देखने में आता
3: जी।
2: है, कुछ लोग चबाने वाले व्यसन करते हैं, कुछ लोग पीने वाले या फिर फूंकने वाले, इस प्रकार का जो है कई लोगों में देखने को मिलता है। आप अपने आसपास में देखते हैं ये सब चीज़?
3: हाँ, आसपास तो है, लेकिन हम लोग उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड से मतलब उनको भी हम समझाते हैं और उनको भी
2: प्रेरणा देते हैं,
3: व्यसन, हाँ, व्यसन छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको
2: इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान आपने देखा किसी के अंदर व्यसनों के कारण?
3: व्यसन से तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ भी फायदा तो 1% भी नहीं है।
2: रेखा जी, जैसे एक महिला के रूप में हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के कारण यहाँ पर गली गली में भी जाते हैं, आदिवासियों के मध्य भी काम करते हैं, तो दो चीज़ों का जो भाव हमें दिखता है, एक होता है कि व्यसनों का जो राक्षस है उनको पकड़ रखा है, और उसी कारण से उनकी पढ़ाई भी नहीं होती है और ये उनके बच्चों में आता जाता है और बार बार रिपीट होता जाता है। तो एक महिला के रूप में आप क्या देखते हैं कि व्यसन क्या नुकसान पहुँचाते हैं परिवार को?
4: व्यसन से तो सब तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। जैसे ये लोग आजकल गुटखा वगैरह खाते हैं तो कैंसर का सबसे पहले खुद ही बुलावा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, चाहे आप कितना भी समझाओ इनको, बहुत कोशिश करते हैं इनको सब। एक तो पैसों का भी नुकसान होता है,
2: बहुत ज्यादा नुकसान होता
4: है, बहुत पैसों की इनकी आधी कमाई तो इस सब चीजों में खत्म हो जाती है,
2: घर
4: की सुख शांति खत्म हो जाती है घर की, जब आपकी इनकम की आधा इनकम ही आपका इस गलत चीज में चली जाती है,
2: गुटखा सिगरेट शराब। और आजकल तो बहुत एडवांस चीजें भी आ गई हैं, कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं, पता नहीं क्या
4: कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों का तो नुकसान तो खैर बहुत ही है।
2: महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा?
4: महिलाओं को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है ना, जब उनके जेंट्स अगर ये सब चीजें करने लगते हैं तो महिला को भी तो झेलनी पड़ती है ना, घर की सुख शांति खत्म होती है, वो घर के प्रति फिर वो होते ही नहीं है
2: जिम्मेदार
4: होते नहीं है घर के प्रति,
2: फिर उनके प्रति,
4: और बच्चे भी उस सब चीजों का असर बच्चों पर भी आते, फिर बच्चे भी उसी में जुकाम में चले जाते हैं। आप आदिवासी इलाके में देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा होगा वो भी गुटखे खाता हुआ आपको नजर आएगा, कहीं भी जाके देख लो, और फिर वो सब पूरा करने के लिए वो फिर और आपराधिक मामले भी कर लेते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, एजुकेशन पे उनका दिमाग चलता ही नहीं है,
2: चलता ही नहीं है,
4: गवर्नमेंट कितना भी कर रहे लेकिन आखिर में तो सबसे पहले घर में तो
2: खुद का प्रयास तो चाहिए,
4: खुद का प्रयास सबसे पहला चाहिए।
2: सामाजिक रूप से क्या किया जा सकता है कि व्यसन को कैसे कम किया जा सकता है समाज के अंदर?
4: देखो व्यसन के लिए तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को ये सब चीजें बंद करनी चाहिए, इजी वे में इनको मतलब मिलना ही नहीं चाहिए।
2: एक तरफ वो लाइसेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए,
4: कि ये कैंसर को बुलावा है, जब आपको लग रहा है कि ये चीज नुकसान दे रही है
2: कैंसर
4: आई क्यों रही है मार्केट में।
2: मेरे मामा जी जो है इसी बहुत ज्यादा गुटखा खाने के कारण बहुत सालों तक उनका जो पूरा जबड़ा है वो सड़ गया, उसको काट के निकालना पड़ा और अब आखिर में उनकी मृत्यु हो गई, और इसका हमने बचपन में देखा था उनको कि वो ऐसे लड़ियों के लड़ियां उनके
4: जेब में
2: होती थी,
4: सुबह उठते कोई तो कहता भगवान का नाम, ये सबसे पहले अपना बंदोबस्त देखते है कि अपना है ना आज का पूरे दिन का।
2: तो इतने पैसे का अनाप शनाप नुकसान,
4: पैसों का इसमें तो सबसे पहला तो कदम सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए कि आप ये सब इतना लाइसेंस क्यों दे रहे हो, क्यों इसका बढ़ावा दे रहे हो, क्यों इनकी ऐड कर रहे हो।
2: जी बिल्कुल, तो हमारे जो साथी जो सरकार में हैं और अभी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं तो भी उनको भी अपील करना चाहेंगे, चाहे वो जिस भी विभाग में है जिस स्तर पे है, अपने स्तर पे कुछ ना कुछ लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करें और इन चीजों को जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं कम से कम वो पालन हो रहे हैं।
4: गवर्नमेंट को अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करके इनकम करना तो सही नहीं लगता ना
2: जी,
4: और उनके पास तो और भी रास्ते होंगे इनकम के लिए। गुजरात में बंद कर रखा है
2: शराब बंदी है और कई जगह पे गुटकों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है कि कितने,
4: तो कम से कम इसका असर तो दिखेगा ही ना, आप अगर कड़ाई से पालन करोगे इजी वे में नहीं होगा, धीरे धीरे उसका असर तो मिलता ही
2: होता ही जाएगा,
4: होता ही है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर व्यसनी हो जाता है तो सारा परिवार उसका भुक्तभोगी होता है। खाली परिवार की बात नहीं है, वो पड़ोस और वो परिवेश समाज सब प्रभावित होता
3: है, परिवेश ही।
2: जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यसनी है तो उसको पैसे कमी पड़ रही है तो फिर वो अपराध में भी चला जाता है, अब समाज के ऊपर गाँव के ऊपर देश के ऊपर सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी बातें आपसे बातचीत करते हुए निकल के आ रही हैं, समाज के बारे में आपका जो अच्छा नज़रिया है वो भी आपने व्यक्त किया, ये पक्ष जैसे आपने अपने विचार रखे। तो और एक बात पूछना चाहूँगा कि जब हम बचपन से लेकर अभी तक बड़े होते हैं तो प्रकृति माता से हमको सहयोग मिलता है, समाज से सहयोग मिलता है, शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास के लोग कभी ना कभी एक दूसरे को सहायता करते हुए मददगार बन जाते हैं, आप किस प्रकार से समाज को रिटर्न करने का प्रयास करते हैं, समाज सेवा ऐसी चीज़ों में कभी आप समय देते हैं?
3: समाज सेवा में समय देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे गरीब कोई भी नहीं है, कम से कम भारत में ऐसे गरीब कोई नहीं है, लेकिन आप उनको काम करने की प्रेरणा या काम करने का वातावरण दीजिए।
2: जी जी,
3: डायरेक्ट सहायता की जगह उनको काम करने के लिए प्रेरित कीजिए या कुछ भी अर्निंग करने के लिए प्रेरित कीजिए, वो ज्यादा बेटर है।
2: ऐसे प्रयास आपके आसपास होते हुए कुछ आपको नजर आते तो जरूर बताइए, हमारे श्रोता सुनेंगे भी और सीखेंगे भी।
3: हाँ, जैसे अब यहाँ का ही उदाहरण ले लीजिए आप, शांतिवन का ही, शांतिवन में आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं
5: जी,
3: तो वो एक तरह से उनके जीवन का उत्थान ही है। तो इस तरह से सब जगह उनको काम के लिए प्रेरित करके और
5: रोजगार पैदा करके
3: उनको सहायता करिए,
5: जीवन उनका अच्छा बनाइए।
3: हाँ, उनका अच्छा बनाइए।
5: एक बात पूछना चाहूंगा, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से हॉबी आपकी क्या है, क्या करते हैं आप जब आप फ्री होते हैं? तो
3: मेरी हॉबी वैसे ट्रैकिंग प्लस ट्रैवलिंग ज्यादा है, और बुक्स पढ़ना,
5: किताबें पढ़ना। किसे पढ़ते हैं?
3: किताबें
5: कोई भी किताब,
3: हाँ, मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन
5: बुक रीडिंग को एक बहुत अच्छी हॉबी माना जाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि बुक रीडिंग करते हैं, तो उससे आप व्यक्तिगत से आपको क्या फायदा महसूस होता है?
3: बुक रीडिंग से कुछ बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आप सोच नहीं सकते, अपने जो पुराने भारतीय जो वेद पुराण वगैरह ये है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें है इसके अंदर, जो आज अभी तक तो जहाँ नासा और इसरो भी नहीं पहुंचे हैं, उससे भी बहुत आगे तक अपने वेद पुराण पहुंचे हुए हैं। तो इतना ज्ञान भरा हुआ है, और अपने ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान उन पुस्तकों में संकलित करा हुआ है, उनको आप पढ़ो और उनको मनन करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, जीवन भी श्रेष्ठ बनाने का, और बहुत कुछ मिलेगा।
5: मेडिटेशन करते हैं?
3: मेडिटेशन वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह आधा घंटा पूजा
5: आराधना करते हैं।
3: हाँ, पूजा करता हूँ, वो मेडिटेशन की तरह से ही है।
5: जी जी जी, साइलेंस में समय व्यतीत करना और अपने जो आराध्य हैं उनको अंतर्मन में याद करना, उनकी उपासना करना, इससे क्या प्राप्ति होती है आपको?
3: उससे पूरा दिन बहुत एनर्जिक रहता है,
5: एनर्जेटिक रहता है।
3: हाँ, पूरा दिन आपका बहुत का मन प्रफुल्ल होता है ना, तो आपकी पूरी गतिविधियां उससे और पूरा एनवायरनमेंट आपका आसपास का बहुत ही आपको अच्छा लगता है,
5: ऊर्जावान रहता है। जैसे मन की बात आपने कही, शरीर की बात भी हमने कहीं ना कहीं बात की कि भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे, जीवन पे, आयु पे पड़ता है। रेखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मन को अच्छा रखने के लिए हर इंसान को क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे मन अच्छा रहेगा?
3: पॉजिटिव सोचो,
4: अच्छा सोचो, आप अच्छे विचार रखो और अच्छे काम करो, और किसी की भी, हर किसी की मतलब अच्छे हेल्प करो, तो आपको उनकी सबकी जो पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी, दुआएं मिलती हैं।
5: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, दुआएं कमाने के लिए आपको अच्छा सोचना,
4: अच्छा
5: है,
4: सोचना है,
5: अच्छा, अच्छा करना है, और अच्छा बोलना भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। कार्यक्रम सलामी जिंदगी से हम आप दोनों की जिंदगी को सलाम करते हैं, और फिर निमंत्रण देना चाहेंगे, और भी आइए रेडियो मधुबन से जुड़िए, और रेडियो मधुबन के द्वारा अपने अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए, और जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं, और उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त हो आपको, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सलामी जिंदगी। दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी आकरा भट्टा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार
3: जी।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और आज के शो का आरजे शरद, और मेरे साथ है एक और बेहतरीन शख्सियत और हमारे देश के कुछ जुनूनियों के साथ जुड़े हुए मिस्टर अजीत। अजीत जी जो हैं वो मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, परंतु आज कल हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा के भुवनेश्वर में एज अ एनएसएस ऑफिसर मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। और अजीत जी की भी एक जर्नी है और उनका भी एक जुनून है, आइए उनसे जानते हैं वो क्या जुनून है। परंतु आप जो श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं वो हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे ऐप रेडियो मधुबन के पर भी आप हमें सुन सकते हैं, इसके साथ में माउंट आबू की वादियों में आप 107.8 FM पर हमें सुन सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। अजीत जी आपका वेलकम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
0: अजीत जी आपकी एक लंबी यात्रा रही है और आप हमारे राष्ट्रीय यूथ अवार्डी भी रहे हैं हमारे मंत्रालय के साथ में। उस अवार्ड तक की पहुंचने का जो आपका जुनून रहा है, वो जुनून आपके अंदर है या आपको जुनूनी क्यों कहते हैं वो बताइए, कैसे वो शुरुआत हुई?
1: जी बिल्कुल, देखिए हर एक युवा की एक जर्नी है, एक यात्रा है, और जो स्पेशली मेरी यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक कॉलेज से स्टार्ट हुई, क्योंकि हम सब मैक्सिमम अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, बहुत सारे जो युवा हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और अक्सर हम इन सब संशय में रहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमारी शिक्षा अच्छी नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम उन लोगों से थोड़ा अलग हैं। लेकिन हमने ये जो सीखा कि जब हम हायर एजुकेशन के लिए एक छोटे से गांव से निकल के शहर की तरफ जाते हैं तो हमें एक कॉलेज की लाइफ मिली। कॉलेज की लाइफ में हमने एनएसएस को ज्वाइन किया, और स्पेशली उस एनएसएस को ज्वाइन करने का जो मेन मकसद था कि वहां पर हमें ये समझ में आया कि जो एनएसएस सिखा रहा था व्यक्तित्व माध्यम से, हमारे कैसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हमें किस तरह से जो सामाजिक कुरीतियां हैं समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, यानी कि एनएसएस ने हमें वो सारी चीजें वहां पर सिखाई और बताई कि एक यूथ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ किसी यूथ का लीडरशिप कैसे बिल्डअप हो, जब आप में लीडरशिप बिल्डअप होगी तो फिर आपका रोल आता है कि आपका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति। ये बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे जिसका जवाब मुझे उस कॉलेज लाइफ में एनएसएस ने दिया। एनएसएस में क्या है कि हम सबसे पहले एक टीम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम की भावना है टीम बिल्डिंग, तो जब टीम में रहते हैं तो किसी भी टारगेट को अचीव करना आसान होता है, और उसके साथ साथ जो हमें एक व्यक्तिगत तौर पे मैं जो मेरे लिए बेहतर रहा, जो मैं अपने आप में फील किया कि एक गांव से आया हुआ छोटा सा एक सामान्य सा युवा जिसने एनएसएस के माध्यम से सीखना शुरू किया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर हमने अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस किया, अपनी वो सारी चीजें जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारे अंदर लीडरशिप बिल्डअप हो, वो सारी चीजें हमें एनएसएस के माध्यम से सीखने को मिली। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको एक निखारने का मौका मिला, कोई अच्छी डिबेट करता है, कोई अच्छी एसे राइटिंग करता है, यानी कि कोई किसी के अंदर राइटिंग स्किल है, वो सारे स्किल्स को इनहेंस करने का एक प्लेटफॉर्म मुझे कॉलेज में मिला, जिसके माध्यम से जो एक होता है कि एक जो शर्मिला स्वभाव है, हम हर चीज में संकोच करते हैं और हम किसी से दूसरों की अपनी बातों को नहीं कह पाते, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस और जो लीडरशिप आया उसके माध्यम से एनएसएस ने ये हमें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को रख पाए, सीख पाए। और होता ना कि एक यूथ को, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सिर्फ हमारा एकेडमिक नॉलेज तक ही अगर सीमित रहेगा तो शायद हम आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एकेडमिक नॉलेज तक अपने आप को सीमित ना करके इस देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, दूसरा हम एक एक्टिव सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो जो एक्टिव सिटीजनशिप है तो कहीं ना कहीं एनएसएस और माई भारत जो कि हमारा पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन था, इन दोनों ने बहुत सारे असंख्य युवा उनके माध्यम से निकले जिन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया, लीडरशिप को बिल्डअप किया, उनकी एक समाज में एक अच्छे युवा के तौर पर उभर के आगे आए। तो ये बहुत सारी चीजें थी, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र में वोटर अवेयरनेस की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर एक युवाओं को बात रखने का मौका मिला, एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि नहीं हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को करते हुए आगे बढ़े, और उसी का बाद मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ जो इसका विजन था, ये किस लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर और महात्मा गांधी जी का जो विजन था कि हमारा युवा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, हमारा जो युवा है उसकी एक सामाजिक समझ हो, वो समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझे, राष्ट्र में अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, लेकिन विश्व के सबसे युवा देश होने से पहले हमारा वो युवा कर क्या रहा है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, हमने उसकी परवरिश कैसी की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है या नहीं। तो हमें भी एनएसएस की उस पार्ट का, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला, तो शायद मेरे लिए वही लॉन्च पैड था, मेरे लिए वो शुरुआती दौर था जहां से हमने बहुत सारे कार्यों को करते हुए अपने आप को डेवलप किया। और एनएसएस का भी पर्पज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी हमारे यूथ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमारा जो माध्यम है वो सामुदायिक सेवा है, राष्ट्र सेवा है, समाज की जिम्मेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो ये जो जिम्मेदारियां हमें मिली, तो वहीं से हम निकल के आगे बढ़े और बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारे काम है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, लोकतंत्र, क्योंकि वोटर अवेयरनेस मुझे याद है 2012 और 2014 के जब इलेक्शंस थे तो वोटर अवेयरनेस में पहली बार एनएसएस को इन्वॉल्व किया गया था और बहुत सारे युवाओं ने इस जिम्मेदारी को संभाला। तो ये सारी चीज़ें, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे डिबेट्स होते थे, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए युवाओं की बात युवा करेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर युवाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने कि युवा विकास के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के लिए, यानी कि अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए भी कुछ काम करें। तो बहुत सारे काम हैं जिनको हम लोगों ने कई माध्यम से करने का मौका मिला और काफी सफल कार्यक्रम भी रहे हैं।
0: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि एनएसएस की क्यारी में आपका जो जुनून का पौधा है वो लग गया। अब वो जुनून क्या था और आप क्या कर रहे थे इस यात्रा के बीच में, वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी,
0: क्या मिशन आपने अपने हाथ में लिया?
1: जी बिल्कुल, देखिए कॉलेज टाइम में, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, तो हमारे था कि कॉलेज में जब मैं सबसे पहले, मेरा एक ही मकसद विशेष रूप से रहा कि हम स्पेशली ग्रामीण युवा जो हैं उनकी अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर लीडरशिप और वो अपनी बात को कैसे रख पाए, ये दो चार अहम मुद्दे रहे। तो जिसके लिए हम लोगों ने युवा संवाद का सीरीज चलाया था, वो युवा संवाद की सीरीज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी हुआ, सभी विश्वविद्यालयों में भी हुआ, क्योंकि ये सीरीज हम लोग 2014 से चला रहे थे। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं या जिले में जो, क्योंकि हर बच्चा प्रदेश की राजधानी में नहीं आ सकता, हर बच्चा अपनी बात को सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता, तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको पहचानना और पहचानने के बाद उनको एक दूसरे से लिंकेज करना, यानी एक ब्रिज का काम करना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, करियर काउंसलिंग की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के एक दिन का युवा संवाद प्रोग्राम करते थे। उस युवा संवाद कार्यक्रम में पूरे जनपद के सारे युवा इकट्ठे होते थे, वो अपनी समस्याओं पे बात करते थे कि हमारे प्रदेश में क्या समस्या है, चाहे वो खेल को लेके, शिक्षा को लेके या हमारे करियर को लेके, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको वो युवा अपने सामने रखते थे। और वहां पर हम लोग कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स को, कुछ हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाते थे, उनके माध्यम से उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाता था। इससे ये होता था कि जो युवा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी भी युवा को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए और उसको ये बता दिया जाए तो वो अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, कई जगह स्पोर्ट्स में बच्चे जाना चाहते हैं, उनको पर्याप्त संसाधन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन शायद सरकार भी इसके लिए अच्छा काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, बच्चे भी इच्छुक हैं, बस उनके

0: हमारे जितने भी लोग हैं उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जब लोग नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व होगा और उससे हमारी पूरी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको लेकर के आपको मैं लखनऊ का उदाहरण दूं, तो जो 2012 में 39% वोटिंग हुई थी, जो कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 55% वोटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का पार्ट था, डोर टू डोर कैंपेन का पार्ट था, उन युवाओं की तरफ से जो गुजारिश की गई थी, जो निवेदन किया गया था लोगों से, उसका परिणाम था। लोगों ने उसको महसूस किया कि क्यों ये युवा सड़क पर उतर के डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। निवेदन बस इतना था कि आप डेमोक्रेसी में अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना रोल निभाएं और इस लोकतंत्र को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं के माध्यम से लोगों ने रहा। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा था, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हम लोग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे थे, लखनऊ में गोमती रिवर है उस पर काम कर रहे थे, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे टारगेट एरियाज में जा करके प्लांटेशन करना, वहाँ पर लोगों को अडॉप्ट कराना प्लांट, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर आज हम देखेंगे तो 8 साल 10 साल के बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। तो ये एक युवाओं को कनेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम रहा, हम लोग उनको कुछ सिखा पाए, कुछ बता पाए। और आज बहुत सारे युवा, असंख्य युवा हैं जो आज चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, उस दौर में जो उन्होंने काम किया था उनके अंदर का वो वॉलंटियरिज्म, उनके अंदर की वो सामाजिक कार्य, उनके अंदर का वो राष्ट्र भावना, जो राष्ट्र भावना उनके अंदर जागृत हुई थी वो आज भी उनके अंदर जीवित है। और खुशी की बात यह है कि हमने कॉलेज के टाइम से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, अभी हमने 2 साल पहले एक अलमनी ग्रुप भी बनाया कि जो लोग भी उस टाइम एक्टिव थे एटलीस्ट वो उनके अंदर का जो वॉलंटियरिज्म की जैसे हमने बात की, जो उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर जो जुनून जिंदा है, उसको और अच्छा बनाने के लिए उनके कार्यों को अभी भी हम लोग एक वॉलंटियरिज्म को कैसे किया जाए उसका एक बेहतर कार्यक्रम। अगर आप देखेंगे हमारा जो ग्रुप था, अब ये देखिए जो कॉलेज टाइम में काम कर रहे थे उनकी जर्नी 2014-15 से लेके हमारा जो कोविड टाइम था, कोविड में बहुत अच्छे से पूरा ऑल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया था। उस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का पर्पज ही यही था कि जहां पर भी समस्याएं हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके, वहां पर ये ग्रुप मदद करेगा। और उस ग्रुप में हमारे सारे एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जो युवा थे जिनकी प्रशासन के साथ अच्छी जान पहचान थी, जिनको मेडिकल के साथ था, जो मीडिया के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिनको सोशल एक्टिविस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन था, यानी ये वो लोग थे जिनका सभी के साथ एक अच्छा नेटवर्क था, जो इमीडिएट लोगों को मेडिसिन, लोगों को दवाइयाँ, खाने का सामान, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा ये बहुत आसानी से पहुँचा पा रहे थे। तो इसका ये फायदा हुआ कि जब हमारा पहले से कोई लिंकेज होता है, उस ग्रुप को हम जीवित रखेंगे, उसको एलमनी में तब्दील कर देंगे, तो उसका जो प्रभाव होगा वो किसी न किसी तरह से वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप किसी नए बंदे को टीम में जोड़ेंगे उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराने ट्रेंड लोग हैं, ये हमारी एक वर्क फोर्स ऐसी थी जो ट्रेंड वर्क फोर्स थी, जो जुनूनी लोग थे जिनके अंदर वॉलंटियरिज्म था, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और वो ग्रुप आज भी वैसे ही एक्टिव है। किसी भी दैवीय आपदा आए, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी ऐसे युवाओं की मुद्दों की बात हो, तो ग्रुप हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आगे आता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाता है।
1: जी बेहतरीन आपने बात रखी, और आपने वोटर अवेयरनेस में भी काफ़ी भूमिका रही, और आपने शुरुआती दिनों में बताया कि युवा संवाद को लेकर भी आपने पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये जो युवा संवाद कार्यक्रम था, ये राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित था या आपने इसको तैयार किया और राज्य सरकार ने इस पर सहमति दी, और कैसा पार्टिसिपेशन रहा और क्या विशेष बातें इस युवा संवाद कार्यक्रम से निकल कर आई?
0: ये जो उपज थी, ये कहीं ना कहीं अवार्डीज की उपज थी। जो युवा संवाद का पर्पज था उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्डी थे, उत्तर प्रदेश के सभी नेशनल यूथ अवार्डी थे और एनएसएस के नेशनल अवार्डी थे। इन अवार्डीज के माध्यम से, क्योंकि जो भी अवार्डी है तो मुझे लगता है कि समाज का ये वो हिस्सा है जिसको सरकार ने अवार्ड दिया है, अवार्ड देने के साथ उसकी समाज में और जिम्मेदारी बढ़ा दी है, उस पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको अवार्ड के बाद अब आप जिम्मेदार हो गए हैं, आपकी और भूमिका बढ़ गई है। तो हमने उसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए, मैं बताया कि आपको युवा संवाद, राज्य सरकार ने हमें वित्तीय सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें टेक्निकल सपोर्ट, वो सारी हमें सरकारी विभागों

0: भी मिला। अलग अलग क्षेत्र के हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे राज्य के जो युवा कल्याण विभाग है उसमें NSS भी इन्वॉल्व था, उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन भी इन्वॉल्व था। तो ये बहुत सारे लोग थे, क्योंकि देखिए जब आप किसी काम को आगे करने के लिए बढ़ते हैं तो होता है कि आप किसी मिशन को आगे लेके बढ़िए, सपोर्ट करने वाले, जब आपकी मनसा अच्छी है, आप अच्छे मिशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ कई हाथ आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो उसका पर्पज यही था। तो हमें सरकार से भी कई सपोर्ट मिले क्योंकि ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलता था। हमारा ये पर्पज था कि जो उन युवाओं की जो आवाज है, यानी कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं, उनकी समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट थी। उनको स्पोर्ट्स का, यूथ का, स्किल से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, करियर से लेकर के, है ना, ऐसे बहुत सारे दिव्यांग साथी थे जिनको उनकी स्कीम से रिलेटेड, उनके स्किल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम लोगों ने युवा संवाद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर कोई भी युवा, बस हमने कंडीशन ये रखी थी कि वो युवा होना चाहिए, जो हमारी युवा की डेफिनेशन है 15 से 29 साल, हमने ये डेफिनेशन में कवर किया कि वो युवा अपनी आकर के इस प्लेटफॉर्म पर बात रख सकता है। और स्पेशली हम लोगों ने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, एक नशा उन्मूलन को लेकर के हम लोगों ने बात रखी थी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि युवा जो है नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक मैसेज था। दूसरा, विजन 2047 को लेकर भी बातें रखी गई कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारे अपने भारत का 2047 का विजन है, हमारे प्रदेश का भी एक विजन होना चाहिए, हमारे जनपद का भी एक विजन होना चाहिए, और उस जनपद से पहले हमारे उस युवा का भी एक विजन होना चाहिए कि वो अपने आप को 2047 में कहां देखना चाहता है। तो ये इस विजन के साथ हम लोग बहुत सारे युवाओं को रोजगार के साथ, उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार से जुड़ना था, कुछ लोगों को स्टार्टअप से जुड़ना था, हम लोगों ने उनको स्कीम्स के थ्रू भी कनेक्ट किया, क्योंकि जो हमारे कई अवार्डी साथी हैं जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अवार्डी हैं जो पॉलिटिकल में हैं, जो कई लोग हैं जो सरकारी सेवा में हैं, कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप था जो हर माध्यम से लोगों को मदद कर सकता था, और हमने जनपद वाइज ऐसे एक ग्रुप को भी कनेक्ट किया, यानी कि जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे, हमारे यूथ के ऑफिसर्स हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, हमारे स्किल के हो गए, हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो गए, ऐसे लोगों को हम कनेक्ट करते थे ताकि हम उस जिले की समस्याओं को उस जिले में ही सॉल्व कर सके। क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, अगर आप उस जनपद की छोटी सी समस्या को उस जनपद में सॉल्व करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो प्रॉब्लम स्टेट तक आएगी, वो प्रॉब्लम नेशन प्रॉब्लम बनेगी। तो हम लोगों ने इस युवा संवाद के माध्यम से जो सपोर्ट किया, जो चीज़ें हुई उसमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी यूथ के बीच काम कर रहे थे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते थे जहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कॉस्ट नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमें वहां पर अरेंजमेंट करते थे, लाइक युवा आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको कुछ फूड अरेंजमेंट चाहिए, पीने का पानी चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, लेकिन इसको जो लीड करने वाली टीम थी वो अवार्डीज की टीम थी, एक अवार्डीज का पूरा फोरम था जिसने इसको लीड किया। और आफ्टर दैट आप खुद उसके साक्षी हैं कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने भी NSS और NYK के माध्यम से रिसेंट अभी 2-3 साल पहले कई तरह के युवा संवाद प्रोग्राम वो लोग लेके आए। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकमेंड किया था कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है, इनको टाइम हमारे तत्कालीन मंत्री थे श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, उनको भी हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट के साथ सौंपा था कि अगर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं युवा को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा, और ये युवा की आवाज वो आवाज है जो शायद हमारे देश के जेन्युइन मुद्दे हैं, जिस पर सामाजिक रूप से, मतलब वो युवा चाहता है कि इस पे काम हो। तो हमने एक कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला, सरकार का भी सहयोग मिला, और उसके माध्यम से हम बहुत सक्सेस तो नहीं हुए, लेकिन हम ये कह सकते हैं काफी सारे युवाओं को मदद मिली, एक नई राह मिली, और वो नई राह आज कहीं ना कहीं वो बहुत सारे युवा अपनी कहानियों को आगे लिख रहे हैं, अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो अपनी चीजें हैं उसको आगे बहुत अच्छे से चला रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया अजीत जी, इस पूरी यात्रा के दौरान आप पिछले दिनों गंगा प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं और एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर आप उसको भी देख रहे थे, तो उसमें क्या अनुभव रहे और क्या विशेष बातें रही और आपको क्या सीखने को मिला, आपकी क्या समझ बनी?
0: जी देखिए, बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, क्योंकि इस जो परियोजना है, क्योंकि वो परियोजना जहाँ से गंगा निकलती है उस क्षेत्र के लिए थी, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है जो गंगा कवर करती है, जहाँ पर 24 जिले थे। उन 24 जिलों में इस परियोजना का नाम ही था नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता, यानी कि ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो कैसे सक्सेस हो और उसमें युवाओं का क्या इन्वॉल्वमेंट हो। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरुआत में हर गांव में गंगा दूत बनाए जा रहे थे। गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव थे उनमें 2-2 युवाओं को गंगा दूत बनाया जा रहा था। उन गंगा दूत के माध्यम से गतिविधियां आगे की जा रही थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि क्योंकि मैं राज्य स्तर पर था, हमारे सभी जनपद में जिला परियोजना अधिकारी उस कार्य को देख रहे थे। और अच्छी बात ये थी कि ये परियोजना नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ संचालित थी, क्योंकि युवा तो जहाँ पर हमारा, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑलरेडी युवाओं के लिए काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोजेक्ट शायद सरकार ने इसीलिए ही NYKS को दिया था क्योंकि युवा कनेक्ट है और इस परियोजना में युवा को इन्वॉल्व करना था। तो देखिए, युवा के लिए जो सबसे अच्छा मेरा अनुभव रहा कि युवा सीधे गंगा स्वच्छता के लिए, किसी रिवर स्वच्छता के लिए या पर्यावरण के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाला। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें सक्सेस हुई, युवा ये चाहता है, क्योंकि आज का जो युवा है वो बड़ा होशियार है, उसको ये लगता है, वो फर्स्ट ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे लिए कैसे लाभकारी होगा। और सवाल भी अच्छा है, क्योंकि हम अगर किसी कार्य में जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये सवाल घूमना भी चाहिए कि इस कार्य से मुझे क्या मिलेगा। वो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्रायोरिटी जो सवाल आता है कि मेरे लिए क्या। तो हम लोगों ने इस परियोजना के माध्यम से जो युवाओं को सेलेक्ट किया था, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 के आसपास युवा थे जो गंगा दूत के लिए सेलेक्ट किए गए थे। तो इनको स्पेशली ये था कि पहले इनको, इनके बिहेवियर को चेंज किया जाए, इनके स्किल्स को पहचाना जाए, इनके बीच संवाद किया जाए, इनके बीच कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएं और उसके माध्यम से इनके विचारों को सुना जाए कि इनके गांव में गंगा को लेके क्या बेहतर हो सकता है। चाहे वो पॉलिथीन फ्री करने की बात हो, चाहे गंगा घाट पे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वहाँ वृक्षारोपण की बात हो। आज बहुत अच्छे से गंगा के बीच जो ये नेचुरल फॉर्मिंग, पेस्टिसाइड यूज नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होंगे, तो उस काम के लिए भी मुझे याद है कि सबसे पहले युवा ही आ गया है। युवाओं ने ही अपने पेरेंट्स को समझाया, अपने माता पिता को समझाया कि नहीं, हम गंगा के किनारे जो खेती कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। तो जो हम लोगों ने इनके बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उन युवाओं को वहाँ बुलाते थे, उन्हें उनकी समस्याओं को सुना जाता था। दूसरा, बहुत सारे कंपटीशन के माध्यम से उनको कनेक्ट करते थे, उनके बीच डिबेट कराकर, उनके बीच एस्से राइटिंग कराकर, उनको कुछ एक्सपीरियंस के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट में कुछ टूर, कुछ कैंपिंग। कहने का मतलब ये है कि हम युवा को पहले कनेक्ट किया। कनेक्ट करने का मतलब उनको ये एहसास कराया कि ये आपके गाँव से जो गंगा निकल रही है ये आपकी है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसलिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उस गंगा से नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन ने सबसे पहले एक काम किया कि उनको बुलाया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको कंपटीशन कराया, उनको एक कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद वो स्ट्रीट प्ले, गंगा के किनारे आरती करना, वहाँ पर सॉन्ग है, नृत्य प्रतियोगिताएं हैं। इवन सबसे सक्सेसफुल जो प्रोग्राम रहा, आपको बताएं, क्योंकि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे ही पानी घटता है दशहरे के बाद, बड़ा अच्छा मैदानी भाग खुल जाता है गंगा में, पूरा बालू का बालू, बड़ा लंबा चौड़ा मैदान तैयार हो जाता है। उन मैदानी क्षेत्रों में हम लोगों ने नमामि गंगे के माध्यम से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराए। अब स्पोर्ट्स में क्या है, युवाओं का अलग क्रेज है, वहाँ स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं हुई, उनको प्राइज मिले, प्राइज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीते। तो उससे क्या है कि उन गंगा के क्षेत्रों में हमें एक अच्छा नेचुरल मैदान भी मिल गया, उस गाँव के लोगों के बीच प्रतियोगिताएं कराने का मौका मिल गया। तो ये जो युवा था ये डायरेक्टली गंगा से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये स्पोर्ट्स के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, ये जो है बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंस, डिबेट, नुक्कड़ नाटक, इन सब माध्यमों से वो वहाँ कनेक्ट हुए। उनको प्रशिक्षण दिया गया, नेचुरल फार्मिंग जैसी बातें की गई, उसके माध्यम से कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ। उस दौर का जो काम था वो आज भी आप देखेंगे, कई घाट को युवाओं ने अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे वो बुलंदशहर है, बिजनौर है, प्रयागराज है, कानपुर है, कई जगह युवा एडॉप्ट करके रेगुलर, चाहे वो हफ्ते में 2 दिन किसी रविवार को, हफ्ते में 1 दिन किसी रविवार को, समय निकालकर वो जाते हैं उस घाट पे, स्वच्छता कार्यक्रम करते हैं, वहाँ वॉल पेंटिंग करते हैं, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। तो ये युवाओं को जो कनेक्ट होने का जो एक जज्बा आया, जो जुनून आया, तो वो कहीं ना कहीं, माध्यम हमारे कई थे लेकिन वो माध्यम उनको कनेक्ट करने के थे कि इन सब माध्यमों से इनको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके वो इसको जिम्मेदारी को समझे। और आज ये दौर है कि आप बहुत जगह जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उन युवाओं के नाम से। इवन जो प्लांट हैं वो भी उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। हर घाट पे बरगद, पीपल और पाकड़, ये तीन पेड़ एक साथ बहुत जगह रोपित किए गए, जिसको हम हरी शंकरी के नाम से जानते हैं, उनको युवाओं ने अडॉप्ट किया है। तो ये बहुत सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर्यावरण और गंगा के प्रति बहुत सारे युवा जागरूक हुए। मैं आपको जो अभी उदाहरण दिया कि जो नेचुरल फार्मिंग जो हो रही है गंगा के बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी तो सरकार उसको प्रशिक्षण भी दे रही है, सरकार उसमें कुछ सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन वो जो सक्सेस हुआ उसका जो विचार है वो युवा के दिमाग में ही आया। नहीं तो आप ये समझें कि जो 60 साल का 50 साल का जो किसान है वो कभी नहीं समझने वाला था कि हम पेस्टिसाइड या फिर हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझाना कठिन काम है। लेकिन ये जो युवा है ये उन सारी समस्याओं को समझ करके अपने पेरेंट्स को समझाया और मना किया कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, हम प्राकृतिक कृषि की ओर जाएंगे। और हम आज बड़ा बेहतर उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आपको ये एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा है
1: जी, और जन आंदोलन के माध्यम से कम्युनिटी का जो सपोर्ट है, क्योंकि इंजीनियर्स तो अपना काम कर ही रहे होंगे गंगा के बेसिन को लेकर, सफाई को लेकर, और बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, गंगा नदी का एक पूरा मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो कार्य है वो आपके नेतृत्व में या उस पर्टिकुलर जिले में जहां आप काम कर रहे थे वो चल रहा था। तो लेकिन नदी के दोनों तरफ दो बैंक्स हैं, दो तीर हैं उसके, तो उन दोनों बैंक्स को मिला के कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कितना मुश्किल रहा होगा?
0: चैलेंजेस रहा, क्योंकि शुरुआत में तो लोग बात करने को तैयार नहीं थे। जो फील्ड का एक्सपीरियंस था, आपको सच बताऊं तो जब हम लोग मीटिंग करते थे, NMIC के मुख्यालय से मीटिंग होती थी नवम गंगे से, हमें दो गंगा दूत नहीं मिलते थे एक गांव में। हम जो गांव में जाते थे, जो लोगों से बात करते थे, एक गांव से गंगा दूत मिलना मुश्किल थे, क्योंकि वो युवाओं को ही बनाना था, जिनकी एज 15 से 29 साल हो वो गंगा दूत बन सकते थे, और वो एक वॉलंटियर सेवा थी। हम उनको कोई ऑनरेरियम नहीं दे रहे थे, हम उनको कुछ नहीं, बस उनको एक नाम दे रहे थे, गंगा दूत। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमने उनको कैसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वो चैलेंजेस था। लेकिन ये है, युवा ही युवा के मन की बात को समझता है। तो उन लोगों ने, जो आप बोल रहे हैं कि दोनों किनारों को कैसे एक किया जाए, तो ये बड़े चैलेंज रहे हैं। लेकिन जो कनेक्ट करने की जो गतिविधि रही है, देखिए युवा को क्या है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, युवा को युवा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं बोला कि वो डायरेक्टली गंगा में कूदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्वच्छता करने नहीं आएगा, लेकिन हम जब उनको अलग अलग माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, उनको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए डिबेट करा रहे हैं, मेरे लिए कल्चरल परफॉर्मेंस करा रहे हैं, मेरे लिए स्पोर्ट्स करा रहे हैं, यानी कि उनको ये फील हुआ कि ये मेरे लिए आए हैं, तब वो शायद बाद में मेरे लिए काम करना, यानी गंगा के लिए काम करना शुरू किया। तो ये चैलेंजिंग था, लेकिन कोई भी काम जितना चैलेंजिंग होता है उसका कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक सस्टेन करता है। जितना मुश्किल उस दौर में था, प्रोजेक्ट शायद खत्म हो गया, लेकिन जो ग्रुप बन गए थे, जो गंगा वाटिकाएं बनाई थी लोगों ने, मुझे याद है कई जिलों में गंगा वाटिकाएं बनी थी, जिसको युवा आज भी अजो के रखे हैं, उसको प्रॉपर नाम दिया है, गंगा ज्ञान केंद्र बनाए गए थे, वो भी आज युवा संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें रही जिनको युवाओं ने प्रॉपर समझा, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उनके अंदर भी व्यक्तित्व विकास हुआ, उनके अंदर भी वो समझ विकसित हुई। और ये समझ आज बहुत सारे युवाओं के अंदर ऐसी मान्यता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, मेरे पर्यावरण का क्या हो रहा है, हमारे समाज का क्या हो रहा है, समाज दूषित हो जाए उनसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो ये, इस जितने भी लोग थे उन्होंने इस दर्द को समझा कि नहीं नहीं ये गंगा की स्वच्छता, इस पर्यावरण की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है कि हम अपने गाँव के आसपास, हम अपने क्षेत्र की गंगा को समझें, जागरूक करें। और बहुत जगह गंगा ज्ञान चबूतरा बना है, बच्चे वहां जाके बैठ रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, गंगा के पास स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और गंगा आरती जैसे कार्यक्रम भी कई जगह शुरू हुए, क्योंकि जो कनेक्ट हो गए वो कनेक्ट होते ही रेगुलर अपनी चीजों को कर पा रहे हैं। तो ये अभी कंटिन्यू है, बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है।
1: हाँ, गंगा अपने आप में एक पूरा एक जीवंत व्यवस्था है, और उसके दोनों तरफ गंगा का जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अपनी एक वर्च्यूज हैं, उसके गुण हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर आपने युवाओं को जागरूक किया, तो एक बहुत बेहतरीन काम रहा। तो आप जिस जिले में काम कर रहे थे, आपने एक जिले में काम किया या और भी क्षेत्रों में जाके आपको?
0: नहीं, मैं एक्चुअली स्टेट लेवल पे था, तो मैं पूरे 24 जिलों में अपना भ्रमण रहता था, कई जगह बहुत क्लोजली, मतलब जाने का, ट्रेनिंग में जाने का, युवाओं के बीच कार्यक्रम होते थे उसमें जाने का। तो चूंकि युवाओं के बीच से ही निकल के आए थे, तो इसलिए बड़ी इच्छा रहती थी कि नहीं, एक मौका मिला तो एक हमारे लिए भी बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला इस माध्यम से।
1: जी, कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जो इन 24 जिलों में से निकल कर आई हो और आपको लगता है कि नहीं वो देश को बताना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए आपने एक वर्ड यूज किया कि गंगा अपने आप में एक बड़ी जीवंत कहानी है, तो गंगा ऐसी है। मुझे याद है कई सारे युवा, जब डॉल्फिन को लेके बड़ा भ्रांति थी लोगों में कि गंगा में डॉल्फिन है या नहीं है, लोग उसको कुछ ऐसा मानते थे कि ये कुछ अजूबा है, बट डॉल्फिन को सरवाइव करने के लिए उसको लेकर के मुझे याद है कि कई जिले, शाहजहांपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, फतेहपुर हो गया, इन जिलों में गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए। गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित करने का मतलब ये था कि उन गांव के युवाओं को, यानी जो मछुआरे हैं, जो निषाद समाज है, जो नाविक हैं, उनको वो नॉलेज प्रदान किया जाए कि गंगा में क्या क्या होता है, गंगा में डॉल्फिन है, गंगा में मछलियां हैं, गंगा का स्ट्रक्चर कैसा है, गंगा में कब बाढ़ आएगी, कब यहाँ से पानी घटेगा, यानी वो सारा टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए उन गांव के, सोचिए कि जो आदमी अनपढ़ है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो हमेशा रहता गंगा में ही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, तो उनको एक टेक्निकल नॉलेज, एक बेसिक ज्ञान प्रदान करने के लिए गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना। और इसके लिए कोई सरकार से बजट नहीं था, इसके लिए कोई अलग से हमें गाइडलाइन नहीं थे कि आपको ऐसा करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में लोगों की ऐसी मांग, ऐसी समझ, ऐसा उनका जुनून देख करके ऐसे केंद्र स्थापित हुए जहां पर कुछ लिटरेचर रखा गया, ऑडियो विजुअल्स दिखाए गए, कुछ पोस्टर्स लगाए गए कि डॉल्फिन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरी फिश है तो वो कैसी दिखेगी, किस गंगा के किस एरिया में कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हुई। दूसरा, जो हम लोग गंगा के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की भी बात कर रहे थे कि युवाओं को आर्थिक रूप से कैसे सक्षम किया जाए, तो उसी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। देखिए, जब भी आप जाएंगे तो बड़ा नेचुरल चीज है, जैसे प्रयागराज में आप देखेंगे गंगा के किनारे बहुत ऐसी घास है जिसको हम मूझ घास के नाम से जानते हैं, कानपुर, फतेहपुर, उस मूझ घास के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने बहुत सारे ऐसे सामान बनाने शुरू किए जो कि बहुत सिर्फ एक टेक्निकल, उनका जो बनाने की प्रक्रिया थी उसके माध्यम से उन स्थानीय प्रोडक्ट को बनाया, उससे डलिया बनाते थे, उससे टोकरी बना करके, उससे कुछ हैंगिंग वाला बना करके, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जो 100% नेचुरल थे, 100% मतलब एक तरह से स्थानीय उत्पाद थे, उनको भी बड़े लेवल पर पहचान मिली और आज भी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के नाम से जो उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट है उसमें उनको गिना जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से पहचान में आए, लोगों की नजर में आए, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे।
1: बेहतरीन, तो मतलब वोकल फॉर लोकल भी आपको भी सपोर्ट किया हमारे प्रोग्राम ने, बेहतरीन बेहतरीन। मैं भी आपको बताऊं कि जब भी हम लोग इस यूथ प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जो हम लोग हमारे कार्यक्रमों में जो गेस्ट को जो हम मोमेंटोस देते हैं या जो गिफ्ट्स हम या उनको कुछ याददाश्त देते हैं चलते समय, तो मैं कोशिश करता हूं कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए कुछ ऐसे ही आइटम्स को हम उसमें प्रमोट करें। वो बात अलग है, जरूरी नहीं है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ हो सकता है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हम उसको मंगाएं, लेकिन हाँ, वो होना कुछ ऐसा ही चाहिए जिससे किसी हाथ को काम मिले। तो यही हमारे पूरे यूथ प्रोग्राम से हम जैसे जुनूनी कार्यकर्ताओं और फिर बाद में टर्न अफसरों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून 107.8 माउंट आबू की वादियों से, और आप उसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। अजीत जी, आपने कहा कि युवा को लगता है कि मुझे सीधे रूप से क्या मिलेगा, सीधे तौर पर क्या मिलेगा, मेरा डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, जबकि इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। आप ही एक के उदाहरण है, तुरंत उदाहरण है, जो एक साधारण से गांव से, एक साधारण परिवार से एक युवा एनएसएस से जुड़ता है या कहीं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ता है और के मन में भी सवाल आया होगा कि मुझे सीधा बेनिफिट क्या है, लेकिन बेनिफिट, सीधा बेनिफिट तो क्या रहा मालूम नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट ये रहा कि वो आज हमारे साथ में एनएसएस ऑफिसर भुवनेश्वर है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण को कहें कि अदृश्य रूप से या कहें कि इनविजिबल हैंड्स ने कुछ उनके जीवन को शेप दिया और वो माटी का पुतला अजीत कुशवाहा आज एक दूसरे माटी के पुतलों को तैयार कर रहा है। और हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं, तो अजीत जी वो सीधा बेनिफिट तो क्या है मुझे मालूम नहीं उसकी, उसका क्या मूल्य है, लेकिन जो दृश्य रूप से इनडायरेक्ट बेनिफिट इतना होता है कि आज आप जैसा व्यक्ति तैयार होता है, ये पूरा युवा कार्यक्रमों की फिलॉसफी है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम ऐसे युवाओं की कहानियां जो हमारे प्रोग्राम में अभी नहीं है लेकिन भविष्य में शायद होंगे, और आपका कुछ अभी एनकाउंटर हुआ हो उनके साथ में, उन जिन्होंने की बात हम आपके साथ करना

0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जो आपने बात कही कि सीधे तौर पर, क्योंकि आज का युवा है जो बहुत संयम नहीं है, हम बहुत कम समय में ज़्यादा टर्नओवर चाहते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी एक गलती भी है और शायद इसी के लिए युवाओं को समझाना भी है, जगाना भी है कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपकी जो सफलता का है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने जुनून में लगे हुए हैं, तो आपको परिणाम तो मिलेगा। देरी हो सकती है, लेकिन समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे वंचित रह जाएं। तो कहीं ना कहीं आपका संयम, आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य निष्ठा, वही आपको आगे लेके जाती है। और शायद मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, एक छोटी सी जगह से निकल के कॉलेज में एनएसएस ज्वाइन करना, देन एनएसएस का राष्ट्रपति अवार्ड मिलना, उसके 2 साल बाद नेशनल यूथ अवार्ड मिलना, फिर मैंने कुछ दिन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो हेल्पलाइन है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करना, आफ्टर दैट फिर मुझे स्टेट यूथ अवार्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार से मिला, और उसके बाद मैं चूंकि सक्रिय था, सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा था, और मुझे भी नहीं पता था कि हमारी यात्रा एक एनएसएस के यूथ ऑफिसर के रूप में यहाँ तक आएगी। तो ये जो जर्नी है, ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबी यात्रा है। तो इस यात्रा में हमने बहुत सारे युवाओं से मिलना हुआ, बहुत सारी जिंदगियों को हमने बदलते भी देखा, क्योंकि बहुत लाइफ में चेंज आते हैं लोगों के। तो मेरे साथ साथ बहुत सारे युवाओं की भी लाइफ चेंज हुई है, लाइफ में बदलाव आया है, लोग आगे बढ़े हैं, लोगों ने नई कहानियाँ लिखी। तो बहुत उदाहरण है, मैं जिक्र कर रहा था कई सारे नेशनल यूथ अवार्डीज का, तो जब भी अवार्डी सब यूज होता है, तो क्योंकि मैं आज के युवाओं को जो देखता हूँ, थोड़ी बात अजीब है कि अभी नेशनल यूथ अवार्ड ओपन है इस टाइम पब्लिक फोरम में, 31 अगस्त लास्ट डेट है नेशनल यूथ अवार्ड के लिए, एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस मंत्रालय ने मांगे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कभी कभी जो बहुत सारे युवा मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या किया जाए कि मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिल जाए, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि कुछ करके अवार्ड लेना, या आपको अवार्ड में हमेशा अवार्ड को ये बोलता हूँ कि अवार्ड आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके लिए एक बूस्टर डोज हो सकता है, आपको और ज्यादा बूस्ट करता है कि आप समाज में और तीव्र गति से और ऊर्जा के साथ काम करें। अवार्ड इसलिए है, अवार्ड का पर्पज यही है कि आपने काम किया, आपकी पीठ थपथपाई गई और आप अच्छा काम करते हुए और आगे जा रहे हैं, आगे जाके आपको और पीठ थपथपाई गई और आगे निकल गए। तो आज के जो दौर के युवा हैं, उनके लिए मेरे तरफ से निवेदन भी है कि आप अच्छा काम करें, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे ऑफिसर्स हो, आपके चीजों को जब आप मेहनत करेंगे तो परिणाम मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे आपने कहा कि कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग जो जुनूनी लोग हैं जिनका जिक्र किया जाए, तो मेरे साथ के, क्योंकि कोई भी टीम, कोई भी काम आप अकेले नहीं करते हैं, आप एक टीम के साथ काम करते हैं, आपकी टीम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं जैसे युवा संवाद का जिक्र किया, तो युवा संवाद कोई अकेले का जज्बा नहीं था, अकेले का कोई मिशन नहीं था, उसमें हमारे साथ कई नेशनल यूथ अवार्डी थे। मेरे एक मित्र हैं, नेशनल यूथ अवार्डी हैं, जो कि समाज में लोगों को स्किल के माध्यम से जोड़ते हैं, उनको कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, लोगों को स्टार्टअप से कैसे कनेक्ट किया जाए। लखनऊ में उन्होंने खुद अपना स्टार्टअप, वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, मिस्टर रोहित कश्यप, तो वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, लोगों को जागरूक करते हैं, बहुत सारे महिलाओं को उन्होंने अगरबत्ती के रोजगार से जोड़ा, उनको सेटअप लगाना, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना, देन प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में जाएगा, ये सारा गाइड करते हैं। तो इस माध्यम से उन्होंने असंख्य महिलाओं को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। ऐसे एक साथी हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, खेल के क्षेत्र में, उन्होंने कैसे खेल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। नहीं तो हमारे अंदर जो विचार आता है कि हमारा जो खेल है वो शहर के स्टेडियम में ही रहता है, जो हमारा खेल है वो बड़े स्तर का खेल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है, जिनको हम कहते हैं हमारे माटी के खेल हैं, हमारी मिट्टी के खेल हैं, यानी कि जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसको उन्होंने, एक रविकांत मिश्रा जी हैं जिनको खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने खो खो को लेकर के अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि ये गेम हमारे गाँव की माटी से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम के मैट तक खेला जाएगा, यानी कि जहां मैट भी होगी और हमारे गांव की मिट्टी भी होगी। उस गेम को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचाने का काम किया है और उससे बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर खेल के आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को कनेक्ट करना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए गाइड करना, क्योंकि मैं वही बोला कि आज जो जरूरत है वो ब्रिज की जरूरत है। सरकार के पास संसाधन है, हमारे युवाओं को जरूरत है, उस जरूरतमंद को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार को उन जरूरतमंद पहुंचाना है। तो इस ब्रिज का काम करना भी आज के युग में बड़ा काम है, कनेक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत सारे युवा इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरा हम बात करें कि एक युवा विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए, क्योंकि आज है कि हम सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति, सही राह बताने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ही एक साथी हैं जो बहुत सारे युवा हैं जो जेल में किसी अपराध में, किसी कारणवश जेल में हैं, किसी कारणवश मानसिक विकृत हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करना, क्योंकि आज का ये वो दौर है जब शायद लोगों में इमोशंस नहीं है, लोग बात नहीं करना चाहते आपस में, एक दूसरे को गाइड नहीं करना चाहते। तो मेरे एक साथी ने बेसहारा और ऐसे मानसिक विक्षिप्तों का साथी अपने आप को घोषित कर दिया है। वो गोरखपुर में काम करते हैं, उनका नाम आजाद पांडे है, वो भी स्टेट यूथ अवार्डी है। उनका मकसद ये है कि कोई भी युवा अगर जेल में है, उन्होंने 5 जेल जो बड़ी जेल है उनमें जितने भी युवा बंद हैं, वो किसी भी माध्यम से, किसी का छोटा अपराध हो सकता है, किसी का बड़ा अपराध हो सकता है, कई बार गलत तरह से फंस जाते हैं लोग, उनको कानूनी अड़चन से बाहर निकालना, उनकी काउंसलिंग करना और उनके अंदर ये बोध कराना कि आपके अंदर वो युवा जीवित है जो इस देश में आकर के अपनी हर एक काम कर सकता है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोग जेल से निकलने के बाद आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो सोचिए वो भी युवा है जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, वो एक उभरता हुआ इस देश का नागरिक है। हो सकता है किसी गलतीवश, किसी कारण से, वो बहुत अनसुलझे कारण है, हम लोगों ने भी कई काउंसलिंग में हिस्सा लिया, तो ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला तो लगा कि किस सिस्टम में वो बेचारा फंस गया और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके बाहर लाना, उनको सामाजिक, यानी कि जो हम बात करते हैं कि उनको समाज में सम्मिलित करना, तो ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं, अगर समय होगा तो हम और उनको कंटिन्यू कर लेंगे।
1: नहीं नहीं जी, अगर श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं श्री अजीत कुशवाहा जो कि NSS ऑफिसर हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में, और हमारे साथ आज जुड़े हैं एक अफसर के रूप में। और पिछले एपिसोड में हम उनकी जो युवा यात्रा है, उनके जुनून की यात्रा है, उस पर बात कर चुके हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अजीत जी, क्योंकि हम जुनून कार्यक्रम में उन जुनूनियों से बात करते हैं, लेकिन जुनूनियों को सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम की जरूरत है, और हम लोग आज जो हम इस एपिसोड में जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि बहुत सारे जुनूनी हमारे देश भर में बिखरे हुए हैं, वे अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, कोई उन्हें एक्नॉलेज ना ही करे तो ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन में जो उन्होंने एक मिशन ले लिया है, वो जो जुनून उन्होंने पाल लिया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम उनको तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो इकोसिस्टम में शुरुआती दिनों में हमारा मंत्रालय है जो शायद कुछ नए जुनूनी भी तैयार करता है और जो जुनूनी पहले से काम कर रहे हैं उनको मंच देता है। तो इस इकोसिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या बदलाव की जरूरत है, और ऐसी कुछ कहानियां जो आपको और लगती हैं, जो आपने पूर्वी आपके भारत की अभी आपकी पोस्टिंग के दौरान आप देख रहे हैं, या आपका कुछ और भी एनकाउंटर यूपी के बाहर कुछ अन्य राज्यों में भी आपका रहा होगा, तो वहां से भी कुछ बातें आप साझा करें। जी
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर लगभग अभी 2 वर्ष हो रहे हैं इधर में IS यूथ ऑफिसर काम करते हुए। तो चूंकि पूरे प्रदेश के युवाओं से मिलना, बात करना, समझना, क्योंकि ओडिशा आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है। देखिए, किसी भी युवा के अंदर प्रतिभा की कमी तो नहीं है, वो किसी तरह से, हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसको अवसर नहीं मिला, और जिसको अवसर मिला है उसने जरूर कर दिखाया है, उसने अपनी बेस्ट परफॉर्म की है। कुछ उदाहरण है, अभी आप भी वाकिफ हैं, हमारे मंत्रालय 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ इस विशिष्ट अतिथियों को बुलाता है, युवाओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो मैं 2-3 बार से मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है दिल्ली में। मैं इस बार भी 15 अगस्त पे गया था, पिछली बार भी गया था, 26 जनवरी को भी गया था। तो मैं बहुत सारे युवाओं से मिला। तो जो युवा बहुत सारे युवा जो बहुत छोटी सी जगह से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर जब आप बात करेंगे वो संकोची स्वभाव के रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम वो चार दिन तीन दिन व्यतीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, साझा करते हैं, सीखते हैं, तीन दिन में इतना फर्क होता है कि उनके कॉन्फिडेंस, आप बात करेंगे तो वो ऐसा कर पाएंगे, वो यस में बोलते हैं, हाँ कर पाऊंगा, यस हो जाएगा सर। कहने का मतलब ये है कि मंत्रालय स्तर पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के युवा हो, चाहे वो आदिवासी युवा हो, चाहे किसी प्रदेश के युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी युवा हो, मौका अगर उसको मिला है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसको गाइडेंस मिल गया है, तो युवाओं में कमी नहीं है। और आज हम जो बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 2047 के विकसित भारत, तो ये जो पूरी एक जर्नी होगी, जो पूरी यात्रा होगी, ये शायद अकेले की यात्रा नहीं है, एक व्यक्ति इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे युवा आप यहाँ पर जब देखेंगे, जो युवा जिम्मेदारी निभा रहा है, जो एक अपनी समझ विकसित कर रहा है, किसी को भी टाइम दे दीजिए, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी को भी गाइडेंस मिल जाए, तो कोई भी युवा कुछ भी करने को तैयार है। तो हमें ये समझना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लिंक करना है, एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम उनको लिंकेज कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज पहुंचा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। एक होता है कि अपनी हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, क्योंकि हम सब अब लोक सेवा में आ गए तो लगता है कि हमारा एक ऑफिस काम पूरा हो गया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपने जो एक वर्ड यूज किया था वॉलंटियरिज्म, हमारे अंदर का वॉलंटियरिज्म जिंदा रहे। तो मुझे भी कई बार ये लगता है कि संडे है, सैटरडे है, या ऑफिस के बाद के जो आवर्स हैं, कैसे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि ठीक है मुझे अवसर मिला, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जिनको मौका नहीं मिला, जो नहीं आ पाए। तो हर एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक युवा को अवसर प्रदान करने के लिए, देखिए अवसर बहुत सारे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, हम और आप इतनी दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं डिजिटल और तकनीकी के माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आज तकनीकी के दौर में जरूरी नहीं है कि हम कहीं स्थानीय क्षेत्र में है तभी अच्छा काम कर पाएंगे, हम दूर दराज में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ के भी अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा जिनको ये लगता था कि नहीं ये सब सामाजिक चीजें जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी पढ़ाई हमारे लिए पर्याप्त है। मैं बहुत सारे अभी आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊं, मैं कल ही एक प्रोग्राम में था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप था, मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया, बच्चों का जो उदाहरण था बच्चों ने खुद ही एक्सेप्ट किया। मैंने ये बोला कि अगर आप सामाजिक चीज़ों में एक्टिव हैं, यानी कि आप आपके अंदर लीडरशिप आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहे हैं, और आपके 99% मार्क्स आ रहे हैं आपकी मार्कशीट में, और आपके अंदर सामाजिक समझ नहीं है, आपके अंदर वो सामाजिक चेतना नहीं है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं है, तो आपके लिए वो 99 जो मार्क्स हैं वो डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद सारे युवाओं का हाथ था कि सर 99% हमारे लिए किसी काम के नहीं है जब तक हमारे अंदर लीडरशिप, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, लाइफ स्किल्स, इतनी सारी ये जो भी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नहीं होगी, तो शायद वो हमारा मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह के रह जाएगा। यानी कि हमारे 99% मार्क्स को भी जस्टिफाई करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। ये सारे गुण जितने भी हमारे, चाहे माई भारत प्लेटफॉर्म हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना का प्लेटफॉर्म हो, स्काउट गाइड हो, एनसीसी हो, या बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे युवा साथी जो नेशनल अवार्डी रहे या जो एक एक्टिव यूथ रहे हैं अपने टाइम में, तो वो किसी न किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और वो युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, उनमें लीडरशिप बिल्डअप करते हैं। कहने का मतलब ये है कि युवा सिर्फ किताब तक, सिर्फ एक छोटी जगह तक, जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में कूप मंडूक, हम कूप मंडूक वाली स्थिति में ना रहें, हमारी सोच एक कुएं के बाहर, एक बड़ा एक खुला आसमान वाली हो, हम दूर तक चीज़ों को देख पाएं, वो समझ पाएं। और आज का जो हमारा कंपटीशन है वो हमारा हमारे पड़ोसी के घर से कंपटीशन नहीं है, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से, पड़ोसी के प्रदेश से नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज हम वैश्विक स्तर पर हैं, तो हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे देशों से है, चाहे वो तकनीकी माध्यम हो, तकनीकी चीज़ एक अलग हो गई, हमारा ही जो आंतरिक चीजें हैं, यानी कि हम इंटरनल, हमारा आज पर्यावरण से जूझ रहे हैं, वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आज हम अपने अपराध इतने हो रहे हैं, आज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एक बड़ा इशू है, उसमें भी युवाओं को आगे आके जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको युवा ही समझ सकता है, युवा ही सॉल्व कर सकता है, एक जो ओल्ड जनरेशन है उसको जागरूक करने के लिए भी युवा आगे आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारे युवा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इस कॉलेज की एकेडमिक तक सीमित ना रह के मुझे कुछ अलग करना है, कुछ थोड़ा जिम्मेदारी निभाना है। तो ये जो जिम्मेदारी का बोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्रालयों का भी हाथ है, सरकारों का भी बड़ा सपोर्ट है, सामाजिक संगठनों का भी सपोर्ट है, और आज का जो सोशल मीडिया है, डिजिटल युग है, इन सबकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो इसके माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, सीखते हुए, क्योंकि जब हम खुद अपने आप में कैपेबल होंगे तभी कुछ दूसरे को बताएंगे, यानी कि दान वही देगा जिसके पास कुछ देने के लिए होगा। तो पहले तो हमें युवा को कैपेबल बनना है, अपने को इतना सक्षम बनाना है कि हम किसी को कुछ दे पाएं। ज्ञान होगा तो नॉलेज दे पाएंगे, पैसा होगा तो कुछ दे पाएंगे। तो जो भी चीज़ हमारे पास है हम अपने आप में कैपेबल बने, दूसरों को बांटें और सिखाएं और बताएं, और यही शायद एक साथ, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे देश का उत्थान तभी होगा जब हम लगभग 140 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है, जब हम सभी लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे साथ मिलकर, तभी इस देश का भी कल्याण होगा, तभी इस समाज का भी कल्याण होगा, और तभी हम एक जो विकसित राष्ट्र की कल्पना है, जो विकसित राष्ट्र की जो परिभाषा है, उसको सार्थक कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए या देश की तस्वीर बदलने के लिए वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, और वॉलंटियर्स की दुनिया की तस्वीर बदलते हैं। मैं कहूँ कि ना तो किसी अन्य का उसकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी वॉलंटियर्स की है, है ना। तो वॉलंटियरिज्म ही दुनिया का सबसे बड़ा औजार है, जिस अगर उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए या सही दिशा दिखाई जाए तो हम बदलाव कर सकते हैं। खैर, आज के इस बातचीत हम कर रहे हैं जो वॉलंटियरिज्म को लेकर या जुनूनियों को लेकर या जुनून को लेकर जो क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो इस पूरे इकोसिस्टम पर भी आपने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से मंत्रालय की एक भूमिका है और किस प्रकार से एक कदम वो सभी का साथ बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आपने जेल इनमेट्स के साथ जो काम हो रहा है, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी दुनिया है और हमारा देश कहीं ना कहीं करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो एक अलग कहानी आपने हमारे साथ रखी। शायद वो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट मेरे लिए तो अभी शो में था जहाँ से आपने बात रखी। और युवा कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में अभी जेल इनमेट्स के रूप में है और जेल एक उसकी पूरी तस्वीर को वापस बदलने के बाद सेकेंड इनिंग खेलने का उसको मौका दे, ना कि ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट इनिंग में ही अपने अपराधों में सेंचुरी मार दे, ऐसा ना हो, बल्कि वो सेकेंड इनिंग में वापस एक नई शुरुआत करे, ऐसा जेल का वातावरण होना चाहिए, उस पर आपने पूरी बात रखी है।
0: क्योंकि हमें लगता है हर एक काम हमारे देश के लिए है, हर राष्ट्र के लिए है। जब हमारा हर एक युवा कैपेबल होगा तो ये राष्ट्र और सक्षम होगा और मजबूत होगा। इसी के साथ आपका, हमारा जो आज का मधुबन रेडियो, जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ आज के आरजे के तौर पे जो आपने एक जिम्मेदारी निभाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और हम इसी तरह से हम सबके अंदर ये जुनून हमारा जिंदा रहे, क्योंकि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
1: रास्ते भी इंतजार करते हैं, आपने अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात रखी, मजा आ गया आज की बातचीत के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री अजीत कुशवाहा को। अजीत जी NSS अफसर हैं उड़ीसा में और एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी भी रहे हैं, और उन्होंने पूरे जुनून की कहानी आज विस्तार से हमारे उनके साथ बातचीत में रखी है। और कुछ कहानियों को सुन के तो निश्चित रूप से ऐसा मन हुआ कि क्यों ना उन जगहों पर जाकर उनसे मिला जाए, सुना जाए। तो आप सुनते रहें अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और आप सुन रहे थे आपका एक बेहतरीन कार्यक्रम जुनून, जो हम आप तक लाए थे 107.8 के माध्यम से। आज की पूरी तकनीकी टीम को हमारी तरफ से आभार और धन्यवाद। सुनते रहे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीरथ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: आ गया। क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी। अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से हैं ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा, और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456। शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ, अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
1: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।
3: बहुत थक गई मैं तो चलते चलते।
4: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
3: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
4: तालाब से 2 घूंट पानी पी लो और 2 घड़ी सुस्ता लो।
3: नहीं रहने दो, बहुत रात हो गई है।
4: पूरन मासी

0: हाँ, जैसे कोई नन्ना बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
1: चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है।
0: ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
1: या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया। देखो देखो ना, मेरी गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
0: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
1: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
0: पागल हो गई हो?
1: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं।
1: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
0: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
1: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
0: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
1: लोगों से क्या मतलब है हमें, कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम।
0: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
1: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साहत पूरी हुई।
0: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
1: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीर दास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था। था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा एक बात पूछनी है। पूछूं क्या?
0: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
0: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
0: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
0: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
0: जैसे हम मुसलमान हैं वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
0: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
5: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
0: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना।
0: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
0: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब्बा बताओ ना ये अल्लाह कौन है?
0: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी

0: हो आई, दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं?
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी तो दुत्कार दिया मौलवी साहब ने। कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े के हमारी औलादें बुनेंगी।
0: अरे बोलो।
2: अम्मा।
0: लो, आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूंगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर ना हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।
0: अच्छा।

0: कहना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थीं कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो।
1: मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका।
2: अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता।
3: क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम कबीर है, आप लोगों से कुछ सुनने आया था।
2: इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो।
4: आप भजन क्यों गाते हैं?
2: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
4: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
3: हम सबका मालिक।
4: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
3: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
4: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
2: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
4: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
3: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
4: ये दुनिया उसने बनाई तो उसे किसने बनाया?
2: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
4: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया?
3: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
4: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
2: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
4: पर बुद्धि तो एक सी पाई, फिर सोच अलग क्यों?

0: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
1: बाबा ये दुनिया उसने क्यों बनाई, यहाँ तो सभी दुखी हैं।
2: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
1: कब तक?
0: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
1: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
2: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
1: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
0: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
1: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
3: कबीर, अरे ओ कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
1: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
0: बहन अद्भुत बालक है तुम्हारा।
3: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
4: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
0: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
4: अरे बच्चा हमारे साथ चलेगा क्या?
1: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मुझे आज्ञा दीजिए।
0: कल्याण मस्तु।
5: बालक तू चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
0: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
4: यहाँ से चलो किसी और ठोर। अरे ना धी ना ना ना नी ना ना।
6: क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो।
7: और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही।
6: बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो।
7: अरे उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है।
6: उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन भी आएगा अपनी लड़की इससे?
7: क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में?
6: अरे ये सत्संग बत्संग।
7: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
6: कौन है भाई वहाँ?
8: नीरू भाई मैं हूँ।
6: आओ आओ और सुनाओ क्या हाल है।
8: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
6: हाँ उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ। रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
8: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
7: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
6: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
8: कल मैंने भी सुना कबीर को, खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
6: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
7: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
8: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
7: यही तो डर है मुझे।
6: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने दो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने।
8: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है, इंसानों का बनाया हुआ।
6: या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है, मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है।
8: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठे कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
6: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
8: अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है। कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है, खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता।
7: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
8: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
7: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
6: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
8: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
7: सुनो मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
6: अब तुम ना जाओ कहीं।
7: क्यों?
6: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: अरे तुम कब आए?
1: अरे कुछ देर हुई,
0: चुपके चुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, दो दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
1: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
0: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
1: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
0: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
1: अजीब बात है,
0: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
1: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
0: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
1: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
0: चलो।

0: सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
1: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
0: नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो।
1: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
0: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
1: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
2: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
3: सच्ची बात है कबीर,
4: कोई नहीं मिट सकता।
0: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
0: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
1: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा, ठीक कहा ना मैंने?
0: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो।
1: संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे। और उधर उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है।
3: मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
4: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
3: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
4: हाँ, सच्ची।
3: अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
4: माँ होकर तुझसे मोह ना पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
3: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
4: कल की सोच कर आज का सुख छोड़ दूं बेटा मैं।
3: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
4: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
3: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
4: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
3: दुआ कर कि मैं कामयाब हूं।
4: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
3: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
4: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है, क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले?
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा, समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे?
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
2: भाइयों, शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: आप ईश्वर के खिल्ले उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा।
1: पत्थर की बेजान मूर्तियाँ तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं।
2: अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले से ज्ञानी से बहस बेकार है।
0: चलो चलो,
2: फालतू की बातें करता है। चलो
3: साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे।
1: रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं, हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे।
3: लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं।
1: हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं, वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ?
1: आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेना नाई।
5: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया।
1: मैं तो केवल सच कहता हूँ।
4: गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर।
1: बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
4: वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है, जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ।
1: जी बहुत अच्छा।
0: देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई, हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं।
4: अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें?
0: अरे ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे।
4: कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो, कंकाल भला दूध कैसे देगा?
1: गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता?
4: वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर, यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, धन्य हो।
1: स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है।
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, ज्ञान की गंगा बहाते रहो।
1: लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ।
4: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
4: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
4: कल्याण हो।
1: कौन?
6: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
6: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
6: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
6: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगा कर करेंगे।

0: मियाँ कोतवाल साहब आधा वर्ज है।
1: अरे आधा वर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
0: अरे मियाँ तकलीफ में तो हम खुद हैं, कबीर ने जीना हराम कर रखा है।
1: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
0: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
1: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
0: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
1: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
0: लाहौल बिला कुवत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है, और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे क्या?
1: मौलवी साहब अदब कायदा ना भूलें।
0: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
1: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
0: हाँ बेहतर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों काफी तादाद में
0: है। अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए कोतवाल साहब,
1: अरे छोड़ो पंडित जी। खैर, हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बरछी है। बरछी?
1: बरछी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे बहुत गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब मुझे बचाइए साहब, साहब दे।
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आना कहानी करता है ये बलवान।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे रहा पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल। क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर।
5: अरे जरा अक्ल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब।
1: अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो ठीक है, सिपाही छोड़ दो इसको, छोड़ो।
3: साहब आपने मेरी जान बचा ली साहब, बहुत मारा साहब।
2: जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यूं ही जुल्म सहोगे, कुचले जाओगे।
3: पर अब हम जुल्म ना सहेंगे साहब, हम में हिम्मत भी नहीं है।
2: ऐसा ना कहो भाई, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस एकजुट होने की जरूरत है।

0: अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है?
1: अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं।
0: अरे चुप, बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं?
1: अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में, मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ।
0: अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में, और क्या?
1: अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुलम है ना कोतवाल साहब।
0: अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना।
1: पर हमें तो कबीर साहब के कवित्त ही अच्छे लगते हैं। अरे माटी का है कुमार से माटी
0: अरे, का अरे, अरे अरे अरे अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से माटी का कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
0: अरे नहीं नहीं कबीर जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कवित्त के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं?
3: साहब हम सब इसका विरोध करेंगे।
4: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
3: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रेदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
0: अरे या कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं,

0: वो यहीं छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यहीं छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञान वश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
1: हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
2: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
0: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है।
2: और भैया
0: सुनो।
3: हाँ भैया।
0: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं।
1: क्या?
2: अम्मा मैंने भी सुना है, इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
0: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं अम्मा।
0: लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
2: हाँ अम्मा, हम सबका मसीहा जा रहा है।
0: सच कहा भैया।
2: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
0: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग।
2: अच्छा।
0: अपने कबीर कहते हैं
2: हाँ।
0: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
2: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
4: अरे अम्मा अम्मा अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे, कबीर का देहांत हो गया।

0: शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, अब कबीर को अच्छी तरह नहला धोकर हम उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं।
1: अरे लाहौल मिला कुबर, कैसी बात कर रहे हो, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा रंग दे बसंती चोर।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं, तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
0: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूँगा या करना ही है
0: जी।
1: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है, जिसको हम Gen Z कहते हैं
0: जी,
1: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
0: जी।
1: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं है
0: जी।
1: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
0: जी।
1: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहां है उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
0: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो, तो ये तो करते हैं। लेकिन वो जो स्तर है वो सूक्ष्म में है, तो ये स्थूल में क्यों नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में क्यों अचीव नहीं कर पाता?
1: क्योंकि जितने स्टेटमेंट आपने बोले हैं उसमें कुछ चीजें अगर आप नोट डाउन करें कि पहले ही आपने कहा फेक है, तो आपका माइंड जानता है ये फेक हो रहा है, जबकि माइंड को ये सूचना नहीं देनी है। इट्स अ माइंड गेम, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टू, कि माइंड को ये सूचना नहीं देना है कि फेक करना है जी, मैं नकली नकली बोल रहा हूँ जी। हालांकि हम ये चीज उसे बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर है,
0: सबकॉन्शियस माइंड में है।
1: हाँ, और तभी मुंह से निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए। और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है।
0: ओके, उसको फील करना।
1: हाँ,
0: लेकिन वही माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
1: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं।
0: जी,
1: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
0: जी।
1: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा, बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें। बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा। तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है, जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
0: जी।
1: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा था, तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है। तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है। तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
0: जी।
1: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
0: जी,
1: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20, लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
0: जी।
1: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
0: जी,
1: ठीक है। और उसके बाद डेली जब उठता था, इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था, मैं इस घर में घूम रहा हूँ, और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ। और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ।
0: Okay.
1: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है, ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
0: जी।
1: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
0: जी।
1: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ।
0: तो उसके लिए कुछ करना होगा
1: ना, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको किस चीज से खुशी होती है, कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है। लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग,
0: ओके,
1: आई एम लिविंग द बेस्ट,
0: उसको विजुलाइज करना।
1: विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन। तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है वो बहुत फास्ट होगा।
0: ओके जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
1: जी।
0: बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब, ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते। तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में
1: जी,
0: किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती है
0: जी।
1: क्योंकि जो जमीन का विवाद है उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, चाहे जमीन नहीं मिलती है लेकिन कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है तो एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए। लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें भी समझाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में है। आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही ये लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
0: जी।
1: ये मानना एक खुशी दे देता है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है। बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खमी तो खलती है
0: जी।
1: लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा विदेश में डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
0: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना बहुत ज़रूरी
1: है। लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है। तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल ताशे शुरू हो चुके हैं, और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा।
0: ओके,
1: और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है। तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
0: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं,
1: यस,
0: तो दिल से निकलना।
1: हाँ, तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी

0: वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज़ समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए, तो उसके बजाय क्योंकि वो जा रहा है उसको जाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी वो उस मोड पे है
1: जी।
0: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
1: बिल्कुल
0: नहीं,
1: नहीं।
0: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे। तो अभी भी वो जा रहा है तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स जो भी है उसको एनर्जी की जरूरत है बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड। और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है।
1: राइट।
0: फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस एफएम, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए
1: जी।
0: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है। तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस, हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है। तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं
0: जी।
1: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
0: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए लोगों से,
1: ओके,
0: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज़ में टॉप लेवल पे रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है
1: जी।
0: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं
1: जी,
0: ठीक है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं, हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें इफ़ यू थिंक द थिंग इज़ राइट, ये जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं। इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है। तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता
1: जी।
0: तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वाज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा,
1: राइट,
0: ओके। तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ। आई हैव गिवन माय माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा,
1: ओके, डिप्लीट होता है, तो उसमें की कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब
0: सब कुछ पता नहीं, 1,000,000 सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना, वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है, आपका स्टमक है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है। तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये
1: जी,
0: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है। तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वाज अ चैप्टर एंड आई लर्न्ड इट,
1: ओके,
0: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है
1: जी।
0: हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है
1: जी।
0: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है, आगे भी होगा, लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं, चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
1: जी।
0: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
1: जी।

0: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं, इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव. इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवर सेल्फ.
1: जी
0: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ. मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ. हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहां कुछ सोच रहा हूँ, तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी.
1: ओके,
0: ठीक है. हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है. तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं, तो जो चीज आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे. और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है.
1: जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में, 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना माने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं. तो उनको कैसे, क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
0: इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए. तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए. बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए. जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, इट वाज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था, डोंट टेक द टेंशन. बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स.
1: जी,
0: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वॉज नॉट सो गुड इन मैथ्स. तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया. And he died. He jumped off of the building. तो पेरेंट्स शॉक में है क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना.
1: जी,
0: तो ऐसे भी बच्चे हैं. लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं. एक अकेले का थॉट उसके साथ काम नहीं कर रहा है. पेरेंट्स हैं लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं. बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है. तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है.
1: जी.
0: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, एंड आई एम डूइंग नथिंग. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है.
1: जी.
0: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
1: जी.
0: और तू ऐसा, तो ये क्या चल रहा है. तो वो अकेले नहीं होता है जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं.
1: जी.
0: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं. लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें.
1: जी.
0: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर करना है, क्योंकि लाइफ मुझे पढ़ाई में जीरो चाहती है, शायद स्पोर्ट्स में हीरो चाहती है. लेकिन हो सकता है मैथ्स में जीरो चाहती है, लेकिन कॉमर्स सेक्शन में टॉपर बनाना चाहती है. लाइफ कभी भी किसी को जीरो नहीं देती, कभी भी नहीं. हमने बेगर्स भी देखे हैं जो करोड़पति निकले हैं. तो लाइफ कभी किसी को जीरो नहीं देती है. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि मेरा हर बच्चा, नालायक से नालायक भी, मैंने उसको एक गुण जरूर दिया है, यानी उसके लिए उसको दिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके. इसीलिए अगर मैं ऐसी मोड पे हूं तो आई मस्ट शेयर, ठीक है, किसी से भी जिससे आप अच्छा फील करते हैं. और मेरा कोई शेयरिंग सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें. लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है.
1: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप,
0: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है. तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी. आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर. कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं. आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशन.
1: एआई से भी बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर. तो मेरा लेवल जो आगे,
1: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में. यू हैव टू चेक, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
1: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते.
0: हाँ, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए.
1: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं हमें, उस तरीके से देखते हैं. हाँ, हर बार.
0: बिल्कुल, तो इसलिए AI से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर.
1: राइट राइट, कोई तुलना ही नहीं है.
0: कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि AI कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है. और इसका जो आज भी साइंस ये कहता है कि वो AI जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है. एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है.
1: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन से.
0: यस, सबकी इंफॉर्मेशन. तो इट्स बेटर टू क्रिएट मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग. हम फ्रेंड सर्कल बना लें. ठीक है, लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहां आप अपना शेयर कर सकते.
1: भगवान जवाब देते हैं क्या?
0: बिल्कुल देते हैं,
1: तुरंत, जैसे AI देता है.
0: तुरंत चाहिए तो, तुरंत चाहिए तो, जैसे AI आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है आपने,
1: अब प्रैक्टिस करके किया है,
0: किया है. हाँ, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं AI से कुछ मांग सकता हूं?
1: नहीं
0: नहीं. तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द AI. तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है. बहुत मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे, पर मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा नहीं.
1: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए.
0: हाँ, मेरे जवाब आने चाहिए. मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता है. दुनिया में नहीं होता. आपको कुछ करना ही पड़ता है. एक डॉगी भी, उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछ लाता है.
1: राइट.
0: इसलिए कुछ तो करना होगा, तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं.
1: जी जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में?
0: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है. कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं. जैसे अब मैं क्या नाम लूं, बहुत सारी हस्तियां हैं समाज में हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने, जो भी बच्चे ने हैं, वो डिफरेंट सोचा और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं. लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है.
1: जी, जी.
0: उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प धारी हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
1: कन्विंस करें,
0: कन्विंस करने की ताकत रखें. लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स ट्रू, आई अग्री. लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं. तो पेरेंट्स को ज़रूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है. तो इसलिए एक पेरेंट को ज़रूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें. पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूँगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज़ को ज़रूर पक्का पूरा कीजिए. लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. तो आप पढ़ें भी
1: जी,
0: लेकिन क्रिकेट भी खेलें. ठीक है, क्रिकेट खेलने के भी वो भी टाइम देंगे. अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे. वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो, ये क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है. कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में. इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं, वो सबसे बेस्टेस्ट है.
1: जी.
0: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे, तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं. आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे, तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, रह ही जाएंगे.
1: जी, बात क्रिकेट की हो रही है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं. आजकल तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि अभी IPL भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए, तो आप नहीं कर पा रहे हो. तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट, मैं यही कहूंगी. लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, मैं सलाम करती हूँ इंडियन पेरेंट को, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग जैसी पेरेंटिंग मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है.
1: बिल्कुल.
0: उनके ताने ही हमारे आगे जाने का रास्ता है. जो मेरे साथ है, ताने किसको नहीं मिले हैं, सबको मिलते हैं. वो माँ बाप शायद इसी जो कहें तलवार है उनका, यही उनका चाकू है, यही उनका तीर है, जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए. अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं, तो समाज ताना नहीं देगा.
1: Right.
0: और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सही नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा. तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं. उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं. आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं. वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं. माए कहेंगी घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं. लेकिन हाँ, आज टिकटॉकर भी बहुत सारे रील्स बना करके लाखों कमा रहे हैं.
1: राइट,
0: ठीक है ना. लेकिन जब आप लाखों कमा रहे होते तब तो नहीं वो ताना दे रहे.
1: नहीं,
0: ठीक है ना.
1: बोलते क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो, लेकिन जब रील्स बना दे, जब पैसे आते हैं और अच्छे क्रिएटिविटी के साथ रील्स बनाते.
0: कॉमेडियन सेड सो कि पहले मैंने छुपाया था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था जॉब जाता है, और मैं जॉब जा भी रहा था. लेकिन जब कॉमेडी में पैसे आने लगे तो पेरेंट्स को जब मैंने दिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोला मैं कॉमेडी करता हूँ. तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ भी करो, बस पैसे कमा रहे हो तो ठीक है. तो अब वो आ गए ना आपके ट्रैक पे. तो इट्स नेसेसरी कि यू आर प्रोग्रेसिंग. तो पेरेंट्स कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे.
1: जी जी बिल्कुल. तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको. तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार सब कहते हैं, कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
0: कैसे पहचाने? जिद आप देखिए नेगेटिव है और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना. तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है. क्योंकि जो जिद है वो ईगोइस्टिक है
1: जी,
0: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन ईगोइस्टिक है. तो लोग मुझे बता देंगे कि आप, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है. तो ठीक है, एक ने का इट्स ओके, दो ने का इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
1: ओके
0: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में.
1: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है.
0: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है. दूसरा, आपको वो रिस्पांस गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका. और आपको भी लग रहा है कि मैं अपनी चीजों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज्यादा फील होता है. आपको भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
1: जी.
0: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता, कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
1: जी,
0: यानी पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है. तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति. इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए. क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है.
1: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
0: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता.
1: ओके.
0: एक है कि मैंने बस अपनी जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यहीं गड़ेगा. मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता. अब कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा. तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है.
1: ओके
0: ओके. तो ये चीज नहीं चाहिए. आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन. लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है. दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
1: जी.
0: तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मुझे समझना है. सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ू तो ये रिजिडनेस है
1: जी,
0: ठीक है. लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए
1: जी.
0: लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है. अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा. तो इट इज रॉन्ग.
1: ओके,
0: ठीक है ना. तो ओपन माइंडेड मीन सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टली करना है. ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ. नहीं, स्वीकार मत करें
1: जी.
0: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया. चेक करना बहुत जरूरी है
1: जी.
0: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे. नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है.
1: अच्छा, लिसनिंग करना,
0: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है. और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड. और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है. तो मुझे सुनना है. हाँ, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ.
1: okay.
0: समझ जरूर रहा हूँ. उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ. उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता. लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ.
1: ओके कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो जो जैसा कहा अच्छा ठीक है
0: okay. मैंने कहा स्वीकार नहीं करना
1: हाँ,
0: है, नहीं करना है। सुनना है
1: हाँ, सुनना है
0: हाँ.
1: पर हम ये समझ लेते कई बार लेकिन ये नहीं है
0: ओपन माइंडेडनेस अपना सबका अपना अपना मीनिंग है डेफिनेशन से लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है
1: okay.
0: समझना सबका है
1: करना
0: हाँ करना जो सही है
1: सही है
0: हाँ उसके लिए भी मैं टेली कर लूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल है मेरे फादर मदर है या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है उनसे मैं टेली कर लूँ मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली समझ ली बट मैं तो वही करूंगी तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना इट इज लाइक रिजिडनेस ठीक है तो आप एक
1: सलाह भी लेना
0: सलाह भी लेनी है
1: जी ओके अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता तो उसमें क्या करें दृढ़ निश्चय भावना रखना है अनुशासन रखना है
0: दोनों ही चाहिए
1: दोनों ही चाहिए
0: दोनों ही चाहिए क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
1: जी
0: अनुशासन बड़ों का पैर भी छूना है ठीक है लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाता है दृढ़ संकल्प अपनी जगह है उसके लिए बहुत जरूरी है और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे जैसे अपने एग्जांपल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है व्हाटएवर इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा ठीक है नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके लेकिन कम तो कर सकता हूँ तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं वो किला हम सोच लेते हैं अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना मुझे छोड़ना है ठीक है तो एक दिन में किला नहीं बनता ठीक है छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं अच्छा मैं एक कप पीता था अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था लीव्स डालता था अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा मतलब उसकी ना पावर को इंटेंसिटी को कम कर दूंगा
1: ओके
0: ओके फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती
1: कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे चाय पियेंगे बातें करेंगे तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ऐसे कहते हैं
0: आज का तो यही है
1: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो वो कैसे करें
0: तो आज का तो यही बहुत ज्यादा है ठीक है इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा शी इज क्वाइट शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल तो आई एम नोवेयर शी सेड सो ठीक है बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं ठीक है ये दिन आएगा बहुत जल्दी ही आएगा क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना ऐसा अल्कोहल हो गया है और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है चाहे वो बर्थडे पार्टीज है मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है लेकिन अल्कोहल इज देयर अब वो बच्चा क्या देख रहा है ठीक है वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाए बट अल्कोहल इज देयर ठीक है तो ठीक है आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल 4 साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड
1: जी
0: ठीक है ना और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है सिस्टर है एक नोन है वो मतलब तो पहाड़ों की है तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ तो हम एक दो सुट्टा मार के उनको दिया करते थे तो कहां से मारा क्यों मारा बिकॉज दादी मार रही है तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ पी के लेके आओ नहीं बोला है लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूं तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई
1: झूठ भी बोलने लगा
0: हाँ तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को? नहीं, बड़ों को. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग. ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है.

0: ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं. तो जो बाहर की है वो
1: एनवायरमेंट को भी सूट नहीं होता
0: क्योंकि बाहर ये नेसेसरी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर.
1: यस,
0: ठीक है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है. इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो. ठीक है, तो हम चीजों को समझें क्या चीज जरूरी है और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है. लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ. तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे. बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे. ठीक है, तो हमें अपने को रोकना होगा. इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ.
1: जी, लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते. सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं. मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे करें.
0: वही सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा.
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए. ठीक है, जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं. इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है. तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प. अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं, एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू.
1: जी,
0: ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ.
1: okay, आपको क्वेश्चंस पूछना.
0: हाँ, क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलो ठीक है. दूसरा, मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है. चाहे वो किसी सेंस में आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं. ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला डेली, मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
1: उनके फ्यूचर के लिए,
0: पढ़ाई के लिए. कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच. ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट. और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी. बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती. दिस और दैट वे आई गेट माय अल्कोहल. ठीक है, लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है. पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया. तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही. लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके. ठीक है, और अगर आप इतने एम्पावर्ड नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें, यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है. उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट. लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे. ठीक है ना, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा. फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
1: थोड़े टाइम के लिए किनारा करना पड़ेगा,
0: अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं.
1: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप. जी दीदी, अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो ऑफिसेस हैं, कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वहाँ पर कई बार हमारे मेहनत का श्रेय किसी और को चला जाता है. कई बार हमें सब कुछ करने के बाद प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, फिर स्ट्रेस है, उसके उस बीच में लक्ष्य पर टिके रहने का क्या तरीका है, सकारात्मक खुद को कैसे रखें और फिर दृढ़ता के साथ
0: कैसे आगे बढ़े. हाँ, तो पक्का है कि आपको उसी जॉब में रहना है, पहले तो यही पक्का कर लीजिए. क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन मिल रही है, ना फिर कोई इस तरह से मेरे को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है,
1: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं. हाँ, वो भी सोचा. हाँ,
0: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वही टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है. तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
1: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
0: हाँ मुझे अपना हॉलीडे अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल टीचिंग जॉब, तो व्हाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माय फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट. हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
1: प्रिपरेशन चाहिए बहुत,
0: हाँ, बहुत. लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लल में गुड हो रहा है. तो पहले तो अपने आप को ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है. अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें. लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है, तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी,
1: ओके,
0: फिर अपने पे काम करें. फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है. और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी.
1: जी.
0: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है.
1: ओके.
0: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्जाम्स दे सकता हूँ. जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक खाता है कि आप और फर्दर एग्जाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं. तो मैं अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है.
1: ओके. मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है.
0: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ. लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और की एप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ?
1: नहीं.
0: नहीं. जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है. उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है. ठीक है, मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है. ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट.
1: ओके. हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
1: जी,
0: उसको बैलेंस करने के लिए. तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो उनको मेरी जरूरत है.
1: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत
0: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है?
1: अपने आप को समझाना है. हाँ, समझाना या
0: समझाना नहीं है, ये करना ही है.
1: करना ही है
0: कि जब करना ही है तो रोक के क्यों करूं, हंस के भी तो कर सकता हूँ. उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर.
1: जी.
0: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क. कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं.
1: जी.
0: ठीक है ना, तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है. ये आप पक्का अंदर कीजिए, आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है.
1: नहीं, कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं. इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी, जब PI की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं. तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
0: PI
1: पर्सनल इंटरव्यू.
0: ओके ओके ओके. तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
1: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
0: ये दो बेसिस आपने लिए हैं. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
1: जी.
0: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं. तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग. हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस बहुत जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर कोई है। और आज की डेट में तो ब्लैक ब्यूटी भी है जो बहुत टॉप लेवल पे है,
1: बहुत सारे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स भी जीते,
0: तो ब्लैक कलर को भी बहुत आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है। हैव प्राउड ऑन योर सेल्फ, मुझे मेरी ही चीजों पर शक है तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। जो भगवान ने मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू कैन अज्यूम कि लोगों का, मैं दिखती ही नहीं हूँ जब भीड़ में होती हूँ, तो एवरीबॉडी सेज आप कहाँ हो, तो आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
1: जी।
0: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ, हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन, आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे, अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं
1: जी।
0: और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के MNCs में ना प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स भी हैं, सीखो आप, बहुत सारी चीज़ें, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो, सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो, ठीक है, छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है। और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले। आज आप देखिए कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बरमुडास विद अ चप्पल्स
1: जी,
0: लेकिन कॉन्फिडेंटली
1: जी,
0: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियान में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज, आप कॉन्फिडेंट हैं वो कंपनी देख रही है, ठीक है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है। और हायर लेवल में तो ये सारी चीजें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, कि आपका EQ कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है, इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है, मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया, तो इट्स ना, तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले अपना बोल सुधारें, जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोलें, जोर जोर से पढ़ करके बोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
1: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं,
0: हाँ स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है।
1: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल, कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
0: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें,
1: ओके,
0: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है, बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे, जो मैंने कदम लिया है, तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है, तो मेरी मेरे से बात होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट,
1: मी टाइम,
0: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ, मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए, जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है, तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले।
1: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं?
0: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली,
1: तो अलग अलग तरीका देखें अपना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
1: कुछ सिखाने के लिए,
0: सिखाने के लिए आई है, लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट, आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट। आप चार बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है, ठीक है, जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन, तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्मा कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ, तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ. मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. ही सेड सो कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है.
1: करना है
0: तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी. वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है.
1: जी
0: अब हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है. तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है. भेजा माना कुछ करने के लिए. तो मेरे डेस्टिनी में है. हाँ, वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करना है.
1: कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए.
0: करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं. तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है. मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर है, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब.
1: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
0: में. रेडियो में है ना. तो इस ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही.
1: जी.
0: आपकी डेस्टिनी में है जो ना, वो आपको उस तरफ खींच रही है. तो वहां आपके कम नंबर है या वहां आप फेलियर है या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहां जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सके.
1: ओके. तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी
0: जरूरी है.
1: तो यहीं पर रुकते हैं हम. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15. थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, आपका
0: ओम शांति. थैंक यू सो मच, आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी. थैंक यू,
1: धन्यवाद.

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही प्रोग्राम में हर हफ्ते हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने किसी शारीरिक चुनौती को चुनौती न समझ करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे साथी भी होते हैं जिनमें जिंदगी को अलग तरीके से देखने का नज़रिया होता है। आप सब जानते ही हैं, शादीशुदा जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती हैं और कई अलग अलग तरह के संघर्ष होते हैं। लेकिन जब अगर किसी तरीके से उसमें शारीरिक अक्षमता आड़े आ जाए तो फिर वो चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे में भी हमारे इस कार्यक्रम में हम जिन मेहमानों को आमंत्रित करते हैं वो बखूबी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए हम ऐसे साथियों को आप सबके बीच में लेकर के आते हैं। आज भी मुझे ऐसे ही दो मेहमान मिल चुके हैं और एक बार फिर कहना होगा कि देश की राजधानी से ही मिल चुके हैं। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, उससे पहले आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, ये समराही कार्यक्रम

0: पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी तो ये कार्यक्रम यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा, नहीं तो फिर हो सकता है आने वाले समय में हमें इस कार्यक्रम के बारे में फिर से विचार करना पड़े। और एक बात और, अगर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आप भी इस कार्यक्रम में आकर के अपने हमराही की कहानी सुना सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी सुन करके भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाए। चलिए तो अब बहुत हो गई बातें, स्वागत करते हैं मीना जी और हरी जी का। स्वागत है मीना जी और हरी जी आप दोनों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमराही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: सर आपका, और हमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और आप के साथ जो बातचीत करने का मौका मतलब आपने हमें दिया, उसके लिए आपका भी हम और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं का और रेडियो मधुबन का भी मतलब बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए।
0: जी बहुत धन्यवाद हरी जी और मीना जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप दोनों से रूबरू करवाया जाए, यानी आपकी जिंदगी के बारे में बताया जाए। तो हरी जी आपसे शुरू करते हैं, जरा बताएं अपने जीवन के बारे में, क्या यादें जुड़ी हुई हैं, आपको किस तरह की शारीरिक अक्षमता है, और आपने एजुकेशन में क्या किया है, और आजकल आप क्या कर रहे हैं।
2: जी सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मतलब 100% ब्लाइंड, और मैंने एक्चुअली जो अपनी एजुकेशन है वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जेपीएम स्कूल से 1996 में शुरू किया था, और 2009 में मैंने वहाँ से 12th पास किया था। लगभग 13 साल का ये सफ़र मेरा रहा, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक मैं वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बी ऑनर्स म्यूज़िक किया, और फिर रामदास कॉलेज के साथ फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, और वहीं से फिर एफएल किया, और फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई किया मैंने 2014 में जीआरएफ के साथ, और अभी वर्तमान में मैं संगीत अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत हूँ लोधी रोड दिल्ली कन्नड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो ये आप आंखों की रोशनी कैसे गई?
2: ये सर आंखों की रोशनी तो मेरी बाय बर्थ की मतलब है, ऐसे ही है ये। तो
0: मेरा मतलब यह है कि घर वालों ने जब कुछ पता लगाया होगा, इलाज वगैरह करवाया होगा, या उन्हें पता कैसे चला, थोड़ा सा एकदम से तो मतलब पता नहीं चल गया होगा, कुछ समय लगा होगा, कुछ इसके बारे में अगर आपको मालूम हो तो बताइए।
2: हाँ सर, एक्चुअली ये था कि मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा कुछ दिनों के बाद मतलब मम्मी ने मुझे खिलौना देने की कोशिश की, मतलब बच्चों को खेलने के लिए जैसे खिलौने होते हैं उनके आगे, तो या मतलब वो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खिलौने के लिए थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं उनकी ओर, तो मैं लेकिन मतलब क्योंकि अब मुझे दिखता तो था नहीं, तो मतलब फिर मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ नहीं, तो उनको मतलब क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि ये क्या है, तो बाद में और उनसे डिस्कस किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बताया कि इनको मतलब डॉक्टर के पास दिखाओ, तो फिर वो लेके गए डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मतलब इनको जो है प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर एम्स जो हमारा ये ऑल इंडिया मेडिकल है यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर एक आध बार मतलब दो ऑपरेशन हुए थे मेरे, तो एक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन एक दो महीने बाद मतलब आँख फिर अपने आप ही मतलब वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर चली गई दोबारा से।
0: अच्छा, यानी बीच में थोड़ी सी आँख ठीक भी हो गई थी।
2: एक आँख मेरी ठीक हो गई थी, फिर एक दो महीने बाद फिर अपने आप ही रोशनी दोबारा चली गई, फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ पर वो सक्सेस नहीं रहा। फिर वहीं से डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर्स ने मेरे को मतलब मेरे पापा को उन्होंने सजेस्ट किया कि ये अपना ओबेरॉय होटल के पास एक स्कूल है, वहाँ आप ट्राई कर लीजिए और वहीं से एजुकेशन करवाइए।
3: और अगर हो जाता है तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, बट अब आंख तो मतलब नहीं ठीक हो पाएगी, तो इसी में ही मतलब बच्चे को जीना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मतलब बाद में पेरेंट्स को पता चल पाया था और वहीं से फिर सफर ये शुरू हो गया।
0: मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं आप?
3: मैं सर नेपाल से हूँ और मम्मी पापा बाद में इधर राजस्थान में आकर के बसे थे, फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब गुड़गांवा में ट्रांसफ़र हो गया था उनका, तो काफ़ी साल गुड़गांवा में रहे हरिया इधर यहाँ अपना एनसीआर दिल्ली एनसीआर में, और फिर उसके बाद वो वापस अब मतलब नेपाल चले गए हैं और हम लोग यहाँ दिल्ली में ही सेटल हैं।
0: नेपाल में कौन से शहर में?
3: लुम्बिनी।
0: लुम्बिनी,
3: हाँ जी।
0: अच्छा, ये जो बुद्ध के मामले में जो नाम आता है शहर का, वही ना?
3: गौतम, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मतलब है वो।
0: जी जी जी। तो आपके फादर की जॉब कहाँ में थी?
3: फादर मेरे प्राइवेट सेक्टर में थे, उनका मतलब एल्युमिनियम की फैक्ट्री में काम था।
0: ओके, और आपके परिवार में मम्मी पापा और आपके अलावा कौन कौन है?
3: मेरे अलावा मतलब हमारे अलावा तो बाकी चार बहनें हैं और एक भाई है।
0: बाकी सब एकदम ठीक है, वो सब नेपाल में ही है?
3: हाँ जी हाँ जी, सब नेपाल में है और बाकी सब लोग ठीक है।
0: आपका जाना होता है नेपाल?
3: हाँ जी सर, साल में एक से दो बार जाना होता है।
0: तो हरी जी, आपने नेपाल और भारत में दृष्टिबाधित साथियों की स्थिति में कोई कभी ऐसा जानने की कोशिश की कि क्या परिवर्तन है, क्या फर्क है, वहाँ कैसी परिस्थितियां हैं या व्यवस्थाएं हैं खासकर समाज में और यहाँ?
3: सर एक्चुअली मुझे एक दो बार वहाँ के ब्लाइंड स्कूल्स को विजिट करने का मौका मिला था, वहाँ मतलब जब मैं 11th में या शायद 12th में था, उस समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दो जगह मतलब मुझे जाने का मौका मिला था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ के स्टूडेंट्स से, इवन टीचर्स से भी मिला, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड टीचर्स थे, तो मैं मतलब मुझे बहुत फ़र्क लगा, मतलब क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, इवन मतलब वहाँ तो नॉर्मल लोगों को सर्वाइव करने में मतलब कई बार दिक्कत हो जाती है, तो अब मतलब बीइंग एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन काफ़ी चैलेंजेस हैं वहाँ पर, और जिसको अब मतलब काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है वहाँ का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी उसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तो मतलब एजुकेशन पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, और यदि पहुँच भी रही है तो बहुत चैलेंज के साथ मतलब पहुँच रही है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की पढ़ाई के लिए, जैसे ब्रेल स्लेट्स हो गई, टेलर फ्रेम हो गया, वो सब चीज़ें भी मतलब चार चार पांच पांच बच्चे शेयर करके आपस में मतलब वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मतलब यहाँ से इंडिया से कोई कांटेक्ट हो जाए तो उसके थ्रू मतलब उनको प्रोवाइड वो हो पाता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगभग मतलब 11th और 12th में था।
0: जी जी जी।
3: अब मतलब क्योंकि उसके बाद से फिर मैं भी मतलब कांटेक्ट में नहीं रह पाया, तो अब अगर कोई स्थिति सुधर गई हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉर्मल जो जिंदगी है उसमें भी काफी ज्यादा चैलेंजेस अभी भी हैं वहाँ पर,
0: अभी भी हैं। जी,
3: तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस मतलब हमारी जितनी है वहाँ तक मतलब चीज नहीं पहुंच पाई होगी अभी।
0: तो समाज में स्वीकार्यता को लेकर के कैसी स्थिति है? मतलब जैसे भारत में तो हम जानते ही हैं, वहां पर भी परिस्थितियां लगभग वैसी ही होंगी या इससे भी ज्यादा खराब है? समाज में हमको एक्सेप्टेंस जो है अभी भी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या लगता है आपको?
3: उसमें सर एक्चुअली ये है कि जहां जैसे जो लोग थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकले हुए लोग हैं या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब दुनिया से रूबरू हैं, जो परिचित लोग हैं, वो तो खैर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ हद तक, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो शुद्ध गांव के मतलब हमारे यहाँ जैसे कहते हैं शुद्ध मतलब गांव के जो लोग होते हैं, परंपराओं में जकड़े हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों को मतलब जो है एक्सेप्ट करने में अभी भी दिक्कतें हैं, मतलब सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं पाती है। बाकी

0: हम लोग हैं, कभी जाते रहते हैं। तो अब जैसे जो वेल सेटल्ड है, कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं मतलब जो ये कहते हैं अरे मतलब आप लोगों ने तो वो कर दिखाया जो कई बार नॉर्मल लोग भी नहीं करके मतलब कर पाते हैं, या ऐसा है वैसा है, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मैं मतलब उनको यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब मेहनत करेंगे तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब आपको अगर आप में मतलब एक तरह का जैसे कुछ बहुत बढ़िया मतलब आप अच्छी जगह पे हैं तभी, अदरवाइज मुश्किल है।
1: जी, तो अब दिल्ली में अपना घर बना लिया आपने या अभी नहीं बना पाए हैं?
0: नहीं बना लिया है सर हमने, मतलब एक्चुअली फ्लैट एक खरीदा हुआ है छोटा सा, तो
1: बहुत बढ़िया,
0: हाँ जी अपने फ्लैट में ही हम लोग रहते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो अब काफी बातें हो गई आपसे, थोड़ा मीना जी के बारे में
0: जरूर सर,
1: जानकारी
0: जरूर
1: जाए और हमारे श्रोताओं को मीना जी से परिचय करवाया जाए। जी मीना जी, बताएं जरा अपने बारे में।
2: जी। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और संदीप सर आपको भी।
1: जी, नमस्कार
2: और
1: जी।
2: हाँ जी, तो मेरा नाम मीना है और मैं बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हूँ,
1: जी
2: और मेरी ब्लाइंडनेस तो खैर मैं लेट ब्लाइंड हूँ
1: अच्छा,
2: मैं, हाँ जी तो ये है। और अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ रेलवे में, और मेरी एजुकेशन जो है जब मैं साइडेड थी तो मैंने 8th तक पढ़ाई की थी वहीं उत्तराखंड में ही। तो फिर एक्चुअली गांव से ना स्कूल बहुत दूर होते थे, तो पापा ने मतलब पढ़ाई रुकवा दी थी मेरी। उसके बाद फिर जब मैं ब्लाइंड हुई तो उसके बाद मैंने सब पढ़ाई ओपन से की है।
1: अच्छा
2: रेगुलर मैं स्टूडेंट नहीं रह पाई जैसे ब्लाइंड होने के बाद। मैंने पहले सबसे पहले पंजाब एजुकेशन बोर्ड से 10th किया 2009 में, और फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने 2012 में CBSE बोर्ड से +2, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया ही ये दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। हाँ जी मैं
1: तो उत्तराखंड में कौन से शहर से हैं आप, कहाँ से हैं?
2: डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ सर। हाँ
1: पौड़ी गढ़वाल। अच्छा,
2: जी
1: तो मीना जी आपने कहा जैसे कि आप लेट ब्लाइंड हैं,
2: हाँ जी
1: तो कैसे, क्या कोई हादसा हुआ था, कितने बड़े थे आप उस समय, आपने
2: मैं
1: तो, और कैसे हुआ ये सब? जी
2: एक्चुअली मैं 18 साल की थी तब, तो ये होली के दौरान मतलब कुछ फैमिली में ही कुछ फैमिली मैटर था, तो पापा के साथ हमारे रिलेटिव का, तो उन्होंने ही कुछ कलर में मतलब मिक्स करके आंखों में मेरे डाल दिया था सर।
1: तो यानी एक तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और इस तरह
2: हाँ
1: से
2: जी
1: हुआ।
2: हाँ जी हाँ, मतलब पापा से मतलब बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह का वो हुआ था सर।
1: तो आपके और भाई बहनों को भी किसी को नुकसान हुआ या सिर्फ आप ही को अटैक हुआ था
2: सिर्फ
1: ये?
2: मेरे को हुआ, मतलब हम तीन भाई बहन थे मतलब उस टाइम पे। अब तो खैर मेरे भाई की भी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, और सिस्टर है मेरे से बड़ी वो ठीक है। हाँ
1: जी
2: जी,
1: अच्छा,
2: और सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुई है।
1: तो इतना मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने कलर डाला था कि बाद में फिर इलाज वगैरह कुछ करवा पाए तो भी कुछ नहीं।
2: एक्चुअली सर नहीं, गांव का क्या रहता है कि जैसे अब होली के टाइम पे पेरेंट्स को यही लगा, मेरे को भी उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, अब बचपना था, लेकिन कलर डला तो आंखों में जलन शुरू हो गई थी मेरे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब कलर तो उसी वक्त उन्होंने ही डाला था, मतलब हमारे रिलेटिव में है मेरी भाभी लगती हैं वो, तो उन्होंने कलर डाला तो जलन हुआ, तो मैं अपने मतलब दर्द के साथ रोने लगी। तो मम्मी लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे गांव में जैसे कुछ पुराने धारणाएं होती हैं कि हम लोगों ने शायद किसी पूजा में कोई मिस्टेक कर दी है, मतलब इन चीजों में तो शायद ये हो गया हमारे साथ, ऐसे करके मम्मी लोग पहले झाड़ फूक वगैरह ही करवाते रहे।
1: और समझ नहीं पाए इसकी गंभीरता को।
2: हाँ जी हाँ जी, तो आंखों में बिल्कुल मतलब आंसू आने लगे थे, बहुत तेज मतलब पानी निकलने लगा आंखों से, तो स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा, तो मम्मी लोग वही झाड़ फूक में रह गए कुछ दिन तक, तो ऐसे ही चला 4-5 दिन तक। तो बाद में फिर गांव के लोगों ने सजेस्ट किया, तो वो जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया बाद में,

0: फिर पता चला घर वालों को भी कि क्या निकल गया है।
1: उसका कोई उपाय नहीं था फिर बाद में? मतलब
0: नहीं सर, नस जल चुकी थी तब तक।
1: जल चुकी थी?
0: हाँ जी।
1: ओहो, तो मीना जी ये परिस्थितियां होने के बाद कैसे अपने आप को संभाला, अपने हिम्मत दिलाई और पढ़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार किया? एक तो ग्रामीण परिवेश में रहना, दूसरा ऐसी जहाँ पे सुविधाओं का अभाव, तीसरा इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड पर्सन इतनी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इतना नॉलेज नहीं रहा होगा उस समय। वो हिम्मत कहाँ से पैदा की आपने अपने अंदर? क्योंकि हो सकता है आपकी बात सुन करके कुछ और लोगों को भी थोड़ा जज्बा मिले।
0: हाँ जी सर, जहाँ तक हिम्मत की बात है, एक्चुअली होली में मेरी आई साइट गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को मतलब इसी चीज का एक सदमा सा लग गया था, तो उनको अटैक आया, तो दिसंबर में पापा भी मतलब हमें छोड़ के चले गए थे
1: जी।
0: तो मम्मी थी मेरी, मेरा भाई और मेरी सिस्टर की मैरिज हो रखी थी, तो वो चंडीगढ़ में ही रहती थी सिस्टर मेरी, तो मेरा भाई और मम्मी और हम फिर चंडीगढ़ आ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर ले आई थी यहीं पे, क्योंकि रिलेटिव होगा तो ऐसा भरोसा ही नहीं था, अब अभी ऐसा हो गया तो आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता था, तो हम लोग चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ में क्या हुआ कि तब भी मेरे को ये नहीं पता था कि ब्लाइंड कम्युनिटी भी है, मतलब ऐसे मेरे को ये लगता था कि मैं अकेली हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, और ऊपर से फिर जानकार के लोग सब लोग यही बोलते थे ये लड़की है ऐसे सब कुछ बोलते रहते थे, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं वहां से चंडीगढ़ में जब मैं आई तो मेरे भाई के साथ एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो एक ये नैब का सर्वे चला था कुछ एनएबी का, तो वहां पे क्या करते थे टीचर लोग ब्लाइंड बच्चों को मतलब गांव से घरों से ढूंढ के उनको ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन दिलाते थे और उनको कुछ सिखाने के लिए पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करते थे। तो ऐसे ही मैं मेरे भाई के साथ कहीं जा रही थी तो एक टीचर मिले मुझे, अभी वो चंडीगढ़ में ही ब्लाइंड स्कूल में ही टीचर है वो अश्वनी सर है वो, तो उन्होंने ही मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ब्लाइंड कब से है, तो मेरे को तब तक लोगों से सही से कम्युनिकेट मतलब बात भी नहीं कर पाती थी मैं, बिल्कुल मतलब हेजिटेट करती थी कि अरे पता नहीं सामने वाला मुझे देख रहे होंगे, मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब यही चीज रहता था मेरे को,
1: कॉन्फिडेंस नहीं था जरा भी, मतलब
0: बिल्कुल ही नहीं था मेरे को, तो मेरे भाई ने ही बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर मेरी बहन पढ़ना चाहेगी सर, तो उन्होंने कहा हमारा एनजीओ है ऐसा, मतलब सब कुछ उन्होंने डिटेल दिया हमें नैप के बारे में, तो फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया, तो मेरा भाई वहीं लेके चले गए थे मुझे इंस्टीट्यूट में दूसरे दिन, फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उन टीचर ने मेरा बहुत मतलब हेल्प किया मुझे पढ़ने में आगे बढ़ने में, फिर एक्चुअली
1: अश्विनी सर नाम बताया ना आपने?
0: हाँ अश्विनी है उनका नाम।
1: तो बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम से अश्विनी सर को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: हाँ जी, उन्होंने तो मतलब एक पेरेंट्स के बराबर ही आगे बढ़ के उन्होंने यहाँ तक अगर मैं आज पहुंची हूँ तो सबसे ज्यादा मतलब वो उनका ही रहा है मेरे साथ, उनके आशीर्वाद और उनका हेल्प जो था उसी से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज, और फिर मेरे भाई की भी मतलब जैसे एक साल के अंदर हमारे साथ इतना कुछ हो गया था, मेरे को उन्होंने इंस्टीट्यूट में जैसे एडमिशन करवाया, उसके बाद ही नेक्स्ट जो दिवाली आई उसमें भाई की भी डेथ हो गई, उनको जॉन्डिस था। हाँ फिर वो भी मतलब छोड़ के चले गए, तो फिर मम्मी और मैं सिस्टर के साथ ही रहते थे, वहीं से फिर सर ने मुझे पढ़ाया, ब्रेल सीखी मैंने वहीं एनजीओ में जाके, और वहीं से फिर मेरी प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो मैंने 10th फिर प्लस 2 ऐसे करके एजुकेशन की सर वहां से।
1: तो मीना जी फिर ये दिल्ली तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ?
0: हाँ जी, दिल्ली ऐसा था कि फिर मैंने जब वहां से 10th किया तो उसके बाद मैं सोचती थी कुछ काम, अब मम्मी थी मेरे साथ और सिस्टर के ऊपर भी ज्यादा बोझ बनना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब सिस्टर के अपना भी फैमिली है, तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं कुछ करूँ आगे, तो फरीदाबाद में जो एक सेंटर है नैब का ही है शायद वो भी, तो वहां पे मैंने हाँ एनएबी है वहां पे, तो एक वही सबका ही साथ सपोर्ट, जैसे साथ मिला मुझे एक दीदी है, सीनियर है वो भी, आशा दीदी, तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की, तो उन्होंने फरीदाबाद में मेरा एडमिशन करवा दिया था। वैसे मैं कंप्यूटर के लिए आई थी, तो वहाँ पे कहा गया कि अभी कंप्यूटर में जगह नहीं है, तो 2.5 महीने मुझे होम साइंस में रहना पड़ा था। वहाँ पे होम साइंस सीखा मैंने 2.5 महीने, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया। तो कंप्यूटर सीखने के बाद फिर मैं दिल्ली यहीं हॉस्टल में रह के मैंने सोचा अब ओपन से मुझे पढ़ाई करनी है तो कुछ प्राइवेट जॉब ढूंढूंगी बोल के मैं यहीं हॉस्टल में रहती थी यहीं दिल्ली में ही। तो यहीं से एजुकेशन, और मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है कुछ महीने। हाँ जी।
1: अच्छा, तो फरीदाबाद में रहने के दौरान जो कुछ आपने सीखा,
0: हाँ जी,
1: तो आपका कैसा अनुभव रहा सेंटर में? मतलब जैसे होम साइंस आपने सीखा 2.5 महीने, तो अच्छे से आप के अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया था या उतना अच्छे से नहीं आप सीख पाए या सिखा पाए वहाँ के लोग, क्या थोड़ा अनुभव था?
0: हाँ जी, फरीदाबाद में ये था कि जैसे होम साइंस जो खाना वगैरह सब काम वैसे मेरे को जब दिखता था तब आता था, लेकिन वही कॉन्फिडेंट मेरा डाउन हो गया था और ब्लाइंडनेस के बाद मैं डरती थी थोड़ा। पर मैंने वहाँ पे सीखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था। 2.5 महीने मैंने भले सीखा है पर जो टीचर थे बहुत अच्छा कोऑपरेट करती थी मैम, अनीता मैम ने सिखाया मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये था कि मेरी जो मैं बता रही थी आशा दीदी, वो भी ब्लाइंड थे, हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड है, अब खैर जीजू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो दीदी के घर हम जाते थे तो दीदी भी मतलब हमें सिखाती थी। वो भी पूरा मतलब अपने उस पे ही थी वो, मतलब कोई किसी से कोई हेल्प नहीं लेती थी, वो भी खुद ही घर का सारा काम और ऑफिस संभालना सब कुछ वो खुद करती थी। तो उनके साथ भी मतलब वो भी बोलती थी कि अपने पैरों पे अपने आप खड़े होना चाहिए, हमें मतलब हेजिटेशन जितना हम करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। तो इसी से फिर वही उनके साथ भी रह के और फरीदाबाद में जितना भी मेरा टाइम रहा बहुत अच्छा रहा, मैंने अच्छे से सीखा वहाँ पे।
1: तो मीना जी अभी माता जी हैं आपकी?
0: नहीं सर, माता जी भी अभी 2021 में ही वो मतलब चली गई।
1: अच्छा, और आपकी सिस्टर चंडीगढ़ में आज भी?
0: हाँ जी, हाँ जी, सिस्टर है मेरे से बड़ी है वो चंडीगढ़ में है, उनके भी 3 बच्चे हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है बच्चों की।
1: तो उनके वहाँ आना जाना होता है आपका?
0: हाँ, मेरा भी होता है और वो लोग भी आते हैं यहाँ पर।
1: बहुत खूब अच्छी बात। तो फिर मीना जी,
0: हाँ जी,
1: काफी जगह की यात्रा की आपने और मतलब काफी संघर्षों से भरा जीवन देखा एक तरह से।
0: जी सर, हाँ जी सर।
1: त्योहारों पर इंसान आमतौर पर खुश होता है, खुशियां बांटता है, लेकिन आपके साथ अजीब इत्तेफाक रहा कि एक तरफ होली में आपके साथ और दिवाली पर आपके भाई
0: चले गए। हाँ जी,
1: आपके जीवन में आपके भाई का भी एक बहुत अहम किरदार है।
0: जी सर।
1: तो खैर चलिए, उस सबसे बाहर निकल करके एक खुशहाल जिंदगी आज आप जी रहे हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: देते हैं आपको इस हिम्मत के लिए, इस जुनून के लिए, इस जज्बे के लिए। अब ये बताइए कि फिर हरि की शरण में कैसे पहुंचे आप? वैसे तो हर किसी को जाना पड़ता है हरि की शरण में।
0: ये तो है, हर किसी को जाना पड़ता है, मैं परमानेंट पहुंच
1: गई। हमारे श्रोता भी सुनेंगे कि सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इतनी सीरियस सीरियस बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है माहौल को अब जो है हल्का फुल्का किया जाए।
2: नहीं नहीं ठीक है सर, वो तो एक दौर था, गुजर मतलब एक तरह से गुजर गया, ठीक है। अब आपको सब कुछ मतलब भगवान का दिया हुआ सब है, बढ़िया है, सब अच्छे से लाइफ चल रही है। संघर्ष के बिना खुशी मतलब आना मुश्किल काम है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो बीत गया वो उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। हम अब तो एकदम मस्त बिंदास तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपने पूछा है अब ये बताएंगे अपने आप।
1: इसीलिए मैंने कहा एक बार इन्हीं से चर्चा हो रही है तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं आगे, फिर आपके पास भी आएंगे कि आपने इनको शरण में कैसे लिया। हाँ मीना जी बताएं जरा।
0: हाँ जी सर, एक्चुअली क्या था कि 2015-16 में मेरे पास भी एंड्रॉइड फोन था।
1: तो 2015 में,
0: हाँ, तो व्हाट्सएप का ग्रुप चलता था, एक म्यूजिक का ग्रुप था कोई, तो उसमें इनके एक फ्रेंड है, मतलब इनके कॉलेज के क्लासमेट है वो, मंगल सिंह जी, तो उनसे मतलब बातचीत हुई थी मेरी, मतलब ऐसे बात करते थे हम म्यूजिक से, वो गाइड करते थे, मतलब हम लोग कुछ अपनी प्रस्तुतियां भेजते थे तो वो कमेंट वगैरह करते थे, और फिर वो भी मतलब पूछते थे कि आप ब्लाइंड कैसे हुए, तो बस मैंने उनको बताया था, तो वो भी बोलते थे अरे आपने मतलब इतनी प्रॉब्लम को करके फेस करके आप यहाँ पहुँचे हो, ऐसे मेरे को बताते थे। मेरे को भी म्यूजिक का बहुत शौक है वैसे, पर ये है कि हाँ मैं सिंगर नहीं बन पाई। और तो फिर उन्होंने ही मतलब एक बार ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब आपस में ही ये लोग गेट टुगेदर कर रहे थे, मिल रहे थे सब लोग, तो कहा कि चलो आप भी ऐसे, आप हॉस्टल में रहती थी मैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे अकेलापन नहीं सोचना चाहिए, ब्लाइंडनेस तो देखो है और आपने तो अब बहुत लोगों को देख लिया है अपने जैसे, तो आपको भी सबके साथ हंसना बोलना चाहिए, तो आप अकेले अकेले क्यों रहते हो। तो ऐसे ही हम लोग तीन चार मतलब दो तीन जो मेरी फ्रेंड थी मेरे हॉस्टल से भी थी, तो मैं गई मिलने, तो उन्होंने मतलब सबसे पहले मतलब एक तरफ से बोलते हैं जैसे हम दोनों का मिलना उन्होंने ही वो करवाया, मतलब मिलवाया हम दोनों को
1: की फ्रेंड्स ने,
0: नहीं मंगल जी ने,
1: मंगल सर ने ओके ओके।
0: फिर मैं इनसे मिली, मुझे डेट याद है अभी भी, 19 फेब का दिन था और 2016 में मिली थी मैं इनको पहली बार,
1: गजब, 2016 को।
0: हाँ तो
1: वो दिन कितना यादगार था आपके लिए मीना जी?
0: हाँ मतलब उस दिन तो खैर ऐसे ही जस्ट फ्रेंड के हिसाब से मिली, मतलब क्या था कि मुझे नेपाली भाषा आती है।
1: अच्छा।
0: हाँ तो क्या था कि मंगल जी ने सुना मेरे से कि उन्होंने बोला तुम्हें नेपाली आती है, मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहे मेरा एक फ्रेंड है वो भी नेपाली बोलता है, लेकिन तुम बोलना मत पहले, मैं उसको सरप्राइज दूंगा वहां जाके, तुम नेपाली में उससे उसका नाम पूछना।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैंने ये बोला कि मैं तो जानती भी नहीं, कह रहा पहले पहचान करवाऊंगा ऐसे हेलो आए तब पूछना, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मिलवाया, तो मैंने जैसे ही नेपाली में मतलब इनका नाम पूछा, तो सुनते ही ये तो पता नहीं जैसे शोर मचाने लग गए।
1: यहाँ पे कौन आ गया, नेपाल मूल का है।
0: हाँ, मतलब इनको लगा कि मतलब फिर ये मुझे पूछने लग गए नेपाली में आप नेपाल से हुई हो, मैंने कहा नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ, और फ्रेंड सर्कल भी रहा है मेरा क्योंकि नेपाली हमारे हॉस्टल में भी रहते थे, तो और मेरी दरअसल मेरे जो पापा हैं वो उत्तराखंड के हैं, मम्मी नेपाल की ही है मेरी।
1: यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन देखो कैसे जुड़ता है इन सब का।
0: हाँ जी हाँ जी, तो पापा से मतलब मम्मी पापा की भी लव मैरिज थी मेरे, तो वो उससे फिर मैं ज्यादातर ननिहाल में भी रही, तो फिर मैंने नेपाली सीखी थी, फिर नेपाली में बातचीत हुई, तो बस उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत होती रही, बाद में
1: हो गया। वरना मैं भी ये सवाल पूछता आपसे कि भाई नेपाली सीखने का अनुभव कैसे प्राप्त किया आपने, तो वो आपने खुद ही बता दिया कि फादर आपके नेपाली मूल के ही थे।
0: नहीं मम्मी
1: मम्मी, अच्छा मम्मी नेपाली मूल के थे, है ना, तो ये एक अच्छी बात रही। और आप नेपाल में भी रहे आपने बताया, ननिहाल में?
0: हाँ ननिहाल, एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरे जो नाना नानी थे वो मतलब उत्तराखंड में ही मतलब सेटल हो गए थे वो लोग।
1: अच्छा।
0: तो लेकिन मैं शादी से पहले कभी मतलब नेपाल नहीं गई, मैं उत्तराखंड में ही, लेकिन मेरे नाना नानी में पूरी फैमिली नेपाली गढ़वाली वो दोनों ही भाषा बोलते थे। और एक मेरे को मतलब शौक भी है भाषा सीखने का, लेकिन यही है कि
1: यही मैं कहने वाला था क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से हमराही का है, एक एक एक दूसरे के अपने अपने हमराही को ढूंढने का भी एक बहाना होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो लोगों के अंदर सीखने की जो ललक है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। कब कौन सा नर कहाँ जाकर के काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे फील्ड में आप जानती हैं जॉब आजकल फिर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जीवन साथी आसानी से
0: बहुत बहुत मुश्किल होती है सर ये चीज,
1: क्योंकि आपकी नेपाली भाषा को जानना और हरी जी से मिलना, यानी इसने भी कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से योगदान ही दिया है, है ना?
0: बिल्कुल सर, नेपाली सीखना ही मेरे लिए वरदान हो गया, इसलिए शरण मिल गई मुझे।
1: हाँ, इसलिए फिर नहीं जल्दी शरण मिल गई।
0: हाँ जी ये तो है सर।
1: नहीं तो पता चलता कहीं लाइन में लगना पड़ता, यू आर इन वेटिंग
0: नहीं, मतलब मुझे बोलते भी है कि मैं पहले सोचता था, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, और मैं भी सोचता था कि कोई देखने वाली लड़की से ही शादी करूंगा। तो फिर जब मैं मिली तो फिर इनको, पेरेंट्स को भी मनाना पड़ा।
1: मान गए पेरेंट्स?
0: हाँ, थोड़ी सी तो मुश्किल तो हुई थी शुरू में मम्मी को इनके मनाने के लिए। वही डायलॉग था घर वालों का कि दोनों एक जैसे हो गए तो कैसे खाओगे, कैसे रहोगे।
1: तो फिर 19 फरवरी के बाद शादी करने में कितना टाइम लगा
0: हमें? टाइम तो वैसे
2: लगभग सर 2 साल,
0: 2 साल तो लगे।
1: अच्छा, 2 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड तो रहा।
0: हाँ जी सर।
1: ओके, तो चलिए खैर अब इसमें और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर हरि जी से पूछ लेते हैं क्योंकि काफी इंतजार हो गया हरि जी का भी। हरि जी को नेपाली कैसी लगी?
2: जी सर बिल्कुल
1: जी। हम जो है बचपन में कभी कभी वो दिन में वो आते थे, बॉलीवुड संगीत आता था नेपाली स्टेशन से।
2: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: वो सुना करते थे कभी कभी हम लोग।
2: हाँ जी, हाँ जी सर, रेडियो नेपाल।
0: मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में आता था।
1: जी जी जी जी, बताएं
2: जी सर
1: कैसा अनुभव रहा आपका मीना जी से मिलने का, इनके साथ बातचीत करने का?
2: सर अनुभव तो बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़िया रहा। मतलब ये है कि अगर हम बात करें पहले दिन की, जैसा कि इन्होंने बताया 19 फरवरी 2016 का जो दिन था वो, तो उस दिन तो कॉमन मतलब ठीक है, मतलब जैसे एक हम एक तरह से अननोन पर्सन से पहली बार मिलते हैं, तो मतलब बस मिलते हैं और ठीक है। मतलब उस दिन की गेट टू गैदरिंग हो गई, चाय पानी हो गया साथ में बैठ करके। हम लोग 5 से 7 8 लोग थे, लगभग 7 8 लोग थे, तो ठीक है। फिर बाद में भाषा मतलब जब मुझे पता चला कि आती है तो ऐसे ही बात मतलब चलती रही। फिर बाद में आगे मतलब फिर बस भगवान को जो मंजूर था उसी हिसाब से मतलब काम होता रहा, और अब ठीक है, बहुत हम लोग एकदम खुश हैं और बढ़िया जीवन साथी। जैसे जीवन साथी की तलाश मुझे थी, वो सारे गुण इनमें हैं, तो मैं खुश हूँ सर। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड मानता हूं मैं अपने आप को।
1: हरि जी, कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया आपको मीना जी की?
2: एक्चुअली इसके लिए सर मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये मैं एक्चुअली ये सोचता था कि मतलब ऐसा है कि भाई कोई साइटेड मिले तो बढ़िया है, मतलब साइटेड से ही अगर शादी हो सके तो अच्छी बात रहेगी, जीवन थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो बाद में मतलब जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मतलब हालांकि ऐसे ही हम लोग नॉर्मल बात करते हुए, तो इन्होंने बोला मुझे खाना बनाना आता है।
1: अच्छा।
2: और मुझे भी खाने का बहुत शौक, मतलब खाने, हाँ खाने का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है अभी भी।
1: सोचा कि साइटेड भी खाना तो बनाएगा ही और ये भी बना लेती है खाना।
2: नहीं तो मुझे मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ इन पे। मैंने कहा अबे मतलब ऐसा है कि तो मैंने कहा क्या पागल, मतलब मन में सोचा मैं अब, क्योंकि पहली पहली मुलाकात थी
1: तो नहीं सकते ना ऐसे डायरेक्ट, किसी को कह भी नहीं सकते जी।
2: तो मैंने कहा छोड़ो यार पागल बना रही है तो लगता है तो
1: के मतलब मेरा काम लपेटने का है और ये फेंकते जा रहे हैं।
2: तो फिर उसके बाद मतलब बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब व्यवस्था बन पाई तो फिर एक दिन हमने मतलब प्लान बनाया कि चलो भाई आज जो है तुम्हारा बनाया हुआ ही खाएंगे।
1: अच्छा।
2: तो फिर उन्होंने फिर बना दिया, मतलब बाद में जब ये बात हुई तो इन्होंने खाना बनाया बहुत बढ़िया।
1: अच्छा।
2: और वही जो खाना था बस, मतलब वो इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने कहा अब तो सब कुछ पॉसिबल है, जब खाना बन गया तो फिर तो मतलब बाकी चीज तो अपने आप हो जाती, क्योंकि खाना बनाना, खाना खाना तो इजी है लेकिन खाना बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम, मतलब मैं समझता था उस टाइम पे, क्योंकि हॉस्टल में ही शुरू से रहा था मैं तो 5 साल की एज से ही, मतलब खाना।
1: जी, आप तो इतने सारे ब्लाइंड साथियों के बीच में रहे थे तो आपने तो बहुतों को देखा होगा ना, लेकिन एक्टिवली काम करते हुए।
3: सर लेकिन ऐसे खाना मतलब घर के कामों को करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था।
1: अच्छा
3: हाँ मतलब जैसे आप ये मान लीजिए कि

0: एजुकेशन फील्ड में तो बहुत मतलब बारीकी से मैंने वो चीज़ें देखी थी कि लोगों में कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन ऐसे मतलब ब्लाइंड लड़कियां एक कुशल हाउसवाइफ हो सकती हैं, ये मतलब मेरे को इनसे मिलके ही अनुभव हो पाया था।
1: हो पाया था। वाह क्या बात है, तब तो दिमाग में ये चल रहा था, देखता हूँ देखें खाना वाकई में बनता भी है कि नहीं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा तब तक कुछ ऐसी बात हो गई थी थोड़ी, मतलब गर्माहट आ गई थी रिश्तों में कि अब मतलब पसंद करते हैं एक दूसरे को और काफी उठना बैठना है साथ में, ऐसा कुछ हुआ था या नहीं, बस एक नॉर्मल जो चलता है फ्रेंड सर्कल में वही सब चल रहा
0: नहीं,
1: था।
0: बस ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब नॉर्मली चल रहा था। बाकी मतलब बातें तो हमारी, हाँ थोड़ा सा मतलब ये है कि और जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे ज्यादा थोड़ी बातें होती थी, लेकिन नॉर्मल बात होती थी। मतलब ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि मतलब मैंने मन में सोच लिया था कि मैंने कहा भाई खाना जब तक नहीं खाऊंगा बना हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कहानी चाहे हो जाए कुछ भी।
1: चाहे बातें भले 24 घंटे कर लो लगातार।
0: बातें चाहे होती रहे।
1: अच्छा,
0: तो हाँ जी,
1: बहुत
0: हाँ जी, फिर जिन दिन खाना इन्होंने बना के खिला दिया तो फिर दो चार, मैंने कहा अब, फिर मैंने सोचा अब अगर मान लो अगर अभी कह दूंगा तो फिर तो लगता है मतलब ये तो साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरी परीक्षा ले रहा था ये। तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करता हूँ, मतलब 10-15 दिन 20 दिन थोड़ा ऐसे ही मैंने टाइम गुजारा किसी तरीके से। फिर एक दिन मतलब मैंने इनको कह दिया कि अब देखो आप में मतलब जो है कि वो सारे गुण हैं, तो हम क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं ऐसे करके। हाँ जी, तो इस तरह
1: तो
0: से
1: क्या
0: फिर बात
1: क्या
0: हमारी।
1: रिएक्शन था मीना जी का उस समय, क्या कहना था उस समय, क्या प्रतिक्रिया थी इनकी?
0: 2 मिनट के लिए चुप हो गई ये तो।
1: अच्छा
0: फिर हाँ जी, फिर उसके बाद इन्होंने बोला मुझे, मैं तो एक लड़की हूं तो मुझे तो बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा बहुत सारी नहीं, मतलब ऐसा है कि जितनी सोचनी है सारी सोचो, जो भी मन में सोच आता है सब सोचो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि मतलब अगर जैसे मेरा मेरा मतलब सोचने का तरीका है अगर वो साकार हो सके तो बढ़िया है। तो फिर कह रही है, फिर उन्होंने टाइम लिया 1-2 दिन का, फिर उसके बाद में धीरे धीरे धीरे बात मतलब बनती चली गई।
1: वाह क्या बात है। तो उस दिन याद है कि क्या बना था खाने में?
0: सर उस दिन एक्चुअली मुझे जो है चिकन बहुत पसंद है, तो
1: अच्छा
0: मतलब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पीजी मेंस में रहता था, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, 14-15 की। तो 2015 में मेरी एमफिल सबमिट हो गई थी 31 दिसंबर को, तो जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे मुझे हॉस्टल खाली करना था। तो हॉस्टल खाली करने के बाद मैं मतलब लगभग मान लीजिए कि इनसे मुलाकात हुई फरवरी में और मैं जो है अप्रैल में हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, सॉरी रूम में अपने रूम में रूम रेंट पे लेकर के मैं शिफ्ट हो गया था। तो
1: जी
0: फिर उसके बाद अप्रैल मिड में मैंने मतलब हम सभी लोगों ने ये प्लान बनाया, सभी दोस्त लोगों ने, कि आज भाई ऐसा है मीना जी से खाना बनवाएंगे और खाएंगे। तो जो भी मतलब हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे जितने हमारे सर्कल में, 1-2-3 लोग जो भी थे हम में से मतलब 7-8 लोगों में से, तो वो सब इकट्ठे हुए और हमने इनसे बनवाया खाना और खूब जी भर के खाया। तो वो चिकन मतलब था उस टाइम पे बना हुआ, तो
1: आपने
0: वही
1: सोचा
0: हमने।
1: कि वेज तो वेज, नॉन वेज भी बना दिया इन्होंने तो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो अब नॉन वेज बन गया तो वेज तो खैर बनेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात मतलब बन ही जाएगा फिर वो।
1: तो मीना जी, श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई ये फरीदाबाद में आपको नॉनवेज भी सिखाया गया या ये कहीं और की कला थी?
0: ये मेरी जो वो ब्लाइंड दीदी थी वो
1: हाँ
0: महाराष्ट्र की है तो वो बनाती थी, तो उनसे सीखी थी मैंने।
1: अच्छा।
0: और हम लोग क्या है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे मतलब पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे भी हमारे परिवार में सब खाते थे, मम्मी पापा सब लोग। तो ये आइडिया तो था, जब दिखता था तब भी हम बनाते थे, तो इतना आइडिया था कि हाँ ऐसे बनता है।
1: ठीक है ठीक है, यानी बहुत मुश्किल नहीं था, और वही बात है कि आप जो जो सीखते गए वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आता
0: हाँ काम
1: गया।
0: आता गया। हाँ जी सर, ये तो है,
1: चलिए
0: ये
1: तो
0: तो है।
1: हरी जी, फिर कैसे मम्मी पापा को मनाने में मुश्किल क्यों हुई?
0: हाँ सर, वो एक्चुअली ये है कि मतलब थोड़ा सा उन लोगों को मतलब ये था कि हम लोग जो मेरे टाइप के जैसे मतलब जो, क्योंकि मैं तो बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ, तो जितने भी लड़के थे तो ब्लाइंड लड़के ही मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे
1: अच्छा
0: मतलब उस टाइम तक। फिर जब उनको पता चला कि भाई लड़कियां भी ब्लाइंड होती हैं, मतलब मैंने जब बताया कि मतलब एक ब्लाइंड लड़की है और ऐसे है और वैसे है, तो फिर उन्होंने कहा, पहली बात तो कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा भाई लड़कियां कहाँ, लड़कियां तो मतलब हमने तो आज तक नहीं देखी कोई ब्लाइंड, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। तो फिर मैंने कहा भाई आपने नहीं देखी तो आप देख लो, आ जाओ। तो फिर उसके बाद एक दिन संडे का दिन रखा गया और उसमें मम्मी में वो मतलब पापा और मेरी बड़ी बहन, तो वो दोनों यहाँ मतलब मैंने बुलाया। और इन उस टाइम पे मैं रूम में ही रहता था, रेंट पे रूम ले रखा था अपने, तो इनको भी मैंने बुलाया और फिर उन्होंने भी जो है मतलब खाना इनका बना हुआ खाया। और फिर उसके बाद तब पहली बार उन्होंने देखा कि हाँ भाई ब्लाइंड लड़कियां होती हैं, तो मतलब तब उनको ये विश्वास हुआ कि हाँ लड़कियां भी ब्लाइंड हो सकती हैं। और फिर उसके बाद लेकिन उनको ये रहा कि भाई तुम दोनों ही जो है मतलब ब्लाइंड हो, अब कैसे मतलब मैनेज हो पाएगा, ये थोड़ा सा उनको डाउट था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। तो इस वजह से फिर वो मतलब शुरू में मान नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको बोला देखो आपके सामने उन्होंने बनाया भी है खाना, आपने खाया भी है, और फिर ये है कि हम लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं दोनों, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से इजीली कह पाएंगे, समझा पाएंगे। अगर मान लो कोई आप मतलब साइटेड लड़की से अगर शादी हो जाती है और वो मतलब इलिटरेट होती है, तो मतलब फिर उसका क्या फ़ायदा, मतलब हमारा मेंटल लेवल तो मतलब मैच करेगा ही नहीं। तो इस तरह से मतलब उनको हमने मतलब मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, तो इस तरह से फिर मतलब बात वो मान गए थे बाद में।
1: जब
0: तो
1: शादी हुई तो शरीक हुए, एकदम शामिल हुए अच्छी तरह से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो एकदम पारंपरिक तरीके से पूरे घर के मतलब रीति रिवाजों के साथ शादी हुई हमारी, दोनों परिवारों को मिला करके कोई मतलब बहुत अच्छे से। अब तो मतलब इवन वो मेरे से ज्यादा मतलब जो है इनके को बुलाने पर वो तुले रहते हैं, या मतलब उनसे ज्यादा बातें होती है मम्मी की। हाँ
1: अच्छा
0: जी, अभी जैसे मैं सैटरडे संडे को तो इनकी छुट्टी होती है, तो मतलब ये है कि मैं तो सैटरडे को ऑफिस स्कूल में ही रहता हूँ, तो ज्यादातर अरे वो तो बात बात करने में ऐसा ही है, तुम ही बात कर लिया करो, तुमसे ही बात कर लेंगे, तुमसे खबर मिल जाएगी, इस तरह से बात करती है मम्मी तो मतलब अब।
1: अच्छा तो जब जब मिलना हुआ हरी जी, तब ये कुछ बात हुई थी कि भाई आपको जॉब करना है या नहीं करना है? क्योंकि आप तो यही मान के चल रहे थे ना कि भाई मुझे तो खाना वाना मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो जॉब के बारे में कोई आप लोगों की आपस में चर्चा हुई थी, या आप यही था कि मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं?
0: मतलब ये इनकी मैडम की जॉब के लिए।
1: मैडम की जॉब की, आपकी तो खैर जॉब लगी हुई थी लगभग। तो
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ सर, विचार तो हमने पहले ही बनाया था, क्योंकि मतलब ये था कि मैंने कहा जब आपने एजुकेशन की है तो फिर उसका यूटिलाइज होना चाहिए, और अगर जॉब मतलब मिलती है तो मतलब वो बहुत अच्छी बात है, तो जॉब अगर मिलती है तो जरूर करेंगे मतलब आप, ऐसा मतलब हमने प्लान बनाया था।
1: अच्छा
0: और
1: ऐसा
0: बाकी
1: क्या?
0: नहीं मिलती तो इसमें कोई, मैंने वो भी बोला था कि नहीं लगेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर खाना तो मिल ही रहा है मतलब फिर
1: तो आप एक
0: ये
1: बात
0: चीज।
1: बताओ, इन्होंने आपको अच्छा सा खाना खिला दिया, नेपाली
0: हाँ जी
1: सुन सब कुछ हो गया, क्या
0: हाँ जी
1: बदले में कभी आप म्यूजिक से हैं कोई गाना वाना गाते होगे उनके लिए?
0: हाँ सर बिल्कुल, टाइम टू टाइम कभी मतलब जैसे मौका मिले, तो अभी मतलब जैसे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उस टाइम पे गाना गाया था, और बाकी वैसे भी मतलब बैठते हैं तो कभी आ ही
1: तो
0: जाता है
1: चलिए
0: दिमाग
1: आप जरूर लगने में के लिए हो ही जाए प्रोग्राम में। वैसे गाने
0: पर।
1: से ज्यादा हम एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे श्रोताओं को तो मजा आएगा सुनने में भी। दो दो लाइनें
0: अच्छा दो लाइन
1: मीना
0: तो
1: जी गुना दीजिए। मीना जी
0: मतलब
1: से कह रहा हूँ कि दो लाइनें गुनगुना दीजिए।
0: अच्छा मैं गुनगुना दूं उनके लिए तो।

0: थैंक यू सर, ये है
1: बहुत शानदार बहुत जबरदस्त, यानी आप लोगों के जीवन में म्यूजिक का भी अच्छा खासा रोल है।
0: हाँ जी सर, म्यूजिक तो मतलब क्योंकि शौक भी बहुत है मुझे तो, और इनको भी गाने का शौक है, गाना गाती हैं तो, और मेरी तो एजुकेशन ही म्यूजिक से हुई है, तो मतलब उसका बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं कि है।
1: हरी जी, तकरीबन 8 साल हो गए आप दोनों की शादी को
0: जी,
1: और आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत खुश हैं आप, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है
0: जी।
1: जाहिर है जब आप दोनों खुश हैं, आप दोनों को खुश देख करके हम ये मान सकते हैं कि आप दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत खुशियां आप लोगों के जीवन में और भी आए आगे आने वाले समय में। लेकिन लाइफ में चुनौतियां तो होती ही हैं हरी जी।
0: जी जी सर बिल्कुल, लाइफ तो मतलब बिना चुनौतियों के तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए चुनौती भी होती है उसका मतलब। जो
1: कौन कौन से आए, ऐसे कौन कौन से मोड़ आए आप दोनों के जीवन में जब कभी आपको ये लगा हो कि मतलब जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें हैं या मतलब पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, ऐसा कभी हुआ कुछ याद आता है?
0: ऐसा सर इस तरह का तो कुछ मतलब याद आया आ नहीं रहा है अभी तो, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा हुआ हो कभी। हाँ बाकी छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इस लेवल की मतलब कभी नहीं आई कि लाइफ में मतलब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो फील नहीं हुआ।
1: लोग ये मान के चलते हैं ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम 100% VI हों तो लोग के चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस मैं ये बात पूछ रहा था कि आपको भी कभी लगा हो कि यार हाँ थोड़ी मुश्किल तो आती है। आपने भी जैसे शुरू में ये सोचा था कि मैं साइटेड विवाह करूंगा तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, उस मामले में अगर थोड़ा आप कुछ कहना चाहें तो।
0: एक्चुअली सर ऐसा है कि चैलेंजेस की जहां तक बात करें तो मतलब मेन जैसे आप मान लीजिए आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कभी अगर थोड़ी बहुत मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है वो चैलेंज एक ये रहता है कभी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई पेपर आ गया, मतलब पेपर पे कुछ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज कह सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब अगर आप थोड़ा मतलब ऑन द स्पॉट तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है आजकल तो। खैर मतलब ये कि बी माई आईज और ये सब एप्लीकेशंस काफ़ी मतलब जेमिनाई, गूगल जेमिनाई वगैरह को आप दिखा देंगे तो काफ़ी हद तक वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चैलेंज रहता है, तो ये एक चैलेंज थोड़ा सा कह सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई मतलब बहुत वैसा चैलेंज नहीं आया कि मतलब हम कहें कि यार लाइफ कैसे चलेगी।
1: मतलब आप जब याद करते हैं इन 8 सालों को तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा समझदारी रखी जाए तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती है, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, हर चीज का अल्टरनेट होता है, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसका मतलब आप कोई ना कोई सोल्यूशन मिल बैठ के बात करके निकाल करके उसको अप्लाई किया जा सकता है, जो भी सोल्यूशन निकले। तो अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है इन 8 सालों में कि मतलब ब्लाइंड दंपत्ति जीवन जो है वो मतलब थोड़ा कठिन है या पॉसिबल नहीं है या आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी।
1: मीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में?
2: इस मामले में तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सही में मेरे को तो मतलब बहुत ही अच्छे जीवन साथी मिले हैं, और हालांकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ पर मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ मतलब कि अरे मैं ब्लाइंड कम्युनिटी में बाद में जुड़ी। और इनके साथ हस्बैंड के साथ साथ ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे गार्जियन की तरह ही मुझे संभालते हैं। मतलब कभी भी अब मैं किसी चीज़ में घबरा जाती हूँ या कोई चीज़ होती है परेशानी थोड़ी मैं ये है कि हड़बड़ा जाती हूँ जल्दी, तो ये समझाते हैं। और जहाँ तक आपने चुनौती की बात की थी तो हाँ जीवन में चुनौती ये आई थी जब 1 साल मेरा जॉब हुई थी वहाँ पे अंबाला में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी रेलवे में
1: जी,
2: तो 1 साल हम दोनों दूर रहे थे तो ऐसा लगा कि मतलब लाइफ में पता नहीं क्या खो दिया है हम दोनों ने, तो बहुत ही मुश्किल मतलब घड़ी था हमारे लिए, लेकिन हाँ ईश्वर
0: ने इन्होंने बहुत अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली वो टाइम सर वास्तव में चैलेंजिंग था बहुत, क्योंकि मतलब हम लोग ये वहाँ अकेली थी और मैं
1: यहाँ तू वहाँ
2: लेकिन सर हिम्मत इतनी थी
0: दूर से, मतलब
2: हर फ्राइडे को मैं यहाँ पहुँच जाती थी,
0: हर फ्राइडे को, फिर मंडे को यहाँ से वापस
2: सुबह ऑफिस ज्वाइन करने तो पहुँचती थी अम्बाला
0: वो एक कई तरह। और कई बार ऐसे मतलब बारिश में भींगते हुए, बारिश के दिनों में भी मतलब जैसे उनको मतलब भींगते हुए जाना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब वहां पे बारिश हो गई थी तो लाइट जो है मतलब कट ऑफ हो गई थी 24 घंटे के लिए
1: जी,
0: फोन की इनकी बैटरी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, पूरा डिस्चार्ज हो गया था फोन, तो कोई मतलब कोई कांटेक्ट नहीं कुछ नहीं मतलब। तो फिर मैंने कहा भाई मतलब सुबह जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने कहा एक दो घंटे अगर मतलब और फोन नहीं लगेगा तो मैं तो ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा। फिर एक आध घंटे में लाइट आ गई थी तो फिर बात हो गई। तो वो एक था वास्तव में कि मतलब कब ट्रांसफर हो पाएगी इनकी करके, तो वो मतलब एक उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि कैसे मतलब बड़ा मुश्किल काम है ये
2: भाई। इन्हीं चीजों से लगा है वैसे लाइफ तो बहुत हैप्पी मतलब मस्त है हम दोनों की।
1: बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मस्त रहें आप दोनों, यही शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते आप दोनों की जिंदगी आगे बढ़े और एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतलब प्रेरणा देते रहें, आप सिखाते रहें लोगों को। आप लोगों ने कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में और आपके अनुभव की और के काम आए, सही है कि नहीं?
2: जी सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: लगी आज प्रोग्राम में, बड़ा मजा आया आप दोनों से बातें करके। और अब वक्त भी लगभग प्रोग्राम का हो ही चला है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे हम जाने नहीं देंगे आपको। हम जानेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, पहले मीना जी आप जरा बताएं आपका क्या कहना है श्रोताओं के लिए।
2: सर श्रोताओं के लिए और खासकर जो ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेरा यही है कि जैसे हम कई बातों में जैसे एक दूसरे को ही मतलब इल्जाम लगाना, मतलब आर्ग्यू करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत बहस करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और हम कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालने की कोशिश करते हैं, वो ना करके अगर हम दोनों, क्योंकि हम दोनों एक ही उससे आते हैं अब कम्युनिटी से, और अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम किसी सामने वाले किसी तीसरे इंसान को हम नहीं समझा सकते। तो अगर हम आपस में मिलके छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे खुशहाल और जीवन कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपनी लाइफ में भी यही वो करती हूँ कि हम दोनों में मतलब यही है, 8 साल आज हो गए हैं, कभी ना इन्होंने कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात की, ना मैंने खुद, मेरे परिवार में और आसपास के फ्रेंड्स लोग बोलते तुम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि औरों का जीवन भी मतलब ऐसा ही हो, सुख दुख तो आते रहते हैं सर, लेकिन यही है कि अगर उस दुख में भी अगर हम थोड़ा खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वही लाइफ हमारे लिए सबसे मतलब अच्छी होगी। बस श्रोताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी मतलब इसी तरह से खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मीना जी आपसे बात करके। और अब मैं चाहूंगा हरदीप आप भी हमारे सुनने वालों को कोई मैसेज दें।
0: जी सर, मैं मतलब सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब ये है, जितना हो सके हम हार्ड वर्क कर सके, मेहनत कर सके, एजुकेशन अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मतलब जो है ले सकें। और फिर उसके बाद ये है कि अगर लाइफ में कोई चैलेंज आता भी है तो उस चैलेंज को भी हम ये कोशिश करें कि मतलब इंजॉय करके जिएं और पॉजिटिव वे में ले करके और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और ना कि उसको ले करके हम बैठ जाएं कि मतलब अब ये, अरे यार ये क्या हो गया, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जितना हो सके मतलब हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और सबको आसपास के मतलब जो आसपास का अपना एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, जहां भी हमारा सर्कल जाता है वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ये मेरा मतलब।
1: बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद हरि जी। तो श्रोताओं आज सुना आपने हमारा ही प्रोग्राम, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमेशा आनी चाहिए, हम सबको आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मीना जी और हरि जी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें रेडियो मधुबन के साथ इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से करने के लिए।
0: हम दोनों की ओर से भी सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आपको, और हमें ये मौका मिला आप आपके साथ बात करने का, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं और आपने हमारे साथ इतने समय तक बात की और श्रोताओं तक हमारे मन के विचार पहुंचाए, उसके लिए आप सभी का मतलब आपका धन्यवाद और श्रोताओं का, सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आज इतनी देर तक सुनाई श्रोताओं ने, सबने उनका शुक्रिया सर।
1: ये था हमारा ही प्रोग्राम, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और ऐसे ही शानदार हमराही के साथ।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप इसका जवाब क्या देंगे? हो सकता है कोई शेर सुना दे, हो सकता है कोई कहे कि इतनी भी खूबसूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। और कोई शायद ये भी कह सकता है कि भाई कभी खूबसूरत है तो कभी यही डरावनी भी लगती है। तो सबके अपने वर्जन है, सबके अपने जवाब है, लेकिन ये कार्यक्रम आपको जिंदगी से प्यार करने में थोड़ा सा और मदद कर सकता है दोस्तों। इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी है, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी है, स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, फिर से एक बार हमारे श्रोताओं से जुड़कर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा।
0: और मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीनिधि जी का भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आप सभी से मिलके बहुत खुशी हो रही है।
0: थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमने बहुत सारी बातें की सेल्फ रेगुलेशन को लेके, थॉट रेगुलेशन को भी हमने समझा और ये भी जाना कि ये जितना शब्द मुश्किल है उतना काम मुश्किल नहीं है। शुरू में लग सकता है लेकिन अंततः ये हमारी जिंदगी को आसान करता है। और उसकी ट्रिक्स क्या है, कैसे उसको करना है, वो भी कुछ नियम कल्पना जी ने हमें बताए। बहुत सुंदर सुंदर चीजें, थॉट्स भी हमारे सामने रखी, लेकिन अगर हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स को, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या बहुत ज्यादा बाद में जाके हमें याद आता है, एक दो घंटे सोच लिया फिर याद आता है, अरे अरे मुझे तो ये करना था, तो फ्लो में बहे जा रहे हैं हम जैसे, तो उसका रिजल्ट क्या डेंजरस हो सकता है? कल्पना जी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम थोड़े से कुछ लाइनों से करते हैं। जिंदगी को मुस्कान से गले लगाओ, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे तब हमने थॉट रेगुलेशन के साथ ये भी कहा था कि माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जीवन मेरी प्राथमिकता है या मेरी इच्छा है। तो जिंदगी को मुस्कान से गले लगाओ, हर दिन एक तोहफा है, सांसों का हर पल अनमोल है, उसे प्यार से जी लो। जिंदगी शिकायतों से नहीं कृतज्ञता से लिखी जाती है। सो आज जिस बारे में आप बोल रही थी कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जो है, हमारे विचारों में अगर धन्यवाद वाला भाव रहता है, कृतज्ञता वाला भाव रहता है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में से, विचारों में से एरोगेंस या जो ईगो है वो निकल जाता है, मधुरता आती है, नम्रता आती है। सो हमारा जीवन जो है, अगर हमारे विचारों में मधुरता है, नम्रता है, शांति है, कृतज्ञता है, धन्यवाद का भाव है, तो विचारों को रेगुलेट करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सो जब कभी हम इस श्रृंखला की बात करते हैं, लोग कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, बट पर्सनालिटी नाम के इस वृक्ष की का बीज क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सो जब मैंने इसके बारे में अपने अनुभव से सोचने की कोशिश की
0: जी,
1: तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी पर्सनालिटी वृक्ष का जो सीड है, बीज है, वो है मेरे विचार, मेरे सोचने का तरीका, जिसमें या तो सकारात्मकता हो सकती है या नकारात्मकता हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दो विचारधाराएं हो सकती है, और बीच की एक विचारधारा है जिसको हम कहेंगे व्यर्थ, नेगेटिव भी नहीं है, वेस्ट मैं सोचे जा रही हूँ, बिना काम के सोचे जा रही हूँ। सो जो विचारों की क्वालिटी है उसी के आधार पर हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स जनरेट होती है, और फीलिंग्स हमें लीड करती हैं इमोशंस की तरफ, इमोशंस हमें लीड करते हैं वृत्ति की तरफ, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति, वृत्ति वृत्त शब्द का अर्थ है घेरा, और इंग्लिश में उसे एटीट्यूड कहा जाता है, नजरिया कहा जाता है, और नजरिया जिसका नेगेटिव या पॉजिटिव है उसकी जो बुनियाद है वो उसके विचार है। सो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद नंबर आता है आपकी दृष्टि का, विजन का। जैसी आपकी वृत्ति होती है वैसी ही आपकी दृष्टि, अर्थात आप जो भी देखते हो उसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव देख सकते हो अपने विचारों के आधार से। कोई पॉजिटिव चीज भी आपको नेगेटिव नजर आ सकती है, और किसी का नजरिया अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव चीज में भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी नजर आएगी। सो नजर बनती है, नजरिया बनता है, और उसके बाद आती है नंबर वर्ड्स का, आपके शब्दों का। आपके शब्द किसी को घाव भी कर सकते हैं, किसी के दिल पर वार भी कर सकते हैं, किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। कहा जाता है जुबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन वो बड़े बड़ों की हड्डियां तोड़ने की हिम्मत रखती है,
0: ताकत रखती है।
1: तो आपके वर्ड्स के कारण ही आपको लोग जानते हैं कि आपके मन में, आप कहते हैं मेरे मन में भाव नहीं था, लेकिन आपके शब्द ऐसे होते हैं जो घाव कर जाते हैं, लोगों का दिल तोड़ते हैं, आपसे उनको दूर करते हैं। तो वर्ड्स की बात आती है। वर्ड्स के बाद नंबर आता है एक्शंस का, आप जो कर्म करते हैं। फिर से हमें बुनियाद को याद रखना है, बुनियाद है हमारे विचार। और जब हमारे काम ऐसे होते हैं, एक्शंस ऐसे होते हैं, धीरे धीरे वो एक्शंस हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और वो पर्सनालिटी लेकर हम जहां भी प्रेजेंट होते हैं वहां या तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं या नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे विचारों से। किसी किसी के सानिध्य में हमें हल्का महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, मोटिवेटेड महसूस होता है, लेकिन किसी के आते ही वातावरण में घबराहट छा जाती है, वातावरण में उदासी छा जाती है, वातावरण में नेगेटिविटी छा जाती है। हम कहते हैं ऐसा क्यों, किसी के प्रेजेंस मात्र से ही हमें क्यों फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ होती है ये हमें जानना जरूरी है, और वो है अपने विचारों।
0: मतलब जो जड़ है हमें वहां तक जाना है। हम पेड़ पौधे में देख रहे हैं पत्ती में कुछ लगा हुआ है या फूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें असल में जड़ तक जाना है, और वो जड़ है सोच, यानी हमारे थॉट्स। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कल्पना जी, और मैं श्रीनिधि जी आपसे भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज आजकल बहुत आम हो गया है, कोई कहता है कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, मेरी ना बड़ी ओवरथिंकिंग चलती है आजकल। तो कुछ समय पहले अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें या उनसे और पीछे जनरेशन से बात करें, तो उन्होंने ये शब्द कम सुने थे, और धीरे धीरे अवेयरनेस भी आई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे भी ये शब्द बहुत यूज कर रहे हैं कि मुझे बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है आज, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो ये कैसे हमारे जीवन में इतना यूजुअल कैसे हो गया है?
2: डेफिनेटली जैसे आपने अवेयरनेस की बात कही आयुषी जी, वो बात तो माननी पड़ेगी। एक और हम मेंटल हेल्थ और उससे जुड़े हुए मनोस्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में जागरूक हो गए हैं धीरे धीरे, वो शब्द मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इसे खुलकर इसके बारे में बोलने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं, और हम एक्सप्रेस करने लगे हैं, ये एक अच्छी बात। और ये बढ़ रहा है, ये भी इस चीज को बताता है कि हम बोल चाल में, एक तो हम जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो स्टिग्मा था या फिर जो हिचकिचाहट थी, या मेंटल हेल्थ कहते ही लोग ये मानते थे एक जमाने में, अरे पागल खाने में भर्ती करना पड़ता या इनका दिमाग थोड़ा ढीला है, इत्यादि तरीके से जो चीज है ना, तो वो चीज अब बदली है थोड़ी देर में। तो ये जो कालांतर में ये चीजें बदलाव आई है, एक तरह से हम इसे एक पॉजिटिव चेंज के रूप में देखते भी हैं, मगर साथ ही साथ ये भी चीज सत्य है कि अब हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मन के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक रीति से प्रभाव डालने वाली चीजें भी बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से ये चीज बोलचाल का हिस्सा भी बन रही है, क्योंकि व्यक्ति वो महसूस कर रहा है। आजकल छोटे बच्चे स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो कोई गलत चीज नहीं कह रहे हैं, वो इनफैक्ट सच्ची चीज बता रहे हैं, मगर इसके दो पहलू हैं जिसको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है।
0: ओके।
2: एक तो हमने स्ट्रेस को मेनस्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में, एंग्जायटी डिप्रेशन जैसे वर्ड्स को मेनस्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में हम इतने आसानी से ले आते हैं ये समझे बगैर कि क्या इसका एक्चुअल अर्थ यही है। एंग्शियस होना अलग चीज है, और रिपीटेडली एंग्शियस होते होते एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर के रूप में जो क्लिनिशियंस या जो चिकित्सा कर्मी या स्वास्थ्य मनोचिकित्सक जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। एंग्शियस हर कोई हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो मैं उसके बारे में एंग्शियस होता हूँ, मैं अनसर्टन हूँ उसके बारे में, मुझे पता नहीं क्या होगा, तो उसके बारे में मेरे मन में विचार चलना ये चीज समझ में आता है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसी सिचुएशंस में उसका विचार चलता है, मगर बार बार बार बार बार बार आप सिचुएशंस को लेकर एंग्जियस होते होते आपके अंदर वो एंग्जाइटी डेवलप हो जाए, वो एक थॉट पैटर्न के रूप में बन जाए और उसकी वजह से आप एंग्जियस रीति से ही हर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करने लगे, तो फिर मनोचिकित्सक आपको कहते हैं कि आपको एंग्जाइटी है, आपको एंग्जाइटी की समस्या है, ये चीज कहते हैं। तो हम ये चीज भूल गए हैं कि एंग्जियस होना अलग चीज है और एंग्जाइटी होना अलग चीज है। तो हम उसकी वजह से दोनों चीजों को एक समान जोड़ देते हैं, और खासकर क्योंकि हम इन शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं जानते उसकी वजह से हम एक दूसरे के लिए वर्ड्स रिप्लेस कर देते हैं और फिर बाद में अपने सामने ही अपने आप को लेबल लगा लेते हैं कि मेरे को तो ये समस्या है, मेरे को तो ये बीमारी है, और इसकी वजह से हम कभी कभार जो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ का जो इलनेस में राइज है इसका भी एक कारण ये है, बट इसमें कतई दो राय नहीं है कि मनोस्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेंटल इलनेसेस के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी गई है और पोस्ट कोविड खासकर कोरोना के समय के पश्चात विश्व भर में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अब ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को करने लगे हैं या अपने जीवन में उन चीजों का ख्याल नहीं रख रहे हैं जो उन्हें रखना चाहिए था, शायद वो काम की वजह से हो या फिर विश्व में बदलते हुए परिस्थितियों की वजह से हो, या ये कहें कि इतना जानकारी हमको आवश्यकता नहीं थी, उससे ज्यादा जानकारी कंज्यूम करना या वो जानकारी को अपने अंदर ले लेने की वजह से भी लोगों के अंदर ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
0: ओके, तो जैसा कि आपने कहा, एक तो अवेयरनेस है, बेटर सिनेरियो है, हेल्प के लिए अब लोग रीच आउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एंग्जियस एंग्जाइटी मिक्स कर दिया हमने, हमें लगा मूड खराब है तो हमने कह दिया मुझे डिप्रेशन है, तो बहुत जल्दी हमने शब्दों को भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सही इस्तेमाल भी जरूरी है, तो आज से मतलब हम ये तो कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा अपसेट हैं तो यही कहें कि हम अपसेट हैं, ये ना कहें कि मैं बहुत डिप्रेस हूं, तो वो भी बहुत जरूरी है कि उचित प्रयोग करा जाए। मैं आपसे एक और चीज ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बात घूम फिर के थॉट्स तक आती है वापस कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, लेकिन हम इस सिनेरियो में जी रहे हैं कि आज कई बार ऐसा होता है कि इसको हमने नॉर्मल ही

0: सौ साल पहले भी थे, 200 साल पहले भी थे, 500 साल पहले भी थे, 1000 साल पहले। और ये चुनौतियां मनुष्य के सामने आती हैं तो मनुष्य उन चुनौतियों को सामना करता है। व्यक्ति जब इन चुनौतियों को हिम्मत से लड़ता है, उसके बारे में सोचकर, विचार कर, एक अलग दृष्टिकोण बनाकर, वो अपनी रचनात्मकता से इन सिचुएशंस को, इन परिस्थितियों को पार करता है। पहले जमाने में हो सकता था एक चैलेंजिंग सिचुएशन ये हो गई कि भाई हम हर दिन एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वहां दूध बेचने जा रहे हैं या सब्जी बेचने जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हम विक्रय के लिए जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, कोई भी कारोबार के लिए हम जा रहे हैं। और पता चला कि जैसे ही हम सुबह तो गए थे, शाम को वापस आते समय देखा कि नदी में पानी आ चुका है, उफान है नदी पे, अब हम कैसे रास्ता पार करें, पुल वगैरह होते नहीं थे। अब इतने उफान चढ़ी हुई नदी में कोई नौका भी नहीं चलाएगा। तो चैलेंजेस थे, ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस नहीं थे, और उस समय लोगों ने उन चैलेंजेस को डील नहीं किया या फेस नहीं किया। तो ऐसे मूड खराब करने वाली चीजें पहले भी होती थी,
1: पहले भी होती थी,
0: जो हम चीजें प्लान करके चलते थे उस हिसाब से चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती थी। तो उन चैलेंजेस को भी उस समय पर हम लोगों ने फेस किया है, ह्यूमैनिटी ने कलेक्टिवली फेस किया है। अगर हम इसी बात को मान लें कि हाँ, परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, और वो हमें क्रिएटिवली सोचने के लिए, रचनात्मक तरीके से, ये क्या कहते हैं उसको, एक इनोवेटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन खोजने के लिए हमें प्रेरित करती रही हैं, और वही चीजें हम करते आए हैं। अगर हम ये देख लें कि हाँ ऐसा होता आया है, तो हम अपनी आज समस्याएं या परिस्थितियां जो भी हम देख रहे हैं उसको भी पॉजिटिवली देखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का अप्रोच, जो नजरिया है, वो नजरिया अगर हम गलत अपना लें, फॉर एग्जांपल ये नदी क्यों उफान पे आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है,
1: ये सवाल आता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही
0: क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ही ये कठिनाई है, भगवान, पहले जमाने में तो लोग ये कहते, आज भी लोग करते, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। कई लोग तो जो भगवान को नहीं मानते, लोग कहते हैं मेरे कर्म कौन से ऐसे मैंने बुरे किए थे जो मेरे सामने आ गए। अब समस्या वही है, उन समस्याओं के लिए हमारी सोच, मेरा आउटलुक जो है वो बहुत मायने रखता है। आज हम सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक रखने के बारे में कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नदी उफान पर है, आज नहीं तो कल सवेरे तक नदी का पानी कम हो जाएगा, मैं रात को यहाँ रुक जाता हूँ इस पार। ये एक अप्रोच हो सकता है, ये एक अप्रोच इसलिए भी हो सकता है कि मैं इस चीज को सोचूं कि हो सकता है वहां जाने की आज मेरे को जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे यहीं रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रकृति ने ये चीज ऐसी की। आजकल एक नई चीज जो बहुत सारे लोग, जो हमारे युवा साथी इस्तेमाल करते हैं, मे बी द यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू स्टे हियर।
1: हाँ,
0: मतलब ये एक पॉजिटिव तरीका है सोचने का कि भाई ठीक है, मतलब नियति चाहती है कि मैं आज यहाँ रुकूं,
1: कोई रीजन होगा, कुछ होगा,
0: रीजन होगा, मैं शायद आज नहीं जानता। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक, एक सकारात्मक अप्रोच रखने से मैं उस समस्या से जूझूंगा नहीं।
1: हाँ,
0: उसका सॉल्यूशन निकालना है, मगर मैं समस्या के बारे में ही सोचता रहूं कि ये क्यों होता है, ये मेरे साथ ही होता है, अभी होना था क्या, और कोई टाइम नहीं था क्या। अनेक ऐसी चीजें जो मैं रिपीटेटिव थिंकिंग में ले आता हूँ अपने मन में, इसकी वजह से ये मेरे मूड को खराब करती है, और एक्चुअली ये मुझे स्ट्रेंथ नहीं देती है, मुझे और वीक बनाती है।
1: मतलब ऐसा नहीं है कि एंजाइटी या ओवरथिंकिंग मुझे पुश कर रही है, मदद कर रही है, ये हम गलत सोच रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: ये हमें और वीक कर रही है बल्कि, और हमारी जो पावर्स हैं उनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं शायद उसके कारण। तो जैसा आपने कहा, एक तो ये अप्रोच बड़ी इंटरेस्टिंग है, भाई पहले भी होती थी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, और हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, लेकिन उसके प्रति आउटलुक या अप्रोच अपना चेंज करें, थोड़ा सकारात्मक करें तो सोल्यूशन तक जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली चाहते तो हम सोल्यूशन ही है। वेरी इंटरेस्टिंग।
0: और ये भी बात जरूरी है समझना कि हम आज एक कल्चरली, हम क्योंकि आज हम एक अलग प्रकार के कल्चर में रहते हैं, हमारा वर्किंग कल्चर अलग हो गया है, आज हम डेडलाइंस रखने लगे हैं, आज हम हर चीज के लिए टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, और उसकी वजह से हम हर चीज में भी वही चीज अप्लाई करने लग जाते हैं। जो भी कार्यक्षेत्र पर आपको बोला जाता है कि भाई 3 दिन में काम हो जाना चाहिए, या 1 हफ्ते में, 1 महीने में पूरा करना है, अब उसकी वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि तो बारिश भी इतनी देर में रुक जानी चाहिए, आज बिजली गई है तो बिजली भी इतनी देर में वापस आ जानी चाहिए,
1: चिड़चिड़ाहट होती है, फिर वो नहीं होता तो मतलब
0: इंटरनेट का स्पीड कम हो जाता है, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इतनी देर से इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये क्या बात है,
1: बड़ा गुस्सा आता है फिर तो।

0: मतलब हमने हर चीज जो हमने अपने प्रोफेशनल स्फीयर पे, या आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में एक डेडलाइन है कि भाई 3 महीने बाद एग्जाम है, एक हफ्ते में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इस डेडलाइन को हम लाइफ के हर चीज पे अप्लाई करने लग जाएं जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, तो शायद वो हमें और परेशान करेंगे। कभी कभार इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें, सो आई एक्सेप्ट इट, इट इज ऑल राइट, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल एंड दैट इज ओके। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कभी कभार हम दूसरों से भी ये अपेक्षा करते हैं, ये मेरी बात समझता क्यों नहीं है, आपको हर बार मेरी बात पे डिसएग्री क्यों करना है, आप मेरे साथ हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और तभी ये समझना जरूरी है कि यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, दैट डज नॉट मीन दैट दीज आर अवर डिफरेंसेस एंड दीज डिफरेंसेस आर ओके।
1: ओके, तो यहाँ मेरे पास एक और सवाल आया मेरे मन में। जैसे मान लीजिए किसी के साथ ऐसा होता है, लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट हमने रोकनी चाहिए, वो पर जो अंदर थे उन्होंने रोकी नहीं, वो चले गए, या फिर हम लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं या कहीं से आ रहे, कोई हमारे सामने से हट नहीं रहा है, हमें जल्दी है और बहुत जल्दी इरिटेशन होने लगता है, तो क्या ये साइन है कि हमें थोड़ा हेल्प चाहिए या अपने ऊपर ध्यान रखना है, या ये नॉर्मल है कि म्यूजिक किसी ने लाउड बजा दिया, इरिटेशन हो गया, किसी ने कुछ फेंक दिया मेरे सामने तो पैर रखना पड़ गया उसमें, इरिटेशन हो गया, किसी को चेहरा देख के ही, मतलब इतने सारे स्ट्रेंजर्स दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तेज बात क्यों कर रहे हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, ये क्या पहन के चल रहे हैं, अगर ये थॉट्स बहुत आती रहती है हमें बाहर निकलते ही, तो क्या हमें हेल्प की जरूरत है?
0: मैं समझता हूँ हेल्प की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है।
1: ओके,
0: और ये मदद ऐसा नहीं है कि ये मदद कोई हमें बाहर से लेने की जरूरत हो सकती है, कोई इतना सीरियस चीज नहीं है। अगर हम थोड़ा अपने ऊपर ही ध्यान देने लगे तो शायद ये चीज समझ में आ सकती है। बिल्कुल वैसा ही है कि बाहर की छोटी छोटी चीजों से अगर मेरा मूड खराब हो रहा है, या मेरे मन में विचार ज्यादा चल रहे हैं, या मैं चिड़चिड़ा है, परेशान हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, बाहर की चीजें मुझे प्रभावित कर रही हैं। तो हो सकता है मेरे बगल में ही एक व्यक्ति जा रहा है, वो भी वही चीजें देख रहा है, पर वो उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, उसे परेशान नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति ज्यादा सशक्त है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम समझें, बिल्कुल वैसा ही है कि कभी कभार कोई व्यक्ति छींक दे तो कुछ लोग तुरंत अपना मुंह ढक लेते हैं, और कुछ लोगों को मुंह ढकने या किसी भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अंदर से स्ट्रांग है और की इम्यूनिटी अच्छी है। बट कई लोग जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपका इंटरनल हेल्थ, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है, आपको कोई प्रकार का इन्फेक्शन है या बीमारी ऑलरेडी है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप मास्क लगा के बाहर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं बाहर के वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ सकता है, वहां पर कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन मुझे आ सकता है, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगा लेते हैं। अब बाहर जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो है, अगर आप बाहर जाने से डरे, अरे मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, और फिर बाद में पता चले नहीं बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और आप डरते डरते डरते डरते सहमते हुए अपने आप को बचाते बचाते जाएंगे, तो ये एक तरीका है जाने का। दूसरा, या तो आप मास्क लगा लें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें और फिर बाहर जाएं। तीसरा तरीका ये है कि आपको मास्क वीस्क लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने अंदर को इतना शक्तिशाली बना लो, अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा लो, आप इतने ताकतवर हो जाओ कि कोई भी बैक्टीरिया, वातावरण का कोई भी चीज हो, इन्फेक्शन हो, आप पे असर ही ना करे, कि आप इतने शक्तिशाली हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी अच्छी है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर जो चीजें हैं सो हैं, बट आप बाहर कैसे जा रहे हैं, किस तैयारी के साथ जा रहे हैं,
1: आपके ऊपर है।
0: ठीक है, किसी ने लाउड म्यूजिक बजाया, आपको परेशानी हो रही है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आप सामने वाले को बदल सकते हैं, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैम आप म्यूजिक न लगाएं, थोड़ा परेशानी होती है, आप अपने कान में म्यूजिक लगा के सुने, इतना आप कह सकते हैं। अगर आप समझ लें आप किसी पब्लिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, गरबा चल रहा है, और गणपति का सीजन चल रहा है, लोग लाउड स्पीकर में म्यूजिक चला रहे हैं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आप गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि लोग इतना लाउड म्यूजिक क्यों चलाते हैं,
1: exactly.
0: ये कंट्रोल में नहीं है आपके,
1: कंट्रोल में नहीं है जी।
0: तो आप अपना अप्रोच बदलें, मैं ये सोच बदलूं कि हाँ ये थोड़े दिन की बात है, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपने ईयरफोन्स लगा सकता हूँ जो नॉइस कैंसिलेशन वाले हो, थोड़ा कम मुझे सुनाई दे, मैं उससे डिस्टर्ब ना हो सकूं। ऐसे ही लोगों का बिहेवियर भी है, कई लोग गलत तरीके से बिहेव करते हैं, कभी कभार मैं उनके बिहेवियर से प्रभावित होता हूं, और ये भी समझना जरूरी है, यू आर नॉट ओके एंड आई एम नॉट ओके एंड दैट इज ओके. तुम ठीक नहीं कर रहे हो और तुम ठीक नहीं कर रहे हो इसकी वजह से मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, बट वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट, बट मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा. मुझे अपने ऊपर काम करना है कि तुम्हारा नॉट ओके होना भी मेरे लिए ओके होना चाहिए. तुम्हारा नॉट ओके होना मुझे नॉट ओके करे, ये ओके नहीं है, इसके लिए मैं काम करूंगा. ये समझ अगर मैं ले आता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम सेल्फ वर्क कहते हैं, हम अपने ऊपर काम करने लगे तो ये इतना ही आसान है, बिल्कुल जिम जाने जैसा है. अगर आप हर दिन जिम जाते हैं तो आप देखेंगे अपने शरीर में बदलाव आएगा, मसल्स बिल्ड होंगे. ऐसे ही मानसिक रूप से आप अपने मन में ये विचार लाते रहेंगे, ये मेंटल वर्क करते रहेंगे, तो आपके भी मेंटल मसल्स बिल्ड हो जाएंगे. आप इन सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपने वो स्टैमिना बिल्ड कर लिया.
1: राइट. तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई. एक तो जब मैंने ये बात अपने मन में बना लिया कि भाई मैं जल्दी इरिटेट होता हूँ या मुझे बड़ा परेशानी होती है इस चीज से, दिस कैन चेंज. जरूरी नहीं है कि वो आउटर चीजों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें क्योंकि हर बार वो हमारे बस में नहीं होती. बट मैं अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच लेके कि नहीं कोई बात नहीं, ये कुछ है, रीजन है, जो भी है, मैं इरिटेट नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में है. दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने जिम का एग्जांपल दिया, तो मसल एक दिन में तो नहीं बनती है, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ती है. तो कई बार हम एक बार एफर्ट करके निराश हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, तो एक दिन में मेंटल मसल वो भी नहीं बनेगा. हमें एफर्ट करना होगा लगातार, एंजॉय करना होगा उस प्रोसेस को, तब जाके हम कुछ जो काम अपने ऊपर करना चाहते हैं वो सफल होगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों. हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो कोशिश करते हैं कुछ बदलाव लेकर आएं और इस कार्यक्रम के जरिए जो हमें बातें अच्छी लगी हैं वो अपने पास नोट करके भी आप रख सकते हैं. पर फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का. प्रीनिधि जी, कल्पना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. तो दोस्तों, मुलाकात होगी लव योर जिंदगी के अगले एपिसोड में. तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है, माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
3: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
4: हाँ बन्नू, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूं मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
3: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
4: बन्नू, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी।
2: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वायली को गोली मार दी ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदन लाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
3: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदनलाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
4: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
2: दरअसल मदन लाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदन लाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्याम जी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
3: ओ, समझ गई, मदन लाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से? ठीक सोच रही हो ना?
4: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
3: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
4: मदन लाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदन लाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मदन लाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदन लाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
5: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
2: सावरकर के शब्दों ने मदन लाल ढींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
6: मैं लौट तो आया हूं, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज हैं या नहीं।
2: मदन लाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
5: अरे डिंगरा, कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए? मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
6: क्या शहादत का समय आ गया है?
5: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो, तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
2: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदन लाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
3: दीदी, जब मदन लाल सावरकर से अलग सोच रखते थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
4: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
2: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
7: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
8: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
7: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
8: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
2: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहाँ कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
5: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
9: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
10: कौन है वो गद्दार? आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
5: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
2: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
11: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
2: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
11: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
5: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
11: मैंने क्या किया? कुछ समझा नहीं मैं।
5: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
2: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वाइली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञानचंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
5: आप लंदन छोड़कर न जाए और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
2: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
5: आप ये बयान देख ले जो आपको कर्जन वाइली के हत्या करने के बाद देना होगा, निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
10: ठीक है,
6: मैं इसे याद कर लेता हूँ।
2: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
5: अगर इस बार तुम असफल रहे तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
2: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए। ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरेगांवकर से मिलने गए, जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का भोजन और शाम की चाय ली। दोपहर 2 बजे वो एक रिवॉल्वर लेकर अपने घर से निकले। उन्होंने चमड़े के खोल वाली एक बिल्कुल नई कटार खरीदी और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो फनलैंड गए और 18 फीट की दूरी से 12 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 11 गोलियां निशाने यानी बुलजाई के बिल्कुल करीब लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ करवाई। शाम 7 बजे मदन लाल ने लाउंज सूट और नीली पंजाबी पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। चूंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
4: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना? हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
3: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है, ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदन लाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी।
4: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम डरो मत बन्नो, बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
3: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
2: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें कर्जन वाइली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था, जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, कर्जन वाइली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे। तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया।
12: अजय जाओ ना, क्या कर रहे हो?
2: ढींगरा बात करने के बहाने कर्जन वाइली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। कर्जन वाइली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। कर्जन वाइली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने 2 और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
13: ये क्या किया? He is bleeding.
6: आप बीच में ना पड़े वरना।
2: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी। खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया, जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया जिससे उसकी पसलियां टूट गई। लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
14: मेरा चश्मा दे दे।
2: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढींगरा से पूछा,
7: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
10: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
7: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
3: आगे क्या हुआ गीत दीदी? क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
4: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
2: आप सभी को बता दें कि कर्जन वायली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने कर्जन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सशंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। हर एपिसोड के तरह पर्यावरण पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट हम उसका पार्ट है और एनवायरनमेंट हमारा पार्ट है, दोनों का एक दूसरे से संपर्क रहता है, क्योंकि हम है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम है। मेरा गांव मेरा अंचल के तहत आज जो पर्यावरण एपिसोड में हमारा कार्यक्रम को सजाने के लिए हर एपिसोड की तरह आज भी उपस्थित है श्रीमान गोपाल राम पुरोहित जी, जो कि शिक्षा जगत में तो थे ही और अभी पर्यावरणविद बन गए हैं, क्योंकि एनवायरमेंट ऊपर में उनका बहुत लगाव है और पर्यावरण का बिना वो रह नहीं सकते भाई। पर्यावरण को देखभाल करना, पर्यावरण उनको देखभाल करते हैं, वो उनको देखभाल करते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो हमें खुशी लगता है। जैसे कोई कम्युनिटी से उभर कर जो आता है हमारे रेडियो कार्यक्रम को सजाने के लिए, हमें दिल से खुशी होता है और हमें जितना हो सके हमारा तरफ से उनको सपोर्टिंग करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय का होने के नाते मानव सेवा के लिए जनहित में एक जारी करते हैं, तो हम लोग आपस में जो बात करते हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकल कर आता है। तो आज इस एपिसोड को पर्यावरण संबंधित कुछ बात करने के लिए उनको स्वागत करते सर जी, स्वागत करते हैं आपको इस कार्यक्रम में। खासकर पर्यावरण विद आप है और पर्यावरण हमारा मित्र है।
1: सर नमस्कार। सर आपने जो ये जो मंच प्रदान किया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, रेडियो मधुबन की यह टीम जो कि स्टूडियो में जो कार्यरत है और आप फील्ड के काम को स्टूडियो में ले जा करके और तैयार करके समुदाय से लेकर के जिस उत्साह के साथ में घूमते हैं, वास्तव में मैं भी उससे बहुत बहुत प्रभावित और प्रेरित हुआ हूँ कि आप इस मेडिटेशन जगत की एक नई अनुभूति करवाने के साथ साथ पब्लिक से जुड़ करके उसकी समस्याएं जो है वो क्यों है और उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये बखूबी मैंने आपके फील्ड में विचरण के समय पाया है। सर मैं बहुत उत्साही हूँ, आपकी हर बात से इतना अभिभूत हूँ। वैसे तो पूरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य के लिए मानव शांति के लिए समर्पित है, पूरी दुनिया में उनका प्रचार प्रसार और अच्छे काम के लिए इतनी बड़ी योजना को एक सिस्टमेटिक ढंग से लागू करना करवाना हमें बहुत प्रभावित करता है। सर आपके संपर्क में आने के बाद मैंने पर्यावरण का जो मुद्दा है, जब से आपने मुझे शिखर सम्मेलन में स्थान आने को आमंत्रित किया और तब से पर्यावरण मित्र महेश भाई पंड्या जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ में मुझे बातचीत करने का और बैठने का मौका मिलता है और मिला है। जब जब भी वो यहाँ आते हैं तो हम उनके साथ में बैठ करके बहुत ये अच्छी चीज सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये पर्यावरण मेडिटेशन तक ले जाता है। सीओपी की सारी बैठकों में वो भाग लेते हैं। अभी यहाँ पर पर्यावरण मित्र का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पधारे थे बीके पवित्र भाई ने, इनकी पूरी टीम ने, और वहाँ पर पहुँच करके समुदाय के साथ में जो संवाद किया वो वास्तव में एक फील्ड के लिए आवश्यक और अति आवश्यक कार्यक्रम, और आपका तो सिस्टम ही ऐसा है। तो सर आप किस तरह से सर संवाद को कम्युनिटी के साथ में स्थापित करने के लिए कितना कितना प्रयास करते हैं, ये बात मैंने अभी आप जो मेरे साथ में करोटी जो पर्यावरण मित्र पे जो प्रोग्राम हुआ जिसमें महेश भाई पंड्या अहमदाबाद पर्यावरण मित्र जो है जो डायरेक्टर है सर उसके, हाँ सर, तो वहां से वो आए और जिस तरह से हम वहां पहुंचे, जिस तरह से आपने समुदाय में कितना अपनी टीम के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आपने मुझे भी सहयोग किया, जो बच्चे वहाँ पर 100 युवा वहाँ पर आए हुए थे एनजीओ के, उनको भी वो धरातल प्रदान किया कि वो किस तरह से पर्यावरण में काम कर रहे हैं और किस तरह से आपकी जो जो आपके साथ में जो दल था झुनू बहन बीके अलख जो आपके रेडियो मधुबन में आपके सहयोगी है सर, उनको आपने आध्यात्मिक प्रचार प्रसार के लिए फील्ड में भेज दिया और आप वही आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करते हुए हमारे साथ रहे, पर्यावरण का काम भी किया और सारा काम करते हुए जो आपने सिस्टम को सजाया, आपने इस प्रोग्राम को कल रेडियो मधुबन पर भी दिया तो मैंने भी ये वहाँ तक जो थे इसमें शामिल उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया और अब ये सोच ही रहा था कि भाई तो मेरे भाई साहब ने तुरंत बुला लिया था, फिर मुझे तो जाना ही है, तो आपके साथ में इस तरह से संवाद करके और आपकी जो ये व्यवस्था है इसको देख करके कि आप कितने लालायित हैं इस दुनिया के लिए। फोन पर हमारी चर्चा हुई कि भाई साहब आज तो मेडिटेशन डे है, और मेडिटेशन डे की बात को देख करके आज तो ध्यान में मस्त रहना चाहिए। तो फिर ध्यान में सर मैं अब ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बुलाया तो मैं इसलिए कि ध्यान में पर्यावरण का क्या योग हो सकता है, इस पर आप आज मुझे बताएंगे क्योंकि आज ध्यान दिवस है।
0: आज हमारा होस्ट करने के लिए वो एंकरिंग कर रहे हैं और हमें खुशी है क्योंकि आज मेडिटेशन डे का तहत हम लोग एपिसोड में बना रहे हैं और हम हर रोज मेडिटेशन डे बनाए, सिर्फ एक दिन सिर्फ दिसंबर 21 को क्यों, हर रोज मनाए पर्यावरण दिवस जैसे हर रोज मनाइए। और ये इस त्योहार का जो डिक्लेरेज यूएनओ से तो हमें खुशी है। जैसे मेडिटेशन शब्द ध्यान, हम बचपन में जब पढ़ते थे सर, सभी हमारा गुरुजन माँ बाप भी ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से चलना, का फिसल ना जाए, ध्यान शब्द उस समय सुनते थे। मैंने अटेंशन, इसका मतलब पूरा कंसंट्रेशन होकर चलो, किसको नुकसान न हो और खुद को भी नुकसान न हो। नुकसान के लिए ही ध्यान रखना पड़ता है, नुकसान न हो क्योंकि खेती होगा तो सबके लिए, परिवार के लिए और हमारा लिए, और हमारा खेती होगा तो मैंने पर्यावरण का भी खेती होगा क्योंकि हमारा सोच पर्यावरण की तरफ नहीं जाकर खुद का पर टेंशन में बीमारी में आ जाएगा। ये जो सोच हमारा पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है सर, क्योंकि पर्यावरण में हम बुद्धिजीवी है, जीव और निर्जीव में, निर्जीव तो बोल नहीं पाते लेकिन हमसे वो साइलेंस शांति से देने के लिए हमेशा दातापन भावना अभी तक है,
1: दातापन
0: रहते हैं और हम तो लेतापन के हमेशा लेते आ रहे लेने के लिए भाव है। तो जब देखते हैं समय अनुसार खनन दहन बहुत कुछ हम लोग किए ग्रीड हिसाब से, लालच का हिसाब से, क्योंकि समय का मांग भी और हमारा जो आवश्यकता, पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, जमीन तो उतना ही है,
1: पॉपुलेशन बढ़ रहा है
0: तो उसी हिसाब से हमारा आवश्यकता पड़ रहा है और आवश्यकता पेट के लिए तो
1: दबाव बढ़ रहा है
0: तो उसी हिसाब से हमें आवश्यक पड़ रहा है और हम थोड़ा ग्रीडी हो गए, जिसका चलते ही आवश्यक पड़ा भाई ध्यान देना पड़ेगा अभी ध्यान दे। तो आज ध्यान दिवस था और रिकॉर्डिंग एपिसोड भी ध्यान का ऊपर में ही हम लोग करेंगे। ध्यान से प्रकृति को बा पर्यावरण को क्या फायदा होगा? समय सर, समय था जब प्रकृति हमें बहुत कुछ बिना मांगे देता है और उसको देती है। और सत्ययुग में जो शुरुआत था, भारत स्वर्ग था, हमारा भारत अखंड भूमि है, तो उस समय प्रकृति हमें सब कुछ दाता पन के भरमार देते थे और हमें भी आवश्यकता नहीं होता था, हमें पूरा मिल जाता, मांगना नहीं पड़ता था, अभी मांगना पड़ रहा है। तो उस समय को देखकर आज का समय बहुत अंतर हो चुका है,
1: बहुत अंतर।
0: उस समय सत्ययुग, आज कलयुग का क्लेश का दुनिया, टेंशन का दुनिया, उसमें कोई टेंशन नहीं था, इसलिए ध्यान का आवश्यक पड़ा। ठीक से चलते तो माँ बाप हम नहीं बोलते भाई तुम थोड़ा फिसलने वाला है, इसलिए ध्यान दो, ध्यान से मेडिटेट। जैसे आज हम सुबह से शाम तक योग किए हैं और हमें, क्योंकि राजयोग ये ब्रह्मा कुमार जीवन हम व्यतीत करते हैं, जब खुद का अंतरकरण करते हैं, खुद को देखने की कोशिश करते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं, अंतर चेतना से जो ऊर्जा हमारा, जो बोलने वाला एक शक्ति ऊर्जा, वो हमें क्या प्रेरणा देता है
1: जी।
0: तो तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहा, क्या कर रहा है, खुद को पूछो क्या सोच कर आया था और क्या कर रहे हैं। तो अंतर आत्मा से, अंतर चेतना से भाई तुम अच्छा कर्म के लिए यहाँ पर आए हैं और अच्छा करना चाहिए, और जो कुछ कर रहा है वो खुद तुम संतुष्ट हो, मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, भगवान कह रहे ऊपर वाला, तुम खुद को सर्टिफिकेट दे रहा है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा हूँ। तो आप तो भले बाह्य में हम कुछ भी युक्ति से इधर से करते, अंतर चेतना से दुखी व परेशान ही है
1: जी जी।
0: जब मेडिटेशन करते हैं, खुद का भले का साथ साथ हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी है,
1: पूरा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है,
0: वातावरण भी
1: शुद्ध हो जाता है
0: क्योंकि मेडिटेट जो एक योगी किसके लिए, भोगी नहीं है,
1: योगी
0: तो पर के लिए, दूसरे के लिए, भोगी अपने के लिए
1: जी।
0: तो राजयोगी जो गीता में भी वर्णित है, राजयोग वर्णित है तो और योग हम जब करते हैं खुद को ध्यान लगाते, मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ना बुरा करना चाहिए, ये मेरा ऊपर डिपेंड करता है, इसको कहते हैं राजयोग। प्रकृति व पर्यावरण, क्योंकि हम प्रकृति से ही, हमारा जो शरीर है प्रकृति है,
1: जो राजयोग के लिए साधन
0: है,
1: प्रभु द्वारा
0: दिया हुआ ये साधन है, जैसे गाड़ी बैठ कर जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए,
1: तो
0: ये भी शरीर का साधन है, तो उसको मान्यता देते हुए योगा डे जो जून 25 तारीख को बनाते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती भी जरूरी है, और सभी लोग भाई बहन हमारा करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं,
1: शरीर की तंदुरुस्ती होगी,
0: गाड़ी को भी
1: आगे बढ़ पाएंगे,
0: वो भी कर रहे हैं। उसका साथ साथ फिर देखे भाई, योगा और योग में कोई अंतर नहीं सोचा, कोई समझ नहीं आ रहा था भाई क्या करे, योग और योगा दो चीज को एक ही कर दिए थे, मेडिटेशन अलग है, ध्यान अलग है और योगा अलग है,
1: इसलिए ही अलग है। ये अंत है चेतना,
0: अंत चेतना का, ये बाह्य चेतना या अंत चेतना,
1: बाह्य चेतना होनी चाहिए लेकिन साथ साथ अंत चेतना भी अपनी आवश्यक होनी चाहिए। तो ध्यान योग पर ये जो विशेष बात जो आप बता रहे हैं, आप सर ये बताइए कि ये आज ये जो ध्यान योग जो है इस पर अभी कुछ एक नई घटना हुई है जिसको अभी आपने एक बहुत बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है आज विशेष में, वो क्या विशेष है वो बताइए जरा
0: सर। खासकर मेडिटेशन तो हम तो हमेशा करते हैं, लेकिन एक पब्लिक को पता चला भाई मेडिटेशन क्या होता है। वो अभी पूरा जिसे पूरा वर्ल्ड का ये मेडिटेशन डे मना रहे हैं, और खासकर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये अंत ध्यान दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस जैसे बनाते जून 5 को, ये विश्व ध्यान दिवस है, मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिसंबर 21 को मनाते हैं। और इसका पूरा जानकारी आप तो यूट्यूब में गूगल से जानकारी अधिक ले सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू से 1936 से इसका चल रहा है, और आज उसका आवश्यकता दुनिया वाले महसूस कर रहे हैं, और इसलिए
1: राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए
0: जो हो रहा है
1: जी।
0: तो ये आवश्यकता, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जो जानकारी के लिए हमारे जानकारी भाई, मेडिटेशन ध्यान से पर्यावरण को क्या फायदा होगा
1: जी, क्या फायदा होगा
0: फायदा ही फायदा सर,
1: क्या बात है,
0: फायदा ही फायदा, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षण बस को अस्तित्व में
1: रहेगा तो ध्यान कर पाएंगे
0: उसको लाने के लिए ये ध्यान है। जैसे हमारे मुनि ऋषि लोग जब भी कुछ समस्या आते तो मेडिटेशन तपस्या करते थे, तपस्या को ही कहते हैं,
1: तो ये तपस्या की ध्यान की
0: आवश्यकता है,
1: आज योग की आवश्यकता है,
0: तपस्या से ही समस्या भगेगा, करो तपस्या और भगाओ समस्या,
1: बिल्कुल सही।
0: जो आज समस्या बहुल हो गया कलयुग में, तो समस्या को दूर करने के लिए अंतर चेतना से परमात्मा से जो कि सुप्रीम है, जो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, रचयिता जिसको कहते हैं, जीव और निर्जीव, जैसे हम जीव में पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा जिसका पास जबन है, जीव जान है, प्राण है, वो उसका है, और निर्जीव जो है 5 तत्व है
1: वो भी उसी का
0: है, जैसे मिट्टी वायु आग पानी ये सब क्या, हवा इस प्रकृति का जो 5 तत्व भी उनका ही अंडर में चलती है, हो गया पूरा यूनिवर्स। हम सर आप तो स्कूल में पढ़ाए होंगे बहुत, मैंने सीखा भी, मैंने देखा था उस समय जब हम इंटर स्कूल कंपटीशन कराए थे, उस समय भी आपका स्कूल में आप उसमें सीबीओ साहब से जिला सीबीओ तक शिक्षा अधिकारी थे, तो उस समय हम भी इस कार्यक्रम को लेकर जाते थे, तो उससे हमको परिचित, और हम स्कूल में हमें पढ़ते थे, आप भी जानते होंगे सौर जगत ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आसमान, हम जैसे अभी मानसरोवर में बैठे हैं आज के दिन में, जो आसपास इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये हम स्कूल में पढ़े हुए हैं,
1: पढ़ा है
0: ठीक है। इसका ऊपर क्या है किसको पता नहीं, हल जानते थे ऊपर वाला पाताल है, नरक स्वर्ग ऐसे जानते जानकारी है, लेकिन उसमें स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरा परमधाम सूक्ष्म क्या है वो आकर हमें बताया, और उसको ही हम मेडिटेशन, मैंने इसलिए पूछा
1: जी,
0: मेडिटेशन

0: को देखते हुए कोई आते हैं तो वो भी परिवर्तन हो जाता है, वो जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। और ये का हमारा एक संस्था जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए और खुद के लिए करते हैं, और इसका चलते हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो इसलिए जैसे आपने बताया
1: हमको ही बदलना है
0: तो हम खुद बदल रहे हैं, जैसे आप खुद बदल रहे हैं। भाई कुछ भी हो जाए मैं एक काम को
1: बदलना,
0: चाहे लोग तक लोग का काम कहना है
1: वो सर, वो
0: तो उसको हम ध्यान नहीं दे, इस कान से सुने उनका वो जानते नहीं इसलिए बोला, वो भी निर्दोष है,
1: वो निर्दोष है, उनको
0: उसका कोई दिक्कत नहीं। हमें उनको समझाना है जब भाई हमें अच्छा काम के लिए, हम बुरा काम के लिए नहीं जा रहे, कोई दूसरा काम क्षति कर नहीं रहे, जिसको अच्छा काम के लिए जा रहे, पुनित काम के लिए, उसमें थोड़ा सा हमको आएगा, उसलिए कोई गड़बड़ा मैंने हड़बड़ा नहीं होगी, तकलीफ का बात नहीं है। जैसे आपने पूरा उसको त्याग कर आए, क्योंकि हम इतना साल से जो कर रहे थे आप आए तो मुझे बहुत खुशी लगा, इसलिए भाई आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हम देना ही है।
2: क्योंकि पवित्रता तो इतनी गजब की है कि देखिए सर, हम तो इतने भाग्यशाली है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की पूरी दुनिया का मुख्यालय आबू रोड में, आबू पर्वत आबू रोड एक ही बात है, और उसी अरावली की गोदी में हम रहते हैं, तो हम तो उनके बिल्कुल पड़ोसी हो गए ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़े। तो उनके विचारों को लेने के लिए तो आना ही है, और वो जब दुनिया की भलाई की बात करते हैं तो हम पड़ोस में रह करके क्यों चूके।
0: सही बात बताए, जैसे मैंने छोटा सा आपका वो एग्जाम्पल जो दिए भाई क्या हो रहा है, तो उसका ही आंसर मैंने देना चाहता
1: हूँ।
0: आपका एग्जाम्पल चाहिए आप समझ जाएंगे भाई क्या है। जैसे आप पहले इतना नहीं थे, अभी एक दो महीने से हमें मिल रहा है आगे, लेकिन जब भाई चलो थोड़ा देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सम्मेलन में जब आए थोड़ा आप खुद को समर्पण कर दे, जैसे पूरा भावना दे दी, मैंने आपका बुद्धि मन इधर ही चलता है, रेडियो मधुबन का ब्रह्मा कुमारी का एग्जैक्ट, ये लोग भी जो आए जो 6 दिन का कर रहे थे उसका मैंने आंसर दे, जैसे आपने देखा सुना इसका बाद अरे ये तो अच्छा काम कर लिया, तो आपने क्या किया आपने को समय दिया रेडियो मधुबन में एग्जैक्टली ये जो 6 दिन का जो कार्यक्रम होने वाला है।
1: जी जी सर,
0: ये भी जो मेडिटेशन का हो चाहे ब्रह्मा कुमारी का जो दिनचर्या हो, जो परमात्मा का जो कर्तव्य यहाँ पर हो रहा है, स्वर्ग का नमूना देखें
1: यहाँ बिल्कुल है ना,
0: वो देखकर अपना जीवन को बरे, जो हम सोचते थे डाउट करते हो यहाँ आकर तो आउट हो गया,
1: यहाँ
0: यह हो रहा है, सही बात है। इसके बाद बोला ये तो योग्य है, ये परमात्मा का काम है, कोई मनुष्य का काम नहीं, कोई व्यक्ति का यहाँ पर नहीं,
1: तो
0: वो जो सोचा पूरा टीम आज मेडिटेशन डे में वो लोग पूरा 4-5 दिन के लिए आए थे, वो संस्था के बारे में टोटल डिटेल्स मालूम नहीं, जब होगा वो अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और एक ऐसे तो अवार्ड तो बहुत कुछ भगवान हमें अवार्ड दिया अवार्ड का, लेकिन एक प्रचार प्रसार के लिए वो अपना जीवन को बोला अरे ये लोग इतना सैक्रिफाइस, जैसे आपने हमारा प्रशंसा कर रहे
1: हैं
0: और हकीकत
1: प्रशंसा नहीं हकीकत
0: हकीकत देख रहे,
1: प्रशंसा क्या कर रहे, जो है वही बताना है।
0: आज जोड़ते एक एक के बाद एक देखते थे आज इतना विशाल बटवृक हुआ।
1: जी सर जी सर,
0: इसमें कोई जाति धर्म वर्ग कुछ
1: कुछ नहीं है, होना भी नहीं,
0: छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, कल शरीर छोड़कर तब भी बुद्ध व्यक्ति भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आ सकता है, तब
1: सब आते हैं,
0: करोड़पति भी आते हैं
1: सर, हम तो देख रहे हैं आंखों से देख रहे हैं कि सभी आ रहे हैं, सड़क पर से व्यक्ति आ रहा है, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, विभिन्न जो देश है दुनिया के उनके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो सब तो आ रहे हैं।
0: तो जैसे आपने तो देखा होगा कौन, जैसे हम लोग आप करोटी का बात कर रहे थे, जो महेश पांडे का बात कर रहे थे,
1: जी सर,
0: यह संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय को नहीं जानते और शिव बाबा को नहीं जानते,
1: सब जानते हैं शिव बाबा,
0: लेकिन उनका भी कुछ क्राइटेरिया है डायरी है, तो उसी हिसाब से वो रहते हैं, मानते हैं,
1: वो रहना पड़ता है,
0: रहना
1: पड़ता है,
0: मानते हैं।
1: तो आपकी यही सबसे बड़ी विशेषता कि हमको आप लोग सहज रखे हुए हैं कि हमको कितना कहाँ पर क्या स्पेस मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो हमको इससे ज्यादा क्या चाहिए, बहुत खुशी का विषय है।
0: यही चीज जो लोग देने के लिए जो आए तो खुद परिवर्तन हुए, और बाबा का बच्चे बोले हम तो बाबा का हमारा घर में आए, ऐसे पहले तो हम परा घर में मेहमान होकर आए थे, लेकिन वो जो 6 आदमी का जो बात करे, 6 दिन का प्रोग्राम होगा, फिर हमें कभी मौका मिलेगा जिसका जब फाइनल होगा, अभी तो चल रहा है, लेकिन जब होगा तब मैं इस एपिसोड में रखेंगे उसका बात को, क्या वो लोग देंगे, क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक मनुष्य देकर कितना देंगे सर, ऊपर वाला जब हम परमात्मा जो दे रहे वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, और खुद जब सेटिस्फाइड है, जो हमें अच्छा लग रहा है, उससे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए करण करावन हार करा रहा है,
1: उस करा रहा वही कर रहा
0: उसका बात को हमको
1: मानना पड़ेगा,
0: तो जानेंगे और कुछ बात को लेकर, और सर का जो प्रश्न था खासकर मेडिटेशन से राजयोग से पर्यावरण को कितना फायदा होगा। हम भलवान अजीत हम भी देख रहे हैं पर्यावरण हम राज्य का चलता अभी ये जो मानसरोवर पहले कैसे था और आज कैसे किवली का ये पार्ट था
1: सर बिल्कुल
0: तो ये
1: झाड़ियां खड़ी थी सारी सारी झाड़ियां खड़ी थी
0: जी, जी।
1: और आज हरा भरा बिल्कुल कहीं केले के पेड़ लगे हुए हैं कहीं पर जो सीनरी है इस तरह से वो बहुत ही अच्छी प्रकृति और सीनरी है। पास में जल बह रहा है
0: प्रकृति ना ये तो पर्यावरण है सर
1: यही तो पर्यावरण आपको इसको संजोया है आपने पहले यही व्यवस्था यहाँ खड़े रहने

0: इसका संदेह का कारण क्या है? जैसे ये जो चेतना ना जो समझ गया तो इस समझदार बनकर करा रहा, तो आप भी समझ जाएंगे तो आप भी करेंगे
1: जी,
0: तब जाकर तो ऐसे धीरे धीरे करते करते केवली करेगा, खड़ात करेगा,
1: करेंगे
0: तो हो जाएगा। तो इन सुभावना का साथ एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे, खासकर ध्यान प्रकृति का प्रति, खुद का प्रति, सबका प्रति, यूनिवर्स के लिए कितना आवश्यकता वो जानेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी है। ध्यान मेडिटेशन, प्रकृति और मेडिटेशन मैंने एनवायरमेंट प्लस मेडिटेशन
1: प्लस
0: हो गया, विश्व की धरातल पर हमारा मजा आ गया। और सर आज बोल रहा जो तब मेरे से ही प्रश्न कर रहे भाई मेडिटेशन ध्यान आप करते हैं, हम हकीकत हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं वो भी बताएंगे सर को। सर ना सर क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, सर आज ये एक नई चीज सामने आई कि ईश्वरीय प्रेरणा से आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तो सर एनवायरमेंट और मेडिटेशन इनका सीधा सीधा जो संबंध है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हम आपस में चर्चा करें।
0: क्या बात, कितने सुंदर प्रश्न, मेडिटेशन और एनवायरमेंट। हमारे श्रोता मित्र जानते होंगे भाई कोई भी काम करते हैं थोड़ा थोड़ा साइलेंस होते हैं और सुबह घर से जब निकलते कोई भी अच्छा काम करने के लिए हम प्रार्थना मंदिर में जाते हैं व अपना कुल देवी को कुल देवता को स्मरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं लगाते कोई भी श्रेष्ठ काम करने लगे, खेती बाड़ी करने के हमारे किसान भाई लोग जाते हैं कोई भी अच्छा सब्जी में उगाते समय वो थोड़ा भले भौतिक रूप में नहीं कर पाते लेकिन मन में अच्छा संकल्प देते जो अच्छा हमारा फसल हो, भावना यही मेडिटेशन सर। मेडिटेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं, सरल रूप में अपना मन ये मेडिटेशन
1: समर्पण से किसी काम को करना और अंत चेतना के साथ में करना है, यही मेडिटेशन का एक रास्ता है। सही
0: हमने आपको बताना स्कूल में जाते हैं घर में काम करते तो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को हम प्रेरणा देते भाई ध्यान से करना है, अटेंशन होकर करना है, तो इसका मतलब थोड़ा अटेंशन आता है ध्यान देना, तो ये ध्यान से हम परमात्मा को प्रति प्रकृति का प्रति करेंगे तो कितना अच्छा होगा। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं जैसे आपने पूछा भाई मेडिटेशन का साथ ये प्रकृति पर्यावरण को आप कैसे जोड़ते हैं, सर एक सिंपल बात आपको जैसे बताएं, मैंने आज सुबह का मेडिटेशन में स्टेज में मुझे चांस मिला था प्रकृति को पर्यावरण दूर, तो हम पर्यावरण में जब आए हैं तो उसको और मुझे एक मिल गया देने के लिए, पहले जानते नहीं थे साइड में था, अभी साइड में था, अभी मैंने पूरा खुद देना शुरू कर दिया सर। जैसे मैंने आज अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब मैंने आज मुझे बोला कि अब तुम 10 भाई बहन को स्टेज में योग के लिए निमंत्रण दो, ओ, तुम मेडिटेशन करता ध्यान लगाता है सुबह सुबह और आज मेडिटेशन डे में चाहे 10 स्टेज में बुलाना, मैं सभी को सिलेक्ट किए जो ये मेडिटेशन कर सकते हैं ध्यान से स्टेज में और सभी पीछे बैठे, मैं कभी अपलोड करूंगा इसका मेरे पास है।
1: नहीं सर ये अच्छा लगा।
0: हाँ, तो मैंने क्या सोचू, मन तो शरीर तो मैंने हल्का रख दिया, पूरा सभी बातों से भूल गया, अटेंशन दिए मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, मैंने ध्यान में बैठा हूँ।
1: जैसे आप बोलते जाइए मैं बैठता हूँ मेडिटेशन में, इसका प्रैक्टिकल सिंपल सा उदाहरण पेश करते हैं।
0: जी जी
1: जी बोलिए सर, शुरुआत करवाइए।
0: जैसे मैं जो बोलूंगा संकल्प दूंगा, मैं बोलूंगा आपको मन में दोहराना है, आपको बोलना नहीं है,
1: अंदर ही अंदर बंद करके हाँ ध्यान को बिल्कुल हाँ, और मैं उस संकल्प को दोहराऊंगा ठीक है।
0: जी जी, जैसे आपको सुविधा होगा उसी हिसाब से बैठे और खासकर यदि पद्मासन में बैठेंगे मैंने सिंपल तरीका में सुखासन जिसको कहते हैं, आराम से दो पैर को नीचे आराम से मोड़ के रख से जमीन पर हो चाहे कुर्सी में जी सोफा पे जहीं पर आपको सुविधा होगा वहीं पर रखिए और पूरा शरीर को हल्का बना दीजिए, पूरा जैसे रुई अभी तो 50 किलो 60 किलो किसका वजन होगा लेकिन आप उसको महसूस करिए मेकअप पूरा फरिश्ता जैसे रुई हल्का शरीर कोई बोझ नहीं वजन नहीं, ऐसे रिलैक्स करिए शरीर को पूरा शांत करिए स्टैचू जैसे। रही आपका मन, मन तो चंचल है तो मन को थोड़ा स्थिर रखिए, सभी बातों से भूलिए खुद को और आपका संबंध संपर्क में जो आते हैं मित्र संबंधी परिवार कारवाह कार्य ऑफिस सब 5 मिनट के लिए भूलते जाइए साइड होके बाद में उनसे बात करेंगे, अभी मैं बैठा हूँ अपने को देखने के लिए, अपना मन को दुई भ्रूलता के बीच में जहाँ चंदन बिंदी लगाते हैं तिलक लगाते हैं जिसको हम भ्रुकुटी कहते हैं, दुई भ्रूलता का बीच में आपका मन को स्थिर रखिए, एक अच्छा संकल्प दीजिए कि मैं जो हूँ जैसे हूँ एक सूक्ष्माति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु महसूस करिए और मैं ज्योति आत्मा इस शरीर का चालक हूँ ड्राइवर हूँ, मेरा शरीर जो प्रकृति का साथ जुड़ा हुआ है जो मुझे इस पर्यावरण से प्राप्त हुई उनको शाबाश दीजिए, अच्छा संकल्प दीजिए जे बाहर है मेरा शरीर वाह आप नहीं होते तो आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, शरीर का धन्यवाद, साथ साथ मैं ज्योति मेरा घर ज्योति देश निराकार धाम परम धाम जो कि ये पर्यावरण का ये प्रकृति का ये 5 तत्वों से ऊपर आकाश तत्व से परे, सूरज चांद सितारे से ऊपर अपना बुद्धि को ले चल ले। आकाश का परे षष्ठ तत्व जिसको महातत्व कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं, आत्मा के घर परम धाम में पहुंचिए, जहाँ चार तरफ लाल प्रकाशमय दुनिया है और हम आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म सफेद रंग का आकाश का सितारा जैसे अति सूक्ष्म महसूस करिए। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी शांति धाम निवासी और हम बच्चे उनका सानिध्य महसूस करिए। जैसे शरीर का पिता और शरीर का जो बेटा है, बाप और बेटा, बचपन का याद करिए। बाप बच्चे को कंधा पर बैठाता है और हमारा अलौकिक पिता पारलौकिक पिता परमात्मा ने हम आत्मा को भी कंधा पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बैठ गए शिव बाबा का कंधा में। ऐसे महसूस करें जैसे हम बचपन में खेलते थे बाप और बेटा का, उस तरह परमपिता और आत्मा का ये महसूस करिए। कितना खुशी मिल रहा है, मेरा बाप मुझे कितना ऊपर रख रहा है और मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि बाप को पता है मेरा बच्चा गिर ना जाए। इसलिए परमात्मा भी हम बच्चों को, आत्मा रूपी बच्चों को अपना गोद में, कभी दिल में, कभी कंधा में बैठाकर हमें महसूस करा रहा है। कितना खुशी का बात है। फिर मन को सोचना दीजिए संकल्प, मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा उनका मैं सानिध्य लाभ कर रहा हूँ। वहीं से ही ऊपर से ही परम धाम से ब्रह्मांड से ही पूरा नीचे जहाँ से आप गए थे, मानसरोवर, शांतिवन, आबू रोड, माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान, भारत, विश्व को, पृथ्वी का ग्लोब को वहाँ से महसूस करिए। बुद्धि से देखिए नीचे, वहीं से ही सारा यूनिवर्स को, सारा पर्यावरण को शुभ भावना शुभ चिंतन के सकाश ऊपर से ही दीजिए। जैसे कि सारे वनस्पतियां, सारे पशुएं, सारे पंछियां, सारे मानव जाति स्वस्थ रहे, निर्विकारी रहे, निरअहंकारी रहे, सब शांति सुख आनंद चैन से रहे और पशु पंछी को भी वहीं पर बैठकर सबके प्रति शुभकामना शुभ भावना फैलाइए। जैसे टॉर्च का लाइट जब ऑन करते हैं, मोबाइल का टॉर्च ऑन करते रोशनी जाता है, उस तरह आपने महसूस करिए। वहां से आप सारा सौर जगत को, खासकर पृथ्वी ग्लोब को, उसमें पर्यावरण आपको दिखाई दे रहा है, खासकर जल जमीन और जंगल सबको शुभ भावना का पानी दीजिए। पर्यावरण का हवा, पर्यावरण का सूरज चांद जिसको हम अग्नि आग कहते हैं उसको भी सका दीजिए कि किसका हानि नहीं करे, ऐसे शुभ भावना दीजिए। पूरा ग्लोब और सौर जगत को देखिए कितना महसूस कर रहे वो लोग भी, प्रकृति गदगद हो रहा है। आज हमारा मालिक हमें अच्छा देने के लिए कोशिश करे कर रहा है, हम क्यों पीछे रहे। हम भी हमारा मालिक के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार, ऐसे से महसूस प्रकृति प्रकृति पति सभी महसूस कर रहे और लग रहा है ये दुनिया बदल रहा है और हम तैयार है देने के लिए। ऐसे आवास हमें पर्यावरण से मिल रहा है, देखिए पूरा सौर जगत को, जहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण इतना स्वस्थ हो रहे हैं, महसूस करिए ये हमारा कर्तव्य है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यही चीज करने के अति सहज विधि है। नीचे आने के लिए कम समय लगता है, लेकिन जब चढ़ते हैं ऊपर हमें समय लगता है। भले आपको ऊपर उठने में शक्ति भरना पड़ेगा, पड़ रहा होगा भी, पड़ा भी है ऊपर उठने के लिए शक्तियाँ, लेकिन ऐसे अभ्यास करेंगे तो जरूर हम कामयाबी होंगे। सदा जब भी समय मिले इस तरह ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। एक सेकंड में हम परम धाम से आकाश के ऊपर से नीचे की ओर अपना मन और बुद्धि को लेकर आइए। जहाँ हम बैठे हैं मानसर स्थित शिवल्ली का नजदीक मानसरोवर गार्डन को देखिए, वहीं पर हमारा शरीर उपस्थित है और भ्रुकुटी में आकर अपना स्थान ग्रहण करिए। अच्छा, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। सही में कैसे लगा सर?
1: सर आज विश्व ध्यान योग दिवस पर हमारा उद्देश्य भी पूरा होता है कि हम आपसे यह कि किस तरह से ध्यान में यथार्थ अनुभव होता है यह करना आवश्यक था। और बात ही बात में अपन जैसे बाकी कामों के साथ में सब काम करते हैं तो ध्यान करना भी एक आवश्यक है। तो प्रतिदिन जब जब समय मिले हमको ये ध्यान हमेशा के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म चेतना के लिए हम सबको करना है। और अनुभव की तो आपको क्या बताएं कि जो ज्योति स्वरूप हमारी जो आत्मा है इस शरीर के अंदर जिससे ये शरीर संचालित है वो किस तरह से परम धाम को शांति से ऊपर जाती है और उस प्रकाशमय परम धाम से फिर वापस वहाँ का शांत नजारा, आह्लादित नजारा, आनंद वाला नजारा देख करके और पूरा आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वापस किस तरह से अपनी प्रकृति मध्य में ज्योतिर्बिंदु होकर के इस शरीर को संचालित करती है, ये अत्यंत आनंद का विषय है। और जितनी बार आप संकल्प से ये साधना करेंगे तो आप अपने पर्यावरण के साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए इस संसार के अंदर बहुत बहुत बहुत अच्छा कार्य करने में सफल रहेंगे, शुभ भावनाएं देते हुए। और जितनी आप शुभ भावनाएं इस प्रकृति को या जिस किसी अच्छे काम को देंगे तो उससे कई गुना ज्यादा ये शुभ भावनाएं आपको प्रतिफल देती ही रहेंगी और ये कार्य अनवरत चलता रहेगा। तो सर अब आपने वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस पर मुझे तो ये बहुत अच्छा अनुभव करा ही दिया है और आप सभी को एक साथ करवाने जा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन के साथ में ये सब संभव यह हो रहा है कि आसपास का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मैं जिस शब्द का नाम भी कई बार लेना पसंद नहीं करता, मैं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन इस प्रदूषित वातावरण में हम अपने आप को फिर कैसे स्थापित कर पाएंगे, इसके लिए पर्यावरण की पूरी जानकारी कि हम पर्यावरण को किस तरह से अनायास प्रदूषित कर रहे हैं। आप सायास नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा, हमारे श्रोता मित्र कोई भी सायास प्रदूषित नहीं करते, लेकिन अनायास जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए जागरूकता की जो ये एपिसोड्स जो आपके साथ में चल रहे हैं बड़े भाव के साथ में बनाए जाते हैं और आप अनायास भी वो गलतियां नहीं करें। रोजमर्रा में आप सभी काम कर रहे हैं लेकिन अनायास जहाँ जहाँ पर छोटी छोटी छोटी छोटी, इसको मैंने बीच में माइक्रो मैनेजमेंट कहा है, नए नए शब्द ऊपर वाला जब दिलाता है तो पर्यावरण मित्रों के साथ में मिलकर के ये शब्द पाते हैं, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट हमको करना है अपने विचारों के साथ साथ, सभी काम के साथ साथ आपकी अर्निंग भी करें, वहाँ भी आप पर्यावरण का ध्यान रखें। अर्निंग आवश्यक है वो करें आप, उसके साथ आपको अच्छे काम में कितना ध्यान देना है वो सब करें, अच्छे लोगों के साथ कहाँ बैठना है वो भी सब करें, और इन सब शुभ कार्यों के साथ में मिल बैठ करके अगर आप सहयोग के साथ में समाज में जीते हैं तो ये जो ध्यान है जिसके लिए आप लोग ब्रह्मा कुमारी जी के भाई बहन बीके भाई बहन इसके लिए हाँ त्याग के साथ में समर्पित है, विश्व के 140 देशों में समर्पित है भैया, मतलब सारी दुनिया में ये प्रकाश फैलाने के लिए बैठे हैं।
0: ध्यान के लिए तो
1: ये कैसे बैठे हैं, ये पूरी दुनिया में शांति स्थापना का पवित्र लक्ष्य लिए हुए बैठे हैं, ताकि देखिए संसार में असुविधा या जो जो भी गलत कृत्य हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनके चलते कितना फायदा हुआ है इसको भी आप महसूस करिए। अगर ये ऐसी संस्था नहीं होती तो क्या होता, तो सर क्या होता, कितना कोलाहल होता,
0: क्या होता है।
1: चलिए
0: सर बता रहे भाई कि संस्था नहीं होता तो क्या होता है, नहीं होता तो क्या होता, हुआ तो इतना होता है उसको पता है, नहीं होता तो क्या होता है।
1: इतना होते हुए भी सर इतना युद्ध वगैरह का माहौल है सब जानते हैं, इतना सर ये भारी भरकम जो जिसको लोग विकास कहते हैं, सर मैं कई बार इसमें बहुत बड़ा वो हो जाता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल जितना डेवलपमेंट होता है वो भारी भरकम डेवलपमेंट वो किसके लिए हो रहा है, सुख शांति के लिए, फिर आप तो उसको फिर गोली और बंदूकों से युद्धों से फिर उड़ाने लगते हो, तो फिर इतना होते हुए भी ये सब कुछ हो गया, मतलब इतनी शुभ भावनाएं देते हुए भी ये हो गया, मतलब ये नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान हो चुका होता, वो भी समझ रहे हैं जो बड़े देश है जो भी युद्ध कर रहे हैं उसके पीछे उनके कोई कारण हो सकते हैं सर, कोई भी कारण हो सकते हैं, उनके पर्सनल कारण हो सकते हैं, शांति के कारण भी हो सकते हैं, अशांति के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जब इतना होते वो महसूस कर रहे हैं फिर भी ऐसा हुआ है, तो आप समझिए कि वो सब महसूस करते हुए भी ऐसा कर रहे हैं तो क्या मजबूरियां है।
0: ये नहीं होता तो क्या होता है, अरे दोनों का आवश्यकता है सर, ये भी होगा तब इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, इसलिए जैसे मीठा और तीखा
1: बिल्कुल
0: दोनों का टेस्ट जब होता है तब उसका
1: मीठे का
0: टेस्ट पता चलेगा, ये होगा तब तो उसका भाई ये रंग ये राइट दो चीज स्वर्ग और नर्क तब पता चलेगा ना, अभी रंग को देख लिए, अभी राइट जब आता है ये अच्छा है ये ठीक है वो खराब है, आपको जांच करने के लिए तो दो चीज चाहिए ना, जैसे अच्छा और बुरा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं होता तो ये हुआ है, इसलिए ये हुआ तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और क्योंकि अंधेरा जहाँ है वहाँ आलोक नहीं है सर।
1: सर ये परम पिता इसको बैलेंस करने की
0: कोशिश कर रहा है, और मैं परमात्मा भी एक बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप गलत फहमी में नहीं रहिए, क्योंकि परमात्मा खुद शिक्षा में देते हैं राजयोग में,
1: जी जी जी,
0: मैं कुछ नहीं करता हूँ,
1: प्रकृति बैलेंस करता है।
0: जो ड्रामा है ना सर, ड्रामा को सोचिए, ड्रामा नाटक ऐसे 3 घंटे का नाटक होता है, एक तो स्क्रिप्ट है सर जिसको हम डायरेक्टर, एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है किताब जो लिखा हुआ है, एक तो डायरेक्टर है और बाकी हम स्टेज है, स्टेज और एक एक्टर्स, क्या क्या बोला, एक्टर डायरेक्टर और ड्रामा,
1: ड्रामा होता है
0: और स्टेज, स्टेज भी आवश्यक है, आप जहाँ पार्ट कर
1: रहे हैं
0: ये स्टेज प्रकृति, ये जो पर्यावरण आप दे रहे हैं ये एक स्टेज, हम लाइट वगैरह जो मिल रहा है स्टेज को, यहाँ से सूरज चांद का रात सब मिल रहा है, ये हमारा स्टेज हो गया, और हम स्टेज में एक्टर चाहे पशु पक्षी जीव जितना है
1: सब कर रहे हैं,
0: लेकिन आप बोल रहे भाई परमात्मा बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करता भाई जब शुरू होगा तब से भी बैलेंस रख देता है, अभी क्यों कर रहा है, इतने दिन कहाँ थे परमात्मा, भाई हमको क्यों कहना पड़ा, परमात्मा तो हमसे ज्यादा होशियार है ना,
1: सही
0: ये तो इतना खनन नहीं होना देता, इतना दुख होता है, लेकिन बोलता मैं क्या करूँ, क्योंकि वो ड्रामा ऐसे बना हुआ है, किताब जो स्क्रिप्ट लिखकर गया अनादि से, ड्रामा को जो है जैसे मैं भी मानता हूँ, मेरे से बड़े ड्रामा, मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट कौन लिखा है कोई नहीं बोलता है, पहले से अनादि, ड्रामा भी अनादि, परमात्मा भी अनादि, भगवान भी अनादि, और हम आत्मा भी अनादि, प्रकृति भी अनादि, अनादि सब अपना समय पर रोल चक्र खेलता है, जब कलयुग का अंतिम समय में जब दुख होगा, अति दुख होगा, तो सुख का देने के लिए ऊपर वाला डायरेक्टर आएगा, इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है, होगा रिपीटेशन हर 5000 साल का बाद, सर कितना साल, हर 5000 साल का बाद ये रिपीट,
1: तो
0: फिर निर्माण होगा, ये चीज हो रहा है, जिसका चलते परमात्मा कहते हैं बैलेंस, जो चीज आपने बताया बैलेंस चीज समय अनुसार बैलेंस होगा, और मेरा रोल मेरा अवतरण उस समय होगा तो बैलेंस करने के लिए, इसलिए पंचो पांडव और कौरव का जो कहानी है, ये कौरव पंचवर्ण कौन सा कान है हमारा है, जो ये विध्वंस जो विध्वंस तरफ जा रहे हैं वो कौरव हो, और जो स्थापना में लोग है वो पांडव है, और जो पांडव कौरव आज घर घर में पांडव कौरव है, जो पांडव कौरव है तो परमात्मा भगवान भी होंगे,
1: वो भी होगा
0: तब तो आज इसका तो ये संगम युग जो है कल का अंत और सत्य का जो बीच का समय है परमात्मा जो 1936 से 2046 तक जो ईयर है ये लीप ईयर कहते हैं, इसमें ही हम अपने को चेंज होते हैं, प्रकृति भी चेंज होगा हम भी चेंज होंगे, तो आप और हम कैसे आए, हम ओडिशा से आए आप यहाँ के आप
1: बिल्कुल
0: तो कैसे हुआ, तो हमारा बुद्धि में इतना ड्रामा को मान गए और परमात्मा को मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा डम्बरू बसता टाम बढ़ता उससे बड़ा है, तो ड्रामा डम्बरू नहीं सर ड्रामा हम डम्बर का शंकर का हाथ में वो ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा में हम अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो ये अनादि ड्रामा अनादि परमात्मा डायरेक्टर एक्टर और स्टेज, इसलिए प्रकृति अपना परिवर्तन कर रहा है, तो हमें बहुत खुशी आपने प्रश्न पूछा भाई बैलेंस का जो समय अभी चल रहा और कराने वाला था, तो इस संगम जो हम सबको परिवर्तन करने का युग है, परिवर्तन कोई विनाश का हम डरा नहीं रहे लेकिन बदलेंगे, हम बदल गए, पहले तो हम बदल नहीं रहे थे अभी बदल गए समय, तो ये भावना है, तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते।
1: सर मेरा कहने का पूरा यही मकसद है कि हम समय के हिसाब से जहाँ पर प्रकृति के साथ में जितना ही अच्छा कर सकते हैं हम करें और स्वयं के लिए मेडिटेशन करें, तो इन दोनों का बैलेंस बन जाएगा जो विश्व शांति स्थापना में एक अच्छा योगदान होगा, आप सबकी तरफ से धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप, और खासकर ध्यान पर्यावरण का साथ कितना मित्रता रखता है, तो उसी हिसाब से आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करके अपना बात को हम आपस में कर रहे थे, तो जरूर हमारा श्रोता मित्र को अच्छा लगा होगा, और आप भी पर्यावरण का साथ मित्र बने और मित्रता कभी भूलता नहीं है, मित्र हमेशा देने के लिए तैयार होता है, और हम भी पर्यावरण को दे पर्यावरण हमें देगा, जैसे हम फेंकेंगे उस तरह हमें मिलेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगला एपिसोड में मिलेंगे और किसी बात को लेकर, खासकर पर्यावरण स्पेशलिस्ट हमारा साथ जब रहता है हमें खुशी मिलता है, कहाँ कहाँ से कितने जब आ जाते हैं, लेते हैं आप सबसे विदाई, फिर अगला एपिसोड में रूबरू होंगे मुलाकात होंगे और कुछ नया विषय को चिंतन लेकर, जैसे आज आध्यात्मिकता को खासकर ध्यान को लेकर हम लोग बात की है, ध्यान हमारा जीवन में अति आवश्यक है, आप भी ध्यान से सुने, इसलिए ध्यान दिवस में ध्यान को बहुत महत्व मिलता है, अच्छा सभी को आभार।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और जो रेडियो मधुबन से जुड़े हैं दोस्तों, उन्हें तो मालूम होगा कि संगीत का बहुत खूबसूरत सफर है। संगीत यानी म्यूजिक, जिससे हम सबका जन्म लेते ही रिश्ता बन जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब घर में उसके स्वागत में कोई ना कोई गीत गाया जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे पोयम गा के सुनाई जाती है, और जब वो और बड़ा होता है तब वो अपने लोकल म्यूजिक या फिर अपने आसपास के और लैंग्वेज के संगीत से, या बॉलीवुड के गाने, टॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने, बहुत सारे संगीत को पसंद करने लगता है, एक्सप्लोर करने लगता है, और ये रिश्ता आगे बढ़ता ही जाता है। और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके दिल के करीब जो गाने हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं एक नए मेहमान, और आज हमारे साथ हैं नागेश भाई जी, जो कि बेल्लारी कर्नाटका से हैं। 2012 से वो ब्रह्मा कुमारीज का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, वहाँ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 3D शो दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेवा है उनकी, और गीत संगीत का हुनर भी है और शौक भी। तो स्वागत करते हैं नागेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नागेश भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सेवा का पथ चूज किया है, क्या थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि क्या, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस रास्ते को चूज करने के लिए?
1: सबसे पहले मैं शिव बाबा को धन्यवाद करता हूँ, और नेक्स्ट हमारा दादी दीदियों को, ब्रह्मा बाबा को धन्यवाद करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा जोनल हेड है बसराज भाई कर्नाटक का, हमारा उबलिक का कनेक्शन में आते हैं, फिर उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ बसराज भाई को। फिर नेक्स्ट हमारा शीला दीदी है, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। अभी वर्तमान समय में हमारा सेंटर का जो दीदी है नागवेणी दीदी, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे 2007 में ये ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं जो भक्ति में, लौकिक में भक्ति बहुत करता था, शिव का भक्ति। एक इंसिडेंस बताता हूँ पहले। वो भक्ति में क्या हुआ था, जब शायद मैं 11 साल या तो 12 साल का था उस समय, एक दिन तो मतलब जैसे पूनम का समय होता है, उस समय हमारा गांव से 2 किलोमीटर दूर एक मठ है, वीरशैव मठ आता है, वहां पर हर महीने हम लोग जाते थे। लेकिन एक दिन जो हर बार मेरे साथी जो आता था वो तो उस दिन नहीं आया था, दिवाली के दिन था।
0: अच्छा।
1: उस समय वो लोग नहीं आया था, तो मुझे तो जाना ही, लेकिन ये लोग नहीं आ रहे, क्या करो। फिर ऑलरेडी 8:30-9 बज गया, अभी अकेले हूँ, जाना तो अभी अकेले जा सकता हूँ, लेकिन आते समय 12 बज जाएगा वो पूरा सत्संग पूरा होने में, तो तब क्या करो। फिर चलो भगवान है, मतलब भगवान पर विश्वास रखता था, शिव के ऊपर, वो कुछ ना कुछ सहयोग करेगा करके उसके ऊपर सौंप के मैं चले गया। फिर पूरा सत्संग अटेंड किया, फिर रात को 12 बज गया, 12 बज गया भी हमारा गांव में जाने के लिए 2 किलोमीटर लगता है, थोड़ा जंगल भी आता है बीच में, और शहर के लोग तो अपना अपना सुविधा लेके आए थे, चले गए गाड़ी वगैरह, लेकिन मैं जो आ रहा था उस समय इतना मैं एक शिव शिव शिव मतलब शिव निराकार को, शिव बाबा तो उस समय जानते नहीं था, एक शिव करके शिवा शिवा बोलते उस समय, और शिवा शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हमको सिखाया गया था, तो ये मंत्र जपते आ रहा था।

0: एकदम लाइट प्रकाश, मतलब जैसे रास्ते में कोई ऊपर से प्रकाश गिर रहा है, मैं जा रहा हूँ, जैसे दिन का उजाला होता है ना, वैसे वो प्रकाश आ रहा था, मैं चलते जा रहा, कोई डर नहीं कुछ नहीं। 12 बज गए, फिर वहां पर जैसे मेरे गांव में एंट्री किया, वो एक मेरा गांव जो है, हाँ, चारों तरफ जो है किला बनाया, मतलब फोर्ट है, जो श्री कृष्ण देव राय करके वहाँ पर हमारा कर्नाटक में फेमस मतलब राजा था, उनके नेतृत्व में बनाया था हमारा गांव का किला। तो उस किला में जैसे मैं एंट्री किया, तो उस समय तो 12 बजे तो कुत्ता वगैरह भूखने लगा, मैं फिर जो वो मंत्र ओम नमः शिवाय जो मंत्र था उसको और करने गया, फिर गया, फिर थोड़ी देर में मैं 5-10 मिनट में मेरा जो घर आया, फिर घर पहुंच गया, फिर घर में उस समय सब माँ बाप ने सब आश्चर्य, इस समय इतना समय कहाँ गए थे। मैंने सोचा तुम मतलब मम्मी पूछ रहा था, मैंने सोचा तुम ऊपर छत पे ऊपर सो गए करके, लेकिन तुम तो अभी आ रहे, क्या हो गया था, कहाँ गए थे, ऐसे नहीं जाने का आगे करके। तो फिर हाँ करके फिर मैं सो गया, फिर अगले दिन ये सारा अनुभव बताया। और जो मेरा पिताजी, बड़े पिताजी, मेरे पिताजी का जो बड़े भाई होते हैं, बड़े
1: अच्छा,
0: पिताजी बोलते हैं उसको,
1: ओके,
0: ताऊ जी बोलते शायद,
1: जी,
0: हाँ, तो हमारा ताऊ जी जो है, उन्होंने भी मेरे को भक्ति का जो इंटरेस्ट, मतलब उस रास्ते में जाने के लिए भी थोड़ा प्रेरणा किया। वो व्यक्ति ऐसा है कि उन्होंने बिल्कुल स्कूल का दरवाजा तक भी नहीं देखा,
1: अच्छा,
0: मेरा ताऊ जी स्कूल भी नहीं गया, और मतलब पढ़ाई करे कुछ नहीं, मतलब उस समय गरीब था, खाने पीने में बहुत मुश्किल था, इसके इस हिसाब से उनका जीवन जो है व्यवसाय करने का, मतलब खेती बाड़ी करने का, दिन का वो गुजारा करने का, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट एक था, कैसे भी करके मुझे पढ़ाई सीखना है करके, मतलब
1: अच्छा,
0: पढ़ने सीखना है करके कन्नड़ लैंग्वेज। और उन्होंने क्या करता था, रात भर खेती बाड़ी करता था, और दिन में जो व्यक्ति पढ़ाई किया है उनके घर में जाके उनके साथ बैठ के शब्द, मतलब जो अक्षर होते हैं,
1: सीखते थे.
0: सीखते थे, सीख के फिर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी
1: क्या
0: कन्नड़
1: बात है.
0: लैंग्वेज। स्कूल नहीं गया, दूसरों के संग
1: दूसरों से
0: से
1: सीखा. हाँ.
0: सीखा, फिर लास्ट में इनका प्रोग्रेस इतना आयु श्रेय ज्यादा हो गया, जो देवी पुराण होता है, मतलब जो नवरात्रि के दिन जो पुराण पढ़ा जाता है हमारे इधर, सब जगह होता है लगभग, वहां पर जो पुराण पढ़ने के लिए इनको हमारा गांव का जो मुखिया होता है, उन्होंने हमारा ताऊ जी को निमित्त बनाया,
1: क्या बात है.
0: सबके सामने उन्होंने वो मतलब पढ़ना,
1: पढ़ा.
0: और उसका मीनिंग एक और भाई होता है समझाने के
1: अच्छा,
0: लिए, ये एकदम मंत्र के हिसाब से
1: पढ़ते हैं.
0: वो, हाँ, संस्कृत का भी कुछ शब्द होता है उसमें,
1: क्या
0: वो
1: बात है,
0: पढ़ते था,
1: बताइए.
0: पढ़ता था फिर सबके सामने। फिर और एक विशेषता है उनके अंदर, आ, आ, बिना लिख के पढ़े सिर्फ जो व्यक्ति सुनाते हैं ना उसको याद रखता था,
1: वाह,
0: याद रख के भजन गाता था,
1: मेमोरी
0: भजन
1: इतनी शार्प उनकी.
0: इतना मेमोरी शार्प है, और रात भर कंटिन्यू नॉन स्टॉप भजन गाना
1: क्या बात
0: गाता
1: है,
0: था,
1: क्या बात
0: उनके अंदर ये मेमोरी पावर था, मतलब याददाश्त। और जो भी गांव का
1: है.
0: मतलब शहर का कुछ विशेष प्रोग्राम होते, और कोई शरीर छोड़ता है या तो कुछ अलग अलग मेला वगैरह होता है, उस समय भजन के लिए काश हमारे ताऊ जी को याद करता था
1: क्या बात है.
0: लोग वहाँ के शहर के लोग इतना,
1: इतना उन्होंने
0: हाँ
1: पढ़ा, समझा और गाया, क्या बात है.
0: जी,
1: तो कमाल का
0: और
1: हुनर.
0: इतना उनका जीवन चला। फिर उसके बाद इनका जो विशेषता पहचान करके, मतलब जो हमारा स्वामी जी गांव का जो तालुक का जो स्वामी जी है, प्रभुदेव स्वामी जी करके, उन्होंने हमारा ताऊ जी को मठ में आह्वान करके फिर वहाँ सबके सामने उनको सम्मान कर दिया।
1: वाह.
0: और उसके बाद जो हमारा संडोर तालुक है, संडोर तालुक में जो पत्रिका होता है प्रजावाणी पत्रिका, वो पत्रिका में इनका नाम डाल दिया, ऐसे
1: अच्छा,
0: ऐसे बिना पढ़े लिखे व्यक्ति क्या से क्या कर दिया, देखो करके
1: वाह,
0: दिखाया करके,
1: कमाल किया,
0: कमाल किया करके। फिर
1: कमाल है.
0: उस व्यक्ति ने अनेक युवा भाइयों को, जैसे मैं तो छोटा था, मेरे मतलब 10-15-20 साल के जो उम्र के एज में कुछ लोग होता है, माँ बाप से भी डरते नहीं है और घर से भी किससे डरते नहीं, सिर्फ अपना मत चलाते रहते। लेकिन ये व्यक्ति उन लोगों को भी लगभग 50-100 के जो युवा भाई बहनों को, भाई और बहनों को भी उन्होंने प्रेरणा किया। और उनको जो व्यक्ति ज्यादा टाइम पास करता है, ज्यादा दुर्व्यसन में अपना समय व्यतीत करता है, मतलब बैड हैबिट में जो व्यक्ति रहता है ना, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान के उस व्यक्ति का घर में जाके उनको भजन सिखाते हैं। उनको भजन सिखाना और जो तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको छुड़ाना और नॉनवेज जो खाते हैं उनको भी छुड़ाना, ये मतलब सात्विक लाइफ कैसे जीवन करना है,
2: कैसे व्यतीत करें,
0: लगभग 100 लोगों को उन्होंने तैयारी
2: की। बात है, बहुत बड़ी बात है, एक का जीवन बदल पाए तो बड़ी बात है, 100 लोगों का तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मतलब उन्होंने कितने हजारों दुआएं उनको मिली होंगी, उनके माता पिता की, घर परिवार वालों की, उनकी खुद की, उनका जीवन संवार दिया।
0: जी जी,
2: बहुत सुंदर नागेश भाई, बहुत आपने बहुत सुंदर बात जो बताई, इंस्पायरिंग है कि जब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति ऐसी थी तो ये नहीं कर पाए, हम खुद अपनी परिस्थिति निर्माण कर सकते
0: हैं। वैसे ही ऐसा नहीं कि ऐसे कार्य करना आसान से नहीं, बहुत लोग उसको अपोज भी किया
2: बिल्कुल
0: उस समय, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य लिया उसको पूरा किया है।
2: जी, तो क्योंकि गीत संगीत का कार्यक्रम है और इतनी इंस्पायरिंग बातें सुनी, तो इतना ही एक और इंस्पायरिंग गीत तो बनता है दोस्तों। तो नागेश भाई, पहला गीत हमें कौन सा आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को आज?
0: मुझे तो ब्रह्मा बाबू का गीत बहुत अच्छा लगता है। वो गीत मैंने कई बार हमारा पीएम पार्क में जो चलता है इक्वलाइजर शो, वहाँ पर भी गाया हूँ। और बीच बीच में मैं आके, वैसे तो मैं संगीतकार नहीं हूँ, फिर भी गाने गाने का इंटरेस्ट रखता हूँ, और एक गीत मैंने अभी सुनाना चाहता हूँ।
2: जरूर जरूर।
0: ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके हरपन संपूर्णता को पाए थे

कहते हैं त्याग तप किसको सब करके ओ सिखलाया, कहते हैं नहीं ते बाबा सब करके भी सिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके ओ सिखलाया, कहते हैं नहीं ते बाबा सब करके भी सिखलाया।

प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गए अकियां, हम प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गए अकियां, हम सबको पावन करके बह चले नयन से नदियां।

बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन, बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले आतों को आतों में शक्तियां सौंप दी सारी, आकारे रूप सजाए।

बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज के दिन, ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता

0: वो असंभव है, दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। बाकी धर्म, बाकी जो धर्म पिताओं ने, धर्म स्थापकों ने, कई लोग ने काम किया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो काम है वो अत्यंत अत्यंत निराला है, अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि 60 साल के उम्र में भी ब्रह्मा बाबा अपना जो क्या बोलते शिव बाबा ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको स्वयं में भी पूरा पुरुषार्थ करना है, और कम से कम उस समय दादी दीदियों ने 350 के आसपास थे, उनको भी बच्चे भी थे, वो भी दादी दीदियों ने हमारा उनको भी मतलब अच्छा नेचर, अच्छा संस्कार देना था उनको, यही भी निभाना था, और अपोजिशन भी बहुत सामना किया ब्रह्मा बाबा। इतना अपोजिशन हमारा इक्वलाइजर शो में, ब्रह्मा पीएम पार्क में इक्वलाइजर शो में यही दिखाते हैं ब्रह्मा बाबा का कैसे कैसे सफर किया कर। इतना अपोजिशन आया तो भी पाकिस्तान में, इतना अपोजिशन आने के बाद भी ब्रह्मा बाबा सबको माफ किया। ऐसा नहीं कि अपोजिशन का जो जो करते हैं उनको जेल में डालो, केस करो, ये नहीं, नहीं, माफ करते गए। माफ करते करते इतना सहनशील मूर्ति बन गए। एक व्यक्ति खुद ब्रह्मा बाबा का जो बेटी निर्मल शांता दादी, उन्होंने भी एक बार अनुभव सुनाते, मेरा पिताजी के खिलाफ ऐसे ऐसे आप लोग उल्टा सुलटा लिख दिया, मैं आप लोगों को केस करना चाहता हूँ, मतलब बाबा से बात किया, इन लोगों को मैं केस करना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा नहीं करो, क्षमा करो, क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्षमा ही उत्तम गुण है, क्षमा करो, तुम देवता है, तुम पूर्वज है, और तुम क्षमा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इसलिए तुमको क्षमा करना ही पड़ेगा, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही अत्यंत श्रेष्ठ गुण भी है, उनको माफ करो।
1: मतलब उनके जो खिलाफ भी थे जिन्होंने इतनी नेगेटिव बातें लिखी
0: जी,
1: परंतु किसी को भी सजा देने के लिए नहीं सोचा,
0: नहीं,
1: क्षमा भाव रखा हमेशा हर किसी के लिए।
0: हम लोग अभी हमारा वर्तमान समय थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए कितना हम वो करते हैं,
1: छोटा भी कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि उनसे उन्होंने मेरे साथ ऐसे कैसे किया,
0: ऐसे छोटा बात भी। लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या कहे, घर को आग लगा दिया, पानी में जहर मिला दिया था उस समय, मतलब जो टंकी सिंटेक्स वगैरह, और रेशन जो रेशन आता वो भी कुछ दिन के लिए बंद किया था, क्या क्या नहीं सामने। उसके बाद इधर माउंट आबू में आए, मतलब 1950 में, 5550 में इधर आया माउंट आबू में। माउंट आबू में आने के बाद बेगरी लाइफ शुरू हो गए ना, तो बेगरी लाइफ शुरू होने के बाद जो व्यक्ति कम से कम 15 साल तक, लगभग 10-15 साल तक बाबा के साथ था, उन्होंने भी बाबा को, अंदर वाले भी बाबा को बहाना बना के बाबा हम कमाई करने जाते हैं ऐसा वैसे करके, तो उस समय बाबा ने मना किया, लेकिन कई लोगों ने चले गए यज्ञ छोड़ के, उस समय भी बाबा को दुख का फीलिंग नहीं हुआ और उस समय गुस्सा नहीं आया। मैंने इतना मेरा करोड़ों संपत्ति, 9 करोड़ था ब्रह्म बाबा का जो संपत्ति, 9 करोड़ भी उस समय यज्ञ को, यज्ञ स्थापन में उन्होंने दिया, उसके बाद भी जो पेपर आया, लेकिन बाबा ने वो नहीं किया, गुस्सा नहीं,
1: किसी पे नाराज नहीं कभी, हमेशा
0: जी
1: उन्होंने सब कुछ क्षमा किया और स्नेह ही दिया, स्नेह के अलावा
0: और कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: और एक मेन बात है, जो मेरा पिताजी को जब मैं ज्ञान में है, मैं जब कैसे ज्ञान में है वो नेक्स्ट बाद में बताता हूँ। मेरा पिताजी का भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक अनुभव है। मेरा पिताजी एक दिन मेरा खेत में, हमारा खेत में सो रहा था दोपहर के समय, और एक पेड़ के नीचे लेफ्ट साइड में एक पहाड़ आता है, बहुत बड़ा एक पत्थर का पहाड़ आता है, उस पहाड़ के जैसे साक्षात्कार हुआ मेरा पिताजी को, ब्रह्मा बाबा जो पगड़ी वाला एक फोटो है, ब्रह्मा बाबा वो पगड़ी वाला फोटो, मतलब जैसे पूरा बाहें फैला के ब्रह्मा बाबा हमारा पिताजी को आह्वान कर, बहुत बड़ा रूप धारण करके,
1: ओके।
0: और उसके बाद मेरा पिताजी ने मुझे बताया, ये को जैसे बाबा को, मेरा पिताजी को मैंने ज्ञान मिलाया, उसको फिर ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा तो तुरंत उन्होंने पहचान के मुझे, तो ये व्यक्ति ध्यान में आया था, साक्षात्कार में हुआ था करके।
1: अच्छा।
0: तो उस समय ब्रह्मा बाबा साक्षात, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा के बारे में और भी लगन मेरा बढ़ते गए। ब्रह्मा बाबा मतलब मुझे बहुत एक अच्छा, एक
1: बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको,
0: अट्रैक्ट
1: की पर्सनालिटी
0: इतना अच्छा क्योंकि अभी भी हम जब गलती करते हैं ना तो उस समय ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ऐसा लगता है हमको, मतलब सिर में हाथ घुमा के कोई

0: अपने बच्चे आगे से सावधान रहना, गलती तो होता रहता है, आप डरना नहीं, मत हारना नहीं है, आगे चलते रहना, पुरुषार्थ करना, बाबा को याद करना, ऐसा मतलब अभी भी वो फीलिंग आते हैं,
1: अभी भी वो फील होता
0: बाबा
1: है,
0: को याद करना, इसलिए वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: इसलिए आपको उतना प्यार है,
0: प्यार है
1: बहुत ज्यादा
0: जी जी,
1: दिल का एकदम प्यार है
0: जी। एक बार तो मैं गाना ऐसे अकेला मैं गाता रहता हूँ, तो ये जो एक गाना है आबू का तेरत करके गाना है,
1: अच्छा।
0: वो गाना गाते गाते आंख में पानी आ गया था, ऐसे सामने बाबा दिख रहा है और मेरा आंख में पानी आ गया, इतना अच्छा लगता है।
1: तो क्या कोई और एक गीत है ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको गाने में इतना अच्छा महसूस होता है?
0: एक गीत है मुझे गजल, वो पंकज उदास ने सुनाया
1: जी,
0: वैसे तो इंस्पिरेशन गीत भी है और एक देशभक्ति का गीत भी है।
1: क्या बात,
0: पहले देशभक्ति का सुना दो मैं?
1: बिल्कुल जरूर
0: जी,
1: देश के प्रति भी भावना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमें देश से प्यार है अपने।
0: एक तो एक ब्रह्मा बाबा इंस्पायर करता है, एक मेरा भारत,
1: भारत
0: मेरा भारत तो इतना, और ये भारत में इतना जो सारा दुनिया के जितना भी देश है वो सारा जड़ संस्कार फाउंडेशन बीज यहाँ से मिलता है ऐसा लगता है,
1: भारत से।
0: भारत जैसे भारत में कोई भी आप स्टेट ले लो, तो अभी मान लो राजस्थान में जैसलमेर ये है, क्या बोलते हैं, एक प्रदेश है, आप दुबई जाने की जरूरत नहीं, जैसलमेर जाओ ये वही फीलिंग आ जाता है, और केरला जाओ आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं, केरला हमको स्विट्जरलैंड का अनुभव कराते हैं, ऐसे पूरा भारत एक ऐसा मतलब बाहर
1: सब कुछ है, भारत में
0: सब कुछ है, और इंसान भी यहाँ का जो व्यक्ति है वो भी हर प्रकार का जो संस्कार है वो भरा है,
1: यहाँ
0: का
1: डाइवर्सिटी है,
0: हाँ जी, भक्ति भी है,
1: भक्ति भी,
0: और यहाँ का क्या बोलते हैं प्यार है, स्नेह है, ये सब हर जो क्या बोलते क्वालिटी इंसान में जो होना चाहिए वो पूरा भारत में देखने को मिलता है, इसलिए मैं पंकज उदास का एक और गीत है
1: जरूर
0: वो मैं सुनाना चाहता हूँ, ये म्यूजिक के साथ सुना तो और भी अच्छा रहे, लेकिन फिर भी आज ऐसे ही सुना,
1: आज ऐसे सुनते हैं जी।
0: चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है आई है चिट्ठी, आई है।

है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी।

0: चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच नागेश भाई, इतना प्यारा गीत, ये सुंदर गजल हमें याद दिलाने के लिए, क्योंकि सच में ये गीत इमोशनल कर देता है
0: जी.
1: हर उस व्यक्ति को जो जानता है कि जब अपने परिवार से कोई विदेश जाता है तो वो एक दूरी कितनी मुश्किल होती है कई बार.
0: ये जो गीत है मुझे इसलिए पसंद है, एक पुराना गीत है और ये गीत जब पंकज उदास ने जो गाया था वो ऐसे ही बिना प्रैक्टिस से गाया था.
1: अच्छा.
0: और जो भी सुनता था ना उस समय उनका आंखों में पानी आ ही जाता था, आंसू आ जाता था.
1: सच में
0: इसलिए देशभक्ति गीत तो बहुत है वैसे, जैसे लता मंगेशकर जी का भी है
1: जी जी,
0: वो भी बहुत एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत, बहुत अच्छा लगता.
1: हाँ, बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं सच में. वो भावनाएं क्योंकि दिल में है वो जैसे जागृत होके आंखों में नमी बन के प्रकट हो जाती है.
0: जी जी.
1: और बहुत बहुत सुंदर ऐसे गीत बनाने वाले लिखने वाले भी कमाल
0: कैसे
1: है,
0: कमाल है.
1: बहुत कमाल.
0: उनका सोच भी कैसे चला होगा उस समय, वंडरफुल है
1: शब्दों को ऐसे
0: सारा. मतलब जो है पंकज उदासनी ने उस इंटरव्यू में एक बताया था, मैंने ये गीत गाया था लेकिन पता नहीं वो खुदा का ये मतलब मेहरबानी है करके भगवान के ऊपर उन्होंने सौंप दिया. लता जी भी बहुत बार बताते हैं, एक बार तो लता जी को किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, शायद नूर जहान ने उनको दीदी को पूछा था, लता जी आप कितना अच्छे गाते हो ऐसे वैसे कर. तो लता जी ने मतलब ऐसे इमोशनली बोला, नहीं नहीं आपसे हम नहीं गाते, आपसे आप बहुत अच्छा गाते हैं ऐसा. लेकिन लता जी को नूर जहान जी ने बताया था कि नहीं बेटा बात तो ठीक कहा, आप गाते तो है लेकिन आप ये बोलना है कि जब कोई व्यक्ति आगे आपको तारीफ करता है तो उस समय ये बोलने का, ये मेरा कुछ नहीं सब भगवान का है, भगवान ने ईश्वर दिया है, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने हमको ये सारा दिया है, ये फिर भगवान का ही इतना सारा वो लीला है चल रहा है इस संसार में, परमात्मा का ही लीला चल रहा है. तो उस परमात्मा ने क्या किस किस व्यक्ति से क्या क्या काम करवा रहे वही जाने, रास्ता का रचना वही जाने.
1: उनको शुक्रिया करना, सौंप देना ईश्वर.
0: जी जी. हर संगीतकार भगवान को आखिर में सौंप देते हैं, हमारा नहीं भगवान का ही,
1: भगवान का है
0: जी
1: कुछ, क्योंकि वो कुछ स्पेशल तो है ही, केवल सुर से तो नहीं होता, केवल गले से तो नहीं होता, कुछ अलग तो होता ही है, जादू होता है, कुछ
0: जादू होता है
1: संगीत में. आपके फेवरेट सिंगर कौन है
0: जी?
1: आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, फेवरेट सिंगर कौन है आपके?
0: फेवरेट सिंगर तो मुझे लता जी अच्छा लगता है और पंकज उदास जी अच्छा लगता है और सोनू निगम जी बहुत अच्छा लगता है. सोनू निगम जी का एक गाना जो ब्रह्मा कुमारी में गाना गाया, तुम्हें सब कर सब चिंता, नेक्स्ट मैं बता सुनाना चाहता हूँ.
1: अरे जरूर जरूर, क्या गाना है वो तो बहुत सुंदर, मैंने भी सुना है
0: जी, जी.
1: और बहुत मतलब आपको टेंशन फ्री कर सकता है ये गीत, ऐसा है.
0: कोई भी मुसीबत आ जाता है ना, ये गीत आप याद कर लो और ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग आ जाता है, वो वाइब्रेशन आ जाता है.
1: तो चलिए फिर देरी की उस बात की आप भी सुनिए दोस्तों, हम भी सुनते हैं नागेश भाई की आवाज में गीत, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर.

सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, सोचूं भी

उपकं सब चिंता फिकं देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।

किस्मत है मुझ पे करम, तेरी नजर इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया कि यार किधर।

0: Beethoven, थैंक यू.
1: तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर. मुझे लगता है हम सबको जरूरत होती है कभी ना कभी कि अपनी चिंता किसी पर सौंप दे. जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तब तो माता पिता पे सौंप दी, परिवार पे सौंप दी, बड़े होते जाते हैं तो सारी चिंता सारी फिकर अपने कंधों पे लिए हर डगर फिरते रहते. न घर में, न बाहर, न कहीं और जाके हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई चिंता नहीं है. चाहे 2-3 दिन वेकेशन पे, लेकिन वापस गाड़ी घूम के वहीं आ जाती है. अब ऐसे में अगर सच में ईश्वर को कोई ना कोई रिश्ते से या याद करके प्यार से सौंप दे सब चिंता फिकर, तो देखिए फिर क्या मैजिक होता है लाइफ में. बहुत सुंदर गीत, और इसको दोस्तों आप भी सुन सकते हैं. और सोनू निगम जी ने गाया है तो बहुत सुंदर महसूसता के साथ यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा ये गाना. अगर किसी ने नहीं सुना है तो जरूर वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं. नागेश भाई, जैसे आपने शुरू में, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तब हम ये जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ कैसे आए, सेवा आपने जर्नी आपकी शुरू कैसे.
2: हाँ,
1: तो लौट कर उस क्वेश्चन पे आते हैं.
2: जी वही क्वेश्चन. मुझे ये शुरू मतलब होने से पहले, एक्चुअली गीत मैं पहले ही गाना था, थोड़ा आगे पीछे हो गया. एक शिव बाबा का गीत है अभी, वो गीत मतलब एक और गीत सुना है या बाद में सुना?
1: एक बार थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, फिर सुनेंगे. जी,
2: मैंने यहाँ पर आने का प्रेरणा तो मैंने बताया, ब्रह्मा बाबा का लाइफ जीवन मतलब चरित्र, मतलब जो उन्होंने त्याग तपस्या
1: किया. इंस्पायर हुए आप?
2: जी, मैं भक्ति बहुत करता था, अलग अलग देवियों का पूजा करता था, देवताओं का पूजा करता था, हनुमान का भी पूजा करता था, शिव का तो बहुत पूजा करता था. एक बार तो 10 साल के अंदर शायद, उस समय गुरु दीक्षा देते, उस समय तो हमारा जो थाऊ जी है उन्होंने हमको लेके गया गाँव से, एक 10 किलोमीटर दूर में एक गुरुजी आया था, वहां पर हमको ठंडा पानी नहाना होता, वो भी जनवरी मास में, वो भी 12 बजे, इतना ठंड में, इतना टाइम मतलब 12 बजे के समय, और हम क्या बोलते ठंडा पानी नहा के फिर वही कपड़ा मतलब गीला कपड़ा जाके गुरु के पास बैठते हैं, फिर गुरु दीक्षा देते हैं.
1: अच्छा।
2: ओम नमः शिवाय. फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे, मैं 8वीं कक्षा में था, फिर ज्ञान मिला. मेरा थाउजी पहले ज्ञान में आया, उन्होंने बताता तब जाके आप बगल में, मेरा जो स्कूल है उसके जस्ट 2 मिनट के दूरी पे एक मतलब सेंटर था.
1: अच्छा.
2: तो ताऊ जी बोलता था वहां पर बाबा का घर है, जाके आपको 7 डेज कोर्स ले लो ऐसा वैसा. तो मैं भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट था ना, तो ये सफेद कपड़े वालों को ज्यादा मानता भी नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको देखते हुए मैं दूर जाता था. लेकिन ताऊ जी तो बोलता था नहीं ऐसा नहीं करो, आप जस्ट जाके एक बार देख लो वहां पर क्या है. इतना फोर्स करता था फिर भी मैं आगे करता था. फिर एक दिन, वो भी मुझे डेट याद है, 31 अक्टूबर 2007 शनिवार.
1: अच्छा.
2: के दिन दोपहर 1 बज गया था. उस समय मैं, शनिवार के दिन जल्दी छुट्टी होता है 12 बजे, खेल पाल करके फिर मैं
1: 8th क्लास में थे तब आप?
2: 8th क्लास में था. घर आ रहा था, मेरे छोटा भाई और मेरा जो ताऊजी का मतलब बड़ा भाई बेटा, उन्होंने मेरे सामने से आ रहा था, वो लोग घर से सेंटर जा रहा था, मैं स्कूल से घर जा रहा था.
1: अच्छा.
2: बीच में मिला 12 बजे 12:30 तक मिला, तो उन्होंने भी बोला, ताऊ जी भी बोलते हैं आप चलो आज हमारे साथ चलना ही करके. मैं साइकिल मोड़ लिया.
1: अच्छा.
2: फिर मोड़ के फिर 12:30-1 बज गया था, मैं एग्जैक्ट बाबा का घर एंट्री किया. फिर एकदम शांति, एकदम शांति, इतना शांति मैं जीवन में कभी नहीं देखा था. वहां का माहौल ही ऐसा रहता है क्योंकि तपस्या रोज करते हैं, और एक दीदी संध्या दीदी करके है, वो दीदी थोड़ी देर के बाद अंदर से आए, हॉल में हम लोग बैठे थे, फिर दीदी कमरे में था ना, तो दीदी आया, फिर मेरे को देख के एकदम स्माइल करके मुस्कान से नाम पूछा, आपका नाम क्या है करके, मतलब वो भी स्माइलिंग फेस से. इतना मैं तो उनको जानते भी नहीं, मेरे को देख के हंसते है मतलब स्माइल करते है, और नाम भी पूछते क्या है इनके अंदर. मैं उस समय कुछ नहीं बोला, नाम भी नहीं बोला.
1: अच्छा.
2: फिर दोबारा पूछा दीदी ने, आपका नाम क्या भाई, ऐसा पूछा. तो फिर मैंने बोला मेरा नाम नागेश है. फिर उन्होंने आगे सवाल पूछा, क्या पढ़ते हो, कैसे. भाई लोग भी बैठा था, लेकिन उनको, वो तो उनको पहले से जानता था, मेरे को बाद में जाना ना, तो मेरे को पूरा सवाल पूछा. फिर एक और शब्द उन्होंने बताया उस समय, आज बाबा को मतलब बाबा के तरफ देख के, बाबा आपका घर में आज एक नया बच्चा है आपका करके, बाबा को फोटो देख के ये क्या बोल रहे हैं करके, पहले से एक शांति का वातावरण है और स्माइलिंग फेस भी है और मुझे और भी अच्छा लगा, अट्रैक्ट होने लगा। फिर बातचीत होने के बाद फिर एक स्वीट लाए, नारियल बर्फी, मतलब भोग था वो रखा था, लाया फिर दिया, वो भोग भी खाया और भी मुझे अट्रैक्ट होने लगा, क्योंकि बचपन में ये सारा देखने को बहुत कम लोगों को मिलता है। फिर दीदी ने कहा ठीक है आप

0: अभी आज आए तो आप एक जो आत्मा का लेसन है वो सीख लो, कर मतलब
1: अच्छा
0: सुन लो 7 डेज का। फिर आत्मा का लेसन दिया मैंने, ऊपर ऊपर से सुना, फिर वहाँ का माहौल जो है, वातावरण जो है, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई लोग बोल रहे चलो चलो अभी टाइम होगा कल आएंगे, फिर चलो फिर आते करके, फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू शुरू हो गया। फिर उसके बाद 10वीं कक्षा में मैं था, हमारा सब जोन वहाँ उबली आता है, उबली में जो वो उबली एक ऐसा जगह है, उस जगह में पूरा जंगल एरिया है,
1: अच्छा
0: 21 एकड़ जमीन है एक्चुअली मधुबन में, एक्चुअली पूरा ब्रह्मा कुमारी में। मधुबन क्या, मधुबन भी उस समय छोटा था, सिर्फ पांडव भवन था। उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। वो जो उबली एक ऐसा जगह है, पूरा जंगल एरिया में 21 एकड़ जमीन दिया है, 1980 के आसपास, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। वो अभी जो लखनऊ का जो इंचार्ज है राधा दीदी, उनका फैमिली है, उनका फैमिली में 3 बहनें समर्पित रूप से, एक राधा दीदी लखनऊ में रहते हैं, एक और दीदी डूंगरपुर में रहते हैं पद्मा दीदी, एक और दीदी उदयपुर में रहते हैं विजय दीदी,
1: अच्छा
0: और उसका बड़ी बहन है, और भी बहुत लोग उनके
1: हाँ हाँ
0: फैमिली
1: हाँ
0: में
1: जी
0: ज्ञान में
1: जी
0: चलते हैं।
1: जी
0: उस समय बसवराज भाई से जो ज्ञान मिला, फिर उसके बाद उनको निश्चय हो गया उनका पिताजी को। तो मैं फिर उसके बाद वो यल्लापुर में गया, फिर तपस्या का माहौल था बहुत, तो वहाँ पर तपस्या किया। फिर उसके बाद मैंने 10th पूरा कर दिया। फिर 10th पूरा करने के बाद हमारा गांव में जो सेंटर बन रहा था उसके लिए भी मैं सेवा करता था। फिर उसके बाद स्वर्णिम कर्नाटक का मेला करके बाबा ने वो दिया था, वो मार्क। उस
1: अच्छा
0: समय में भी अलग अलग हमने स्कूल के लिए 15 दिन के लिए छुट्टी दिया था,
1: अच्छा
0: छुट्टी करके फिर अलग अलग गांव में जाके सेवा किया। फिर उसके बाद माउंट आबू आया, सेवा तो वहाँ चल रहा था, माउंट आबू आया बीच में एक बार। फिर माउंट आबू पहले बार आया तो यहाँ जैसे शांति हो ने एंट्री किया, पता नहीं इसमें मैं तुम कई बार पहले, इससे पहले भी आया हूँ, मैं ये देखा हूँ ये देखा हूँ,
1: ऐसा फील हुआ आपको?
0: ऐसा वो हो गया। ये तो कई लोगों को होता है, मुझे
1: मतलब
0: भी हुआ
1: पहली बार भी आए तो आपको ऐसा लगा मैंने सब देखा है, मैं
0: देखा।
1: आया हूं यहाँ पे।
0: हाँ, और जैसे मैं शांति वन ने एंट्री किया, पहले काम ये किया, ये भगवान का धरणी है करके इसको पहले हाथ से ऐसा छू के, जैसे वो मिट्टी छूते है ना देश को, जैसे मैं इस धरती को छू के पहले माता को, भले भक्ति का वो होता है बात होता है, लेकिन इस धरती को मैंने छू के माथे पे लगाया, इस धरती का महत्व तो कितना है करके।
1: बिल्कुल
0: फिर बाबा मिलन हुआ, फिर बाबा मिलन में भी उस समय शिवरात्रि के दिन था जब मैं पहले मिलन आया था। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, बाबा को प्रति इतना लगन प्यार होता था, 3 बजे आके उधर डायमंड डाल में क्यों में लग गया था, फिर भी मेरा नंबर 5-6 के गेट के उधर गया था। फिर शिवरात्रि 2010 का शायद या 11 का, उस समय सबके हाथ में शिवरात्रि के मिलन में जो छोटा छोटा झंडी देते हैं ना बाबा का, वो देता है। फिर वो दिया मेरे को, लास्ट में एक व्यक्ति ने बोला, मतलब एक भाई ने बोला, ये सारा झंडा जो है इकट्ठा करते जाओ, आप आगे जाओगे, मतलब सब बस ले लो। फिर मैं झंडा सबसे इकट्ठा करते करते पूरा सोपा के उधर गया, सोपा के सामने जाके पूरा बाबा से दृष्टि ले, बाबा कम से कम मुझे 1-30 सेकेंड तक तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया
1: आपको
0: उस समय,
1: देखते रहे।
0: अव्यक्त बाबा। फिर उस समय मुझे इतना लाइट फीलिंग हो गया। फिर उसके बाद मैं घर गया, घर जाने का मन ही नहीं था, लेकिन लेटर में लिख के गया था बाबा मुझे जाना नहीं है, मतलब इधर आना, इधर ही रहने का संकल्प है। फिर गया, फिर वापस कुछ दिन के बाद सोलार में, IndiaOne सोलार में मेरा पहला आना हुआ सेवा के लिए।
1: सेवा आने शुरू किया। आप 3D शो के बारे में भी बता रहे थे
0: जी
1: कुछ, जिसमें आप सेवा करते हैं,
0: जी
1: तो क्या है वो, मतलब शो क्या है वो, थोड़ा सा उसके बारे में
0: सोलार
1: बताएंगे?
0: के फिर वहाँ कंप्लीट होने के बाद इधर आए PM पार्क में, 3D शो वहाँ
1: है क्या
0: चलाते
1: वो,
0: हैं
1: होता क्या है उसमें, मतलब
0: जी।
1: एग्जैक्टली
0: थ्री डी शो का वो है, मतलब हर चीज वीडियो, नॉर्मली जो पिक्चर देखते हैं वीडियो देखते हैं वो नॉर्मली दूर का फीलिंग होता है, लेकिन 3D का मतलब होता है नजदीक का फीलिंग होता है,
1: अच्छा
0: पूरा
1: ओके
0: सामने आके व्यक्ति हमसे मिल रहे ऐसा लगता
1: ऐसा
0: है।
1: लगता है।
0: हाँ, उसमें वो चश्मा के भी वो इफेक्ट पड़ता है, चश्मा उसके लिए अलग देता है,
1: अच्छा
0: और जो क्या बोलते हैं उसका प्रोजेक्टर भी अलग होता है, उसका शूटिंग भी अलग होता है 3D का फिल्म का, तो ये होता है। और हमने जो ब्रह्मा कुमारी में जो 3D दिखाता है, इसमें तीन प्रकार का वो दिखाता है, एक तो मेडिटेशन का होता है, एक स्वर्ग का भी अभी नया जो फिल्म शूटिंग किया है स्वर्ग का बारे में, एक 7 days कोर्स के बारे में। 7 days कोर्स के बारे में तो उषा दीदी ने उसमें है, वो 15 minutes का है। और मेडिटेशन का जो है, जो भी मेडिटेशन के बारे में लोग देखते हैं, चाहे भी किया या नॉन भी किया, आजकल जो शिविर में जो लोग आते हैं वो देखते हैं मेडिटेशन के बारे में, 3D के बारे में, वो भी वो लोग पूरा रियलाइजेशन करते हैं और अनुभव करके जाते हैं,
1: एक्सपीरियंस होता है उनको।
0: हाँ, उनको बोलते हैं हम, वो लोग बोलते हैं हमको ये और एक बार दिखा दो।
1: अच्छा, इतना अच्छा लगता है,
0: इतना असर पड़ता है और पूरा उसमें लीन हो जाता है और उसको उस क्षण को लेके वो लोग अनुभव करने के बाद वो आगे उसको याद करके उसको जीवन में अप्लाई भी करते हैं।
1: वंडरफुल, मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बहुत परफेक्ट मिक्स है यहाँ पे।
0: साइंस का भी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा असर पड़ता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जरूरत भी होता है,
1: बिल्कुल सही बात है। हैंड इन हैंड बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने हमेशा ईश्वर को माना है और ये कहा है कि साइंस स्पिरिचुअलिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बहुत सुंदर ये मिक्स है। नागेश भाई, वैसे तो हमारा जो टाइम है प्रोग्राम का वो समाप्ति की ओर है, लेकिन जाते जाते भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई एक और गीत हमारे श्रोताओं को आप जरूर सुनाएं जो उनको याद रह जाए, अपने साथ लेके जाए। वो
0: सारा टोटली हम इस संसार में जब आए व्यक्ति फिर जाते हैं, आना और जाने के बीच में इस संसार में व्यक्ति आता है फिर जाता है, आना जाने के बीच में जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान को गुणगान करके शुक्राना करके गए तो वो व्यक्ति का जीवन सफल है, मैं ये सोचता हूँ।
1: ओके,
0: और इसी के रिलेटेड में कन्नड़ में गीत है, लेकिन कन्नड़ तो जानते नहीं, लेकिन हिंदी में भगवान के बारे में वो है, स्वागत गीत है।
1: अच्छा,
0: पहले एक्चुअली एक गीत पहले ही गाना था हमको, लेकिन अभी भी वक्त गा सकते,
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर गा सकते।
0: स्वागत गीत है
1: जी।

0: न्यारा शिव स्वागत आज तुम्हारा। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जाते
1: नागेश
0: जाते
1: भाई।
0: मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस संसार में आया जाया तब बीच में भगवान का गुण गाए, लेकिन अगर आपको भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में असली आपको परिचय चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आप नॉलेज ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: ले सकते हैं।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया नागेश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संगीत के सुंदर गीतों से हमारा परिचय कराने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम मधुबन अंतर्गत से तो हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों, आजकल मैं, आप, हर कोई एक चीज बार बार सुनते हैं, हर चीज का दाम बढ़ गया है, हर चीज की वैल्यू बढ़ गई है, बचत कैसे करें, जीवन बड़ा मुश्किल चल रहा है। इन सब बातों को जब सुनते हैं तब लगता है कि कोई सलूशन नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर कोई सामने उदाहरण बन करके आए और मुझे और आपको ये रास्ता दिखाए कि बचत के द्वारा जीवन को सरल कैसे बनाया जा सके, और केवल सरल ही नहीं, एक उदाहरण भी बना जा सके, तो कैसा होगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के कुछ मेहमान इसी उदाहरण का एक प्रतीक हैं। देश भर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने तथा नागरिकों को एक सस्टेनेबल जीवन कैसे जिया जा सके उसके प्रति भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड का 2025 में जब वितरण हो रहा था तो उसमें एक प्रतिभागी जिसको ये अवार्ड दिया गया वो था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जगदम्बा भवन अर्थात पुणे में स्थित ब्रह्मा कुमारी इसका जो संस्थान है उसे ये अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड को जगदम्बा भवन पुणे की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी ने दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त किया। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में सुनंदा दीदी और उनके साथ उनकी सहयोगी शीतल बहन मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कैसे इस अवार्ड तक का उन्होंने मुकाम जारी किया, अवार्ड प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करते हुए क्या क्या मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया जिससे वो इस मुकाम तक पहुंचे, और कैसे इसको मैं और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण कर सकते हैं, हमारे घर में बचत के सुंदर से संस्कार को डेवलप कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमानों का। मैं मेहमानों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है, आज के एपिसोड में किसी एक व्यक्ति विशेष को भारत सरकार ने सम्मानित नहीं किया लेकिन एक संगठन को किया। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानों से। मैं स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पुणे ब्रांच से जो जुड़े हुए हैं, हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी और हमारी प्यारी बहन शीतल बहन का। आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: दीदी। एक तो कि आप और आपकी टीम कई फील्ड में सेवा करती हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी आमतौर पे सेवाओं में व्यस्त होते हैं, केवल एक फील्ड की सेवा तो होती नहीं है, बहुआयामी सेवाओं में व्यस्त होते हैं, और उस व्यस्तता में आपने समय निकाला रेडियो मधुबन के श्रोताओं के लिए। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो
1: थैंक यू भाई, हम तो ये कहेंगे आपने हमको बुलाया, ये हमारा परम सौभाग्य है।
0: दीदी आपका बड़प्पन है।
1: इस बहाने जिसका सुंदर स्लोगन है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, ये बहुत प्यारा प्यारा स्लोगन है जो सुनने से ही अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। तो ऐसे रेडियो मधुबन में आपने हमको याद किया, आपके बहुत थैंक्स।
0: तो आज हम सुनेंगे दीदी से और शीतल बहन से उनके अनुभव, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जैसा कि हमारा रिवाज है, हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का एक मुकाम है लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने की एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है, उस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण जो कि आमतौर पर एक आध्यात्मिक संस्था के लिए अनकॉमन सी बात मानी जाती है, जनरली सोचा जाता है कि आध्यात्मिक संस्था है तो जो उनका कार्य है, जो ज्ञान है, उस रीति ही वो सेवा करेंगे, लेकिन ऊर्जा थोड़ा सा अलग लगता है। तो ऐसे में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आपके हिसाब से, कहाँ से आपको प्रेरणा आई, क्या रुकावटें आई, वो जानना चाहेंगे।
1: आप सबको सुनाते हुए बहुत मुझे प्रसन्नता है। ब्रह्मा कुमारी की जो स्थापना है वो भारत देश के लिए है, तो भारत सरकार के तरफ से जितने भी कुछ ऐसी सेवाएं आती है जो हम कर सकते हैं आध्यात्मिकता के साथ साथ, तो वो हम जगदम्बा निवास के अंदर मोस्टली करते हैं। तो ऐसे ही हमको एक बार मालूम पड़ा

0: सौर ऊर्जा जो है, ऊर्जा बचत अगर हम करते हैं तो भारत सरकार का एक उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत
1: जी।
0: तो ऊर्जा में भी, बाकी भी जो ईंधन है उसमें भी भारत सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। उसके लिए अगर हम हर एक थोड़ा थोड़ा भी बचत करते हैं तो वो भारत सरकार को एक मदद हो जाती है। इस उद्देश्य को बुद्धि में रखते हुए हम सभी ने, जो भी वहाँ रहते हैं, सभी ने सोचा कि हम इस क्षेत्र में थोड़ा कुछ काम करेंगे, लेकिन हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा ये कोई हमारे बुद्धि में नहीं था।
1: उस लक्ष्य से नहीं शुरू किया था,
0: उस उद्देश्य से हमने नहीं किया, लेकिन बचत करते हैं तो उसका फायदा हमको, संस्था को भी हो जाता है ना, पैसे के रूप में समझो, फिर सरकार को भी हो जाता है और फिर एक एग्जाम्पल भी बन जाता है, दूसरे भी सीख लेते हैं इस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको हर चीज हम लोग दिखाते हैं। तो उस भाव से हम बचत करते गए और इसमें हमको खास जो मार्गदर्शन मिला है, एक बार हमारे पास केदार भाई लातूर वो आए थे, वो ऑडिट एनर्जी का काम करते हैं, तो वो आए थे, उन्होंने सारा हमारा देखा और उन्होंने हमको थोड़ा सा प्रेरित किया कि आप लोग थोड़ा कुछ कुछ बातें चेंज करके एनर्जी की बचत करो। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमने विद्यालय के अंदर ये भी सीखा है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्यालय से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन कोई अच्छी बात सिखाता है, क्योंकि विद्यालय का मूल है गुणग्राहकता, या कोई अच्छी बात कोई सिखाता है तो वो हमको करनी चाहिए, हमको डोंट केयर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमको सिखाया कि आप थोड़ा, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं था राष्ट्रपति पुरस्कार का, लेकिन ऐसे ही वो आए थे तो उन्होंने हमारा सारा कैंपस देखा और फिर उन्होंने कुछ बातें हमको सिखाई। तो हमारी जो सारी टीम है ब्रह्मा कुमारीज की, ये टीम बहुत वेल एजुकेटेड है और ये सारी साइंस की बातें समझती है, तो उन्होंने भी अपने थोड़ा मन पर लिया और वो सारे बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे कि समझो हमारी एलईडी लाइट
1: जी,
0: ये हमने बहुत सारी जगह पर लगाई है। फिर स्ट्रीट लाइट जो होती है वो हम बहुत देरी से शुरू करते हैं और बहुत जल्दी सवेरे बंद कर देते हैं। फिर जो हमारे फैन है वो हम एक बार फास्ट करके ठंडा कर लेते हैं, फिर हम एक दो पर ही रखते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा।
0: फिर हमारा यहाँ हमारे फ्रिज है, उसमें भी हमने उनके डायरेक्शन के अनुसार कुछ चेंजेस की। ऐसे हमने, हमको एक गाइड अच्छा मिला, उसके अनुसार हम करते गए तो हमने देखा कि हमारा भी थोड़ा बिल कम आ रहा है, ये पहले हमने देखा तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो करते गए।
1: कहते हैं ना, कुछ अच्छा करे तो पहला फायदा खुद को होता है, तो वो आपने देखा। बिल्कुल जी।
0: तो फिर करते गए। फिर उन्होंने इस बारी एक दिन वो आए और उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया कि हम पुरस्कार के लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है कर लो, बुरा तो है नहीं, मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, लेकिन एक हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपति तक पहुंच जाए कि ब्रह्मा कुमारीज ऊर्जा संरक्षण में भी काम करती है।
1: बिल्कुल,
0: ये अगर राष्ट्रपति तक पहुंच जाए तो चलो ठीक है ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए हमने किया। फिर दिल्ली से ऑडिटर आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने सारा चेक किया, वो वन डे हमारे पास रहे, ये हमको पता भी नहीं था।
1: अच्छा कि वो ऑडिटर है।
0: हाँ, कि इतना सब कुछ होता है
1: जी।
0: लेकिन उनका फोन आया केदार भाई का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है आने दो, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं ना, उसमें कोई ऐसे बनावटी तो है नहीं। तो वो आए, वो भी बेहद खुश हुए, उन्होंने भी सारा एक एक चीज देखी, उसके साथ वहाँ का मेडिटेशन भी देखा, हॉल देखा, हमारी आध्यात्मिकता नजदीक से अनुभव की और फिर वो चले गए
1: जी।
0: फिर उसके बाद हमको एक दिन लेटर आया कि ऐसे ऐसे आप राष्ट्रपति अवार्ड के क्या बोलेंगे अधिकारी या चुने गए हैं। फिर वो राष्ट्रपति अवार्ड मिला
1: जी। तो शीतल बेन, आप भी इसी अनुभव में अपना अनुभव अगर जोड़ सके कि क्योंकि सुनंदा दीदी जी ने अपने एक पर्सपेक्टिव से दृष्टिकोण से बताया कि उनके लिए तो ये उद्देश्य था ही नहीं कि भाई हमें अवार्ड मिले, और उन्होंने कहा कि हमारी टीम का भी कभी ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपने भी कुछ ऐसी बातें देखी होंगी इस जर्नी में जिससे आपको लगा कि बहुत मुश्किल है या मुश्किल नहीं है, कैसा था ये पूरा यात्रा, वो अगर हम जाने।
2: तो जैसे हमारे बहन जी ने कहा कि हम लोग तो शुरू से ही, जैसे ही हमारा जगदम्बा भवन कैंपस बना, तो जनरली हम लोग कोई भी चीज़ बनाते तो उसके बाद मेंटेन करने के लिए भी हम पर्याप्त चीज़ों का ध्यान रखें। हमने सोलर एनर्जी, पहले सोलर प्लांट लगा दिया था हॉल के ऊपर, 50 KV का अपना सोलर प्लांट लगा हुआ है, और हमारी मैक्सिमम एनर्जी सोलर प्लांट पे यूज होती है, और बाकी जितना बचता है पूरा, जैसे आप जानते हैं कि MSEB में जाती है पूरा जो भी जनरेट होता है, यस, और फिर हम जितना यूज करते हैं उसमें से माइनस होता है। तो शुरू से हमने इस बात का ध्यान रखा था जब से कैंपस बना था, क्योंकि कैंपस बड़ा था, फिर बिल इतना हर बार आई, कंटिन्यूस वहाँ इवेंट चलते हैं वीकेंड पे, बहुत पब्लिक इवेंट्स होते हैं पब्लिक सेवा करने के लिए, वैल्यू एजुकेशन जो देते हैं हम उसमें। तो फिर हमने शुरू से ये सोच के वहाँ पर सोलर प्लांट लगा ही दिया था, इसके अलावा LED लाइट्स का भी हमने शुरू से ही किया था
1: जी।
2: और साथ साथ हमारे पास बायोगैस भी है, मतलब एक जो कहते हैं ना रिसाइकलिंग, सारा वेस्ट को बेस्ट बनाना, इस बातों का ध्यान शुरू से रखा गया था। तो बायोगैस भी हमारे पास, जैसे हमारा स्थापना हुई जगदम्बा भवन की, तब से ही बायोगैस भी लगाया हुआ था जो आज तक चल रहा है, क्योंकि जो हमारे दीदी ने जो कहा, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से जो आए थे ऑडिटर सारा चेक करने के लिए, उन्होंने कहा बायोगैस बहुत लोग लगाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना मतलब रोज उसको खिलाना होता है, और खिलाना भी ऐसे होता है कि जो उसको चाहिए उसके हिसाब से, कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, बहुत सोच समझ के कटिंग करके प्रोसेस करके फिर आपको देना होता है, तो जनरली लोग वहाँ हिम्मत हार जाते हैं समहाउ। बट जगदम्बा भवन का 8 साल हो गए हैं और कंटिन्यूस डेली को फीडिंग किया जाता है और डेली वो गैस चलता है। तो उन्होंने कहा आप दिखाओ हमें चलता है कि नहीं चलता।
1: 365 दिन,
2: यस यस, 365 डेज,
1: बच्चे को बड़े करने के जैसा है।
2: जी जी, तो उसमें हम कई सब्जियां कई तड़का लगा के फिर जो पकती है तो हम बायोगैस पे छोड़ देते हैं, ताकि वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो पकता रहेगा। दूध आया तो हम दूध गर्म वहां करते हैं, कभी चाय बनानी है तो हम ध्यान रखते, किचन वालों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो भी गैस चलता रहे, भले साइमल्टेनियसली, क्योंकि कैंपस बड़ा है, आने जाने वाले बहुत है, तो दूसरे गैस भी हमको यूज करने पड़ते हैं, बट वी ऑल्सो कीप अ वॉच की वो जो गैस है बायोगैस भी कंटिन्यूस हमारा चलता रहे, तो शाम तक वो पूरा हो जाए ताकि वो फीड करे तो नेक्स्ट डे के लिए अवेलेबल हो। तो इस रीति से हमने उसको चालू रखा, तो जो ऑडिटर आए थे तो उन्होंने कहा आप चालू करके दिखाओ, हमने तुरंत चालू करके दिखाया उनको तो वो देख के बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि आज तक वो बायोगैस काम कर रहा है। फिर उन्होंने सोलर का प्लांट तो देख ही लिया था, LEDs देखिए, फिर हमारे पास रिमोट वाले फैंस हैं, क्योंकि कई बार लोग उठकर फैन बंद करना या टेम्परेचर चेंज करना उसमें थोड़ा सा लेजीनेस फील करते हैं, तो रिमोट के फैन होते वो एनर्जी सेव भी करते हैं और इमिजिएटली हम टेम्परेचर जैसे चाहे वैसे। फिर जैसे हम फ्रिज के बारे में हमने ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश सब्जियां लाए, बहुत लेफ्ट ओवर ना हो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जितना बढ़ा उतना बढ़ता ही जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि जितना फ्रेश खाओ उतना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, यस, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और तो इस हिसाब से हमने वो भी थोड़ा ध्यान रखा। तो ऐसी कई चीजें, छोटी छोटी टिप्स जो हमें केदार भाई, जो खुद एक एनर्जी ऑडिटर है महाराष्ट्र में और उन्होंने कई राज्य लेवल पर भी अवार्ड्स लिए हुए हैं, और अभी ये एक नेशनल अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त हुआ, हाँ, जगदम्बा भवन का भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर पहले अवार्ड मिला था एक, तो क्योंकि वो जब जैसे दीदी ने कहा कैंपस विजिट करने आए थे तो उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्यादा इनको काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे मैं टिप्स दे दूं तो भी इनका बहुत अच्छा हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, उन्होंने कहा सोलार का जो एनर्जी है प्रोडक्शन तो जगदम्बा भवन में हो रहा है, तो डे टाइम में हम जितना कंज्यूम करते हैं तो वो जैसे फ्रिज ऐसा हो जाता है हमारे लिए, हम कितना भी कंज्यूम करें, और फिर जो बचता है इट इज गोइंग टू MSEB। तो फिर उन्होंने कहा आपको प्रेस यूज करनी है या जो भी ऐसी हैवी ड्यूटी चीजें यूज करनी है आप डे टाइम में ज्यादा यूज करो। तो हम लोगों को शुरू से बताया गया 7 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही आयन को यूज करो, आयनिंग आपको इसी टाइमिंग में करनी है। आप ये छोटी छोटी बातें करोगे तो आपका भी पैसे बच जाएगा और ऊर्जा भी बच जाएगी. तो हमारे सच में, और ये भी अच्छी बात है कि हमारे जो निवासी हैं, हम 15-20 लोग रहते हैं जगदम्बा भवन में रेगुलर बेसिस पे, बाकी आने वाले विजिटर वगैरह वो रेसिडेंट अलग होते हैं. तो उन्होंने जैसे कहा कि आपको प्रेस इस समय करने, सबने सहयोग दिया. सब उजाला जब होगा तभी प्रेस करनी है, अंधेरे में आपको प्रेस नहीं करनी, क्योंकि अंधेरे में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो MSEB से लेते हैं.

0: ऐसे उनकी बचत के लिए कर रहे थे, ना कि बुद्धि में ये था कि बाबा कि हमें कुछ अवार्ड लेना है या उस हिसाब से नहीं था. लेकिन हाँ, जब उन्होंने थोड़ा डायरेक्शन दिया तो कहा क्यों नहीं, हम ऑलरेडी इतना कर रहे तो और थोड़ा सा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें उनका सभी ने ध्यान दिया, एक दो की बात नहीं है, सब रहने वाले आने वाले गेस्ट उनको भी हम जब बोलते हैं कि आप इस टाइमिंग में ये करो तो उनका भी बहुत सहयोग मिला.
1: मैं ये समझता हूँ कि जो आप सुना रहे इसमें सहयोग एक शब्द है जो बहुत कीमती है, क्योंकि किसी ने अगर आपको आकर के कुछ सुझाव भी दिया है ये भी एक प्रकार का सहयोग है, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं और इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन सुनने के बाद उसको करना ये अपने में एक बात होती है कि भाई मुझे ही करना है, मुझे सुन करके नहीं बैठना है, मुझे करना है. तो ये बीड़ा उठाना ये भी एक अपने आप में सहयोगी बनना है. लेकिन देखा गया दीदी कि आजकल कोई भी छोटी सी चीज को करने के लिए लोगों को सहयोग की ही कमी लगती है. आपस में भी देखा गया है कि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, तो साथी या दोस्ती या अपनत्व की जो भावना है वो इतनी कम हो गई है. तो सहयोग तो बहुत बड़ी बात लगती है. कोई किसी को मदद भी करने जाए तो सोचता है कि क्यों करूं मैं मदद, मुझे क्या मिलने वाला है. या कभी ऐसी भी भावना आती है कितना भी मैं मदद करूं लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. ये जो भावना है सहयोग की, ये वास्तव में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है?
2: मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसको हाईलाइट नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जो सत्यता है वो मुझे बतानी पड़ेगी
1: जी.
2: क्योंकि यहाँ पर हम जो डेली नॉलेज सुनते हैं तो नॉलेज के अंदर कई सारे वैल्यूज़ को बताया जाता है और बहुत एक सुंदर महावाक्य यहाँ पर सिखाया गया है कि वैल्यूज से ही आप वैल्यूएबल बनोगे,
1: मूल्यों से मूल्यवान बन जाएंगे.
2: हाँ
1: जी.
2: क्योंकि हर चीज की वैल्यू हम रखते हैं. कोई खरीदी करनी है समझो हमको, तो हम चाहते हैं कि पापा नंबर एक की चीज हमको खरीदी करनी है, लेकिन हम जीवन के प्रति कभी ये नहीं सोचते हैं कि जीवन को भी हमें नंबर वन बनाना चाहिए. और ऐसे भी देखो जीवन शब्द ही इतना सुंदर है, जी प्लस वन.
1: बहुत अच्छा.
2: हाँ
1: जी.
2: तो वन नंबर से जीना चाहिए ना. लेकिन चलते चलते मनुष्य ये बातों को भूल गया है, वो चीजों को ज्यादा महत्व देता है, जीवन को नहीं दे रहा है. लेकिन हमारे सौभाग्यवश हमको इस ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज मिली, जिसके अंदर हम रोज वैल्यूज के प्रति बहुत सुनते हैं कि कैसे एक एक वैल्यू. और ये बहुत सुंदर बात हमने सुनी कि वैल्यू कोई लाने की चीज नहीं, वो आपके अंदर ही है
1: जी.
2: खाली आप उसको समय प्रति समय यूज करो
1: जी.
2: और यूज करने के लिए जो पावर चाहिए उसके लिए अभी हमारा ये इनर्जी का ही काम चल रहा है, मतलब इनर्जी के कारण हमको प्राइज मिला, अवार्ड मिला. तो ऐसे जैसे वो एक इनर्जी है, ऐसे हमारे अंदर भी हमारे मन की इनर्जी बढ़ती जाए उसके लिए भी एक मेडिटेशन की विधि यहाँ पर हम सीखते हैं. और वो जब मेडिटेशन करते हैं तो मनुष्य के मन में सारे वैल्यूज है ही,
1: बाहर से लाने की जरूरत नहीं.
2: लेकिन वो बाहर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है. उसको पता पड़ता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब
1: मतलब ये शक्तियां या जो मूल्य हैं ये जो गुण हैं ये भीतर हैं
2: है,
1: लेकिन क्रियान्वित नहीं है. उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है. और
2: हमको
1: उसके
2: तो
1: लिए
2: हमेशा
1: ज्ञान,
2: वो एक एग्जांपल याद रहता है जैसे जमीन के अंदर
1: जी
2: पानी है.
1: हुँ.
2: लेकिन आपको बोर मारना पड़ता है, है ना. तो जब वो ऐसे ऐसे करके अंदर चला जाता है तो अंदर का पानी बाहर आता है. इसी प्रकार मानव के मन में बहुत सारे वैल्यूज है. तो राजयोग एक ऐसी प्रोसीजर है, विधि है, मेडिटेशन एक समझो साधना है. बहुत नहीं 10-15 मिनट भी रोज करे तो वो अंदर जो वैल्यूज है ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो सहयोग तो सबसे बड़ा वैल्यू है. इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बोलते हैं, बिना सहकार नहीं उद्धार.
1: बहुत सुंदर.
2: हाँ. और आजकल हमने बहुत जगह ऐसे चित्र देखे हैं कि बीच में ग्लोब है
1: जी,
2: सारे मनुष्य आत्माएं एक दो के हाथ में हाथ डाल करके ऐसे खड़े हैं. मना सहयोग के बिना तो कुछ होता ही नहीं है. तो तो सहयोग का महत्व हमने यहाँ पर समझ लिया मेडिटेशन के आधार से.

0: योग का महत्व, बचत इकोनॉमी उसका महत्व, फिर कोई कुछ बात बोलता है तो वो हमको स्वीकार करनी चाहिए, अगर वो अच्छी है तो वो स्वीकार करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बालक और मालक का बैलेंस, कि मालक बन करके राय दो, बालक बन करके स्वीकार करो।
1: राय देना, लोग कहते हैं राय बहादुर बन के राय देते हैं, हाँ। लेकिन जब कोई आपको राय देता है तो फिर कईयों के ईगो को हर्ट हो जाता, हाँ। है कि मुझे कैसे राय दे रहे, हाँ। हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो बचपना है, जो बालकपन है,
0: हाँ।
1: वो अगर आता है तो फिर व्यक्ति उससे कुछ सीख सकता है,
0: हाँ।
1: जी,
0: तो हमको फायदा ही हो जाता है ना उसका। तो ये सारे वैल्यूज को हमने सीखा है यहाँ पर, इसलिए ये सारे वैल्यूज हम करते गए। और हमारे आज्ञाकारिता भी एक वैल्यू है, अगर कोई अच्छी बात है आपको कही जाती है करो, तो वो समझो आप क्यों करनी चाहिए, ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं बोलो हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन समझो वो क्यों करना जरूरी है। और जब वो समझता है कि हाँ ये करने से ये लाभ होता है, फिर वो सभी जो भी जगदम्बा निवासी है उन सभी ने इन सारी बातों को समझ लिया और फिर सभी करते गए, तो सभी के मेहनत के कारण समझो ये सुंदर अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ।
1: शीतल बहन, आप क्या कहना चाहेंगे सहयोग का, जो आपने बोला कि केवल ऐसा नहीं कि बड़ों ने कहा और हमने किया, लेकिन आपस में भी जो गेस्ट आते थे बाहर से वो भी मानते थे कि ये करना है।
2: अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक वाइब्रेशन भी होता है, जब करने वाले दिखते हैं सामने तो करना इजी हो जाता है।
1: मतलब अगर कोई उदाहरण है सामने,
2: एग्जैक्टली
1: तो,
2: आप उदाहरण मूर्त जब बन जाते हैं, जब आप खुद करना शुरू करते हैं और आप खुद बेनिफिट फील करते हैं, तो आपको देख देख कर दूसरों को भी लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। जब वो देखते हैं कि यहाँ के लोग इतना सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करके देखें, और वो देखो कभी भी कोई इंसान अच्छा कर्म करता है ना, भले वो फॉलो करके करे या एक बार करके देखे, लेकिन उसका जो अनुभव वो खुद कर लेता है तो उसको वो जो लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, वो फीलिंग बहुत उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है कि हाँ मैंने इतना तो भले मैं वहां नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ किया। जैसे हमारे रूम्स में भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे हैं कि आप जाने से पहले नल को एक बार चेक कर लीजिए कि पानी बंद हो गया है, आपने एसी फैन ऑन किया है तो आप बंद कर दीजिए। तो ऐसे अगर हम प्यार से लिखते हैं कुछ डायरेक्शन, क्योंकि अगर वो पहले से संस्कार नहीं है तो इमिजिएटली फॉलो करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और बार बार रिमाइंड करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब लिखे जाते, इवन हम जो थालियां धोते हैं वहां पर भी हमने पूरा ठीक से लिखा हुआ है कि आप पानी उतना ही यूज करना जितना आवश्यक है। कई लोग नल खुला छोड़ के फिर थाली धोने में लग जाते हैं और उतना पानी कई लंबा समय तक वेस्ट हो जाता है। तो जो एक अच्छे मैनर्स है, विद्यालय का एक ये है ब्रह्मा कुमारीज में हम देखते हैं कि मूल्यों की शिक्षा तो है ही, लेकिन एक छोटे छोटे बातें जो हमारे मैनर्स को बढ़ावा दे, अच्छे आचरण के लिए जो बातें हैं। और ये इकोनॉमी का जो आपका संस्कार है ना, वो आपका जमा का खाता भी बहुत बढ़ाता है, क्योंकि आप पानी जितना वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे एक कर्म फिलोसॉफी हर चीज के साथ बनती है, पानी के साथ भी आप वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हो सकता है आगे चलकर पानी की कमी पड़े। और आप पानी का पहले से बहुत प्यार रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपको कभी का पानी है, इस पानी से भी आपको मदद मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, पानी की बचत कहो, ऊर्जा की बचत, और जैसे बहन जी कह रहे थे कि यहाँ पर हमें सिखाई जाते वैल्यूज की बातें, और बचत का संस्कार तो पहले से इस विद्यालय में मिल रहा है, तो वहाँ बहुत सूक्ष्म रीति से बचत सिखाई जाती है। एक सबसे पहले बचत जो इंसान को करनी चाहिए वो है संकल्पों की बचत, उसके विचारों की बचत,
1: विचारों की बचत।
2: क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है, कई नई भी लगती है, और जब नई लगती है तो हमारे बहुत वेस्ट थॉट्स अंदर में चलते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए।
1: ये तो जैसे आम बात हो गई,
2: बहुत आम बात है। और कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट हैज टू हैपन, बट वो थॉट चलने से मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। वही एनर्जी में अगर किसी और, वही संकल्प में किसी और चीजों की तरफ फोकस करती तो शायद मेरा कुछ और काम अच्छा बन जाता था, लेकिन मेरा टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और उसके बाद जब निगेटिव चलता है या वेस्ट चलता है तो हम थोड़ा ड्रेन भी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हम आत्मा की एनर्जी थोड़ा थक जाते हैं।
1: कई बार ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं कोई बात पे, सोच रहे सोचते सोचते इतने थक जाते हैं कि लगता है चलो जाके सो जाते हैं
2: और जब आप बहुत लंबा विस्तार करते हो बीच का जब विस्तार किया जाता है वो झाड़ में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर आप कहते हो अभी फुल स्टॉप लगाया अभी अभी छोड़ दे तो झाड़ को बीज में ले आना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन कोई चीज बीज लेवल तक है तो थोड़ा ही समझ के कि ये व्यर्थ है या मैं क्यों सोचूं इस बारे में लेट हिम थिंक मैं वो सोचूं जो मेरे लिए जरूरी है तो ऐसा अगर हम उसी समय कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे संकल्पों की बचत हमारे विचारों की बचत सबसे बड़ी बचत है क्योंकि विचारों के आधार से ही आपकी वाचा काम करती है विचारों के आधार से आपके कर्म काम करते हैं आपका व्यवहार काम करता है आपके रिलेशंस काम करते हैं सब जगह पे तो मेन बीज हमारा संकल्प ही विचार है थॉट्स है अगर इसका हम अच्छी तरह से यूज करें पॉजिटिव दिशा में यूज करें अपना समय दूसरों का समय अच्छा करने के लिए व्यतीत करें तो ये जैसे विचारों की बात हो गई समय के रिलेटेड भी हम फालतू में बहुत समय सोशल मीडिया पे रील्स देखते देखते कितना समय एक घंटा दो घंटा बीत जाता है और हमें लगता है हम थोड़े एंटरटेनमेंट चाहिए थोड़ा एंटरटेन हो गया और आप देखो प्रैक्टिकली एक घंटा रील देखने के बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको जो काम करना है वो आप कर नहीं पाते हो
1: और कई बार जो काम करना तो भूल भी जाते
2: कि करना क्या था और वो इतना एग्जॉस्ट होने के बाद वो काम करने का मन भी नहीं करता है और हम सोच रहे थे 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट कर लेते बट प्रैक्टिकली वो होता नहीं है तो यहाँ समय की बचत संकल्पों की बचत तो ऐसे हर बचत का जो संस्कार यहाँ पे सिखाया जाता है वही कहीं ना कहीं सूक्ष्म संस्कार स्थूल संस्कार में परिवर्तित फिर पानी की बचत कहो ऊर्जा की बचत कहो तो ऑटोमेटिकली ये संस्कार हमारे अंदर डेवलप होना लगते हैं
1: तो मैं इसको ऐसे अगर समझूं कि मान लीजिए मैं नया व्यक्ति हूं और मैंने आज आपका कार्यक्रम सुना और मुझे मन किया कि चलो मैं भी ऊर्जा की बचत करूं तो क्या ऐसा भी संभव है कि भले मैं संकल्प की बचत नहीं करता और समय की बचत नहीं करता लेकिन मैंने ऊर्जा पानी भोजन इनकी बचत करना शुरू किया है तो क्या ये बचत का जो कार्य मैं कर रहा हूँ इससे क्या मेरे अंदर संस्कार जो है वो बचत करने के वो डेवलप हो सकते हैं या पहले बचत का संस्कार आएगा फिर मैं कुछ करूँ
0: नहीं कोई भी बात पहले तो संकल्प में ही आती है ना
1: ओके
0: हाँ जैसे अभी सुना है किसी ने तो किसी को लगेगा पापा मैं बचत करूँ तो देखो संकल्पों की उत्पत्ति भी कैसे होती है जैसे कभी कुछ सुनते हैं सुनने के बाद उत्पत्ति होती है कुछ पढ़ते हैं तो भी वो संकल्पों की उत्पत्ति होती है तो सुनने से पढ़ने से तो बचत अभी मेरे को लगता है मैं बचत करूं
1: जी
0: तो संकल्प तो आ गया फिर मैंने करना शुरू कर दिया तो शुरू करने के बाद भी कभी आप थोड़ा लूज हो सकते हैं फिर आपको ध्यान देना पड़ता है अरे अभी मेरा पानी वेस्ट मैंने गवाया संकल्पों को थोड़ा वेस्ट किया फिर थोड़ा अटेंशन रखते हैं तो अटेंशन देने से कोई भी संस्कार और पहले भी मैंने बताया कि हमारे अंदर सारी अच्छाई है ही
1: है
0: हाँ इंसान बहुत अच्छा है इतना अच्छा है जो हम कहेंगे कि वो देव मानव है जो हम हमारे पूर्वज कहते हैं देवी देवताएं थे वो एक्चुअली मानव के अंदर वो सारे दैवी गुण वैल्यूज है ही है आज भी देखो ना किसी के अंदर बचत का संस्कार है ऑलरेडी है लोग भले उसको कभी कभी कंजूस भी कहते हैं बहुत कंजूस है बोलते हैं लेकिन कंजूसाई अलग है और बचत अलग है
1: कई लोगों का मैंने देखा है कहते हैं ये तो ना जैसे देवता समान है
0: हाँ
1: कई किसी में अगर गुण होता है तो कहते हैं ये तो जैसे देवता समान है ये तो बिल्कुल जैसे ठाकुर हैं कोई बहुत शांत रहता है तो कहते हैं तो ठाकुर जी जैसे हैं तो ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सारे संस्कार इंसान में पहले से मौजूद है केवल उस पर अटेंशन देने की बात और एक और चीज जो आपने बताया कि कई बार हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं लेकिन बीच में फिर हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं तो वहां पर हमको अटेंशन देने की जरूरत है लेकिन वो अटेंशन कैसे लाएं कौन मदद करेगा या कहां से शुरू करें
0: दो बातों से अटेंशन हो सकता है एक मैंने खुद जो अनुभव किया कि जब हम कोई बात फाइनल करते हैं कि मुझे ये करनी है
1: जी।
0: लेकिन आज मेरे से वो नहीं हुई तो मैंने जो संकल्प किया है मुझे करना है और मैंने अभी 25 बार कर भी लिया आज भले नहीं किया लेकिन 25 बार कर लिया वो थोड़ा सा संस्कार मेरा बन गया है ना तो अच्छा। आज जब मैंने नहीं किया तो न करने के बाद याद आ जाता है अरे तुमने क्या सोचा था कि तुमने तो हाँ ये सोचा था ना कि ये करना है
1: मतलब तो आप बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि नहीं करना भी आपको याद दिलाएगा आपका संकल्प
0: हाँ
1: ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है
0: हाँ। और देता है प्रैक्टिकली भी आप देख लेना फिर हम कभी कभी दूसरों को भी बोल के रखते हैं देखो भाई मैंने ये सोचा है कि मैं ये अच्छा संस्कार धारण करने वाली हूँ कभी मेरे से कुछ नहीं भी हो गया
1: तो आप
0: मेरे को याद दिला
1: बहुत अच्छा हाँ। तो इसका मतलब इसमें तो फिर नम्र होना पड़ेगा बहुत क्योंकि अगर सामने वाला याद
0: दिलाए भी हम अच्छे बने ना क्या बिगड़ा उस
1: लेकिन कई बार होता है कि कोई हमें याद दिलाता अरे तुम तो बोल रहे थे तुमको बचत करना है और तुम अभी उड़ा रहे हो तो फिर कई बार लोग उल्टा ही कहते तो इतना किया ना बचत मैंने अभी थोड़ा सा मैं कर लूं तो वहां पर नम्र होना पड़ेगा कि हाँ
0: आपने इनको। जो बोला ना कि शीतल बहन को कि दूसरे लोग कैसे मानते हैं तो प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कोई भी बात आप किसी को भी कहते हो रिगार्ड के साथ प्यार के साथ अगर आप कहते हैं तो सामने वाला मान जाता है उसको शिक्षा देने के हिसाब से नहीं सुना हो आप या उसको ठीक करना है मुझे ये बता करके ये आपके अंदर अहंभाव नहीं होना चाहिए चलो एक अच्छा काम मैं भी कर रही हूँ ये व्यक्ति भी कर लेवे तो उसको भी फायदा हो जाएगा उस सहज भाव से अगर आप किसी को कोई भी बात सुनाते हैं उसका रिस्पेक्ट रखते हुए बहुत बड़े व्यक्ति को आपको बोलना है तो उस ढंग से बोलना पड़ेगा और छोटों को भी थोड़ा इधर करना है तो उनको भी उस ढंग से और वो सारी कलाएं मेडिटेशन से आ जाती है क्योंकि वो कलाएं भी हमारे अंदर है ही लेकिन मेडिटेशन के बाद वो खुल जाती है इमर्ज हो जाती है सारी अच्छाई ना इंसान के अंदर मर्ज है अब
1: दोस्तों आप दीदी का शक्ल नहीं देख सकते मैं देख पा रहा हूँ दीदी जब ये कह रही है ना कि सारी अच्छाई इंसान में है उनकी आंखों से देख के लगता है कि एकदम सच बोल रही है और उनको देखते हुए लगता है कि ये तो सच बात है सच में मैं तो कहूंगा कभी आपको मौका मिले तो या तो आप पुणे जाइए जगदम्बा भवन में दीदी से मिले या फिर यहाँ आकर के रेडियो मधुबन के स्टूडियो में कभी आप उनसे मिले आपको भी वो शक्ति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। शीतल बहन जी आपसे मुझे ये जानना था कि जैसे दीदी ने बताया कि कभी छोटों को भी हमको सही दिशा में लेके जाने के लिए प्यार से चलाना पड़ता है और आपने भी बात की सोशल मीडिया की कई बार लोग कहते हैं मैं तो अच्छी चीजें ही देख रहा हूँ ना तो इसमें क्या गलत है लेकिन वो अच्छी चीजों को देखते देखते देखते देखते कितना समय चला जाता है पता ही नहीं चलता और देखने से वो अच्छी चीज कब मैं कुछ खुद कुछ अच्छा करूँ वो पीछे रह जाता है तो आप कैसे गाइड करते हैं क्योंकि आपने कहा आपके वहां पर कई यूथ भी आते हैं तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करें
2: जैसे कहा जाता है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज तो जहां पर भी हमारा अटेंशन जाता है अगर समझो हम सोशल मीडिया के आदि है क्योंकि आजकल युग ही सोशल मीडिया का चल रहा है और वो कोई बुरा है ऐसा मैं नहीं करूंगी बट एक कहा जाता है कि हर चीज को मर्यादा में यूज करना और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना वो बात अलग होती है लेकिन जैसे विवेकानंद जी को भी पूछा गया था कि जहर क्या है तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना या यूज करना तो वो जहर बन जाती है तो वैसे सोशल मीडिया इज ऑल्सो गुड क्योंकि ये हमें कई चीजों में कनेक्ट करने के लिए हमारा कई आजकल का जो विस्तार होता जा रहा है हमारे कारोबार का उसको हेल्प करता है हमें अच्छी तरह से चलाने में तो इसको यूज करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसके अधीन हो जाना जैसे आजकल हम देखते हैं बाकी जो एडिक्शंस अभी तो एडिक्शन में वो बीड़ी सिगरेट और दारू ये तो सब पीछे रह गया है अब तो वो तो चलो कुछ कुछ लोग परसेंट में एडिक्टेड है बट यहाँ सोशल मीडिया एडिक्शन तो ऑलमोस्ट हर किसी को लग चुका है और ये एडिक्शन है जैसे अगर रात को मुझे रील देखकर सोने की आदत है तो मैं आज नहीं देखती हूँ तो मुझे नींद में तकलीफ होती है आई फील लाइक आई एम मिसिंग समथिंग तो जैसे वो खींचता है क्योंकि समवेयर इन ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एडिक्शन के बाद होते हैं और जो बार बार खींचते हैं आपको वो एडिक्शन की तरफ वैसे ही कुछ हार्मोन्स जब आप सोशल मीडिया के रील्स देखते हैं तो उसी प्रकार के हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं और वो जब आपको नहीं दिया जाता
1: तब आपको उसकी खींच
2: होती है तो यू फील कि आपको लगता है मैं थोड़ा अपने समय क्योंकि क्या होता है जब हम रील्स देखते हैं बहुत ज्यादा कुछ अच्छे जैसे आपने कहा अच्छे ही देख रहे हैं हम कोई गलत नहीं देख रहे लेकिन जब कोई भी चीज टू मच में जाती है हमें याद भी नहीं रहता वो कौन सी अच्छी बात मैंने सीखी थी जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है बस मैं अपने आप मन को तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं अच्छा सुन रहा हूँ अच्छा देख रहा हूँ बट प्रैक्टिकली अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले तो एक दो घंटा अच्छा देख के भी फायदा क्या और होता यूं है कि फिर हम लोग सोते देरी से हैं उठना तो वापस समय पर ही होता है क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है कॉलेज जाना होता है या घर में किसी के टिफिन बनाना होता है तो फिर आपको लगता है मेरे पास टाइम कम है टाइम कम है आजकल देखो हर एक की यही कंप्लेंट है कि हमारे पास टाइम कम है इनफैक्ट हर एक के पास बहुत टाइम है द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये देखना है कि हम अपने टाइम को कहाँ और किस रीति से स्पेंड कर रहे हैं कितना वर्थ वाइल डिस्ट्री से यूज कर रहे हैं तो इसीलिए आप जैसे कह रहे थे कि अच्छा देखना तो हम यूथ को यही बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया को यूज करो इनफैक्ट आजकल जो एआई की बात निकल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास पहले से बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है आप पहले उसको इस्तेमाल करो फिर उसको पॉलिश करने के लिए उसको थोड़ा और ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो लेकिन आजकल मैं देखती जा रही हूँ यूथ को कि एआई को पहले चलो एआई बता देगा ना एआई बता देगा ना तो दे हैव स्टॉप यूजिंग देयर इंटेलेक्ट और अगर हम लंबे समय तक अपनी चीजों को यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जंक लग जाएगी तो ब्रेन भी हमारा तो इसीलिए एआई को भी यूज करो बट लास्ट मोमेंट नॉट एट द फर्स्ट स्टेप पहले आप अपने खुद के इंटेलिजेंस को यूज करो क्या क्या निकलता है देखो अपने आपके अंदर से फिर उसको थोड़ा सा अच्छा ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो तो हम उनको कहते हैं कि आप सब कुछ करो बट सही समझ के साथ यूज करो
1: समझ
2: के साथ करना ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आजकल की भाषा में डिजिटल वेलनेस कहते हैं क्योंकि डिजिटल इज नॉट ओनली यूथ लेकिन आज हम किसी भी एज के लोगों को देखते हैं वो इस तरह से जा रहे हैं तो ये भी एक समय की बचत है ऊर्जा की बचत है क्योंकि आत्मा इटसेल्फ इज अ ऊर्जा सोल इटसेल्फ इज अ ऊर्जा वो कहाँ कितना इस्तेमाल करेगी तो उसका वो ये प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया से हमारी आंतरिक ऊर्जाएं बहुत वेस्ट में खर्च होती है और फिर जो करना चाहते उसके लिए पास समय और एनर्जी हमारे पास नहीं बचती इसीलिए आज लोग फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सोचते मुझे इतना कुछ करना था लेकिन मैंने किया नहीं और कहते कि टाइम नहीं था आप अगर रिव्यू करो अपने सारे दिन को तो कितना टाइम तो हमने यूं ही वेस्ट कर दिया
1: इसका आपने पहले भी उत्तर दिया था कि बचत का संस्कार है तो वो समय भी बचाएगा पहले संकल्प फिर समय और उससे फिर आपके आचरण में परिवर्तन आने लगेगा जी। एक परिवार में चार लोग अगर हैं उनको अगर मान लीजिए शुरू करना है ऊर्जा की बचत चाहे वो जल हो चाहे विद्युत हो या भोजन हो या कोई भी चीज का अगर बचत शुरू करना है तो कुछ अगर आप छोटे मोटे ऐसे टिप्स दें हमारे श्रोता साथियों को कि वो कहाँ से शुरू करें तो वो सुनना चाहेंगे हम
0: मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक परिवार को ये सारी बातें करनी है वो परिवार को पहले समझ लेना पड़ेगा और परिवार में ये अपेक्षा करके नहीं चलता है कि सभी साथ साथ करेंगे हो सकता है चारों ने महत्व तो सुना लेकिन दो करेंगे दो ना भी करेंगे तो जो दो ना करते हैं उनको भी थोड़ा सा कभी प्रेम से कभी शक्ति से ऐसे अलग अलग ढंग से बता करके मोटिवेट करना पड़ेगा मतलब किसी भी कारण से कलह उत्पन्न नहीं होना चाहिए समझो कोई अच्छी बात मैं कर रही हूँ लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ मैं उसको कैसे भी अलग अलग शब्दों से उसके साथ व्यवहार करती हूँ तो वो और भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना इसलिए कोई भी अच्छी बात अच्छे तरीके से ही करवानी पड़ती है
1: अच्छी बात अच्छे तरीके से बोली जाए तो ही होगी बहुत अच्छा
0: तरीका भी अगर हम थोड़ा चेंज कर बात अच्छी है लेकिन हमारे बताने का ढंग ठीक नहीं है उसको हम थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं समझो बोल बोल करके तो वो भी नहीं चलता थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है
1: रिगार्ड देना बहुत जरूरी है जी
0: और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है फिर बताना पड़ता है कभी कभी थोड़ा लिख के भी रखना पड़ता है ताकि बोलने की जरूरत नहीं जैसे शीतल बेन ने कहा तो ऐसे करते
1: मैंने
0: हैं
1: ये देखा
0: तो
1: है आपने जो कहा लिखने की बात कई लोग कहते हैं घर में हम कैसे लिखें फिर मेरे को ख्याल आया कि नहीं आप मसालों के डिब्बे पे तो लिखते ही है ना कहाँ चीनी है कहाँ नमक है तो ऐसे ही अगर आप टैप के ऊपर लिख दो कि पानी को प्यार से यूज करो तो वो आपके घर में कोई मेहमान आए तो वो भी इस चीज को देखेगा कि चलो ये अपने घर में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करके रखते हैं बहुत अच्छा
0: और मैं भले उस घर में रहती हूँ लेकिन मैं अभी समझो मैंने नल का खोल दिया है लेकिन जब मेरा ध्यान वहाँ गया तो थोड़ा तो मेरे ऊपर असर आ ही जाता है ना हाँ कोई बोलेगा तो फिर मैं थोड़ा डोंट केयर भी कर सकती हूँ
1: लेकिन
0: रोज
1: तो
0: रोज क्या ये बोलता ही रहता है लेकिन पढ़ने के बाद क्या होगा इसलिए हमारे घरों में पहले पहले जमाने में बहुत अच्छे अच्छे सुविचार लिखे जाते थे ताकि बच्चे पढ़ते रहे बड़े पढ़ते रहे तो वो जीवन में भी उतारे उसी प्रकार मतलब कोई भी अच्छी चीज सब मिलकर के शुरू करे आज नहीं तो कल मदद मिल ही जाती है और अच्छे में सफलता मिलती ही
1: है। शीतल बहन, आप कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहेंगे?
2: जैसे अगर आप घर की बात करें जहाँ तीन चार लोग रह रहे हैं, तो जैसे बहन जी ने गाइड किया कि किसी एक को शुरुआत करनी होती है, चार एकदम करे ये तो बहुत ही अच्छा है अगर कर पाए, बट एटलीस्ट वन पर्सन वो शुरू कर सकता है वो रियलाइजेशन के साथ कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, हम भारत सरकार को भी मदद करेंगे, साथ साथ हमारा बिल भी कम आएगा तो पैसे की भी बचत होगी, उसी पैसे से आप और कुछ कर सकते हो, तो क्यों हम ये वेस्ट करें। तो ये संस्कार इस रीति से कोई एक भी अगर इस बात को ठीक से समझ ले और फॉलो करना शुरू करे, और जैसे बहन जी ने कहा कि बार बार याद तो नहीं रहता है और बार बार किसी को टोकना अच्छा भी नहीं लगता है, तो जहां नल है तो वहां उसके ऊपर आप लिख दो कि पानी बचाने से फायदे क्या होंगे। हमारे पास ऐसे छोटे छोटे स्लोगन्स हैं, जैसे अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहे, बट ऐसे स्लोगन्स मिलते हैं या तो आप खुद इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, उसको प्रिंट करके वहां पे लगा सकते हो, पानी बचाओ और ऊर्जा बचाओ या जहां भी जो भी है, तो इस रीति से वो लिखा हुआ होगा तो तुरंत वो कार्य करते समय ऊपर दिखाई देता है और वो कुछ ही बार अटेंशन देना पड़ेगा कोई भी
1: तो,
2: उसके बाद तो वो संस्कार बनना ही है,
1: बन
2: ऑटोमेटिक बनना है। कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन आप उसको अटेंशन से यूज टू बार बार अटेंशन देके जब उसको करने लगते हैं तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली योर संस्कार। फिर तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वहां लिखा क्या है आपको पता है। पानी कई बार क्या होता है, नल चालू रहता है, टप टप टप टप पानी गिर रहा होता है, तो कई बार हम तो ध्यान भी नहीं देते, फटाक से कहीं निकल जाते हैं। तो मतलब ये चीजें हम अगर पहले से जाने से पहले एक बार मैं देख लूं नल ठीक से बंद हुआ है, तो एक आदत है, रूम से बाहर निकलते हुए फैन बंद किया है, एसी बंद किया है, लाइट्स बंद है, तो ये चीजों का छोटा छोटा। और जैसे एसी के बारे में मैंने कहा था, घर में आजकल एसी लोग यूज करते हैं और अभी तो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मेजोरिटी लोग तो एसी यूज करते ही है, तो जैसे कहा कि हमेशा टेम्परेचर 24+ रखना, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड इट इज गुड फॉर एनर्जी सेविंग एज वेल। तो दोनों हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक बॉडी अगर आप ले लेते हैं उस समय और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं तो तुरंत कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बॉडी टेम्परेचर के नियर बाय ही टेम्परेचर रखो, बस इतना कि आपको थोड़ा ठंडक में फील हो। तो 24+ रखेंगे तो एनर्जी सेविंग भी बहुत होती है और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है। और जैसे एक स्लो पे आप एक या दो पे फैन रखो तो रूम ठंडक में हो जाएगी। और हाँ, और मैंने देखा है कई घरों में, प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग भी एक बार रूम ठंडी हो जाए तो उसके बाद एसी भी ऑफ कर देते हैं, आपको रात भर एसी चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह तक तो इतने ठंडे हो जाते हैं कि कुछ कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो
1: कई बार लोगों को देखा है वो पंखा भी चलाते और कंबल
2: भी ओढ़ लेते हैं, है ना। तो मतलब इस तरह से अगर हम देखें कि मुझे इतनी ठंडी लगी रही है तो इतना घंटा ऑन रखने की जरूरत है। और आजकल स्लीप मोड भी होते हैं रिमोट में, आप स्लीप मोड पे भी डाल सकते हैं, एक घंटे के बाद दो घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ ऑफर कर रही है, लेकिन हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करें। बस है, हम अफोर्ड कर सकते हैं बिल, इसीलिए हम कितने पे भी रखे वैसे ही छोड़ के जाए नहीं, क्योंकि ये चीजें फिर और कई जगह पे रिफ्लेक्ट होगी, नॉट ओनली एट होम बट और जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। तो जो संस्कार बनेगा वो हर जगह एक जैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए फिर हम इन बातों का ध्यान रखें। फ्रिज के लिए जो मैंने कहा था, आजकल हम देखते हैं, हम इवन हमारे आते पास उनके फ्रिज देखते हैं तो आज पहले छोटा था फिर बड़ा लिया, क्या करें बहन जी, वो भी कम पड़ जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि फ्रिज ऐसी चीज है कि एक बार आपको स्टोर करने की आदत लग गई
1: तो फिर
2: वो
1: नहीं,
2: हाँ, तो बस वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि फ्रेश वेजिटेबल्स, और तीन चार लोग हैं तो आप आते जाते भी मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रेश सब्जियां ला, दो तीन दिन के भले आप स्टोर करो, पर 8-10-15 दिन की सब्जियां स्टोर करने के लिए फिर उतना स्टोरेज लगता है आपको, और हेल्थ वाइज भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
1: हाँ जी।
2: और अगर जहाँ कोई ऐसा घर हो, मतलब जो इंडिपेंडेंट घर हो, तो वो बायोगैस जरूर लगाए, उसका भी बेनिफिट हमने देखा है, बहुत यूजफुल है बायोगैस। तो ऐसे और सोलर के भी आजकल कितने छोटे छोटे डिवाइसेस निकले हैं, है ना, आज सोलर कुकर भी मिलता है। तो अगर आप तीन चार लोगों का बना रहे हो, इतनी कोई बहुत फास्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, तो सोलर में आप एक बार तड़का लगा के, क्योंकि धूप तो निकलने वाली है अभी समर में, तो उसको उससे तंग होने के बजाय क्यों ना उसका फायदा लिया
1: जाए।
2: तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सोलर डिवाइसेस अगर हम अपने घर में भी यूज करते हैं तो काम भी बन जाएगा, एनर्जी भी सेव हो जाएगी, पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो ऐसे मुझे लगता है छोटे छोटे टिप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और राजस्थान में बैठे हमारे सभी श्रोता साथी इसको बहुत बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूर्य देवता बहुत ही खुश रहते हैं। जाते जाते मैं शीतल बहन और सुनंदा दीदी दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके निर्देशन में लगभग 170 के करीब ब्रह्मा कुमारीज के छोटे बड़े ब्रांचेस हैं, अलग-अलग प्रकार से लोग आते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आप महाराष्ट्र ही नहीं सब जगह जाते हैं भारत के। कई जगहों पे जाते हुए भी आपने कोई एक बात ऐसी देखी हो जो पूरे भारत को एक करता है? मतलब आप चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे असम जाएं, चाहे बंगाल जाएं, कहीं पर भी जाएं, बहुत भिन्नता है, लेकिन कोई एक बात आपकी नज़र में ऐसी पड़ी हो जो कि आपको लगता है नहीं ये तो हर जगह सेम है, एक है और ये भारत की विशेषता है, वो कौन सी बात होगी?
0: जहाँ तक मैंने देखा है ये भारत की एक विशेषता ये है कि जब उसके घर में कोई मेहमान आता है वो मेहमान की बहुत खातिरी करता है। एक झोपड़ी में भी अगर कोई मेहमान जाएगा ना तो भी उसकी वहाँ खातिरी होती है, और एक राजा के घर में कोई मेहमान आता है तो उस ढंग से उसकी मेहमान निवाजी होती है। तो मेहमान को भगवान समझकर, अतिथि को एक महान आत्मा समझकर उसकी परवरिश करना, ये मैंने भारत के सारे स्टेट में और 95% अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, मध्यम हो, सब लोगों के अंदर ये विशेषता मैंने देखी है और जो बहुत महान हमारे भारत को बनाती।
1: बहुत सुंदर, शायद इसीलिए भारत जो है इतना पुण्य भूमि माना जाता है, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं भारत में। शीतल बहन जी, आपको क्या लगता है कौन सी एक बात भारत को खास बनाती है?
2: जो बहन जी ने कहा उसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, अतिथि देवो भव तो है ही है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर फैमिलीज के अंदर जो अपनापन है, कोई तो पूछने वाला है, लाइक सपोज बीमार पड़ते हैं तो कोई केयर करने वाली माँ है या पिता है या भाई है, तो मतलब एक दूसरे की जो केयर करने का संस्कार है अपने घर के अंदर, अतिथि को तो डेफिनेटली हम करते ही है, लेकिन एक दूसरे की केयर करना, एक फैमिली टाइम स्पेंड करना, तो ये जो फैमिली की फीलिंग है ना, एक अपनेपन की जो फीलिंग है, वो मैं देखती हूँ कि सब जगह है ही है, किसी भी स्टेट में आप जाओ वो फैमिली की फीलिंग है। और मैंने अधिकतर ये सुना है जो विदेश में जाते हैं वो बाकी तो साधनों से और ये सुविधाओं से तो संपन्न है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनापन, वो जो संबंध में प्यार है, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, एक दूसरे की केयर का संस्कार है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है जो हमारे भारत में नहीं है। और यही, और वहाँ हम देखते हैं विदेश में बहुत जल्दी बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फैमिली से दूर भी चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन भी बनाना शुरू कर देते हैं और दूर हो जाते हैं रिश्तों से और इस सब से। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे 21 साल के हो गए, 25 साल के हो गए,
1: तो भी
2: परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर एक बात है कि ये जो परिवार का फीलिंग है, एक आपका एक एसेट है ये परिवार भी, परिवार का प्यार भी, जो आपको आपकी बाकी डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। तो ये मैंने भारत के हर स्टेट के अंदर जरूर देखा है।
1: और यहाँ हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथी भी, मैं कहता हूँ और मानता भी हूँ, एक परिवार के जैसे हैं। रेडियो केवल उनके लिए एक साधन नहीं सूचना का, लेकिन रेडियो उनके लिए एक परिवार है, और स्पेशली रेडियो मधुबन का जो परिवार है वो बहुत ही खास है। हमें गर्व होता है हमारे इस रेडियो मधुबन परिवार पर, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं। लेकिन अभी हम समय की सीमा को देखते हुए आज के एपिसोड को हम फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप दोनों ही जो पहला उत्तर आपके मन में आए आप उसको बताइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, पहला सवाल, ऊर्जा क्या है?
0: ऊर्जा माने एक शक्ति है, जैसे शक्ति जहाँ होती है वहाँ निर्माण का काम होता है, अगर शक्ति नहीं होती है तो निर्माण नहीं होता है। जैसे अभी एक सोलर की ऊर्जा हमको मिलती है तो हम भोजन बनाते हैं, ये इनर्जी अपनी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा मिलती है तो बल्ब जलता है, एसी लगता है, तो ऊर्जा माना
1: शुरुआत करने का बल।
0: हाँ, एक पावर,
2: उसी में ऐड करूंगी पावर टू ड्राइव समथिंग, एनर्जी इज पावर टू, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ड्राइव करती है, वैसे ह्यूमन को भी ड्राइव करने वाली जो जिसको हम सोल कहते हैं, है ना, तो आध्यात्मिक ऊर्जा वो आत्मा को या इस शरीर मनुष्य के शरीर को चलाने वाली शक्ति है, तो समथिंग विच ड्राइव्स, दैट्स द एनर्जी,
1: चला रही है। सेवा क्या है?
0: एक्चुअली सेवा माना किसी को सुख देना,
1: बहुत
0: जिससे दूसरों की प्रगति हो।
1: सेवा मतलब सुख देना, सामने वाले की प्रगति हो।
2: सेवा माना दुआ लेना का बहुत सुंदर साधन।
1: सेवा मतलब दुआ कमाने का साधन, बहुत बढ़िया। शांति क्या है?
0: शांति एक मन की स्थिति है जिसमें केवल होती है पॉजिटिविटी, केवल होती है प्यूरिटी, केवल होती है पावर, और बहुत ही व्यक्ति को एक रिलैक्स अंदर से लगता है,
1: जो मुझे अभी फील हो रहा है आपके सामने बैठ करके। तो सुना दोस्तों, दीदी ने कहा कि शांति मतलब एक मन की ऐसी स्थिति जहाँ पर स्वच्छता है, सफाई है, सादगी है, स्थिरता है और शक्ति भी है।
2: शांति में और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्लैरिटी। जितना मन शांत होता है चीजों को हम उतना ही क्लियरली समझ पाते हैं और क्लियर और उसी स्पष्टता के साथ रिस्पॉन्ड कर पाते हैं।
1: आखिरी सवाल, भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत क्या है, भारत क्या नहीं है? भारत हमारे लिए सब कुछ है
1: जी।
0: हमारी माँ भी है, हमारे पालनहार भी है, हमारे रहने का स्थान भी है, भगवान के आने का स्थान है। यहाँ से लाइट सारे संसार को मिलेगी, सारे संसार के परिवर्तन का आधार भारत है। भारत माना ही भरपूर।
1: भारत माना ही भरपूर।
2: भारत विश्व के लिए एक लाइट हाउस और एक माइट हाउस है, जहाँ से आध्यात्मिक प्रकाश सारे विश्व की ओर भी फैलता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। भारत में जो आज हम देखते हैं जीवन जीने की कला बहुत सही तरीके से चल रही है, और एक माइट हाउस शक्ति का भी केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिकता के लिए लोग भारत की तरफ ही मुड़ते हैं।
1: ये केवल कहने की बात नहीं, ये हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। कभी भारत की तरफ से जो सेवाओं का विस्तार होता है, कहीं पर भूकंप हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये जो शीतल बहन ने आपने भी बोला था कि ये जो पारिवारिक भावना है, ये केवल भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व को अपना मानना। और ये शास्त्रों में भी जो कहते हैं, शुरू से हम कहते आए हैं, हमारे प्रार्थनाओं में हम ये गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सब का सुख चाहते हैं, केवल हम हमारे देशवासी सुखी हों ऐसा कभी नहीं चाहते। ये दर्शाता है कि भारत जो है विश्व के लिए एक लाइट हाउस है, जहाँ से प्रकाश चारों ओर फैलता है। लेकिन हमारे लिए आज सच में बहुत सौभाग्य की बात थी कि सुनंदा दीदी जी स्वयं और शीतल बहन ने भी समय दिया हमको, हमारे श्रोताओं से मिले आप, उनके साथ आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैं कहूँगा वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें, प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि आज जिस तरीके से दरो दाम बढ़ रहा है जीवन शैली का, उसमें कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने जीवन को सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, लेकिन केवल बचत के नाम से नहीं, लेकिन उससे अपने संस्कारों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आज बहुत अच्छा सीखा आपसे, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों ने भी सीखा होगा। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यशस्वी भारत कार्यक्रम का पार्ट एक भाग बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू शंतनु भाई और पूरा रेडियो मधुबन परिवार जो सुन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी आपके मुख से कुछ सुनना चाहेंगे?
0: सुनने वालों को भी मैं बोलेंगी कि आप केवल सुनना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऊर्जा बचत करना, संकल्पों की बचत करना, बचत का खाता बढ़ाना। आप सभी जो भी रेडियो मधुबन को सुनते हो, आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये रेडियो जो है वो ऐसे स्थान से प्रसारित होता है, जो स्थान आप देखेंगे तो आप ऐसा फील करोगे कि ये भारत का या विश्व का स्वर्गीय स्थान है
1: जी।
0: जहां आप आएंगे तो केवल रेडियो मधुबन ही मुस्कुराता नहीं, लेकिन यहां आप आएंगे तो गेट से लेकर हॉल तक और हॉल से लेकर भंडारे तक सब जगह आपको प्रसन्नता से खिले हुए चेहरे दिखाई देंगे, और उससे आप भी प्रसन्नता सीखेंगे और भी कई सारी आध्यात्मिक बातें भी सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने का टाइम है, ये परिवर्तन होने का टाइम है, ये कुछ बनने का टाइम है। तो आप सभी जरूर इसका लाभ उठाइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच।
2: आप सभी ऐसे ही सुनते रहे और सदा मुस्कुराते रहे, और इस रेडियो मधुबन से बहुत सुंदर सुंदर बातें जो आप तक पहुंचती हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, तो आप जरूर इसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाके इस बहुत सुंदर अनुभव कीजिए, एक जीवन जीने की सुंदर कला सीखिए, और आपका जीवन खुशियों भरा हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको सदा मिलती रहे। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
1: दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही विशेष था, एक नहीं दो दो विदुषियों से हमें जानने को सुनने को मिला। सुनंदा दीदी जी का ये कहना कि जीवन शब्द में ही वन आता है, जीना ऐसा है जैसे वन नंबर के साथ जिए, एकदम अव्वल दर्जे का जीवन हो, लेकिन उसकी शुरुआत मूल्यों से होती है। मूल्य हर इंसान में है, केवल उन्हें बाहर लाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा ये मूल्य जो है, वैल्यू जो है, बचत का, हर वो चीज जिससे जीवन को जिया जा रहा है, हर वो वैल्यू या हर वो साधन जो जीवन को सहारा देती है, उसका बचत करना मेरा आपका हम सबका धर्म है। केवल इस बचत के एक संस्कार से व्यक्ति उदाहरण मूर्त बन जाता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और ऐसे ही भारत के विद्वान विदुषी रत्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन परिवार हमेशा आपके साथ बना हुआ है, और आज जैसे आपने सुना भी कि भारत की विशेषता ये पारिवारिक फीलिंग है जो कि हमारे इस परिवार में साफ झलकता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर मैं शांतनु लेता हूँ आपसे अलविदा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में दोबारा करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान डाइटिशियन सीमा मणिकोट जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले बार भी हमने काफ़ी अच्छा एपिसोड इनके साथ किया था जिसमें हमने नेचुरोपैथी या नेचुरल हीलिंग के बारे में बातें की थी। आज हम लोग ऐसे ही कुछ एक एपिसोड जो हमारे वर्तमान समय को देखते हुए नीड क्या है उसको देखते हुए और फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे लिए काम करता है और हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं एयर एज ए फूड इसके बारे में भी और स्किन कैसे हम जो है तत्वों के साथ जुड़ा रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। और फूड हमारा जो है कैसा होना चाहिए इस पर काफ़ी बातें होती हैं। फूड हैज़ पर नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल के रूप में हम लोग देखेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा खाना जो पक जाता है और जो खाना हम बनाते हैं उन्हीं चीज़ों को खाना है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाँचों तत्व भी आपके, क्योंकि शरीर आपका पाँच तत्वों से बना हुआ है तो पांच तत्व भी हमारे लिए फूड का काम कैसे करता है समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से डाइटिशियन सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी।
1: ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच।
0: और बताइए आज फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे फूड प्रिंसिपल बनते हैं, इस विषय पे क्यों बात करना चाहते हैं, इसका मेन मकसद क्या है आपका वो बताइए जी।
1: हाँ,
0: धर्म नारायण दुबे जी भी जुड़ गए हैं। ओम शांति रमेश भाई जी, डॉक्टर सीमा जी करके मैसेज किया जी, स्वागत है आपका जी।
1: हाँ, थैंक यू भाई जी। ये हमें बहुत सबको पता है, कॉमन नॉलेज है कि हमारा ये शरीर पांच तत्व से बना है। तो आप बता सकेंगे पांच तत्व क्या क्या है जिससे ये शरीर बना है?
0: जी जी जी, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, ये हमारे पांचों एलिमेंट्स है।
1: करेक्ट, ये पांचों एलिमेंट्स हैं। एंड हम स्पेशली हम जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े हैं हमको पता है कि जितना ज्यादा सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, बाबा सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा पावरफुल बाबा। ये पांच तत्व एंड हमारा, हम एज आत्मा, ये शरीर में आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, आत्मा अगर जो सोचेगा वो शरीर कर लेगा। आत्मा नेगेटिव सोचेगा तो शरीर नेगेटिव करेगा, आत्मा पॉजिटिव सोचेगा शरीर पॉजिटिव करेगा। करेक्ट, तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का ऑर्डर जानना हमें बहुत जरूरी है। हम सबको, पूरा वर्ल्ड को सबको पता है व्हाट आर द फाइव एलिमेंट्स। आकाश, आकाश जैसा आपने बोला, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये फाइव। इंग्लिश में बोलेंगे तो ईथर, एयर, सन, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट।
0: अर्थ एलिमेंट,
1: तो ये जो मैंने पांच चीजें बोला ये एक्चुअली दोनों बार आपने नोटिस किया होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बोला। सबसे पहले मैंने बोला ईथर, आकाश,
0: आकाश,
1: फिर वायु, फिर वायु, फिर आया अग्नि, फिर आया जल, फिर आया पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। सो क्या है अर्थ एलिमेंट? सबसे ज्यादा ग्रॉस, सबसे ज्यादा स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल अर्थ एलिमेंट, सबसे ज्यादा सूक्ष्म आकाश
0: जी।
1: आकाश, आकाश से जल बनता है, आकाश एंड जल मिलके अग्नि बनता है, ये तीनों मिलके जल बनता है, ये चारों मिलके पृथ्वी बनता है। पृथ्वी को अगर तोड़ेंगे, ये डायरेक्टली तोड़ना समटाइम्स थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, बट अगर हम पानी, पानी को ब्रेक करेंगे, पानी से ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनती है, एंड ऑक्सीजन भी पानी H2O। करेक्ट, पानी का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? H2O है, दो टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसको ब्रेक करेंगे दोनों गैस है, दोनों वायु है। पानी, पानी को तोड़ेंगे तो वायु बनती है, पानी से वायु बनती है, एयर बनता है, एंड हाइड्रोजन बाय इटसेल्फ, ऑक्सीजन की वजह से फायर होती है। तो व्हेन यही एक प्रमाण है दैट फ्रॉम आकाश एयर बनता है, आकाश एंड एयर टुगेदर फायर बनता है, फायर ये तीनों मिला के वॉटर, ये चारों मिला के पृथ्वी, एंड पृथ्वी इज द स्थूल ग्रॉस एंड आकाश इज द मोस्ट सूक्ष्म. तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का हम सब ने ये भी सुना है, जैसा ये पिंड वैसा ब्रह्मांड, हम सबको ये पता है जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड. तो पिंड को हमने सीखा नहीं कैसा झांकना है अंदर, पिंड में क्या चल रहा है, हमें किसी ने एडुकेट नहीं किया. बट ब्रह्मांड तो दिखता,

0: दैट इज खुद का सन भी होता है। कोई कोई प्लैनेट्स सिर्फ गैस का ही बना है, कोई कोई प्लैनेट में रॉक्स है। वी ऑल वो बाहर का तो दुनिया हमने देखा है, इसको ज्यादा हमने सीखा नहीं। ओके, स्कूल कॉलेज की बात बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं बोल रही हूँ, है ना। बट वो तो हमने सीखा है, उससे हमें अंदाजा मिल जाना चाहिए कि पिंड कैसा बना है, ब्रह्मांड कैसा बना है। एंड उसी
1: जी
0: से हमें वो बैलेंस समझ में आ जाना चाहिए। हम जो दिन भर ये खाओ खाओ मीन्स हम सिर्फ स्थूल खाने की बात करते हैं, हम सिर्फ
1: जी
0: स्थूल खाने की बात करते हैं। केला खाओ, आपल खाओ, काकड़ी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सिर्फ हम ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, हवा, हम क्या कभी बोलते हैं चलो अभी हवा खाने जाना है, चलो टाइम हो गया अभी धूप खाने जाना है, चलो अभी टाइम हो गया हमें अभी आकाश खाना है। कभी आकाश खाने को खाना बोलते हैं, अरे यार आज सुबह से मैं भूखा हूं। जब भी फास्टिंग की बात आती है हम बोलते हैं सुबह से हम भूखे हैं, करेक्ट। तो हमारा इस तरह का बिलीफ सिस्टम बैठ बैठ गया है कि सिर्फ स्थूल जो खाते हैं उसको, एंड ये पांचों तत्व में से लिक्विड एंड दैट इज वाटर एंड अर्थ एलिमेंट को मोर और लेस हम खाने खाने पीने की कैटेगरी में मानते हैं। बाकी तीन जो सूक्ष्म है, एंड जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, जो जितना ज्यादा सूक्ष्म हो उतना ज्यादा पावरफुल। बाबा इससे ज्यादा, इसीलिए बाबा सबसे ज्यादा पावरफुल, इसीलिए एटम बॉम्ब सबसे ज्यादा पावरफुल, बिकॉज वो एटम से बना है, करेक्ट। तो हम ये सबसे जो कम लीस्ट पावरफुल है इसी के बीच में हम फंसे फंसे रह गए हैं, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, लाइक वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बीच में। ना एयर एलिमेंट की बात करते हैं, ना सन एलिमेंट की बात करते हैं, ना ईथर या आकाश या फास्टिंग की ज्यादा बात हो बातें आजकल फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा में आ रहा है, बट उसका पोटेंशियल, उसका पावर कितना है ये अभी तक हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, एंड कितना क्वांटिटी
1: जी
0: में
1: जी
0: लेना चाहिए उसमें भी कंफ्यूजन है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, द क्रिएशन हैपेंड दिस वे। फर्स्ट इट वॉज स्पेस, इट वॉज आकाश, आकाश से एयर बना, आकाश एंड एयर मिलके अग्नि बना, आकाश एयर एंड अग्नि मिलके पानी बना, एंड ये चारों मिलके पृथ्वी बना। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये अगर बैलेंस करना हमने सीख लिया तो नो क्वेश्चन, बीमारी का तो सवाल ही नहीं है इस सृष्टि में। कोई यूनिवर्स, कैन द यूनिवर्स एवर फॉल सिक? यूनिवर्स में कभी कुछ बीमारी हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूनिवर्स में कोई टैम्परिंग, कोई कुछ टैम्परिंग नहीं करता है। टैम्परिंग इन द सेंस, उसमें कोई हम मनुष्य कोई जाके छेड़खानी नहीं करते। जैसा अनादि काल से आता जा, अनादि काल से या आदि काल से जैसा सृष्टि का लॉ है, सृष्टि का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है।
1: जी जी जी
0: सिर्फ हम या ये एग्जिस्टेंस में ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ हम ही ने दुनिया भर की गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। इन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट स्पीशीज, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: इवन जंगलों
1: सीमा
0: में
1: जी,
0: घना
1: एक और
0: जंगल।
1: बात। जी, यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं और थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। आई डिफर विथ यू ऑन दिस, इट्स द ब्रेन विच कंट्रोल्स अवर माइंड एंड फिजिकल मूवमेंट्स। एक ये विचार आया है, सुविता जी ने लिख के भेजा है। सुविता जी स्वागत है आपका। और मानसी जी ने याद किया है पूना से। ओम शांति मानसी जी, स्वागत है आपका। इट्स द ह्यूमन हु क्रिएट्स द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द यूनिवर्स अफेक्ट अस, दिस इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। और यू आर ए गुड स्टोरी सेलर की भी लिखा है। जी, बताइए।
0: ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, इवन इफ वी डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेट अस टेक एनी थिंग दैट इज देयर नेचुरली इन नेचर, वॉट एवर वी आर, यू नो, एनी एनी food, any vegetable you take, any fruit you take, if you just take it in your hand, you'll be able to see that.

0: the percentage of water in this in that fruit or in that vegetable. Okay, any fruit you take, any vegetable you take without us tampering it, without us meddling with it, it will have water content anything between 70 to 95%. Do you agree with this? Any fruit, any vegetable. Whoever was disputing with what I said. Can I? और रमेश भाई आप आंसर करिए, कोई भी फ्रूट कोई भी
1: जी
0: वेजिटेबल अगर लेंगे तो कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल नेचर में जो मिलता है उसमें 70% से लेके 95% 98% तक पानी होता है। वाटरमेलन अगर देख लें उसमें 95-98% तक पानी है, बाकी पेस्ट बना देंगे तो इतना सा, तो इतना बड़ा वाटरमेलन का इतना सा कुछ निकलेगा, तो मैक्सिमम पानी ही था।
1: जी जी
0: करेक्ट। इफ वी लुक एट मदर अर्थ, अगर
1: आपने मैसेज किया, सीड्स आर टेम्पर्ड एंड हाइब्रिड फ्रूट्स आर क्रिएटेड।
0: या आई टोल्ड यू, अनलेस एंड अंटिल वी आर टैम्परिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल। हम लोग जब टैम्पर करने लगते हैं ना, तब दुनिया भर का गड़बड़ी करते हैं। जब मदर नेचर के थ्रू आता है, इट्स ऑल एब्सोल्युटली यू नो इन इन दिस परसेंटेज। अगर हम मदर नेचर, अगर हम अर्थ को भी देख लें, अर्थ में भी कितना परसेंटेज पानी है, कितना परसेंटेज मिट्टी है, आप बताइए। अर्थ में भी 2/3 इज वाटर, 1/3 इज लैंड। करेक्ट। दिस इटसेल्फ शोज इन द स्थूल, इन द स्थूल एस्पेक्ट हाउ मच वाज यू नो द लास्ट टू एलिमेंट्स वाटर एंड अर्थ। सो एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस, इफ यू सी पिक अप एनी एनिमल, एनी एवरी स्पीशीज, इवन आवर बॉडी इज 70% अप्रोक्सीमेटली वाटर लिक्विड एंड 30% रियल सॉलिड मटीरियल। वी आर ऑल मेड दिस वे। सो आर वी कंज्यूमिंग इन दैट मैनर? हाउ मच वी आर ब्रीदिंग? आवर ब्रेथ डज नॉट स्टॉप इवन अ सेकेंड। आई इफ आई ट्राई टू स्टॉप माई ब्रेथ, आई कैन स्टॉप ईटिंग फॉर अ फ्यू डेज, आई विल स्टिल लिव। आई कैन स्टॉप ड्रिंकिंग वॉटर फॉर अ फ्यू डेज, आई कैन स्टिल लिव। इफ आई स्टॉप ब्रीदिंग आई विल नॉट इवन लिव फॉर मोर देन 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, तो नॉट इवन 3 मिनट्स। इफ वी आर एक्सट्रीमली प्राणायामा करते करते इतना एक्सपर्ट बन गए तो शायद नाक बंद करके 5 मिनट, 3 मिनट क्या, 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं बचेंगे अगर नाक बंद कर दिया तो हमारा। तो दिस दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर एग्जिस्टेंस। तो हम कैसा, हम क्या वो परसेंटेज में हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हुआ आज दिस क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आंसर दैट।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वी नीड टू अंडरस्टैंड आर वी, एंड दीज आर द टू स्थूल एलिमेंट्स विच वी आर इन, टू स्थूल एंड वन एयर एलिमेंट बिकॉज वी आर ब्रीदिंग। ये तीनों से हमें पता चल जाता है, बट सन, सन के बिना हम कैसा जी, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव। विद इन 15 मिनट्स द फुल वर्ल्ड विल फिनिश, विल डाई इफ सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड फ्रॉम आवर एग्जिस्टेंस। सो एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम द बुक प्रैक्टिकल नेचर क्योर, रिटन बाई आचार्य लक्ष्मण शर्मा। आचार्य लक्ष्मण शर्मा इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेचर क्योर इन इंडिया, एंड ऑल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज, इट्स ऑल देयर टेकन। ही इज आचार्य लक्ष्मण शर्मा, दिखाई दे रहा है? ही इज आचार्य
1: यस
0: लक्ष्मण
1: यस हाँ
0: शर्मा,
1: जी हाँ
0: एंड ऑल वॉट एवर ही इज टेकन, इट्स ऑल पिक्ड अप फ्रॉम आवर शास्त्रास एंड वेदास। Everything completely from our shastras and Vedas, he picked up all this and he's written this book. So it's not randomly. I'm not just telling stories. I'm telling facts. It's good to be a storyteller. Though I keep repeating to myself, it's time we stop telling stories to ourselves. Because
1: जी
0: when we tell good stories, we will also have negative stories. So let us not have any stories. देर इज
1: जी
0: लाइफ, जो जहां जिंदगी है जीना है, जो इटर्नल लॉज के अनुसार चल रहा है वो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नो कोई कहानी नहीं यहाँ पे, नो स्टोरीज।
1: जी चलिए सुधा जी आ गए हैं। सुधा जी एक सुंदर गीत आप सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। जी
0: नमस्ते सुधा जी, इट्स सो अमेजिंग टू सी
2: यू। थैंक यू, सेम फ्रॉम माय साइड टू।
0: थैंक यू,
2: ओम शांति। ईश्वर से हमने

0: ओम शांति सुधरती। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। अनु सहनी जी याद कर रहे हैं यहाँ पर, अनुराधा गर्ग जी भी याद कर रहे हैं, वहाँ करके मैसेज किया है। अनुराधा जी स्वागत है आप।
1: थैंक यू अनुराधा जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और सुविता जी जो है वैज्ञानिक तरीके से अपने सवालों को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक जो सवाल यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग पांचों एलिमेंट को किस परिमाण में लेते लाइफ में अडॉप्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी।
1: हाँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि हम एग्जिस्टेंस को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि एग्जिस्टेंस में कौन सा एलिमेंट कितना कितना परसेंटेज में है। एंड वी आर एग्जिस्टेंस, हम ही सृष्टि हैं, हम ही नेचर हैं। तो बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई है चूज करने का कि हमें क्या खाना चाहिए। एक टाइगर को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन होगा कि मांस खाएगा कि फल खाएगा। एक गाय को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन फूड खाएगा, घास फल डायरेक्टली खाएगा। कि हमें भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि हम चूज कर सकते हैं। क्योंकि हम चूज कर सकते हैं, हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। अगर हम सृष्टि के लॉ अनुसार चले, हमारे आते, हमारी दांत, बहुत कुछ हमारे हमारे इस शरीर के बारे में बोलता है। एंड नेचर बाय इट्सेल्फ, हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, प्लांट्स है, वो भी हमें एक कहानी सुनाता है कि हमारे लिए क्या एक्चुअली बना है। वी आर थिन लिटिल टाइनी क्रिएचर्स। तो हमारे हमारे लिए जो खाना है वो 10 feet टॉल ट्री टॉप में नहीं, 10 feet, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एक जिराफ जितना हाइट का पहुंच सकता है, वहां पे हमारे लिए फूड नहीं होगा। हमारे लिए फूड तभी होगा जो फूड वही होगा जो पकने के बाद नीचे आए ऑटोमेटिकली। आम पकने से पहले ग्रीन ग्रीन ग्रीन आम किधर है, पत्ते किधर है, दिखाई नहीं देता है। बट वो जब पक जाता है, लाल होके बिल्कुल झुकने लगता है, जैसे कि हमें बोल रहा हो मुझे प्लक करो, मुझे तोड़ो, ब्रांच से तोड़ के खाओ, है ना। तो हमारे लिए सृष्टि ने सर्टेन फूड बना के रखा हुआ है। तो वो फूड हमें चूज करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इवन दी अदर एलिमेंट्स, वो बाकी आपका क्वेश्चन है, हम इसका चॉइस कैसा करें, कैसे इनकॉर्पोरेट करें खाना, वही पूछा ना आपने भाई जी। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड।
0: यस यस, हां जी, सीमा जी मैं हूं यहां पर। हां, और यहां पर उदयपुर से माया सालवी जी ने याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। सीमा बहन याद कर रही हैं आपके लिए अनुराधा जी, एक गीत आप भी गाइए करके शायद। अच्छा, टू मी ऑन हाउ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिड नॉट यू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कम बैक एंड टेल अस व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, हाँ शरीरी का अनुभव। Have you seen Lord? It is our belief. Yes, in different organization we have priest or religious leaders.
1: Different topic, some other day, please. आज नहीं, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। फाइव फोल्ड फूड के बारे में नहीं है, फाइव एलिमेंट्स के बारे में नहीं है। So obviously I cannot answer this. So it's about how we incorporate this food. So first of all, we have to observe हमारी नेचर। हम तो इन ये सृष्टि में एयर कितना दिखता है, अच्छा आउटर स्पेस हमें नहीं दिखाई देता है, वो छोड़े, एयर कितना दिखता है, वो एयर, पानी कितना दिख रहा है, स्थूल लैंड कितना दिख रहा है, वो परसेंटेज में हमें हमारा शरीर में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है खाना। तो सबसे ज्यादा स्पेस है तो हम लोग जरूरत से बहुत ज्यादा, दिन में 3-3 बार यू नो फुल मील ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट भी फुल मील होता है, लंच भी फुल मील होता है, डिनर भी फुल मील होता है विद 2, 3, 4, 5 वैरायटीज ऑफ फूड. इसके अलावा बीच में स्नैक्स का टाइम होता है, बीच में चाय का टाइम होता है, मतलब 4-5 बार दिन में तो सिर्फ ठूसते रहते हैं. करेक्ट. सो दिस यू नो बहुत ज्यादा हम खाते पीते हैं. इवन एग्जिस्टेंस को देख लें, हम धूप की तरफ आजकल एसी लगा के बैठ जाते हैं. धूप धूप धूप सेकते ही नहीं, धूप शरीर में जा रहा है, मैं काली हो जाऊंगी, अले ये हो जाएगा. क्या क्या क्या क्या हम धूप को खाने के मतलब धूप एक्सपोजर करना जरूरी है. हमारा ब्रेथ, हमारा ब्रेथ को यू नो कॉन्शियसली बीच बीच में कभी कभी करेक्ट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, इसीलिए प्राणायामा बोला गया है, प्राणायामा करना जरूरी है. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आज फास्टिंग के लिए तो व्हाट इज द जापानीज साइंटिस्ट, आई थिंक सो इट वाज इमोटो, द साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो हु वन ट्वाइस ही वन नोबेल प्राइज जस्ट बिकॉज ही स्पोक अबाउट फास्टिंग. जितना फास्टिंग के थ्रू कैंसर के टाइप ऑफ डिजीजेस हम दूर कर सकते हैं. फास्टिंग इज वॉट, फास्टिंग इज ईटिंग ईथर, आकाश तत्व खा रहे हैं जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, सिर्फ पानी. ऑफकोर्स हम लोग नेचुरल हेल्थ साइंस मतलब जो आचार्य लक्ष्मणा शर्मा जी ने सिखाया है उनके नॉलेज अनुसार वो एयर फास्टिंग मतलब बिना पानी का फास्टिंग वो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा उसका एनकरेजमेंट नहीं करते हैं, कम से कम पानी पीना है वो बोलते हैं. तो उस अनुसार हम यू नो तो इमोटो ने भी ये प्रूफ.
0: यहाँ पर एक और विचार सवाल है कि इन 5 तत्वों को खाए कैसे, इन अदर वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कैसे करें.
1: हाँ तो वी नो दैट हम हमारी बॉडी ऑटोमेटेड मोड में है, तो श्वास तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बट कॉन्शियसली तो मतलब एयर तत्व, पानी तत्व और पृथ्वी तत्व, ये तीनों हमारे शरीर में चल रहा है. सन, बहुत बार हम खुद को सन में एक्सपोज नहीं करते हैं, एंड ईथर का तो बात ही नहीं है, ईथर आकाश का तो हम इनकॉर्पोरेट करते ही नहीं है. ओके तो हमें अभी लकीली अवेयरनेस इंटरमिटेंट फास्टिंग होने लगा है, तो कम से कम नॉर्मल लाइफ में कम से कम 12 घंटा कुछ ना खाएं, कम से कम 12 घंटा. 7 बजे शाम को 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और अगले दिन चाहे 7 बजे आप कुछ खाए, माइल्ड समथिंग से, लिक्विड से आप स्टार्ट कर सकते हो. 7 बजे से लेके रात के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक सिर्फ पानी पिए, ये कम से कम ये कर सकते हैं. एंड डिजीज कंडीशन के अनुसार हम इसको हम हमारी क्या फास्टिंग का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, बट ओनली अंडर प्रॉपर गाइडेंस, खुद से ना करें, बिकॉज शरीर रिवोल्ट करता है, डिटॉक्स सिम्टम्स दिखाता है, उसके लिए उसको हम डिटॉक्स क्राइसिस लाइक सिचुएशंस दिखाता है, तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, एंड देन यू विल बी इन अ वेरी बैड स्टेट. तो अकेला खुद से ना करें, बट अकेला जो कर सकते हैं 12 घंटा कम से कम, एवरी पर्सन कैन डू इट. फिर प्राणायामा अपनी जिंदगी में जरूर करें, वो भी कभी करना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग वातावरण अच्छा होता है, ओपन स्पेस में प्राणायामा करें, आसपास में गार्डन है तो गार्डन में जाके आप प्राणायामा करें, एंड ओनली माइल्ड प्राणायामा. मैं प्राणायामा मीन्स मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक्स. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपाल भाती एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर मोर फॉर वेरियस अदर कंडीशंस. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक प्राणायामा. वो प्राणायामा करना शुरू करें, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. आचार्य जी तो ये भी बोलते हैं, ब्रीदिंग इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये करना जरूरी है. सिंगल सिंगल एक एक एक एक नॉस्ट्रल में, देयर इज अ प्रोसीजर टू दैट ऑल्सो, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज बेयर बेसिक्स जो है, ब्रीद इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये हमें करना है 15-20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग में. सो दैट विल एटलीस्ट हेल्प अस यू नो टेक इन टेक इन एयर एज फूड, जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, जब हम जॉगिंग कर रहे हैं, कॉन्शियसली नाक से ब्रीथ करना है. इट इज सो कॉमन. मैं रोज, हमारे घर के नजदीक ही है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो मैं रोज जाती हूँ. मुझे हैरानी होती है कितने लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस बोल के वो जाते हैं, अदरवाइज वो ये वहां पे नहीं जाते. कॉन्शियस लोग हैं वहां जाते हैं, बट दिखता है क्लियरली सब लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से नहीं ले रहे हैं. बट हमें कॉन्शियसली, हमारा नाक है श्वास लेने का अपैरेटस, मुंह नहीं है. नाक के थ्रू जब जाता है इंटरनली बहुत कुछ अलग अलग अलग अलग चीजें भगवान के भगवान ने बना के भेजा है कि वो एयर को फिल्टर करे एंड वेरियस अदर काम जो होना चाहिए नाक से. एंड मुंह से जब श्वास लेते हैं तब यहाँ गला सूखता है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. नाक से श्वास लेने से हम जल्दी टायर्ड नहीं होंगे एंड सूखता भी नहीं है, बार बार प्यास लगने लगता है. एंड एक्सरसाइज करते वक्त बीच बीच में पानी पीना इज नॉट अ गुड आइडिया. बॉडी एक तरफ हीट, आप चाहे दौड़ने से पहले पानी पी लो, पानी पी के दौड़ना खत्म करने के बाद 5 मिनट बाद पानी पी लो, ये इनमें ये कॉन्ट्रास्ट इज नॉट गुड फॉर अवर इंटरनल सिस्टम. तो मुंह से श्वास नहीं लेंगे तो प्यास भी नहीं लगेगा. इवन हम जब अर्ली मॉर्निंग जब योगा करते हैं वो भी कॉन्शियसली, हमारी हर एक योगा पोस्चर्स इतना ब्रिलियंटली बनाया है हमारे पूर्वजों ने कि हर पोस्चर में ऑटोमेटिकली फर्स्ट ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट देन ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट, ये ऑटोमेटिकली उसमें इनकॉर्पोरेटेड है. हाथ ऐसा एक्सटेंड करते वक्त ऑटोमेटिकली हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ऐसा का ऑटोमेटिकली ब्रीथ इन कर रहे हैं. जब हम अंदर जा रहे हैं तब ब्रीथ आउट, जब हम फोल्ड हो रहे हैं तब ब्रीथ आउट. हर एक हमारा योगा पोस्चर इतना ब्रिलियंटली हमारे पूर्वजों ने बनाया है. तो दीज थिंग्स कॉन्शियसली करना है इन द ओपन एयर ताकि हम प्योर एयर ब्रीथ कर पाए. एंड कॉन्शियसली सनबेदिंग भी करना चाहिए, धूप में अपने आप को धूप सिखाना चाहिए. इफ पॉसिबल विदाउट, अगर आपको प्राइवेसी है, विदाउट एनीथिंग ऑन योर बॉडी एट ऑल, कम से कम 10-15 मिनट धूप का लाइट जरूरी है. गर्मी अच्छा नहीं है, अगर गर्म फील हो रहा है आप पोस्चर चेंज कर दीजिए. या अगर जलन जलन हो रही है, गर्मी तो होगा मतलब पसीना तो निकलेगा, जलन नहीं होना चाहिए. जलन अगर हो रहा है तो वो हम एक्सट्रीम करें, कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है. तो इफ नॉट पॉसिबल, इफ प्राइवेसी नहीं है, वेयर थिन व्हाइट क्लोथ, व्हाइट कॉटन मटेरियल इज द बेस्ट. एंड हमारा स्किन के थ्रू भी हम ब्रीद करते हैं, इसीलिए टाइट फिटिंग क्लोथ ना पहने, लूज क्लोथ्स पहने, नेचुरल फाइबर पहने, कॉटन सिल्क ये सब नेचुरल फाइबर्स, पॉलिस्टर पॉलीफाइबर ये सब अच्छा नहीं है.
0: पेट्रोलियम वाला
1: हाँ वो सब चीज, पेट्रोलियम वाला मटेरियल अच्छा नहीं है. नेचुरल फाइबर यूज करें, जूट है, कॉटन ऑफ कोर्स, देयर इज हेम्प का भी मटेरियल का अच्छा बनता है कपड़े. तो दीज आर वेरी गुड मटेरियल फॉर आवर इन कोल्ड कंट्री.
0: यहाँ पर कुछ और विचार आए हैं, हमारे सभी ने याद किया है. मानसी जी लिखती है, यस मैम माय ट्रीटमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन फास्टिंग करके, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हैं, पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट करा रही हैं. और नीलम ठाकुर जी लिख रहे हैं, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का. शांताराम जी लिखते हैं, व्हाट्स गुड एडवांटेज ऑफ फास्टिंग इन वन मंथ, हाउ मेनी डेज फास्टिंग नेसेसरी, एक महीने में कितना फास्टिंग करना चाहिए और उससे क्या एडवांटेज मिलता है. और फिर यहाँ पर नाम नहीं आया है, YouTube चैनल का नाम है, नाइस करके मैं लिखा है, और सुंदर आयोजन और चर्चा का विषय अच्छा है करके लिखा है. और नीलम जी लिखती है, वेरी नाइस मैम, बट जिनकी योगा क्लासेस इवनिंग में चलते हैं वो कैसे करें इसको, ऐसा उन्होंने लिखा है. और विच आजार यानी विच डिजीज फास्टिंग करने से जल्दी कवर क्योर होता है, ये उनका सह कहना है. और फिर उन्होंने ये भी लिखा, इट डिपेंड्स ऑन इफ यू आर क्लॉस्ट्रोबिक देन फिटिंग क्लोथ्स नॉट गुड, ऐसा उन्होंने लिखा है. जी सुविता जी, नाइस टॉक, अनुराधा जी याद कर रहे हैं. और यहाँ पर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिविंग आर्ट इंस्टीट्यूट योगा एंड यू सेइंग दैट योगा, तो योग में भी काफी चीजें हैं, तो वो चीजों को उन्होंने बीज बताया है और सच सो मच लेक्चरिंग वी डू नॉट नीड टू विजिट एनी क्लिनिक वी शुड कॉन्टेक्ट यू हैव सम जी चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा एक्सरसाइज का फास्टिंग फास्टिंग वाली पहली बात बता दीजिए कि एक महीने में कितना फास्टिंग करने से और फास्टिंग से कौन सी बीमारियां जल्दी क्योर होती है उसके बारे में जी।
1: हाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने अपने शास्त्रों में से लिख लेकर बताया है नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल्स के अनुसार डिजीज ऑल डिजीजेस आर वन बिकॉज ऑल डिजीजेस आर वन क्योर फॉर ऑल डिजीजेस आर वन ओके व्हाई ऑल डिजीजेस आर वन चाहे हम उसको अस्थमा बुलाएं चाहे ग्लाकोमा बुलाएं चाहे लिवर सिरोसिस बुलाएं ओके गंदगी शरीर में गंदगी गया है जहां जहां गंदगी जमा हुआ है डॉक्टर्स ने उस अनुसार एक नाम दे दिया है ग्लाकोमा बोल दिया है जब गंदगी आंखों के पीछे जमा हो गया लिवर सिरोसिस बोल दिया जब गंदगी लिवर में जमा हो गया अस्थमा बोल दिया जब गंदगी लंग्स में जमा हो गया अच्छा गंदगी साफ अगर घर में गंदगी जमा हुआ है हम क्या करेंगे साफ सफाई करेंगे हाँ कबड़ के नीचे गंदगी जमा है तो उसको कबड़ टाइसिस बोल देंगे खाट के नीचे जमा है खाटाइसिस बोल देंगे एसी डक्ट के ऊपर गंदगी जमा है उसको एसीआइटिस बोल देंगे एंड हर एक अलग अलग इलाज थोड़ी हो सकते गंदगी जमा हुआ है ना साफ करना है तो साफ कैसे करते हैं वहां से चीजों को हटा के मतलब अगर अगर खाट के नीचे सामान पड़ा है एंड सामान के साथ गंदगी जमा है मुझे क्या करना है खाट के नीचे का सामान हटाना है खाट के नीचे का सामान हटाना है तब अंदर का गंदगी साफ होगा ना खाट के नीचे हम सूटकेस वगैरह कभी कभी रखते हैं कबड़ के नीचे कबड़ के ऊपर सब रखते हैं ना सामान तो वो क्या हटाना है तो हमें क्या करना है फास्टिंग करना है नया चीज मत डालो तो फास्टिंग से क्या क्या बीमारी ठीक होती है फास्टिंग से हर बीमारी ठीक होती है हर बीमारी ठीक होती है नाउ फास्टिंग किस तरह का फास्टिंग आपको करना है ये आपकी बीमारी का बीमारी कितना ग्रेव है कितना ज्यादा मतलब देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ डिजीजेस एक है विच इज कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस कुछ दिनों के लिए आते हैं 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए आता है दैट इज समथिंग लाइक फीवर लूज मोशन वॉमिटिंग छोटे टाइम के लिए आता है उसके बाद होता है अक्यूट डिजीजेस जैसे डायबिटीज हो गया थायराइड हो गया बीपी हो गया ये सब अक्यूट डिजीज जब हम लोग ये अक्यूट डिजीज को हम दवाई खा के दबाते हैं तब अक्यूट डिजीजेस क्यों होता है जो छोटी मोटी गंदगी हुआ है उसको शरीर से निकालने के लिए अक्यूट डिजीजेस होता है वो अगर हमने दवाई से बंद कर दिया फिर फिर वो जमा होते होते क्रॉनिक डिजीजेस बन जाता है तो वो क्रॉनिक डिजीजेस को भी हमने दवाई खा खा के अगर बंद किया तब बन जाता है डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस लाइक कैंसर लाइक किडनी फेलियर ऑल दीज थिंग्स इट गोज टू द क्रॉनिक स्टेज तो हमें ये दोनों स्टेज में नहीं आना है तो जब अक्यूट डिजीजेस होता है उस टाइम पे हमें विदाउट एनी मेडिसिन देर आर नेचुरल वेज वन ऑफ द इजिएस्ट एंड द बेस्ट वे इज गो फॉर फास्टिंग अगेन वेरियस टाइप ऑफ फास्टिंग यू कैन डू फ्रूट फास्टिंग यू कैन डू दो वी डोंट कॉल फ्रूट फास्टिंग एज फास्टिंग दे आर कॉल्ड फ्रूट डाइट दे आर कॉल्ड रॉ वेजिटेबल्स डाइट दे आर कॉल्ड कोकोनट वाटर डाइट दे आर कॉल्ड सिट्रस फ्रूट जूस डाइट सो देर आर दीज वेरियस काइंड ऑफ डाइट विद दिस 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग मीन्स ओनली वॉटर नथिंग एल्स सो एंड ये स्टेज में अगर ठीक हो गया तो ये दोनों स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं बट अगर आपने ये स्टेज में आपने दवाई खा के उसको सप्रेस कर दिया तो सेकेंड स्टेज तक आएगा सेकेंड स्टेज में भी हम यही सब प्रिंसिपल सेटअप अडॉप्ट करके या ये करके हम जड़ से गंदगी को निकाल सकते हैं तो आवर शरीर आवर बॉडी इज डिजाइंड टू लिव इन अ हेल्दी मैनर हमारा डिजाइन में हेल्थ ही गुड हेल्थ ही लिखा है हमने इंटरवेंशन करके गड़बड़ कर दिया हम अगर नेचुरल लॉस के हिसाब से चलते तो हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है तो ये हो गया उधर भी फास्टिंग, एंड वहां से ये स्टेज में अगर क्रॉनिक से हमने अगर डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ गया तो फास्टिंग का ड्यूरेशन और लंबा होता जाएगा वो, तो इट डिपेंड्स अपॉन डिजीज टू डिजीज, बट ऑन एन एवरेज व्हाट वी रेकमेंड इज वीकली वंस डू एवरी डे डू 12 आवर्स फास्टिंग मिनिमम एवरी डे, बट अदरवाइज वीकली वंस डू अलोंग विद दैट वाटर फास्टिंग, वो धीरे धीरे धीरे धीरे 4 o'clock तक ले जाना है। शुरुआत में यू कैन स्टार्ट विथ 10 बजे तक वाटर फास्टिंग किया, तो जो भी ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे खा लेते थे उस टाइम पे नहीं खाना है, 10 बजे खाना है। 2-3 हफ्ता वो किया, वो करके करके अगर फीलिंग बेटर हो रहा है तो फिर 10 बजे तक रुकने को हो गया, फिर 11 बजे तक, फिर धीरे धीरे 12 बजे तक, ऐसा करके करके करके करके 4 o'clock तक वीकली वंस वी शुड डू फास्टिंग। एंड देयर आर या सो इफ यू हैव सम असिस्टेंस इट विल बी बेटर अलोंग विद दैट लिटिल बिट ऑफ सम अदर प्रोटोकॉल्स वी आल्सो हैव, इट विल हेल्प अस। सो वीकली वंस फास्टिंग, इफ नॉट दैट हमारा तो एकादशी है ही, एकादशी के दिन जब बहुत लोग साथ में एज यू नो करते हैं, हमको संगठन का एक बल होता है। बहुत लोग एकादशी का फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी का फास्टिंग आप भी करिए। आप अगर हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग तिथियां आती हैं, जब 10 दिन फास्टिंग करते हैं, 5 दिन फास्टिंग करते हैं, गणपति के टाइम, दुर्गोत्सव, नवरात्रि के टाइम तब करिए। इफ यू आर अ मुस्लिम, रमजान है उस टाइम पे फास्टिंग करिए, बट यूजिंग नेचुरल लॉज प्रिंसिपल। ऐसा नहीं पूरा दिन फास्टिंग किया, शाम को बैठ के बहुत सारे तला हुआ ये वो खा लिया, ऐसा नहीं। फास्टिंग मीन्स नो दिस काइंड ऑफ फूड। इवन एकादशी में भी एकादशी के नाम पे साबुदाना वडे ये वो खा रहे, नो, वी शुड हैव दिस नेचुरल फूड डाइट, इट इज इम्पोर्टेंट। वो किस तरह का फास्टिंग कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारा भाषा में फास्टिंग मीन्स सिर्फ पानी पीना, तो एकादशी का फास्टिंग मीन्स सिर्फ पानी पिया, शाम को एक टाइम में कुछ फ्रूट्स या कुछ जूसेस या नारियल पानी या व्हाटएवर दिस ऐसा पी लिया, तो उस तरह का तो फास्टिंग कर।
0: आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ याद कर रहे हैं यहाँ पर। वी शुड क्लियर ऑल थ्रस्ट फ्रॉम आवर माइंड, जी। और यहाँ पर सुशील जी लिखते हैं, ओम शांति, स्वागत है सुशील जी आपका। निवेदिता जी ओडिशा से लिखती हैं, ओम शांति, स्वागत है निवेदिता जी आपका। नॉविस एनी स्टडी दैट बिकॉज ऑफ फास्टिंग कैंसर रिकवर, क्या कोई ऐसा स्टडी आपने देखा है या पता करा है आपने, तो ये उन्होंने पूछा है। और मानसी देवकर जी, आई एम ऑन 14th hour फास्टिंग डेली। अच्छा, चलिए बढ़िया है, आप कैंसर क्योर करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वीकली वंस, बहुत सुंदर प्राकृतिक उपचार हफ्ते में एक बार फास्टिंग, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। टू मच फास्टिंग हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, इट विल मेक अस एनोक्सिया, जी। टू मच माना आप कंसल्टिंग के साथ करेंगे तो शायद वो चीज़ें सेट हो जाएगी, आप बिना कंसल्ट के या डॉक्टर के परामर्श या किसी नेचुरोपैथी के परामर्श के अनुसार ही करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता नहीं है। और हमें जो है किसी गाइड, ट्रेनर या कोच के साथ, ठीक से डॉक्टर के साथ मिलके इन चीज़ों को प्लान करना है, आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहते हैं और फास्टिंग आपके लिए कितना और कैसे कर सकते हैं। Any records of how many cancer patient recovered? अच्छा, कुछ है आपके पास ऐसा कुछ information, डॉक्टर सीमा जी?
1: नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है ये, डॉक्टर इमोटो, I'll just check Doctor, I think it was Dr. Emoto who did this thing, and he twice, do bar unko Nobel Prize vina. Yes, Dr. Yoshinori, Dr. Yoshinori, unko 2016 mein unko Nobel Prize vina ek mila tha latest. Iske pehle bhi, I think around 1990s mein ek aur bar किसी को मिलाया, शायद इन्हीं को मिलाया, आई एम नॉट श्योर। तो ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि कैंसर फास्टिंग से ठीक हुआ है. सो इट्स ऑल देयर ऑन द इंटरनेट. आप प्लीज इंटरनेट में ढूंढ लीजिए, आपको सबूत चाहिए तो फास्टिंग से इंसान ठीक हो सकता है. नहीं तो बिना सबूत के तो नोबेल प्राइज तो नहीं मिल सकता है ना. आप इतना तो आई थिंक सो भरोसा होता है हम जो हमको नोबेल प्राइज के ऊपर. तो या सो एंड एनी अदर, व्हाट वाज अदर क्वेश्चन? आपने एक और क्वेश्चन कुछ बोला था ना, सबूत है क्या पूछा ना किसी ने, किस कोई ठीक हुआ है कि नहीं है.
0: हाँ, शांताराम जी का सवाल था कि कोई रिकॉर्ड है क्या कैंसर पेशेंट रिकॉर्ड हुआ है वो आपने. हाँ हाँ बताया.
1: अच्छा, मेरे हमारे हमारे ही साथ एक, मैं इमाना IMANAH इमाना वेबसाइट में आप जाइए, डॉक्टर सुनीता करके है एक जन, उन्होंने अपना कैंसर उन्होंने ठीक किया है यूजिंग दिस प्रिंसिपल. उन्होंने अपना टॉक बताया है, वो रिसेंटली मैंने देखा तो शी इज पार्ट ऑफ आवर आवर टीम. मीन्स वो अपने हमारे टीम में अभी आ गई है अपना कैंसर ठीक होने के बाद. शी इज ऑल्सो अ हेल्थ कोच नाउ, सो ही हेल्प करती है. तो आप इमाना वेबसाइट में जाइए, IMANAH इमाना वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको डॉक्टर सुनीता का टॉक मिल जाएगा. मैं शेयर करूं क्या, मैं शेयर करूं क्या उनका?
0: यहाँ किसी और ने भी भेजा है मेरे को, एक का नाम है डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, डायरेक्टर ऑफ लॉन्गेविटी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया USC. डॉक्टर लॉन्गो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिसर्चर्स ऑन फास्टिंग एंड कैंसर स्पेशली पॉइंटर. ठीक है, बहुत बढ़िया जी. प्लीज चलिए, व्हाट रिकॉर्ड यू With you, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है?
1: Yes, yes, I have had patients who have recovered. Yes.
0: जी जी जी. चलिए, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे.
1: हाँ, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू, लाइक मेनी पीपल टेल दैट आई मीन वी जो भी हम, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि व्हाट आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो सिटीज में वगैरह रह रहे हैं, यहाँ पे हम ये हवा ब्रीद इन कर रहे हैं. तो एज आई टोल्ड यू, ये जो ब्रीद इन कर रहे हैं ये हम अर्ली मॉर्निंग्स ओपन स्पेस में इफ पॉसिबल वहां जाके हमें करना है. एंड हमारी तरफ से हमें स्किन में मतलब लूज क्लोथ्स पहनना है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मेकअप वगैरह, ईच एंड एवरी मेकअप. आवर स्किन ब्रीथ, हमारे स्किन के थ्रू श्वास लेता है हमारा. ये एक जेम्स बॉन्ड मोडी मूवी भी था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ जेम. वहां पे मर्डर होता है गोल्ड पेंट करके. ये जो मतलब वो जेम्स बॉन्ड मूवी में ऐसा दिखाया, एंड दिस इज ट्रू. एक बच्चे को, बच्चा जीसस क्राइस्ट ऐसा मतलब उनका इसके रिक्रिएशन के हिसाब से पेंट करके उन्होंने रखा था. आफ्टर अ फ्यू आवर्स द बच्चा डिड नॉट लिव, लाइक हैड लेफ्ट द बॉडी. तो इन द मूवी ऑल्सो दे शोड द सेम थिंग, दैट जस्ट गोल्ड पेंट कर देता था जिसको मर्डर करना है. एंड 1964 में ये मूवी रिलीज हुआ था. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ मूवी था, जेम्स बॉन्ड मूवी.
0: जी जी जी.
1: इनके थ्रू ब्रेथ होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम आवर आवर एस्पेक्ट से. हम जितना हम ट्रीज प्लांटेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि ट्रीज वातावरण को क्लीन करे. हमारे तरफ से फैक्ट्रीज वगैरह जितना ज्यादा नेचुरल लिव कर सकते हैं, नेचुरल लाइफ लीड कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा है. कॉन्शियसली वी हैव टू रिमेम्बर दैट हम सिर्फ मैं करके हमने इतना ज्यादा खराब कर दिया वातावरण को. हम इतना भी कॉन्शियस नहीं है कि वातावरण अगर गंदा है उसमें मैं डूबूंगी. वातावरण अगर डूब रहा है मैं नहीं बच सकती हूँ, है ना. तो मैं इतना अगर मैं कर रहे तो मेरे लिए तो कम से कम वातावरण को ठीक रखो, सोसाइटी को ठीक रखो, दुनिया को ठीक रखो,
0: है ना? सीमा जी, काफी अच्छी बात है आपने बता दिया, और वक्त और इजाजत नहीं देता हमें, हमारा शो का टाइम पूरा हुआ. और यहाँ पर रजनी धवन जी लिखते हैं, सो मेनी डिजीज हैव बीन क्योर्ड ऑन, आई एम 76 इयर्स, आई हैव रिजर्व स्मॉल प्रॉब्लम्स विथ डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी देवन, थैंक यू टू सीमा जी करके मैसेज किया है। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। फास्टिंग को लेकर अभी भी रिसर्च और कई लोग प्रयोग करके अपने आप को ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
1: नो, आई विल टेल यू समथिंग, फास्टिंग
0: जी,
1: फास्टिंग हम कर रहे हैं, यहाँ से फास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली खाना उसको खा रहे वो खा रहे हैं, ये सोचेंगे तो ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग नहीं है। आई शुड डू इट हैप्पीली। यहाँ पे डिप्रेवेशन फील किया, यहाँ पे डिप्राइव्ड फील किया कि वो खा रहे, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो दुनिया भर का कचरा खा रहा है, उसको तो मुझे क्यों ऐसा खुशी खुशी करना है, तो वो हम डिप्राइव फील होकर करेंगे तो नहीं फास्टिंग आपको काम करेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई जस्ट आई हैड टू पुट द सेंटेंस।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमें फास्टिंग को भी ठीक से समझने की जरूरत है, और जब भी आप करें तो छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं वैसे हफ्ते में एक बार, लेकिन आप किसी बीमारी को लिए करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है किसी अच्छे डाइटिशियन या नेचुरोपैथ या फिर डॉक्टर के कंसल्टिंग में आप इन चीज़ों को करें और फिर उसका रिजल्ट देखें, निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर्स हमने देखे हैं जहाँ पर लोग फास्टिंग ही कराते हैं, ज़्यादातर एक बार उनको खाना देते हैं, कई जगह पे वाटर पे भी फास्टिंग किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको करते हैं और कितना आपका मन और शरीर से आप तैयार हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो प्रयोग करके अनुभव करिए, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बावजूद भी हो सकता है कि कभी कभी आपके मन को वो स्वीकार ना हो। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें। एक बार सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सुधा जी को भी थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं बातें मुलाकातें, सुनते रहो मुस्कुराते।
2: अभी बजे है रात के 11, एक मिनट के स्वचिंतन से टेंशन होगी 9:00-11।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे, तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आई, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया। हाँ। और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: पुणे में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़े सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बील, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेलियां या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपके बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम, आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटीज थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने

0: वर्ष था ना
1: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस,
0: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
1: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे?
0: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
1: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
0: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
1: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
0: माना ऐसे अच्छा अच्छा आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
1: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
0: पहले से भी बनाती थी।
1: अच्छा।
0: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
1: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
0: हाँ, मम्मी से सीखा।
1: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
0: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
1: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
0: शादी के पहले ही की थी।
1: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
0: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
1: कितने समय तक की आपने नौकरी?
0: 2 बरस तक की।
1: अच्छा,
0: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
1: 400 रुपए
0: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
1: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
0: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपए है
1: तोला।
0: तोला
1: जी जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
0: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
1: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
0: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
1: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
0: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
1: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
0: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
1: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
0: रेलवे में नौकरी थी उनको।
1: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
0: हाँ, इस बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
1: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
0: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
1: बेटियों को लेके आए?
0: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
1: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपके?
0: ऑफ हो गई।
1: अच्छा अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
0: बचपन से,
1: ऑफ हो गई। अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद?
0: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
1: जी जी जी। आपके कितने बच्चे?
0: मेरी 2 बच्चे।

0: है।
1: जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
0: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
1: बीच बीच में आप जाते थे।
0: हाँ,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
2: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
1: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
2: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
1: सिलाई का।
2: हाँ,
1: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
2: पुणे में ही किया था।
1: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
2: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
1: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
2: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
1: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
2: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
1: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
2: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
1: तो पूरे आपका ग्रुप था?
2: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
1: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
2: सत्संग नहीं इतना किया हम।
1: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
2: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
1: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
2: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
1: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
2: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
1: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
2: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
1: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
2: 1-2 बरस तक गई।
1: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
2: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
1: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
2: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
1: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
2: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
1: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
2: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरीका विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
1: अच्छा, पर सारे मराठी में।
2: हाँ,
1: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
2: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
1: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
2: नहीं,
1: कभी कोशिश नहीं की?
2: नहीं, याद भी नहीं आए।
1: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
2: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
1: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
2: हाँ।
1: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
2: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
2: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
2: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
2: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
2: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
2: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए। और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
1: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
2: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
1: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
2: नहीं, उसने नहीं किया।
1: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
2: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
2: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
2: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते जी।
1: आपका शुभ नाम?
2: तेजश्री।
1: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
2: जी हम बड़े हैं।
1: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
2: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
1: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
2: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
1: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
2: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
1: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
2: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
2: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
2: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा। इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना? तो ये मेरी सदिच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
3: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
3: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
3: 2 साल हुए।
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
3: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
3: हिंदी भी हम ऐसे बोलते है ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
1: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
3: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
3: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं हो के भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आकार, जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही है।
1: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीर्थ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: गया। क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी, अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से हैं ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456, शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ। अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
3: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।
4: बहुत थक गई मैं तो चलते चलते।
5: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
4: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
5: तालाब से 2 घूंट पानी पी लो और 2 घड़ी सुस्ता लो।
4: नहीं रहने दो, बहुत रात हो गई है।
5: पूरन

0: कुछ सुना तुमने?
1: हाँ, जैसे कोई नन्ना बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
0: चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है।
1: ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
0: या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया? देखो देखो ना, मेरी गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
1: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
0: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
1: पागल हो गई हो?
0: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है।

0: हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं?
1: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
0: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
1: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
0: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
1: लोगों से क्या मतलब है हमें? कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम?
0: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
1: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साथ पूरी हुई।
0: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
1: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीर दास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था। था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा, एक बात पूछनी है। पूछूं क्या?
0: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
0: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा, वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
0: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
0: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
0: जैसे हम मुसलमान हैं, वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
0: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
5: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा, ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
0: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना?
0: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
0: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब्बा बताओ ना, ये अल्लाह कौन है?
0: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं।
4: इबादत माने?
0: खुदा को खुश करने का तरीका।
4: इबादत से खुश हो जाते हैं वो?
0: लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
4: इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया? और लोग तो अमीर हैं।
0: अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी।
4: इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है।
0: अल्लाह, चुप कर। बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है, खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे।
4: पर अब्बा ये तो
0: अब बता। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है।

0: हो आई, दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं?
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी तो? दुत्कार दिया मौलवी साहब ने, कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े के हमारी औलादें बुनेंगी।
0: अरे बोलो अम्मा। लो आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूंगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर ना हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।
0: अच्छा।

0: है ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थीं कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो।
1: मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका।
2: अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता।
3: क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम कबीर है, आप लोगों से कुछ सुनने आया था।
2: इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो।
4: आप भजन क्यों गाते हैं?
2: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
4: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
3: हम सबका मालिक।
4: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
3: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
4: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
2: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
4: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
3: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
4: ये दुनिया उसने बनाई तो उसे किसने बनाया?
2: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
4: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया?
3: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
4: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
2: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
4: पर बुद्धि तो एक सिपाही, फिर सोच अलग क्यों?
3: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
4: बाबा ये दुनिया उसने क्यों बनाई, यहाँ तो सभी दुखी हैं।
2: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
4: कब तक?
3: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
4: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
2: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
4: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
3: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
4: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
5: कबीर, अरे ओ कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
4: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
3: बहन अद्भुत बालक है तुम्हारा।
5: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
6: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
3: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
6: अरे बच्चा हमारे साथ चलेगा क्या?
4: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मुझे आज्ञा दीजिए।
3: कल्याण मस्तु।
7: बालक तो चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
3: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
6: यहाँ से चलो किसी और ठोर।

0: अरे ये सत्संग बत्संग।
1: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
0: कौन है भाई वहाँ?
2: नीरू भाई, मैं हूँ।
0: आओ आओ, और सुनाओ क्या हाल है?
2: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
0: हाँ, उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ। रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
2: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
1: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
0: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
2: कल मैंने भी सुना कबीर को खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
0: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
1: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
2: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
1: यही तो डर है मुझे।
0: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने दो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने।
2: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है, इंसानों का बनाया हुआ।
0: या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है, मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है?
2: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठे कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
0: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
2: अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है। कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है? खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता?
1: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
2: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
1: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
0: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
2: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
1: सुनो, मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
0: अब तुम ना जाओ कहीं।
1: क्यों?
0: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: अरे तुम कब आए?
1: अरे कुछ देर हुई,
0: छुपके छुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, दो दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
1: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
0: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
1: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
0: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
1: अजीब बात है,
0: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
1: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
0: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
1: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
0: चलो।

0: सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
1: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी, व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
0: नास्तिक लगते हो,

0: तभी कुतर्क करते हो।
1: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
0: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
1: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
2: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
3: कोई नहीं मिट सकता।
0: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
0: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
1: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा, ठीक कहा ना मैंने?
0: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो?
1: संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे। और उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है।
3: मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
4: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
3: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
4: हाँ, सच्ची।
3: अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
4: माँ होकर तुझसे मोह ना पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
3: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
4: कल की सोच कर आज का सुख छोड़ दो बेटा। मैं
3: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
4: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
3: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
4: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
3: दुआ कर कि मैं कामयाब हूं।
4: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
3: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
4: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है। क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले।
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा, समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे?
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
2: भाइयों, शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: आप ईश्वर के खिल्ले उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा।
1: पत्थर की बेजान मूर्तियाँ तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं।
2: अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले से ज्ञानी से बहस बेकार है।
0: चलो चलो,
2: फालतू की बातें करता है। चलो
3: साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे।
1: रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं, हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे।
3: लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं।
1: हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं, वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ?
1: आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेना नाई।
5: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया।
1: मैं तो केवल सच कहता हूँ।
4: गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर।
1: बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
4: वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है, जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ।
1: जी बहुत अच्छा।
0: देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई, हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं।
4: अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें?
0: अरे ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे।
4: कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो, कंकाल भला दूध कैसे देगा?
1: गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता?
4: वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर, यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, धन्य हो।
1: स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है।
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, ज्ञान की गंगा बहाते रहो।
1: लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ।
4: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
4: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
4: कल्याण हो।
1: कौन?
6: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
6: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
6: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
6: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगाकर करेंगे।

0: मियाँ कोतवाल साहब आधा वर्ज है।
1: अरे आधा वर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
0: अरे मियाँ तकलीफ में तो हम खुद हैं, कबीर ने जीना हराम कर रखा है।
1: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
0: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
1: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
0: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
1: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
0: लाहौल बिला कुव्वत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है, और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे देंगे क्या?
1: मौलवी साहब अदब कायदा ना भूले।
0: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
1: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
0: हाँ बेहतर होगा। अच्छा खुदा हाफिज।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों खासी तादाद में है।
0: अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए गोतबा साहब।
1: अरे छोड़ो पंडित जी, खैर हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बरछी है। बरछी?
1: बरछी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे बात गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब मुझे बचाइए साहब, साहब दे।
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आना कहानी करता है ये बदमाश।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे रहा पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल। क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामीर कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक

0: भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से, माटी का कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
0: अरे नहीं नहीं कबीर जी जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कविता के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं।
3: साहेब हम सब इसका विरोध करेंगे।
4: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
3: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रेदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
0: अरे या कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं।

0: कहते हैं वो यही छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यही छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: भैया, अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
1: हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
2: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
0: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। और भैया सुनो।
3: हाँ भैया।
0: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं।
1: क्या?
2: अम्मा मैंने भी सुना है, इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
0: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं अम्मा।
0: लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
2: हाँ अम्मा, अब हम सबका मसीहा जा रहा है।
0: सच कहा भैया।
2: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
0: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग।
2: अच्छा।
0: अपने कबीर कहते हैं
2: हाँ।
0: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
2: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
4: अरे अम्मा अम्मा अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे, कबीर का देहांत हो गया।

0: शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, अब कबीर को अच्छी तरह रहला धोकर अब उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं।
1: अरे लाहौल मिला कुबर, कैसी बात कर रहे हो, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा।

0: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: inside. It is a game going on constantly between being a master to a slave.
1: Slave.
0: Understanding? Slave. Again, you can become a master. And now somebody who acquires this internal, gradually, it won't happen like today here one and tomorrow 100. Gradually, we're working on ourselves. I'm a loveful being. I will be with everybody, accept what they're saying, accept them, but not begging for love. It's me. My self-esteem starts increasing. Once my self-esteem starts increasing, need for the drug will start reducing because I have started approving and accepting myself. I have started appreciating my qualities and my work. Now, I'm not dependent on other people's appreciation to feel good. The wife who was working the whole day cooking your meal, she was waiting for your appreciation in the night to feel good. If she had appreciated herself while working, which means felt nice while doing it, rather than saying, I'll feel nice when this happens, then even if you forget to appreciate, she's already happy. So accept and appreciate yourself. Now when a soul reaches there, their self-respect is very high. Now saying no, if we cannot do something, if we do not have the capacity, or if my value system doesn't allow me to do it. A lot of times we're doing things against our values and principles, only because of getting approval from others. Now, having that strength to say no will be there, but it will be an assertive no, which means no disrespect.
1: Assertive, that's what I was exactly going to
0: say. See, assertive and reactive. Today, sometimes children can say no to parents. That's not an assertive no. That's a reactive no. That's a angry no. That is a no without compassion and without understanding. It's just because I want to have my way. Ego. There's a little difference. Something done egoistically and something done with self-respect. When it's self-respect, I will understand my capacity. I will also understand the other person's need, why they want me to do this. I will retain my self-respect and yet be able to say, I understand exactly what you want.
1: By the word, when you use the understand word, a thought came across. How easily I accept a man saying no to a chocolate or the best sweet in the world,
0: yes,
1: when he says, I have diabetes.
0: Perfect. Perfect.
1: I just don't feel bad.
0: Yes.
1: Oh, you have diabetes? I'm so sorry.
0: Yeah. So this is understanding, compassion, and respect based on knowledge. Knowledge that sweet is not comfortable to him because he has diabetes. Now just remove that line of knowledge. Suppose you don't know that he has diabetes and he says, no, I'm sorry, I can't have this sweet. Then there's going to be hurt and offense. I cooked so much for them. I bought these best sweets from outside and now they're saying they don't want to eat. Lack of empathy, lack of understanding for the other person. So the one saying no should be very clear with their communication. I'm saying no because I understand you want me to do this. I really appreciate you wanting me to do this. I would have loved to do this for you, but 1, 2, 3, I have diabetes, which means I have this problem. My physical strength, my financial strength, or simply my value system does not allow me to do this, and I hope you will understand. Now take your time to understand me. That's insight. Which means if you don't understand me immediately, I will not withdraw my respect and say, they don't like me anymore. No, I understand that they will take some time to understand. This will be self-respect. But then like you read out for us last time, anyone who values themselves will eventually get value from people around them, even if it takes a little time. It's okay.
1: That's what I asked you. If I disrespect others...
0: This is not disrespect.
1: No, but I have to respect myself.
0: And if you're respecting yourself...
1: If I have self-esteem,
0: yeah,
1: that I really love myself, respect myself, and of course not disrespecting others.
0: Yes.
1: So self-esteem is necessary.
0: Absolutely.
1: Clarity is necessary for the lady of who did the MBA.
0: Yes.
1: But one more thing we cannot forget, that people do change, you know.
0: Mm-hmm.
1: You change, I change. What is the meaning of maturity?
0: Right.
1: Your thoughts change, your ideas change.
0: Absolutely.
1: You grow.
0: So eventually, people will understand me. Let me have the courage, the conviction to start living my life.
1: Courage, conviction and patience.
0: Patience, yes. To live my life the way I am comfortable. And even if I want to do things what others have asked me to do, let me first become comfortable and then do it. Even if it takes me 10 minutes to make myself comfortable, it could take me 10 days to make myself comfortable. Each one, depending on the situation also, depending on their power to work with themselves. But I should bring it out into action only after I've told myself, I am comfortable doing this and I'm doing it for myself. Then the results will always be beautiful. Like what you had shared with us earlier, take control of yourself before taking control of situations outside.
1: Beautiful.
0: That line fits everywhere. Thank you, that's why, for it.
1: I should thank you, sister.
0: Thank you so much.
1: Thank you.
0: Om Shanti.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 09999744555.
3: Namaste ji, I'm Ajay Kanthuria, from Bombay. मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारे लोग ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा फिर नमस्ते हंसते रहो मुस्कुराते रहो
4: नमस्कार रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में दोस्तों हर हफ्ते की तरह हम आपके पास लेकर आए हैं यह कार्यक्रम जहां पर हम बात करते हैं हमारे ही समाज के वरिष्ठ जनों से और आज ऐसे ही एक वरिष्ठ जनों का जोड़ा हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारा है जो आकरा भट्टा आबू रोड में रहते हैं और जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा अग्रवाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
5: धन्यवाद
4: तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जब हम इन्हें बुलाते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर तो कुछ प्रेरणाएं इनके जीवन से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की इनकी जीवन यात्रा रही है कौन सा संघर्ष इन्होंने किया है और कौन सी उपलब्धियाँ पाई है कौन सी खुशियों को साथ में जिया है और कौन से प्रयासों को साथ में किया है तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चलते हैं इनके बचपन की ओर दिलीप जी कैसे महसूस कर रहे हैं रेडियो मधुबन पे आकर आज
6: रेडियो मधुबन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत पुराने समय से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ
4: जी जी
6: और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर
4: बहुत खुशी हुई जानकर रेखा जी आप कैसे हैं
5: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और एक अलग तरह से मतलब शांति महसूस होती है
4: जी
5: और जब एक बार आते तो फिर इच्छा होती है कि अपन इसमें बार बार आते रहे
4: बहुत अच्छा लगा जानकर वैसे रेडियो मधुबन का लक्ष्य भी है कि मूल्यों को बढ़ावा देना तो जैसे आपने शांति की अनुभूति की है ऐसे आपके जीवन में से कुछ ऐसे मूल्य हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले चलते हैं आपकी ओर आपका जन्म कहाँ पर हुआ
5: मेरा जन्म राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट जावलगांव
4: पे हुआ और बचपन जो है हमारे पूरे जीवन का फाउंडेशन होता है नींव होती है जब बच्चा पहली बार आँख खोलता है तो वो अपनी माँ को देखता है और पिताजी को देखता है फिर धीरे धीरे परिवारजनों से परिचित होता है फिर दोस्त फिर आगे की यात्रा पे चलता है तो अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए
5: माता पिता के बारे में तो बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होते
4: जी
5: तो अपने आप में एक सबसे बड़ा मेरी मम्मी का नाम अमरती देवी है वो हाउस वाइफ है और पिताजी है वो केमिस्टर है मेडिकल शॉप है और हम तीन बहनें हैं और एक भाई है
4: जी
5: जो 2021 में कोरोना के अंदर ऑफ हो गए
4: जी तो आप जैसे आपका जन्म हुआ तो फिर सबसे पहले हम माता पिता की ओर देखते हैं और कुछ ना कुछ उनके जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कौन सी एक बात आप बताना चाहेंगे अपनी मम्मी के बारे में जो आपको बहुत पसंद आती है?
5: हमारे मम्मी ने हमको संघर्ष करना सिखाया है, और खुशियाँ दो और खुशियाँ लो।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं,
5: परिस्थितियों के साथ में हिम्मत रख के उसका सामना करो
4: जी। और पिताजी से क्या सीखा आपने?
5: पिताजी से तो वही है कि बस वही है बेटा, अपने रिश्ते निभाते रहो
4: जी,
5: और सबको अपना बनाने की कोशिश करो।
4: सबको अपना बनाने की कोशिश करो। देखिए कितनी दो खूबसूरत बातें आपने बताई कि ये जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके जीवन के लिए एक महामंत्र का काम कर सकते हैं कि संघर्ष भी करो, सबको अपना बनाओ और साथ में खुशियाँ दो और खुशियाँ लेते रहो। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में?
6: मेरे पेरेंट्स ने हमारे को बहुत ही अच्छी तरह रखा है।
4: जन्म कहाँ पर हुआ आपका?
6: जन्म मेरा माउंट आबू में हुआ है
4: जी।
6: और बाबा से भी हमारा मतलब मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे दादाजी उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था।
4: अरे वाह।
6: और हम लोग एक तरह से उस समय संपन्न परिवार से थे, तो हमारे पिताजी ने और हमारे दादाजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है और हमारे को हर खुशियाँ दी है।
4: गुणों की बातें बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे माताजी या पिताजी की ओर देखते हैं तो कौन सी बातें वो आप उनसे सीखते हैं?
6: हमारे पिताजी सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल और बढ़िया व्यवहार था,
4: सम्मानजनक
6: था। हाँ, सम्मानजनक व्यवहार था और वो किसी को भी कम नहीं समझते थे, सभी
4: समान भाव से,
6: सभी समान भाव से थे
4: जी।
6: वो हर किसी को के साथ घुल मिल जाते थे और यही हमारे को शिक्षा दी है कि आप किसी का भी बुरा मत सोचो और बुरा मत करो।
4: अरे
6: सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप अपना मन साफ रखो और अपने मन से सबका अच्छा करो।
4: बहुत अच्छी बात है कि ये जो आजकल जब कहते हैं, मैं कुछ बीच में कुछ एक वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर एक माता पिता जिनकी चार बच्चियाँ हैं और चारों बच्चियाँ बहुत नाम कमा रही हैं पूरे देश में, भारत में, तो उनके माँ बाप से एंकर पूछता है कि ये जो चार बच्चियाँ हैं आपने इनको क्या ऐसा सिखाया कि ये दुनिया में इतना नाम कर रही हैं? सिर्फ बच्चियाँ ही हैं उनके घरों में। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बच्चों को अगर हम पैसा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा उनका, या कुछ और संपत्ति दे देंगे तो वो भी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन आप अगर बच्चों के अंदर मूल्यों की शिक्षा देते हैं, उनको वैल्यूज सिखाते हैं, तो अगर संस्कार देते हैं तो फिर संस्कार जो है उनको अपने आप अपने जीवन में खड़े रहने का आधार बन जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बात उन्होंने इतने एक दो लाइन पर कह दी कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए। तो आपकी जब यात्रा आगे बढ़ी, आपने अपने संस्कार सीखते गए आप माता पिता से, फिर पहली बार स्कूल कब गए और वहाँ पर कौन से दोस्त आपके बने, आपको याद है कोई?
6: ऐसा तो ध्यान नहीं है, लेकिन स्कूल समय में भी बहुत ही अच्छी तरह मेरे को एक चीज़ ध्यान है अभी भी
4: जी।
6: मैं बाल मंदिर में जब जाता था तो मेरे को मेरे दादाजी छोड़ने जाते थे,
4: ओके,
6: ग्रैंडफादर, वो छोड़ने जाते थे। और उस समय माउंट आबू में नीरा की बोतल आती थी, नीरा उस समय खजूर का जो होता है ना,
4: okay,
6: नीरा बोलते थे हम, हाँ, उसकी बोतल वहाँ बिकती थी और वो हमेशा मेरे को वो दिला के और फिर छोड़ने जाते थे और लेने भी वो खुद आते थे मेरे दादाजी, मतलब इतना उनका वो था।
4: दादाजी का क्या नाम था आपके?
6: दादाजी मेरे राम प्रताप जी।
4: राम प्रताप जी, तो हमारे जो श्रोता माउंट आबू से सुन रहे होंगे जरूर उनको उनका चेहरा याद आ रहा होगा। हाँ। जो उनको जानते होंगे। दादाजी को भी हम सलाम करते हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी से। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे स्कूल आज भाई आपके भी नाती पोते होंगे, वो भी स्कूल जाते होंगे, और आप कभी एक समय पर स्कूल जाते थे, तो क्या बदलाव देखते हैं आप शिक्षा व्यवस्था में, उस समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था में?
6: उस समय किसी पे कोई दबाव नहीं था, ना तो कोई कैरियर का ना कोई पढ़ाई का, मस्त रह के पढ़ाई भी करते थे, खेलते कूदते भी थे और बहुत एंजॉय के साथ में जिंदगी गुजारते थे, शिक्षा लेते थे।
4: अभी आप दबाव देखते हैं बच्चों में?
6: अभी बच्चों पे बहुत दबाव है।
4: तो ये दबाव कौन डालता है, स्कूल डालता है या माता पिता डालते हैं या बच्चा खुद ही लेता है?
6: सामाजिक रूप से ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि बच्चा और माता पिता दोनों ही अपने आप पे दबाव लेते हैं।
4: क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें, कि अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं
6: जी,
4: तो शिक्षा व्यवस्था कैसे दिलवाएं उनको?
6: बच्चों को बिल्कुल फ्री माइंड से आप ना तो उनके ऊपर ट्यूशन का दबाव डालिए, ना उनके ऊपर पढ़ाई का। नेचुरल रूप से जो खेलकूद के साथ में जो पढ़ाई करते हैं उनका नेचुरल रूप से विकास होने दीजिए,
4: नहीं तो फिर बचपन से ही उनको स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कैसे थे पढ़ाई में, जब शैतानी करते थे, घूमने जाते थे, या फिर बहुत पढ़ाकू थे?
6: मैं शैतानी के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था।
4: अरे वाह,
6: शैतानी भी करता था, खेलकूद में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था।
4: क्योंकि ऐसी घटना जो आपको याद आती है, बहुत अच्छी लगती है आपको बचपन से, स्कूल से?
6: बहुत सारी घटनाएं हैं, वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं निर्मला स्कूल में पढ़ता था, उस समय मतलब खेलकूद और इतना हम लोग करते थे। वहाँ की कोई सीढ़ियाँ थी, 10-12 सीढ़ियाँ, तो सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे। जब भी वो 10-12 सीढ़ियों से छलांग एक साथ लगा लेते थे। मतलब जी, वो आज जब हम सोचते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा एथलीट भी उस
4: कल्पना से बाहर हो जाए,
6: हाँ, उस छलांग को नहीं लगा सकता।
4: बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ बचकर बचपन में जो हमने ऐसे किया है उछल कूद, उस कारण से हमारी शरीर भी और मन भी दोनों अभी भी स्ट्रांग रहते हैं।
6: बहुत स्ट्रांग है,
4: स्ट्रांग रहते हैं।
6: अभी भी मैं माउंट आबू में था, जब मैं ट्रैकिंग सुबह 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था
4: जी जी,
6: और जो अपने प्रताप भाई जो पांडव भवन में गार्डन देख रेख करते हैं
4: जी,
6: वो भी मिलते थे, और हमारा मतलब 15-20 मिनट उनके साथ वार्तालाप होता था, बाकी 1.5 घंटे हम ट्रैकिंग करते थे।
4: बहुत बढ़िया। तो ये एक भी एक आपके जीवन से एक पिक करने की बात है जो हमारे श्रोता नोट कर सकते हैं, कि जो ट्रैकिंग करना सुबह सुबह 2 घंटे वॉकिंग करना, तो इससे फिर हमारा जो युवापन है वो बना रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और फिर बीमारियों से भी हम दूर ही रहते हैं। तो हम तो बचपन के बारे में आपके बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो फिर एक बार हाई स्कूल में पहुँचते हैं, फिर कॉलेज में पहुँचते हैं, फिर एक सोच चलनी आरंभ होती है कि अब जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है। कोई बिजनेस में जाता है, कोई नौकरी ढूंढने लगता है। आपका जीवन कैसा रहा आगे का?
6: मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था
4: जी,
6: जवानी भी अच्छी रही। जवानी में थोड़ा सा जब बिजनेस वाली जो उम्र होती है
4: जी जी,
6: उसमें कोई दबाव नहीं था, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो गया था हमारा, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा।
4: कौन से साल में आपने आरंभ किया था बिजनेस?
6: बिजनेस वैसे तो हमारा मतलब फादर बिजनेस था,
4: पुश्तैनी था,
6: तो 84 से ही लगभग मैं,
4: अरे वाह,
6: इसमें जुड़ा हुआ हूँ
4: जी,
6: 83-84 से ही
4: जी,
6: लेकिन 91 में मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद मैं पूरी तरह से इसमें जुड़ा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे
4: उतार चढ़ाव तो चलते
6: मतलब
4: रहते हैं,
6: 4-5 साल तो बेस्ट रहा, उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो पिताजी के और दादाजी के थे कि अपना किसी का बुरा नहीं करना, चाहे कोई अपना कितना भी बुरा करे
4: जी जी,
6: अपना अपने किसी का बुरा नहीं करना, तो उसी थीम पे चल रहे थे और हमारी नीयत साफ थी, तो हम उस संघर्ष में से निकल के और वापस आज उससे ज्यादा ऊंचाई पे हम पहुंच गए
4: जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करते हुए। ऐसे कहा भी जाता है कि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, है ना? तो ऐसे ही इस गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी, और हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खूबसूरत युगल कहेंगे, आबू रोड आकरा भट्टा से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। उनसे फिर बातचीत करेंगे, तब तक सुनिए यह प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Maduba. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: तो दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी। हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में उनसे उनके जीवन के बारे में। तो रेखा जी आपकी ओर चलते हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, भारत में तो नारियों को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है, तो आपको माता पिता ने कैसे बड़ा किया, किस प्रकार के संस्कार दिए और क्या सिखाते थे वो?
2: मारे को मम्मी और पापा ने दोनों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत मतलब कभी लड़की और लड़कों के अंदर कभी भेद नहीं रखा।
1: अरे वाह।
2: और उस टाइम जब कोई लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, उस टाइम मेरे को ग्रेजुएशन करवाई।
1: ग्रेजुएशन पढ़ाई की आपने? कहाँ पर पढ़ाई हुई आपकी?
2: मेरी पढ़ाई सिरोही कॉलेज में हुई है।
1: अरे वाह। तो घर से सिरोही तो मेरे ख्याल से दूर रहता
2: है, 15 किलोमीटर है।
1: तो कौन कैसे जाते थे आप?
2: बाय ट्रेवलिंग और बाय कार अपनी।
1: अच्छा, ड्रॉप करते थे या तो फिर?
2: उस टाइम लड़कियों को स्कूल भेजना भी मतलब इतना नहीं समझते थे, लेकिन उस टाइम भी मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कॉलेज की पढ़ाई करवाई, जो जिसका आज मेरे को उसको लगता है कि
1: खुशी मतलब होती है,
2: खुशी होती है
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: क्योंकि टाइम निकल जाता है लेकिन आप फिर वो चीजें हासिल नहीं कर सकते।
1: हाँ, उस समय अगर छूट गया होता, जो बहुत सारे लोग आज भी पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको देख करके लगता है कि ये क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से जो प्राप्ति होती है वो एक व्यक्ति जो जिसने शिक्षा प्राप्त की वही बता सकता है,
2: वही बता सकता है वो सब चीजें। तो कभी लड़की और लड़के वाला तो मैटर था ही नहीं, हमेशा अच्छे से अच्छा पढ़ाई और अच्छे से अच्छे संस्कार दिए।
1: भी जैसे जो आपने सीखा है, मैं समझता हूँ अपने बच्चों के अंदर भी उन चीजों को बीज बोने का प्रयास आपने जरूर किया होगा।
2: बच्चे को भी हमेशा उसको पढ़ाई में आगे रखा है। बच्चे ने भी IIT को करा, फिर MBA करा कैट के थ्रू। तो आज मैं खुद पढ़ी लिखी थी इसलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकी,
1: इतनी प्रेरणा दे सके उनको,
2: क्योंकि पढ़ाई की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत है
1: जी। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, फिर आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो कब आरम्भ हुआ, कौन सा सन था वो?
2: 94
1: में आपका विवाह हुआ। तो माँ के पिताजी के छांव में रहना और फिर एक नए परिवार के अंदर जाना, ये जैसे भारतीय जो जीवन पद्धति है इसमें बहनों माताओं के जीवन में ये एक बदलाव देखा जाता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो एक नए परिवार में, नए माहौल में जाना, वहाँ की चुनौतियों को समझना और लोगों से मेल जोल करना, उसमें कितना समय लगा आपको? क्या क्या आपको लगा कि एक बच्ची को इसमें परिवर्तन लाना पड़ता है अपने अंदर?
2: उसमें उसको बहुत सी परेशानियाँ भी आती है और बहुत कुछ मतलब सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है,
1: सहन शक्ति
2: सबसे बड़ी चीज
1: जी।
2: और कुछ अपनी खुशियाँ भी खोनी पड़ती है।
1: हाँ, आपने एक तो परिवार को आप छोड़ के आने पड़ते हैं, फिर जिस माहौल में आप बड़े हो रहे हैं वो भी होता है,
2: बहुत सी बातें होती है इसके लिए। तो लेकिन खैर अभी तो जैसे आजकल तो क्या सब चीजें फ्रेंडली हो गई है, तो बहुत फर्क पड़ता है अभी तो फिर, लेकिन पहले के टाइम में तो बहुत लड़कियों को बहुत त्याग करना पड़ता है,
1: त्याग करना पड़ता था। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता में बहनें सुन रही हैं, बच्चियां सुन रही हैं? कई ऐसी बच्चियां भी होंगी जो जिनकी शादी होने वाली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई होगी और उनको वहाँ पर मैच करने में, वहाँ पर जुड़ जाने में चुनौती आ रही होगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: देखिए चुनौतियाँ तो मेरे हिसाब से कहूँगी तो पहले ज़्यादा होती थी, आजकल चुनौतियाँ कम होती है, क्योंकि आजकल मतलब मोबाइल जैसी एक सुविधा हो गई तो उससे क्या हर चीज पहले ही अपन समझ सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है,
1: फिर समझ जाते हैं पहले से,
2: पहले से अपन बहुत सी बातें सीख जाते हैं, समझ सकते हैं वहाँ के माहौल को। और फिर एजुकेशन के मामले होता है तो फिर लड़कियाँ पहले वाली बातें अब नहीं रहती, पहले तो क्या एक फोन करना भी मतलब गलत समझ आ जाता था।
1: अच्छा, अपने मायके में बात करना भी मुश्किल होता था।
2: तो आजकल तो अभी इतनी चुनौतियां नहीं रहती लाइफ के अंदर।
1: अच्छा, पर कहना क्या चाहेंगे हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे?
2: सबसे बड़ी होती है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग, जो जैसा है उसको मतलब उसको समझने की कोशिश कीजिए आप।
1: इससे क्या फायदा होता?
2: इससे ये होता है कि आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार नहीं टूटता। एक दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, सबकी भावनाओं की इज्जत कीजिए, बस
1: उनकी भावनाओं की हम सम्मान करना उनको बहुत जरूरी है। तो आप जब यहाँ पर आए तो पहली बार आप माउंट आबू पहुंचे या आबू रोड?
2: नहीं, पहले इधर ही आई थी शादी करके, फिर उसके बाद हम लोग माउंट आबू गए थे।
1: आबू रोड में पहले आए।
2: हाँ इधर।
1: तो जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, फिर एक संतान का फिर जन्म होता है, परिवार में आता है, फिर एक और नया बदलाव जीवन में महसूस होता है। एक जिम्मेदारी तो है ही है, और ऐसी जिम्मेदारी होती है जैसे पहला बच्चा होता है तो अनुभव ही नहीं होता है अपने पास। तो बच्चों को बड़े करने के बारे में क्या अनुभव?
2: देखिए, बच्चों को बड़े करने में तो क्या, जॉइंट फैमिली होती है तो इतना अपने ऊपर नहीं रहता। जैसे मम्मी होते हैं तो वो संभाल लेते, दीदी सासू माँ जी वो संभाल लेते, तो जॉइंट फैमिली में तो ये सब चीजें कोई अपने को इतनी महसूस नहीं होती है। अकेले होते तब फिर ज्यादा रहता है अपने।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, किस प्रकार से एक नारी जीवन की प्रेरणाएं आपने रखी कि इसमें भी मूल्यों का कैसे समावेश हो सकता है, और मूल्यों के आधार पर एक दूसरे को समझने के आधार पर हमारे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि एक वैवाहिक जीवन के सफल होने के पीछे किस प्रकार की धारणाओं का रोल रहता है?
3: वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को, दोनों को आपस में एक दूसरे को तो समझना ही होता है, और एक दूसरे की भावनाओं की कदर तो करनी ही पड़ती है, उसके अलावा भी पूरा परिवार साथ में होता है,
1: परिवार भी होता है, सही बात है,
3: तो परिवार को भी देखना पड़ता है।
1: एक पति की क्या चुनौतियां होती हैं, क्योंकि उसको अपने जीवन साथी जिसके साथ पूरे जीवन आगे बढ़ना है वो भी साथ में होते हैं, साथ साथ में वो परिवार होता है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया है, तो इस दोनों में बैलेंस करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े आपको?
3: पति के लिए, पत्नी अपना घर बार अपने माता पिता को छोड़ के आती है
1: जी,
3: और नए माहौल में ढलने के लिए प्रयास कर रही होती है, तो उसको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है
1: जी। और परिवार?
3: परिवार तो है ही साथ में, परिवार को भी उसको एडजस्टमेंट करके और
1: आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको? उन्हें
3: मेन रूप से यही है कि आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, उनको समझो और आगे बढ़ो।
1: बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी, और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी, जो आकरा भट्टा आबू रोड से रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं सर, और जैसे बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत हो रही थी, तो ये एक दूसरे का परिपूरक है कि एक जीवन हम घर के अंदर जी रहे होते हैं और एक और जीवन होता है जो हमें समाज के साथ जुड़ाव में आगे बढ़ना पड़ता है, और इसी बीच बच्चे का आगमन होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो बच्चे को बड़ा करने के कोई ऐसे बात आप बताना चाहेंगे जो आपको अच्छी लगती है कि हम आपके बच्चे को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इसकी परवरिश, ये वाला पक्ष बहुत अच्छा रहा?
3: बच्चे को खुले वातावरण में ही उसकी परवरिश करनी चाहिए
1: जी,
3: उस पर किसी तरह का दबाव, आज के माहौल में किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए आपको।
1: आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, आपने बताया IIT किया, फिर मैनेजमेंट भी किया उन्होंने, और एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा?
3: उसमें तो सबसे ज़्यादा उसकी माताजी का योगदान रहा।
1: अरे वाह जी।
3: और उसके बाद फिर परिवार का।
1: आप खुद एक बिजनेस फैमिली से हैं, और बच्चे को आपने, ज़्यादातर बिजनेस फैमिली के माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे साथ हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए, पुश्तैनी कारोबार को अपना ले, हमारे साथ ही रहे, तो आपने बड़ी हिम्मत करके उनको और भी आगे जाने का प्रेरणा दी है
3: जी। इसमें दो कारण है, एक तो हम लोग शुरू से बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में अपने स्वयं के लिए समय थोड़ा सा कम होता है।
1: ओके।
3: और प्रशासनिक परेशानियां पर्टिकुलर राजस्थान में बहुत ज्यादा
1: आती रहती हैं जी,
3: हर तरह की प्रशासनिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं
1: जी,
3: तो ये दो कारणों की वजह से
1: हमको लगा कि
3: अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में जाता है या और कुछ काम करता है तो उसको, उसके लिए भी समय मिलेगा, हमारे लिए भी समय मिलेगा।
1: बधाई हो आपको कि आपने जो आपका संकल्प था उसको पूरा किया और उसी मार्ग पे वो आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के अंदर जब हम एक युगल के रूप में भी चल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए, और कुछ समय पहले जैसे जिक्र किया था रंजीने की, संयुक्त परिवार के फायदे होते हैं, तो ये संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें सफल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे परिवार अभी एकल परिवार एक शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि छोटे छोटे छोटे छोटे परिवार है, दो लोग रह रहे हैं, तीन लोग रह रहे हैं, एक फैमिली उधर रह रही है, तो वो फैमिली भी अलग अलग, शायद सहन शक्ति की बात पड़ी थी, तो सहन शक्ति की कभी कमी हो जाती है, कभी एक दूसरे को भावनाओं को समझना या सम्मान देने में कमी हो जाती होगी। तो संयुक्त परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
3: संयुक्त परिवार तो जब भी चल सकता है और बहुत ही अच्छा है अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं
1: जी।
3: तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयुक्त परिवार जब भी चल सकता है जब आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, थोड़ा सा त्याग भी करना होता है आपको, और भावनाओं की कद्र भी करनी पड़ेगी और त्याग दोनों चीज है।
1: त्याग एक नई वैल्यूज अभी आपसे बातचीत में निकल के आए कि त्याग करना भी आवश्यक है, कि त्याग नहीं करेंगे फिर सिर्फ प्राप्ति की आस रखेंगे तो फिर संयुक्त परिवार
3: में
1: परेशानी आ सकती है
3: जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी और हम बातचीत कर रहे थे कि पारिवारिक जीवन के बारे में, जो दिलीप जी और रेखा जी ने हम सबको कुछ ना कुछ अपने जीवन के अनुभवों को संदेश के रूप में सुनाया, और ज़रूर आप भी इसको नोट कर रहे होंगे। तो अभी एक जो नई वैल्यू आई वो हो गई त्याग। तो और भी बातें करेंगे, फिर लौट कर आएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी ज़िंदगी। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी जिंदगी का कार्यक्रम, और हमारे साथ मौजूद हैं एक युगल जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी। आइए उनसे आगे की बातचीत करते हैं। तो सर, हमने आपके बचपन के बारे में बात किया, युवा काल, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संयुक्त परिवार, काफ़ी सारे विषय आपने रेखांकित किए हैं। अभी चलना चाहेंगे, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जीवन की सत्यता है कि धीरे धीरे वार्धक्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनकी उम्र किसी के 80-90 साल भी हो गई है और एकदम युवा प्रतीत होते हैं। शरीर से ही नहीं बल्कि विचारों से और उनके कर्मों से भी वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया है। कई बार कुछ साथी हमारे यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि ये चीज़ अगर मैंने उस समय ये ठीक की होती तो अभी ये तकलीफ़ नहीं होती है। जो वरिष्ठ जन हैं उनकी भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी एक दिन अगर अभी युवा हैं तो वो भी वरिष्ठ जन में बदलाव का सामना करेंगे, तो बुजुर्ग होने से पहले किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए?
3: भारतीय परिवेश में जो खान पान है वो बहुत अच्छा है।
2: अरे भाई,
3: लेकिन अपन लोग ज़्यादातर वो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान खाने लग गए हैं। अभी
2: कुछ लोग खाने लग गए,
3: कुछ लोग ज्यादातर लोग कह सकते होगा। तो वो एक तो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान छोड़ के जो अपना नेचुरल खान पान है वही अपने को अपनाना चाहिए। पूर्ण रूप से वो खान पान अगर अपन खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आधा स्वास्थ्य तो उससे अपना बेटर हो जाता है,
2: बेहतर रहता है।
3: और उसके अलावा अपनी भारतीय संस्कृति में योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है।
2: जी जी,
3: तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ साथ होती हैं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
2: आप अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करते हैं, जो सुबह उठने से सोने तक का समय कैसा रहता है?
3: मैं सुबह उठ के 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है।
2: कितने बजे उठते हैं?
3: अभी तो मैं लेट उठ रहा हूँ, 7 बजे।
2: ओके।
3: पहले मैं 5:30 बजे उठता था,
2: उठ करके ट्रैकिंग पे।
3: हाँ, और 2 घंटे ट्रैकिंग जाते थे।
2: उससे फर्क पड़ता है कुछ?
3: उससे तो बहुत फर्क पड़ता है, पूरा दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर के अंदर आती है।
2: अच्छा, और फिर आगे का दिन?
3: आगे का दिन तो फिर वही जो रूटीन दिनचर्या है, मतलब नाश्ता करना, फिर दुकान।
2: नाश्ते में क्या लेते हैं ज्यादा?
3: नाश्ते में सब अपना भारतीय फूड, जो भी रोटी, चपाती, परांठा, सब्जी
2: जी,
3: ग्रीन सब्जी, यही ज्यादातर होता है।
2: फिर दुकान पे जाते,
3: फिर दुकान पे जाते हैं, दुकान पे भी नॉर्मल रूप से अपना जो काम होता है वो सब करते हैं, फिर वही है शाम को दुकान।
2: रेस्ट करते हैं दोपहर को?
3: नहीं, दोपहर में रेस्ट नहीं होता है।
2: नहीं करते हैं, वेरी गुड। बहुत मतलब कार्य को पसंद करने वाले व्यक्तित्व लग रहा है आपका।
3: हाँ, क्योंकि जो नाइट की नींद है 10 से 7 बजे तक या 5:30 बजे तक 7 घंटे की नींद हो जाती
2: अच्छी
3: है,
2: लेते हैं नींद,
3: अच्छी नींद हो जाती है।
2: बहुत बढ़िया,
3: तो इसलिए दिन में जरूरत नहीं रहती और दिन में पूरा एनर्जिक।
2: सामाजिक ताने बाने में अभी कई सारे लोगों के अंदर व्यसनों का प्रभाव देखने में आता
3: जी।
2: है, कुछ लोग चबाने वाले व्यसन करते हैं, कुछ लोग पीने वाले या फिर फूंकने वाले, इस प्रकार का जो है कई लोगों में देखने को मिलता है। आप अपने आसपास में देखते हैं ये सब चीज?
3: हाँ, आसपास तो है, लेकिन हम लोग उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड से मतलब उनको भी हम समझाते हैं और उनको भी
2: प्रेरणा देते हैं,
3: व्यसन, हाँ, व्यसन छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको
2: इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान आपने देखा किसी के अंदर व्यसनों के कारण?
3: व्यसन से तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ भी फायदा तो 1% भी नहीं है।
2: रेखा जी, जैसे एक महिला के रूप में हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के कारण यहाँ पर गली गली में भी जाते हैं, आदिवासियों के मध्य भी काम करते हैं, तो दो चीज़ों का जो भाव हमें दिखता है, एक होता है कि व्यसनों का जो राक्षस है उनको पकड़ रखा है और उसी कारण से उनकी पढ़ाई भी नहीं होती है और ये उनके बच्चों में आता जाता है और बार बार रिपीट होता जाता है। तो एक महिला के रूप में आप क्या देखते हैं कि व्यसन क्या नुकसान पहुँचाते हैं परिवार को?
4: व्यसन से तो सब तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। जैसे ये लोग आजकल गुटखा वगैरह खाते हैं तो कैंसर का सबसे पहले खुद ही बुलावा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, चाहे आप कितना भी समझाओ इनको, बहुत कोशिश करते हैं इनको सब। एक तो पैसों का भी नुकसान होता है,
2: बहुत ज्यादा नुकसान होता है,
4: बहुत पैसों की इनकी आधी कमाई तो इस सब चीजों में खत्म हो जाती है, घर की सुख शांति खत्म हो जाती है घर की, जब आपकी इनकम की आधा इनकम ही आपका इस गलत चीज में चली जाती है,
2: गुटखा सिगरेट शराब। और आजकल तो बहुत एडवांस चीजें भी आ गई हैं, कुछ हाँ। इंजेक्शन लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या
4: क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों का तो नुकसान तो खैर बहुत ही है।
2: महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा?
4: महिलाओं को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है ना, जब उनके जेंट्स अगर ये सब चीजें करने लगते हैं तो महिला को तो झेलनी पड़ती है ना, घर की सुख शांति खत्म होती है, वो घर के प्रति फिर वो होते ही नहीं है
2: जिम्मेदार
4: होते नहीं है घर के प्रति,
2: फिर उनको
4: और बच्चे भी उस सब चीजों का असर बच्चों पर भी आता, फिर बच्चे भी उसी में चुकाम में चले जाते हैं। आप आदिवासी इलाके में देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा होगा वो भी गुटके खाता हुआ आपको नजर आएगा, कहीं भी जाके देख लो। तो फिर वो सब पूरा करने के लिए वो फिर और आपराधिक मामले भी कर लेते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, एजुकेशन पे उनका दिमाग चलता ही नहीं है। गवर्नमेंट कितना भी कर रहे लेकिन आखिर में तो सबसे पहले घर में तो
2: खुद का प्रयास तो चाहिए,
4: खुद का प्रयास सबसे पहला चाहिए।
2: सामाजिक रूप से क्या किया जा सकता है कि व्यसन को कैसे कम किया जा सकता है समाज के अंदर?
4: देखो व्यसन के लिए तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को ये सब चीजें बंद करनी चाहिए, इजी वे में इनको मतलब मिलना ही नहीं चाहिए।
2: एक तरफ वो लाइसेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए
4: कि ये कैंसर को बुलावा है, जब आपको लग रहा है कि ये चीज नुकसान दे रही है
2: कैंसर का
4: दे ही क्यों रहे हो, आई क्यों रही है मार्केट में।
2: मेरे मामा जी जो है इसी बहुत ज्यादा गुटखा खाने के कारण बहुत सालों तक उनके जो पूरा जबड़ा है वो सड़ गया, उसको काट के निकालना पड़ा और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। और इसका हमने बचपन में देखा था उनको कि वो ऐसे लड़ियों के लड़ियां उनके
4: जेब में
2: होती थी,
4: सुबह उठते कोई तो कहता भगवान का नाम, ये सबसे पहले अपना बंदोबस्त देखते है कि अपना है ना आज का पूरे दिन का।
2: तो इतना

0: पैसे का अनाप शनाप नुकसान होता है।
1: पैसों को इसमें तो सबसे पहले तो कदम सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए कि आप ये सब इतना लाइसेंस क्यों दे रहे हो, क्यों इसका बढ़ावा दे रहे हो, क्यों इनके ऐड कर रहे हो।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे जो साथी जो सरकार में हैं और अभी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं तो हम भी उनको भी अपील करना चाहेंगे, चाहे वो जिस भी विभाग में हैं, जिस स्तर पर हैं, अपने स्तर पर कुछ ना कुछ लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करें और इन चीज़ों को जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं कम से कम वो पालन हो रहे हैं।
1: गवर्नमेंट को अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करके इनकम करना तो सही नहीं लगता ना
0: जी।
1: और उनके पास तो और भी रास्ते होंगे इनकम के लिए। गुजरात में बंद कर रखा है,
0: शराबबंदी है और कई जगह पे गुटखों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है कि कितने,
1: तो कम से कम इसका असर तो दिखेगा ही ना। आप अगर कड़ाई से पालन करोगे इजी वे में नहीं होगा, धीरे धीरे उसका असर तो मिलता ही
0: होता ही जाएगा,
1: होता ही है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर व्यसनी हो जाता है तो सारा परिवार उसका भुक्तभोगी होता है। खाली परिवार की बात नहीं है, वो पड़ोस और वो परिवेश, समाज सब प्रभावित होता
2: है। परिवेश
0: जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यसनी है तो उसको पैसे कमी पड़ रही है तो फिर वो अपराध में भी चला जाता है। अब समाज के ऊपर, गांव के ऊपर, देश के ऊपर, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी बातें आपसे बातचीत करते हुए निकल के आ रही हैं। समाज के बारे में आपका जो अच्छा नज़रिया है वो भी आपने व्यक्त किया, ये पक्ष जैसे आपने अपने विचार रखे। तो और एक बात पूछना चाहूँगा कि जब हम बचपन से लेकर अभी तक बड़े होते हैं तो प्रकृति माता से हमको सहयोग मिलता है, समाज से सहयोग मिलता है, शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास के लोग कभी ना कभी एक दूसरे को सहायता करते हुए मददगार बन जाते हैं, आप किस प्रकार से समाज को रिटर्न करने का प्रयास करते हैं? समाज सेवा ऐसी चीज़ों में कभी आप समय देते हैं?
2: समाज सेवा में समय देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे गरीब कोई भी नहीं है। कम से कम भारत में ऐसे गरीब कोई नहीं है, लेकिन आप उनको काम करने की प्रेरणा या काम करने का वातावरण दीजिए।
0: जी जी,
2: डायरेक्ट सहायता की जगह उनको काम करने के लिए प्रेरित कीजिए या कुछ भी अर्निंग करने के लिए प्रेरित कीजिए, वो ज्यादा बेटर है।
0: ऐसे प्रयास आपके आसपास होते हुए कुछ आपको नजर आते हैं तो जरूर बताइए, हमारे श्रोता सुनेंगे भी और सीखेंगे भी।
2: हाँ, जैसे अब यहाँ का ही उदाहरण ले लीजिए आप, शांतिवन का ही। शांतिवन में आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं
0: जी।
2: तो वो एक तरह से उनके जीवन का उत्थान ही है। तो इस तरह से सब जगह उनको काम के लिए प्रेरित करके और
0: रोजगार पैदा करके
2: उनको सहायता करिए,
0: जीवन उनका अच्छा बनाइए।
2: हाँ, उनका अच्छा बनाइए।
0: एक बात पूछना चाहूंगा, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से हॉबी आपकी क्या है, क्या करते हैं आप जब आप फ्री होते हैं? तो
2: मेरी हॉबी वैसे ट्रैकिंग प्लस ट्रैवलिंग ज्यादा है और बुक्स पढ़ना,
0: किताबें पढ़ना। किसे पढ़ते हैं?
2: किताबें
0: कोई भी किताब।
2: हाँ, मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन
0: बुक रीडिंग को एक बहुत अच्छी हॉबी माना जाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि बुक रीडिंग करते हैं, तो उससे आप व्यक्तिगत से आपको क्या फायदा महसूस होता है?
2: बुक रीडिंग से कुछ बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आप सोच नहीं सकते, अपने जो पुराने भारतीय जो वेद पुराण वगैरह ये है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें है इसके अंदर, जो आज अभी तक तो जहाँ नासा और इसरो भी नहीं पहुँचे हैं, उससे भी बहुत आगे तक अपने वेद पुराण पहुँचे हुए हैं। तो इतना ज्ञान भरा हुआ है और अपने ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान उन पुस्तकों में संकलित करा हुआ है, उनको आप पढ़ो और उनको मनन करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा,
0: जीवन श्रेष्ठ
2: हाँ, जीवन भी श्रेष्ठ बनाने का और बहुत कुछ मिलेगा।
0: मेडिटेशन करते हैं?
2: मेडिटेशन वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह आधा घंटा पूजा
0: आराधना करते हैं।
2: हाँ, पूजा करता हूँ, वो मेडिटेशन की तरह से ही है।
0: जी जी जी, साइलेंस में समय व्यतीत करना और अपने जो आराध्य हैं उनको अंतर्मन में याद करना, उनकी उपासना करना, इससे क्या प्राप्ति होती है आपको?
2: उससे पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहता है। हाँ, पूरा दिन आपका बहुत का मन प्रफुल्ल होता है ना, तो आप की पूरी गतिविधियां उससे और पूरा एनवायरनमेंट आपका आसपास का बहुत ही आपको अच्छा लगता है,
0: ऊर्जावान रहता है। जैसे मन की बात आपने कही, शरीर की बात भी हमने कहीं ना कहीं बात की कि भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे, जीवन पे, आयु पे पड़ता है। रेखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मन को अच्छा रखने के लिए हर इंसान को क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे मन अच्छा रहेगा?
2: पॉजिटिव सोचो,
1: अच्छा सोचो, आप अच्छे विचार रखो और अच्छे काम करो और किसी की भी, हर किसी की मतलब अच्छे हेल्प करो, तो आपको उनकी सबकी जो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी,
0: दुआएं मिलेगी,
1: दुआएं मिलती हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, दुआएं कमाने के लिए आपको अच्छा सोचना,
1: अच्छा
0: है,
1: सोचना, अच्छा,
0: अच्छा करना है और अच्छा बोलना भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। कार्यक्रम सलामी जिंदगी से हम आप दोनों की जिंदगी को सलाम करते हैं और फिर निमंत्रण देना चाहेंगे, और भी आइए रेडियो मधुबन से जुड़िए और रेडियो मधुबन के द्वारा अपने अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए, और जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं और उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त हो आपको, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सलामी जिंदगी। दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी आकरा भट्टा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार जी।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

light.

clear.

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 25 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनना है तो कर्मेंद्रिय जीत जरूर बनना पड़े, क्योंकि जब तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तो कर्मातीत अवस्था के समीप भी नहीं आ सकेंगे। कर्मेंद्रिय जीत में विशेष बाबा ने आंखों के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है, बहुत चलायमान हो जाती है, मन बुद्धि को भटका देती है। किसी को भी देखा तो बस आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित हो करके फिर उसके पीछे पीछे बुद्धि चली जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा ये मुख बहुत धोखा देने वाला है, कोई अच्छी चीज देखी नहीं, ये लालच होती है, छिपाकर खा लूं। और इस तरह से बाबा कहते हैं ये कर्मेंद्रियां बहुत विकर्म कराती है। इन कर्मेंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करने की पहली युक्ति बाबा ने कहा, बच्चे रोज रात को अपना वो तमिल देखो, अपने दरबार लगाओ और देखो कौन सी कर्मेंद्रिय ने आज धोखा दिया है। फिर उसके बाद दृढ़ संकल्प करके दूसरे दिन उसके ऊपर विशेष अटेंशन रखो। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर चलते चलो, जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे विकर्मों से बचे रहेंगे। और तीसरी बात बाबा ने कहा बच्चे कर्म की गुह्य गति का ज्ञान सामने रखो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाबा ने समझाई है, तो किस कर्म की क्या गति हो सकती है उसको बुद्धि में रख फिर हर कर्म करो। तो आज ये तीन कर्मेंद्रिय जीत बनने की विधियां बाबा ने बताई है, तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं? कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है? आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती, मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। ऐसा अपने साथ वायदा करो। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्मभिमानी होकर बैठे हो? पूछते बाबा। बच्चे आत्मभिमानी होकर बैठे हो? अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो आत्म अभिमानी हो बैठे हो? बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी है तो 90 वर्ष के बूढ़े भी है तो छोटे बच्चे भी है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है।
बच्चे स्वयं भी जानते हैं, अनुभव है कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिया है? पूछते बाबा, सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिया है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाए, बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन है। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे पहले चार्ट रखना बहुत जरूरी है। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, तो ये लिखना चाहिए, पलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। बाबा कहते इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई। फिर अपने को आप ही सजा दो, ये भी युक्ति है। बाबा कहते फिर अपने आप को आप ही सजा दो, ख्याल में रहे कि नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। ऐसे चुटकी देते हैं कि कहां जा रहा है मन। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। और कई ऐसे भी है, बाबा कहते कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं है। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हमें ऐसी विधि नहीं अपनानी है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि विजयी हुए या नहीं हुए। लेकिन हमें ऐसी विधि अपनानी है कि सामने होते हुए भी हमारा बुद्धि योग न जाए, तब कहेंगे विजयी आत्मा। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10-12-20 हजार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। पैसा इतना इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत में और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहां तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग,
पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मिल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती थी। ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उसमें मर्तबा भी तो है ना। कहां राजा कहां प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। रोज अपना पोता मिल जरूर रखना है। दूसरा बाबा कहते बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेंगी। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं माया जरूर विघ्न डालेंगी, अर्थात परीक्षा तो लेंगी। बाप कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। अगर अपना पोता मिल निकाला, डायरेक्शन पर चलने का अटेंशन रखा, तो इसमें बाबा कहे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालना चाहिए, यह आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं या खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में चिंता की कोई बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। नशा भी बाबा चढ़ाते हैं कि तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया मैं उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मिल देखो।
कोई भी कर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है, विकर्मा जीत के संबंध का किसको पता ही नहीं है, विकर्मा जीत का संबंध का किसको पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए फिर भी कर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से विकर्म शुरू हुए तो वाम मार्ग में गए। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सत्युग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान मिला है, तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं वह कोई सदगति नहीं कर सकते। जो धर्म पिताए हैं वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। वह है धर्म स्थापक, वह कोई गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं, कौन सी बात आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को समझाई? माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। जब दैहिक दृष्टि गई, स्त्री है पुरुष है, तो बाबा कहे तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए, कितना कब्जा रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर, बाप से प्रतिज्ञा कर, वायदा कर, राखी भी बांधते फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके।

कुछ कहूं तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ने कुछ कहा भी तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं। शिव बाबा कहते तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं, ये रथ थोड़ी देता है, ये तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है, यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संचय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी, ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं, यहां ही इतनी दासियां है तो सतयुग में कितनी होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोतामिल से बाबा बता सकते हैं, इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं, तो ये कमाई है, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, एक तरफ खाना भी खाते रहेंगे दूसरी तरफ टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहां गरीब साधारण ही आते हैं, शाहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत नहीं है, अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो, कई बच्चियां बहुत याद करती है, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों का साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना, ऐसे जड़ नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े, भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। बाबा कहे मनुष्य को पता पड़े उसके लिए क्या क्या युक्ति अपनाई है, एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, फिर भी जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है।

अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मिल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म जो कर सकेंगे वही स्थूल फरमान को भी पालन कर सकेंगे। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदार। आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, एक रस्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका ये पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस्थिति बनाने का साधन है। यही एक रस्थिति बनाने का साधन है। अच्छा ओम शांति।